0: इससे पहले सेनेटर अली जफर ने मुतालबा किया कि बानी पीटीआई के इलाज और मुआवजे के मामले पर तहरीक पेश करने की इजाजत दी जाए। इस दौरान मिशाल यूसुफजई ने सेनेट में कोरम की निशानदेही कर दी। पीटीआई के अरकीन एहतजाज करते हुए ऐवान से बाहर चले गए। कोरम मुकम्मल न होने पर इजलास कल दिन 11 बजे तक मुलतवी कर दिया गया। तफसीलात के मुताबिक 8 मखसूस नशस्तों में से 6 पर कामयाबी के बाद आजाद कश्मीर में मुस्लिम लीग नून की हुकूमत साजी की पोजीशन मजीद मजबूत हो गई है, जिसके साथ ही आजाद कश्मीर में हुकूमत साजी का अगला मरहला भी शुरू हो गया है। टेक्नोक्रेट की नशस्त पर मुस्लिम लीग नून के बैरिस्टर इफ्तखार गिलानी 26 वोट लेकर कामयाब हुए। खवातीन की 5 मखसूस नशस्तों में से 3 नशस्तें मुस्लिम लीग नून के नाम रहीं। मुस्लिम लीग नून के 25 वोट जबकि इत्तेहादी वोट के साथ कुल 26 वोट हो गए हैं। सराय के मुताबिक गैस शोबे का सर्कुलर डेट 3611 अरब रुपए जबकि बिजली शोबे का सर्कुलर डेट 1675 अरब रुपए रिकॉर्ड किया गया है। तवनाई शोबे के मजमूई सर्कुलर डेट में गैस के शोबे का हिस्सा बिजली के शोबे से कई ज्यादा है। उधर IMF का कहना है कि तवानाई के शोबे में बरवक्त टैरिफ एडजस्टमेंट सर्कुलर डेट रोकने के लिए जरूरी है। इसके अलावा इस शोबे की कारकर्दगी बेहतर बनाने के लिए नुकसानात में कमी भी जरूरी करार दी गई है। IMF के मुताबिक तवानाई शोबे में इस्लाहात का मकसद नुकसानात कम करके बिजली और गैस के शोबे को माली तौर पर मुस्तहकम बनाना है। उधर हुकूमत की जानिब से पेट्रोल और डीजल की कीमतों में मुसलसल इजाफा जारी है। ओगरा की जानिब से 25 अगस्त के लिए पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में इजाफे का नोटिफिकेशन जारी कर दिया गया, जिसके मुताबिक हाई स्पीड डीजल की कीमत में 2.40 रुपए जबकि पेट्रोल 39 पैसे मजीद महंगा कर दिया गया। हालिया इजाफे के बाद पेट्रोल की फी लीटर कीमत 341.98 रुपए हो गई है। दूसरी जानिब GTA और इसके गिर्द नवाब में आज पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में किसी रतो बदल का इम्कान नहीं। इसी के साथ खबरें इख्तिताम पजीर हुईं।
1: टोरंटो 360 टीवी आपका अपना 24/7 चैनल, तमाम IPTV बॉक्सेस, जादू बोल, शावा और जूम बॉक्स पर पाकिस्तानी या उर्दू सेक्शन में देखिए। टोरंटो बेस्ड पाकिस्तानी चैनल्स में सबसे ज्यादा देखा जाने वाला चैनल। सुबह अजान फजर के बाद एक पारे की तिलावत उर्दू तर्जमे के साथ, इस्लामिक सेगमेंट, करंट अफेयर्स के प्रोग्राम, सोशल इश्यूज, एजुकेशन और इंटरटेनमेंट के साथ साथ कॉमेडी प्रोग्राम भी। हर रात 8 और 10 बजे टोरंटो 360 स्पेशल प्रेजेंटेशन, पाकिस्तानी फीचर फिल्म रात 11 और दिन 1 बजे, शहर में होने वाली तकरीबात की कवरेज और बहुत कुछ। टोरंटो 360 टीवी, पाकिस्तान की पहचान, आपका अपना 24/7 चैनल टोरंटो 360 टीवी, आपकी आवाज आपके अंदाज में।
2: टोरंटो 360 चैनल आप एपल टीवी, अमेजन फायर टीवी, रोको टीवी के साथ साथ ट्यूब के थ्रू रॉजर्स पे भी हमारे निशा देखते हैं। ना फ्राइडे को हमारी ट्रांसमिशन कुछ 20-25 मिनट जो है वो नहीं आई थी और कुछ लोगों ने कॉन्टैक्ट किया था मुझसे, लेकिन ज़ाहिर कोशिश हमने की लेकिन टेक्निकली इसका फॉल्ट था। तो अगर कभी 2-1 मिनट 1-2 मिनट अगर ट्रांसमिशन आपको ना सुनाई तो प्लीज़ मुझे फौरी तौर पर टेक्स्ट कर दिया कीजिए सेल नंबर पर 416-300-5600 ताकि एमकेब्ल्यू उसको हम जो है वो दुरुस्त कर सकें। अच्छा, अब एक वाक़ आज हुआ है इस्लामाबाद में, सरद यूनिवर्सिटी का इस्लामाबाद कैंपस है। तलबा के मुजाहरे के दौरान एक तालिबे इल्म पर तशद्दुद की बात हो रही है, हवाई फायरिंग भी बात हो रही है। पाक फौज के वो अफसर थे, लेफ्टिनेंट कर्नल के रैंक के। पुलिस ने कहा है कि उनके खिलाफ कार्रवाई की जाएगी और उनको जो है फौज के हवाले कर दिया गया है और कहा जा रहा है कि असेंबली कोर्ट मार्शल का ट्रायल भी शुरू होने के उनके कवी इम्कान हैं। फौज ने भी सख्त नोटिस लिया है और कहा कि फौज की रिवायत रही है कि वो किसी किस्म की कानून शिकनी के खिलाफ फौरी और बिला तफरीक सख्त कार्रवाई करती है। और सरद यूनिवर्सिटी में फायरिंग और फौजी अफसर की जानब से तलबा पर तशद्दुद का वाक़ा उस वक्त पेश आया जब इस्लामाबाद पुलिस के हुकाम मुजाहरीन को मुंतशिर करने के लिए पहले से वो मौजूद थे। वो भी हैरान थे कि पुलिस की मौजूदगी में कैसे कोई कानून अपने हाथ में ले सकता है। और फुटेज भी इसके हैं और इस्लामाबाद के वहाँ पर बावर्दी पुलिस वाले भी दिखाई दे रहे हैं। ह्यूमन रिसोर्स की डायरेक्टर के रवैये के खिलाफ तलबा जो है एहतजाज कर रहे थे जब फौजी अफसर वहाँ पर पहुँचे और इस दौरान लेफ्टिनेंट कर्नल रैंक के एक फौजी अफसर वहाँ आए थे तो उनके हाथ में छड़ी थी। कुछ तलबा को उन्होंने शहीद भी किया और इंतजाम में शामिल अफराज जब वहाँ पहुंचे तो उस वक्त तलबा और फौजी अफसर के दरमियान हाथापाई हो रही थी। इसके बाद फौजी अफसर ने हवाई फायरिंग शुरू कर दी, फिर वहाँ से वो चले गए। और इसके अलावा जो बताया जा रहा है कि फौजी अफसर यूनिवर्सिटी के एक खातून मुलाजिम हैं, उनके शौहर हैं, कोई बीवी कहता है, कोई रिश्तेदार कहता है, लेकिन फिर उसके बाद जब इसका वाक़ा हुआ तो फिर तलबा जीट रोड पर आ गए और ट्रैफिक भी ब्लॉक की। इस्लामाबाद पुलिस भी वहाँ पहुँची और मुज़ाकरात हुए और उसके बाद तक कार्रवाई की यकीन दहानी भी कराई गई। ये बहुत ही गलत है। اچھا اس کو بہت رپورٹ نہیں کیا اخبارات میں, میں باقی آن لائن دیکھ رہا تھا, بی بی سی نے اس کو رپورٹ کیا ہے, باقی تو مجھے بلیک آؤٹ نظر آیا. لیکن یہ ہائٹ آف نیگلیجنس کہیں یا کیا کہیں اس قسم کا واقعہ جو ہے بالکل بھی نہیں ہونا چاہیے تھا. آگے صورتحال اتنی خراب ہے تو فوج کو فوری طور پہ اس پہ کارروائی کرنی چاہیے. اگر غلطی ان کی ہے تو فار شور جو ہے ان کا کورٹ مارشل جو ہے وہ ہو اور عوام تک اس کی انفارمیشن بھی پہنچائی جائے, اور اس قسم کے واقعات جو ہے اس میں پھر سویلین کے اندر جو ہے وہ عدم تحفظ جو ہے وہ فوج جانا ہی چاہیے جو بھی ہوتا پولیس کو اس حوالے سے, یا اگر آپ کو ایسا معاملہ تھا تو پولیس کو کہتے, پولیس وہاں پہ معاملات کو درست کرتی. تو اب آئی ایس پی آر اس حوالے سے کوئی ڈیٹیل کیا بتاتی ہے, ظاہر ہے اس کے بعد اس پہ آگے بات ہوگی. لیکن سوشل میڈیا پر یہ بہت زیادہ گردش کر رہا ہے. 416-593-0003 ریڈیو پاکستان ٹورانٹو سی ایم آر 101.3 FM. تھوڑی دیر بعد آپ کی ملاقات عارف شیخ صاحب سے کروائیں گے, کیئر انشورنس اینڈ فائنانشیل لمیٹڈ, اور کچھ اہم سوالات ان سے کریں گے. اسٹے ٹیون.
3: ٹورانٹو اور اس کے گرد و نواح میں مغرب کی اذان کا وقت ہو گیا ہے. دوسرے علاقوں کے رہنے والے اپنے مقامی نظام الاوقات کے مطابق نماز مغرب ادا کریں. ٹورانٹو اور اس کے گرد و نواح میں اذان مغرب.

0: स्पेशल पैकेज डील के लिए कॉल करें 9052753555 9052753555
1: Dundas Street East Unit 1C Mississauga.
2: Hello everyone, my name is Ahsanul Hafiz and I am your Ontario Liberal candidate in Scarborough Southwest. When I immigrated to Canada back in 2002, I chose to make Scarborough my home. Back then, life was affordable, but today it is not. Scarborough deserves better, and I will fight for a more affordable Scarborough. Visit votehafiz.ca to learn more.
3: This ad has been authorized by the CFO for the Scarborough Southwest Provincial Liberal Association.
4: इस रक्षाबंधन राजधानी लेकर आए हैं भाई बहन एंड ब्लेसिंग्स गिव अवे जीतो इलेक्ट्रिक स्कूटर प्लेस्टेशन 5 डायसन एयर रैप निंटेंडो स्विच रेबान मेटा ग्लासेस और भी बहुत सारे एक्साइटिंग प्राइजेस
5: राजधानी की किसी भी लोकेशन पर विजिट करें परचेज करें 12 से 29 अगस्त तक QR कोड स्कैन करके अपनी इन्फो और एंट्री सबमिट करें
4: 26 लोकेशंस अक्रॉस कनाडा
6: फॉर मोर इन्फॉर्मेशन विजिट rajdhanisweets.ca
7: अपने खुशी के लम्हात को यादगार बनाएं। आईकॉन इवेंट स्पेस में शादी मेहंदी रिसेप्शन बर्थडे पार्टीज कारपोरेट इवेंट्स गजल और कवाली नाइट्स या किसी भी तकरीब के लिए 3 खूबसूरत और शानदार हॉल्स हैं, जहां 1200 तक गेस्ट्स की भरपूर मेहमान नवाजी कर सकते हैं तमाम हलाल डिशेस पाकिस्तानी शेफ की निगरानी में रिवायती जायकों के साथ तैयार की जाती हैं इन हाउस स्टेजिंग ऑडियो विजुअल सिस्टम 10 प्रोजेक्टर स्क्रीन्स मुकम्मल टेक्निकल सपोर्ट के साथ 6887 डिक्सी रोड मिसिसागा Information and booking, call Mr. Alam 437-425-2500 or Brompton May Queens Manor Event Center 2 Auction Lane, Brompton. For more information, call 416-814-3600.
8: Sirf Mortgages. That's Rajiv Talwar, the mortgage superstar. Mortgage residential, low ya commercial. For customized mortgage solutions, choose Rajiv Talwar. Mushkil se mushkil mortgage ho, last minute deal ho, ya phir credit issues ho. Rajiv Talwar ka wasi ilm aur tajurba, aapka kaam आसान कर देगा तो याद रखिए मॉर्गेज उनसे मत लीजिए जो मॉर्गेज भी करते हैं बल्कि मॉर्गेज सिर्फ उनसे लीजिए जो मॉर्गेज ही करते हैं कॉल राजीव तलवार ऑफ लीडिंग एज मॉर्गेज एक्सपर्ट्स 9058191001 9058191001 लाइसेंस नंबर 12374
7: SSR ऑटो रिपेयर 3438 शेपर्ड एवेन्यू ईस्ट स्कारब्रो वार्डन और शेपर्ड का इंटरसेक्शन 24/7 ऑटो रिपेयर वेरी क्लोज टू हाईवे 401 तमाम मेजर रिपेयर वर्क करते हैं बॉडी शॉप एक्सीडेंटल रिपेयर डेंटिंग पेंटिंग इंजन रिपेयर ऑयल चेंज टायर चेंज ब्रेक पैड्स एंड राउटर व्हील अलाइनमेंट बैटरी एंड एसी सर्विस 24/7 टोइंग सर्विस भी अवेलेबल है SSR ऑटो रिपेयर कॉल नजीर चौधरी अवैस चौधरी और मुनीर हुसैन 6473217444
9: इट्स 6473217444 बड़ी पार्टीज भी आप अरेंज कर सकते हैं बारबेक्यू आइटम्स बिहारी कबाब सीख कबाब कड़ाही बिरयानी ताजा नान और बेशुमार डिशेस जायका वही और खूबसूरत सेकंड लोकेशन पार्टीज की बुकिंग या मालूमात के लिए कॉल कीजिए 9052829868 बारबेक्यू टुनाइट की सेकंड लोकेशन 5165 डिक्सी रोड डिक्सी और एमको का इंटरसेक्शन मिसिसागा में 9052829868

0: थी, आप पुलिस से बात कर सकते थे, पुलिस वहां जो भी, और ऑलरेडी वो स्टूडेंट्स जो हैं वो एचआर के खिलाफ जो है वहां एहतजाज कर रहे थे। और ये सूरत हाल अब काफ़ी सोशल मीडिया पे बहुत ज़्यादा है, लेकिन उसको हम अगर बाकी मीडियाज़ पे देखें तो वहां पे कोई ऐसी चीज़ जो है वो नहीं नज़र आ रही। आप उनका ख्याल है कि शायद उनका कोर्ट मार्शल जो है वो हो सकता है कि उनका कोर्ट मार्शल कर दिया जाए। उधर हुकूमत के खिलाफ पोजिशन मुतहद हो रही है, मौलाना फजल रहमान साहब और सारे जो हैं खुश नज़र आ रहे हैं, क्या वाकई कोई थ्रेट है गवर्नमेंट को या नहीं। और दूसरा, ईरान के दौरे पे फील्ड मार्शल गए हैं और ईरानी सदर से मुलाकात में उनका कहना था कि अमेरिका जो है, ईरानी सदर ने कहा कि अपना रवैया जो है वो तब्दील करे। तो ये तीन मौजूदात हैं, आपकी हम लेंगे लाइव कॉल्स इस हवाले से। और फर्स्ट कॉलर आज भी हमारे साथ 7997 है, 7997 जी, आप बात कीजिए। 7997 जी, बिल्कुल ठीक सर, थैंक यू, बहुत शुक्रिया।
1: साहब आप इस छोटे से वाक्य पे क्यों इतने परेशान हो गए हो भाई?
0: नहीं नहीं, ये वाक्य बड़ा कभी नहीं हुआ ऐसा।
1: नहीं बड़ा नहीं,
0: नहीं ऐसा नहीं होता, पहले थोड़ा बहुत पुलिस वाला के दरमियान होता है, ये फौजी आके
1: गुजारी सुन ले गया
0: जी, सुनाए।
1: हमने तो ये देखा है कि वर्दी पहन के आया है और वजीर आजम जो इलेक्टेड है 25 करोड़ का, उसको हथकड़ियां लगा के ले गए,
0: वो
1: बाद में फांसी लगा दी।
0: सर वो डिफरेंट, वो मार्शल लॉ और वो डिफरेंट चीज होती है, ये एक और है, ये मॉब के अंदर
1: मार्शल लॉ। एक सेकंड, गलती चाहे छोटी हो, गुनाह छोटा हो या बड़ा हो,
0: ओके,
1: उसने ऐसा इसलिए किया तो उसके जहन में ये है कि ये तो सिविलियन है,
0: मुझे कोई कुछ नहीं
1: कहेगा, हम तो कोई पता नहीं ऊपर की चीज है, हम ये तो है। और उनके हाथ में आपने बोले एक छड़ी थी, मुझे आज ये समझा दे कि ये इन लोगों के हाथ में छड़ी किस बात के लिए होती, क्या ये कोई गुलाम कौम है जो नीचे घूम रही है? इनके हाथ में छड़ी होनी चाहिए, ये छड़ी से ही अपनी कोई डिसिप्लिन, ये टोटली अंग्रेजों के पिट्ठू है नीचे से ऊपर तक। इनके बिल्ले देखो, इनकी यूनिफॉर्म देखो, इनकी चलना धलना देखो। और आपको तो पता नहीं, आप ISSB वगैरह किया है, आपने नहीं किया है?
0: क्या नहीं किया?
1: वहाँ ISS,
0: मैंने ISSB भी किया है, मैंने CMB भी किया है
1: ना,
0: मैंने CMB भी किया
1: जी। हाँ, तो वहाँ क्या कॉन्सेप्ट क्या होता था? वहाँ कॉन्सेप्ट ये होता है कि ब्लडी
0: नहीं, नहीं, कभी नहीं कहा उन्होंने, कहा कहते हैं सर कहाँ कहते
1: भाई, हम भी लोग क्या है यार,
0: स्टूडेंट होते हैं, बच्चे होते हैं, मैट्रिक के बाद, मैट्रिक के बाद जाते हैं, क्या उन्होंने कहना, उन्हीं में से अफसर बनते
1: हैं, वो सब होता है। लेकिन बात ये है जनरली, और यकीनन इसमें वो भी जो ऑफिसर है ना, वो भी पाकिस्तानी एक शहरी है ना
0: जी जी,
1: ये अंडरस्टैंडिंग होनी चाहिए कि कानून से कोई बालातर नहीं है, ठीक है, कानून सबके लिए बराबर है। इस जमीन पे अगर पाकिस्तान की जमीन है उसमें कानून सबके लिए बराबर होना चाहिए,
0: ठीक,
1: कोई आप फौज में हो या बगैर वर्दी के हो, वर्दी के साथ हो, आप पे वही लागू होगा जो एक सिविलियन पे होता है। और ये जो माशाल्लाह कोर्ट वोट बनाई है ना, ये भी अंग्रेजों ने की थी, इसलिए कि उन्होंने अपने लोगों को बचाना होता था क्राइम से, कि हमारे बंदों ने कोई गलती कर दी है तो सिविलियन के हत्ते ना चढ़ जाए, जज को फैसले ना कर दे, तो सिविलियन को हमने वो ही कल्चर चलाया हुआ है, तो चलाते रहे। और ये जो बंदे भाई ने जो काम किया है ना, फौज में एक टर्मिनोलॉजी है आर्म टीच करने की,
0: ठीक,
1: वो काम नहीं कर रहा है, अच्छा जी टीच हो, काम हाथ मलोड़ के करा लो,
0: ठीक है,
1: ये चीजें हैं,
0: ठीक।
1: लेकिन ये नहीं है कि ये हमारे सभी लोग खराब है, अच्छे है, जो भी है, कुछ लोग डिसिप्लिन में नहीं है, कुछ आउट ऑफ डिसिप्लिन हो जाते हैं। लेकिन मेन ये होना चाहिए, ट्रेनिंग ये होनी चाहिए कि कानून सबके लिए है, चाहे वो चीफ हो ना चीफ हो, सिविलियन गवर्नमेंट को टच नहीं करना चाहिए,
0: ठीक है,
1: हमेशा याद रखें।
0: चलें, थैंक यू सर, बहुत शुक्रिया। 5415 सर, आप ऑन एयर हैं, 5415 आप ऑन एयर हैं सर, 5415 जी सर, जो साहब 5415 आप ऑन एयर सर, बात कीजिए।
2: अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू।
0: जी वालेकुम सलाम
2: जी, आप पटी साहब की आ रहे
0: जी, बिल्कुल ठीक सर, थैंक यू, शुक्रिया सर।
2: अच्छा पटी साहब, मेरा ख्याल है तुसा पूरी वाकई ने यहां तक पूरी तरह ओरी इंफॉर्मेशन नहीं लई या थोड़े तक नहीं पहुंची, जिवें भी है तुसी अपने प्रोग्राम में बिजी होवोगे। पटी साहब बड़ी बदकिस्मती है कि एक ऐसे वाकये नु त्रोड़ मरोड़ के और गलत अंदाज दे नाल पेश किया जा रहा है। मैं तुहाडे को एक सवाल करना
0: जी,
2: अगर तुहानू फोन कॉल आवे ਤੁਹਾਡੀ ਮਿਸਿਸ ਦੇ ਨਾਲ

0: ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਇੱਕ ਉਬਾਸ਼ ਮਜਮਾ ਬਦਤਮੀਜ਼ੀ ਕਰ ਰਿਹਾ ਉਹਦੀ ਜਾਨ ਖਤਰੇ ਚ ਤੇ ਕੀ ਕਰ ਤੁਹਾਡਾ ਰਿਐਕਸ਼ਨ ਕੀ ਹੋਵੇਗਾ? ਇੱਕ ਵਾਪਸ ਜੀ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਛੱਡ ਕੇ ਕੱਪੜੇ ਘਰ ਬਦਲਣ ਜਾਓਗੇ ਤੇ ਉਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੀ ਭੱਜ ਕੇ ਡੋਲ
1: ਜਾਓਗੇ? ਮੈਂ ਇਕੱਲਾ ਕਦੇ ਵੀ ਨਹੀਂ ਜਾਵਾਂਗਾ। ਯੂ ਆਰ ਇਨ ਦਾ ਆਰਮੀ, ਯੂ ਹੈਵ ਦੀ ਪਲਾਟੂਨ, ਯੂ ਹੈਵ ਲੋਟ ਆਫ ਪੀਪਲ, ਯੂ ਕੈਨ ਗੋ ਵਿਦ ਦੈਮ। ਇਹ ਤੇ ਕੋਈ ਸਭ ਨੂੰ ਪਤਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਅੱਜ ਕੱਲ੍ਹ ਦੀ ਸੂਰਤ ਹਾਲ ਹੈ ਸਰ, ਉਸੇ 'ਚ ਜੋ ਉਸਨੂੰ ਕਦੇ ਵੀ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ, ਗਲਤ ਫੈਸਲਾ ਉਹਨਾਂ ਦਾ, ਰੋਂਗ ਡਿਸੀਜਨ। ਗਲਤੀ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਹੋਏਗੀ, ਮੈਂ ਨਹੀਂ ਕਹਿੰਦਾ ਬਿਲਕੁਲ ਉਹ ਸਟੂਡੈਂਟਸ ਜ਼ਹਿਰ ਹੈ ਉਹ ਕੁਛ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋਣਗੇ, ਇਹਦੇ 'ਚ ਕੋਈ ਸ਼ੱਕ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਤੁਹਾਡੀ ਗੱਲ ਕਿਸੇ ਤੱਕ ਦਰੁਸਤ ਹੈ, ਲੇਕਿਨ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਰਨਾ ਔਰ ਫਿਰ ਫਾਇਰਿੰਗ ਕਰਨਾ, ਸਰ ਪੁਲਿਸ ਵੀ ਖੜੀ ਉੱਥੇ ਨਾ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਹੋ ਕਿ ਉਹ ਕਰਨ। ਮੇਰਾ ਆਪਣਾ ਪੁਆਇੰਟ ਆਫ ਵਿਊ ਹੈ ਜੀ।
0: ਸਰ ਤੁਹਾਡਾ ਪੁਆਇੰਟ ਆਫ ਵਿਊ ਹੋਵੇ, ਦੇਖੋ ਮੇਰੀ ਗੱਲ ਸੁਣੋ, ਪੁਲਿਸ ਅਗਰ ਕੁਛ ਕਰ ਰਹੀ ਹੁੰਦੀ ਨਾ, ਪੁਲਿਸ ਅਗਰ ਕੁਛ ਕਰ ਰਹੀ ਹੁੰਦੀ ਤੇ ਭੱਟੀ ਸਾਹਿਬ ਵਾਕਿਆ ਹੁੰਦਾ ਹੀ ਕਿਉਂ? ਉਹ ਇੱਕ ਉਹ ਪਾਕਿਸਤਾਨੀ ਔਰਤ ਹੈ, ਤੁਸੀਂ ਇੱਕ ਸੈਕਿੰਡ ਨੀ ਭੁੱਲੋ ਕਿ ਉਹ ਇੱਕ ਆਪਣਾ ਕਰਨਾ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਫਾਇਰਿੰਗ ਤੇ ਸਾਨੂੰ ਯਾਦ ਹੈ ਉਸ ਕੇ ਕਿਹੜਾ ਪ੍ਰੋਟੈਸਟ ਜਿਹੜਾ ਹੱਥ ਦਿੰਦਾ, ਹੱਕ ਦਿੰਦਾ ਕਿ ਇੱਕ ਔਰਤ ਦੇ ਤੁਸੀਂ ਗਿਰੇਬਾਨ ਚ ਹੱਥ ਪਾ ਦਿਓ?
1: ਨਹੀਂ ਤੁਹਾਡਾ ਪੁਆਇੰਟ ਆਫ ਵਿਊ ਹੈ ਨਾ ਸਰ, ਉਹ ਦੂਸਰੀ ਤਰਫ ਦਾ ਪੁਆਇੰਟ ਆਫ ਵਿਊ ਤੇ ਹੈ ਨਾ। ਨਹੀਂ ਨਹੀਂ ਨਹੀਂ, ਔਰਤ ਨੇ ਤੇ ਮਾਰਨਾ ਨੀ ਸੀ ਨਾ, ਉਹ ਤੇ ਮਤਲਬ ਤੁਸੀਂ ਕਹਿ ਲੋ ਕਿ ਮਤਲਬ ਉਸ ਦੇ ਉੱਪਰ ਤੇ ਤਸ਼ੱਦਦ ਹੋ ਰਿਹਾ ਸੀ ਨਾ, ਉਹ ਤੇ ਤਸ਼ੱਦਦ ਹੋ ਰਿਹਾ ਸੀ, ਬਿਲਕੁਲ ਠੀਕ ਹੈ।
0: ਇੱਕ ਔਰਤ ਨਾਲ ਜਿਸ ਵੇਲੇ ਕੋਈ ਬਦਤਮੀਜ਼ੀ ਕਰਦਾ ਹੈ ਤੇ ਭੱਟੀ ਸਾਹਿਬ, ਠੀਕ ਹੈ ਤੁਹਾਡਾ ਪੁਆਇੰਟ ਆਫ ਵਿਊ ਹੈ, ਤੁਸੀਂ ਆਖਿਆ ਮੈਂ ਇਕੱਲਾ ਕਦੀ ਨਹੀਂ ਜਾਵਾਂਗਾ, ਲੇਕਿਨ ਸਾਡੇ ਜੇ ਵੀ ਲੋਕ ਇੱਥੇ ਮੁਆਸ਼ਰੇ ਦਾ ਹਿੱਸਾ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਇੱਕ ਸੈਕਿੰਡ ਵੀ ਨਹੀਂ ਸੋਚਦੇ ਤੇ ਤੁਰ ਜਾਂਦੇ ਨੇ, ਇਹ ਫਰਜ਼ ਦੇ ਲੋਕ ਨੇ ਨਾ ਮੁਆਸ਼ਰੇ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਕੋਈ ਇੱਕ ਕਿਸਮ ਦਾ ਸੈਗਮੈਂਟ ਹੁੰਦਾ ਨੀ ਨਾ,
1: ਠੀਕ।
0: ਲਿਹਾਜ਼ਾ ਅਗਰ ਅਦਾਰਾ ਆਪਣੇ ਬੰਦੇ ਦੇ ਨਾਲ ਪੂਰੀ ਤਹਿਕੀਕ ਕਰ ਲੈਣ, ਅਗਰ ਅਦਾਰਾ ਨਹੀਂ ਖਲੋਂਦਾ ਤੇ ਅਦਾਰੇ ਦੀ ਵੀ ਮੈਂ ਸਮਝਣਾ ਕਿ ਸਫਾਕੀ ਹੋਵੇਗੀ, ਅਸੀਂ ਹਰ ਮਸਲੇ ਨੂੰ।
1: ਨਹੀਂ ਨਹੀਂ, ਅਦਾਰਾ ਕਦੇ ਵੀ ਆਪਣੇ, ਦੇਖੋ ਉਹ ਆਪਣੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਜਿਹੜੀ ਇਖਤਿਆਰਾ ਸੀ ਉਸ ਤੋਂ ਤਜਾਵਜ਼ ਕੀਤਾ, ਅਦਾਰਾ ਕਦੇ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਨਹੀਂ ਖੜਾ ਹੋਏਗਾ, ਨੈਵਰ। ਇਹ ਹੁੰਦਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹੈ ਸਰ, ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੋਈ ਮੁਮਕਿਨ ਨਹੀਂ ਹੈ ਨਾ, ਮਤਲਬ ਇੱਕ ਪ੍ਰੋਟੋਕੋਲ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਉਹ ਪ੍ਰੋਟੋਕੋਲ ਨਹੀਂ ਤੋੜ ਸਕਦੇ ਤੁਸੀਂ। ਨਹੀਂ ਨਹੀਂ ਹੋਏਗਾ, ਤੁਸੀਂ ਦੇਖ ਲੈਣਾ, ਤੁਸੀਂ ਦੇਖ ਲੈਣਾ, ਅਦਾਰਾ ਕਦੇ ਵੀ ਮਤਲਬ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਹੱਕ ਜਾਣ ਨਹੀਂ ਖੜਾ ਕਰੇ।
0: ਦੇਖੋ ਨਾ ਮੇਰੀ ਗੱਲ ਸੁਣੋ, ਉਹੀ ਸੋਲਜਰ ਨੇ, ਇਹ ਉਹੀ ਜਵਾਨ ਨੇ, ਜਿੱਥੇ ਜੇ ਇਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਫੈਮਿਲੀਆਂ ਵੀ ਉਸ ਮੁਲਕ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮਹਫੂਜ਼ ਨਹੀਂ ਤੇ ਇਹ ਸਰਹੱਦਾਂ ਤੇ ਕਾਹਦੇ ਲਈ ਜਾਨ ਦੇਣ ਵਾਸਤੇ, ਕਿਹੜੇ ਪਾਸੇ ਜਾਨ ਦੇਣ ਲਈ ਖਲੋਤੇ
1: ਸਰ ਜੀ? ਮਤਲਬ
0: ਅਸੀਂ ਸ਼ਹੀਦਾਂ ਦੇ ਆਪਣਾ ਕੀ ਸ਼ਹੀਦਾਂ ਨੂੰ ਸਿਰਫ ਵੇਚਣ ਵਾਸਤੇ ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਂ ਲੈ ਕੇ ਸਿਰਫ ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਕਿ ਸਾਡੇ ਇੰਨੇ ਸ਼ਹੀਦ ਹੋ ਗਏ ਨੇ ਸਿਰਫ ਉਸ ਵਾਸਤੇ ਖਲੋਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕੋਈ ਹੋਰ?
1: ਸਰ ਚਲੋ ਠੀਕ ਹੈ ਸਰ, ਤੁਹਾਡਾ ਪੁਆਇੰਟ ਆਫ ਵਿਊ ਹੈ, ਲੇਕਿਨ ਬਹਰਹਾਲ ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੇ ਇਤਫਾਕ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ, ਠੀਕ ਹੈ, ਥੈਂਕ ਯੂ ਸਰ, ਥੈਂਕ ਯੂ, ਬਹੁਤ ਸ਼ੁਕਰੀਆ। ਬਿਲਕੁਲ ਨਹੀਂ, ਤੁਹਾਡਾ ਆਪਣਾ ਪੁਆਇੰਟ ਆਫ ਵਿਊ ਹੈ, ਬਿਲਕੁਲ ਠੀਕ ਹੈ, ਯੂਅਰ ਪੁਆਇੰਟ ਆਫ ਵਿਊ, ਠੀਕ ਹੈ ਸਰ, ਥੈਂਕ ਯੂ ਸਰ ਜੀ ਜੀ ਸਰ, ਥੈਂਕ ਯੂ। ਚੌਧਰੀ ਅਕਰਮ ਸਾਹਿਬ ਤੁਸੀਂ ਔਨ ਹੈ ਸਰ, 5794 ਚੌਧਰੀ ਅਕਰਮ ਸਾਹਿਬ।
2: السلام علیکم
1: جی وعلیکم السلام سر
2: بٹی صاحب دیکھے پہلے چلے آتے ہیں اس طرح بھی لیکن وہ ایران اور جو پاکستان جو معاملہ جو چیف صاحب وہاں گئے ہیں تو وہ یہی ہے کہ ایران کو سمجھانے گئے ہیں کہ بھائی امریکہ بھی یہ چاہتا ہے کہ یہ تیل کی جو ترسیل ہے نا باب المندب اور یہ دوسرا یہ اس کو کلیئر ہونا چاہیے معاہدے میں بھی آپ شامل ہو سکتے ہیں لیکن یہ ہونا چاہیے کہ ان چیزوں کو کلیئر ہونا چاہیے اور آپ اس اکارڈ میں بھی آ سکتے ہیں لہذا یہ بات اتنی ہے اور اس میں میرا خیال ہے ایران کو کوئی سمجھائیں گے کہ بھائی آپ کے ساتھ ہیں لیکن یہ طریقہ نہیں ہے کہ آپ مسلم ممالک یہ بھی کہہ رہے ہیں کہ بھائی ہماری تیل کی ترسیل جو وہاں متاثر ہو رہی ہے نا یہ ایسا نہیں ہونا چاہیے ان دو چیزوں کو آپ کلیئر کریں اس اکارڈ میں بھی آ جائیں شیلٹر بھی ملے گا آپ کو اور ہم سب ایک ہوں گے آپ تجارت بھی کریں گے اور ہمارے لیے یہ بہتری کی ایک طریقہ ہوگا
1: ٹھیک
2: اب بٹی صاحب دیکھیں یہ جو واقعہ ہوا ہے نا اس میں کوئی شک نہیں ہے میرے نزدیک میں اپنا پرسنل دے رہا ہوں بات یہ ہے کہ واقعی آرمی تو ڈپلائی اب انہوں نے 6 مہینے کے لیے وہاں کی ہے اسلام آباد اور حالات جو بھی ہے آپ کو پتا ہے لیکن آپ والی بات ٹھیک ہے کہ آرمی آفیسر کو ہی ہیز نو رائٹ ٹو گو اوور دیئر یہ طریقہ نہیں ہوتا بھائی پولیس ہاں یا تو پولیس اب دیکھے लेकिन वो बात पुलिस भी अगर कहेगी तो वो उसका हामद रहेगा, इसमें तो कोई शक नहीं भट्टी साहब कि औरत के साथ बच्चों ने जो भी ज्यादती की वो एक अलग जुर्म है, उसकी जो जिसने भी की है हरासा औरत को किया है मारा है जो भी है वो भी एक गलत इशू है, लेकिन इस फौजी अफसर का महान जाना भी इंडिविजुअल का भाई ये मेरी वाइफ है वो भाई वाइफ इज ए डिफरेंट थिंग, लेकिन आप वहां यही तो आप बात आएगी तो मेरा ख्याल है अब वाले जो पॉइंट है मैं उसके साथ ही खड़ा हूं कि फौजी को वहां प्लंज नहीं करना चाहिए था, मेरा ख्याल है इसका कोर्ट मार्शल भी हो जाएगा। लेकिन एक दूसरा भी उसका एस्पेक्ट है भट्टी साहब, जिस तरह फिर उन लोगों ने फिर ज्यादती की है, जितना आपने देखा कि ये फौज की वर्दी की ज्यादती की गई है, ये भी फिर एक और केस दूसरा वो जो बनेगा वो ये है कि आपने एक फौज का ठीक है उसने गलती की है वो फौज उसका करेगी, लेकिन दूसरी तरफ फिर उन्होंने बच्चों ने भी फिर उसको आपने देखा कि उसने वर्दी से मकसद की, अगर आपने वो भी कोई फुटेज देखी हो तो इसकी पहली चीज तो ये है कि मुकम्मल अच्छे तरीके से
1: तहकीक होनी चाहिए, फौरन तौर पे ना फेक बन जाती चीजें ना फौरी तौर पे जो है।
2: हाँ जी, तो इसलिए मैं अभी इस पे ज्यादा बात इसलिए करूंगा, हाँ उसका जाना गलत था, पुलिस आने भी मौजूद है, पुलिस उसको हैंडल करे, लेकिन अगर वो गया भी है तो फिर उसने अब फिर भट्टी साहब बात तो फिर वही आ जाती है ना, और ये भी मैंने एक खबर पढ़ी है मुझे नहीं पता कि जब उसने हमारी फायरिंग की है तो ये सब भाग भूक गए
1: हैं,
2: यहाँ खड़े हो जाओ ना फिर यहाँ तो फिर उधर खड़े हो, उनको वर्दी को आपने पकड़ लिया है, आपने वर्दी को नहीं पकड़ा आपने पाकिस्तानी फौज को पकड़ा है, तो लिहाजा फिर यहाँ तो यार दो दो नहीं होते बातें। अच्छा बात भट्टी साहब ये देखे अब इससे मोहसिन नकवी साहब भी जो है ना दर पर्दा जो जो अब इन्होंने अदालत में जो अब बयान दिया है तो उसमें मलाई की तरह ये मोहसिन नकवी साहब को निकाल रहे हैं, भट्टी साहब गवर्नमेंट की सफों में अगर कोई काली भेड़ है तो वो मोहसिन नकवी है, वो जो इनके साथ तलकात, लेकिन पीटीआई का मतमा नजर तो आपको साफ जाहिर इससे हो गया है कि जो लोग यूथ को जिस तरह यूज कर रहे हैं और उनको उबार रहे हैं और पाकिस्तानी फौज के मुतालिक उबार रहे हैं, हाँ साहब की लड़ाई भट्टी साहब मुझे बताएं मेरे साथ है आपके साथ है भट्टी साहब, उनकी लड़ाई फौज के साथ है,
1: ठीक सर,
2: नींद के साथ है, तो इसलिए इनको बच्चों को अवॉइड करना चाहिए, इनको देखना चाहिए ये मुल्क इस तरह नहीं चलेगा, इसमें इनके लिए ही सख्तियां होगी और नाकामी होगी, ये कभी भी नहीं हो सकता कि जनाब आप कहें कि जी रियासत यरगमाल बन जाएगी।
1: ठीक सर, थैंक यू सर, बहुत शुक्रिया जी। 6492 जरदारी साहब आप ऑन है, जरदारी साहब ऑन है सर, आप बात कीजिए। जनाब अली
3: भट्टी साहब, ईरान का जहां तक मामला है मतलब ये है कि ईरान तेल नहीं देते, बाकी है सारे गल्फ कंट्री तेल बेचते फिर तुम खज्जल ख्वार होते फिर यार, क्या मंतक है हमारे दोस्तों की। आ जाता हूँ कराची यूनिवर्सिटी में, जब मैं अवध रेगुलर स्टूडेंट केमिस्टर सिस्टम में अवध डूइंग माय मास्टर इन पॉलिटिकल साइंस अलॉन्ग विद एडमिनिस्ट्रेशन, तो मेरे साथ एक हाजिर सर्विस जो है मेजर और एक कर्नल की बीवी पड़ती थी, हमारी डिबेटें भी होती थी, हम मुजाहरे भी करते थे, जमियत वालों की भी बदमाशी थी, एमपीओ वालों की बदमाशी थी, कॉन्फ्रेंस भी होते थे, हम पीएसएफ वाले भी होते थे, यूनिवर्सिटी के अंदर तक किसी पुलिस का कोई होता ही नहीं था गुमान, सिक्योरिटी का मामला सारा उनके अंदर था सर, ये वो इसके लिए चाहिए माई जिंदो, ऐसे कामों के लिए चाहिए माई जिंदो, जिसके 7-8 बच्चे भड़का दिए गए थे नवाज शरीफ के पहले दौर में, और कहा गया था बहुत बड़े डाकू थे बड़े दहशतगर्द थे, फिर उस कर्नल को सजा नहीं मिल रही थी ये, और ये सिंध का विजडम था कि उन वो औरतें सड़कों पे आई और मुशर्रफ को उस बंदे को फांसी देनी पड़ी, पर ऐसा नहीं ब्लंडर चलेगा, सिविल सुप्रीमेसी के अलावा कोई मामला ही नहीं है पाकिस्तान के अंदर, और यहाँ आके आप डिपेंड कर रहे हैं ये हो गया और वो हो गया, सर आप यूनिफॉर्म में है, आपकी ये एरिया नहीं है, आपको उस सूबे में आप यूनिफॉर्म पहन के जहां दहशतगर्दी हो रही है, जहां पे जो है ना किलिंग हो रही है, अगर उस आर्मी ऑफिसर को कोई कुछ कर देता तो फिर क्या होता
1: है? नहीं ठीक है, तरीका सही
3: मोहतरमा की शहादत के टाइम पे जब पूरा पाकिस्तान बमुजुर सिंह जल रहा था, मैंने खुद अपनी आंखों से देखा, अमर ट्रेवलिंग फ्रॉम शहीद बेनजीरा पाटुलर का नाम
1: जी जी
3: फौज फिर रही थी, लेकिन कोई भी यूनिफॉर्म में नहीं था,
1: सही
3: चार पांच दिन में किसी को मैंने यूनिफॉर्म नहीं देखा, क्योंकि मैं जानता हूँ कि ये फौज की गाड़ी है। यहाँ ये है कि आबे का आबे बिगड़ा हुआ है और मुस्लिम लीग वाले लगे हुए हैं कि भाई डिफेंस, भाई वो खुद डिपेंड करेंगे, इन उनका इदारा डिपेंड करेगा, आप कौन होते हैं उसको डिपेंड करने वाला,
1: ठीक
3: सर, मैं कौन होता हूँ उसको एक्सरसाइज करने वाला,
1: ठीक सर,
3: सिक्योरिटी चाहिए। अगर आप चाहते हो बूट पॉलिसी छोड़ना
1: ठीक, और राइट सर, थैंक यू। 6141 सर आप ऑनलाइन है, 6141 आप ऑनलाइन है सर, 6141 6141 जी वासम शेख साहब, जी सर।
4: बड़ी साहब मैं जल्दी जल्दी अपनी कॉल खत्म करूंगा, मैं ये कहना चाहता हूँ कि हम लोग नौकरियां करते हैं ताकि हमारी फैमिलियां इज्जत से रोटी खा सके और हमारा मुल्क इज्जत से जी सके, इसलिए हम फौज में जाते हैं। जब इज्जत नीलाम होने लग जाए तो वो भी फौजी भी एक इंसान है, इंसान को समझना चाहिए, वो जज्बात पर काबू नहीं रख सका, उसके पास गन भी थी ऑलरेडी, उसने तो अच्छा किया जो 2-4-10 को टपका नहीं दिया, क्योंकि जो ओबाश लोग होते हैं ये, और ये भी आप देखें कि जो सोशल मीडिया की तरफ बढ़ रहा, कुछ लोग ऐसे भी हैं आपके नोटिस में होगा, मैं नाम नहीं लेता
1: जी,
4: कि वो जनाब इतनी हल्की लैंग्वेज यूज कर रहे हैं मरियम के लिए, सैलाब के मुतालिक जो बात हो रही है ना, पानी वानी की जो बात हो रही है, इंतहाई हल्की लैंग्वेज, और हम लोग खुश नसीब हैं कि ये लोग हमारे लीडर नहीं है, और जिन लोगों ने इमरान खान को पिटवाया वो फजल रहमान को नहीं पिटवाएंगे, क्या समझते हैं आप, इनके दिल में तासब है पाकिस्तान फौज के लिए, उसके खिलाफ बोलते रहेंगे। थैंक यू वेरी मच,
1: बहुत शुक्रिया, थैंक यू। 8156 सर आप ऑन एयर, 8156 आप ऑन एयर सर, 8156 आप सर बात कीजिए, आप ऑन एयर जी जी
5: देखिए, एक तो है कि फौज का है, लोगों का एक माइंड सेट है कि हम सिविलियन से सुपीरियर हैं और हमको सब गुनाह माफ है, हमारी हुकूमत है, हमारा ये सिक्का चलता है, इसलिए उनको अगर जाना भी था सिविल कपड़े पहन के जाते और वो इत्तफाक से सब हुआ ना, वो तो स्टूडेंट है, कोई रजिस्ट्रेशन थोड़ी है या कोई ये सब कुछ कोई प्लानिंग के तहत तो नहीं हुआ कि फौजी आएगा ये होगा, तो ये सब तो सब कुछ अचानक ही हो गया ना,
1: ठीक
5: जो है वो अभी जो फील्ड मार्शल साहब ईरान गए तो कितनी दफा जा चुके हैं, कोई 2-3 महीने में 10 दफा तो मेरे ख्याल है जा चुके हैं और कोई उनकी बात ही नहीं मनी गई, कोई भी सेटलमेंट नहीं हुई, बस वो अपनी कोशिशें कर रहे हैं लेकिन ईरान तो कुछ ईरान को कन्विंस नहीं कर सके,
1: सही।
5: और इनको जहाँ तक कोर्ट मार्शल जब होगा तो जब देखिए,
1: ठीक है सर,
5: ऐसे अभी तो
1: चले
5: देखते हैं क्या होता है,
1: ठीक सर, थैंक यू, बहुत शुक्रिया। रेहान रफी साहब आप बात करना चाहेंगे, रेहान रफी साहब, रेहान रफी साहब, रेहान रफी साहब
6: जी जनाब,
1: जी सर बात कीजिए।
6: आहिस्ता आहिस्ता जो है ये इस्लामाबाद का वाकया जो है ना, ये लोगों का गुस्सा बाहर आ रहा है और ये जो बांग्लादेश श्रीलंका और इंडिया में हुआ है तो यही चीजें आइंदा पाकिस्तान में भी हो सकती हैं, तो इसका तदारुक करना चाहिए,
1: ठीक है।
6: वर्दी में आप कहीं निकल भी नहीं सकते, ये इतने मुश्किल हालात में आ गए हैं,
1: ठीक सर, थैंक यू, बहुत शुक्रिया। प्रोग्राम का वक्त खत्म हो रहा है, बहुत शुक्रिया जनाब, आपकी राय हमने पहुंचाई और मेरा अपना पॉइंट ऑफ व्यू है, आपका अपना पॉइंट ऑफ व्यू है, आपका मुझसे और मेरा आपसे मुत्तफिक होना जरूरी नहीं है, लेकिन बहरहाल हम सब की राय जो है उसका एहतराम करते हैं। तो चलिए जनाब, दुआ में रखिएगा याद, हौसला नहीं हारना, पर हौसला भी हारने की चीज़ इन ऑलवेज फॉलो यू हार्ट, क्योंकि सब अच्छे की आवाज़ बशत जिंदगी। इंशाल्लाह हमारी मुलाकात अब कल शाम 7 बजे स्टूडियो इंजीनियर मरियम और मेज़बान अर्शद भट्टी को दीजिए इजाजत, अल्लाह हाफिज़ और सपुर्दे मौला। हमारी मुलाकात अब कल शाम 7 बजे स्टूडियो इंजीनियर मरियम और मेज़बान अर्शद भट्टी को दीजिए इजाजत, अल्लाह हाफिज़ और सपुर्दे मौला।

0: You're listening to CMR at 9 on CMR 101.3 FM.
1: Toronto!
0: Don't touch that dial. After a short break and a few messages from our sponsors, stay tuned for more hit Bollywood classics, timeless melodies, and non-stop entertainment. CMR 101.3 FM, Toronto! We'll be right back!
2: साल का संगीत,
3: 22 साल का साथ
2: और 22 साल आपकी आवाज।
4: अगस्त 20 को CMR 101.3 FM पूरे कर रहा है अपने शानदार 22 साल।
5: आपकी अपनी कहानियों से लेकर घर जैसी मिठास तक हर दिन हमारे साथ जुड़ने के लिए शुक्रिया। तो जश्न मनाइए पूरे हफ्ते सिर्फ CMR 101.3 FM पर, टोरंटो की अपनी आवाज।
6: ये है राजधानी, राजधानी, राजधानी।
7: इस रक्षाबंधन राजधानी लेकर आए हैं भाई बहन एंड ब्लेसिंग्स गिव अवे। जीतो इलेक्ट्रिक स्कूटर, प्लेस्टेशन 5, डायसन एयर रैप, निंटेंडो स्विच, रेबान मेटा ग्लासेस और भी बहुत सारे एक्साइटिंग प्राइजेस।
8: राजधानी की किसी भी लोकेशन पर विजिट करें, परचेज करें 12 से 29 अगस्त तक। QR कोड स्कैन करके अपनी इन्फो और एंट्री सबमिट करें।
7: 26 लोकेशंस अक्रॉस कनाडा।
9: फॉर मोर इन्फॉर्मेशन विजिट rajdhanisweets.ca।
10: अगर गोल्ड खरीदना है तो ये है परफेक्ट टाइम, क्योंकि एशिया गोल्ड पर अमेजिंग डील्स चल रही हैं। वहाँ हाई क्वालिटी एंड यूज्ड ब्रांड न्यू ज्वेलरी कलेक्शन पर स्पेशल डिस्काउंट्स भी हैं। विजिट करें एशिया गोल्ड एट 5010 स्टील्स एवेन्यू वेस्ट इटोबिको नियर किपलिंग एंड स्टील्स। 416-746-3795 416-746-3795। एशिया गोल्ड, हर चमक में भरोसा, हर खरीद में बचत। आज ही विजिट करें एशिया गोल्ड इंक.com।

0: बाकी अपनी कहानियों से लेकर घर जैसी मिठास तक हर दिन हमारे साथ जुड़ने के लिए शुक्रिया। तो जश्न मनाइए पूरे हफ्ते सिर्फ CMR 101.3 FM पर, टोरंटो की अपनी आवाज।
1: क्या आप भी वही डेली रूटीन में फंसे हैं? चलो एक ब्रेक ले लेते हैं। टोरंटो से जस्ट 2 hours नॉर्थ ऑन हाईवे 400, एक परफेक्ट गेटअवे ग्रैंड टेम्पल रिसॉर्ट नियर फेरी साउंड मुस्कोका, हर सीजन के लिए परफेक्ट डेस्टिनेशन, प्राइवेट बीच, इंडोर स्विमिंग पूल और स्टे इन कोजी सुंदर कॉटेजेस एंड होटल रूम्स। खाना हमारे स्पेशल रेस्टोरेंट में बहुत स्पेशल क्विजीन्स हैं बाय अ ब्रिलियंट इंडियन शेफ। So call today at 705-378-2210, 705-378-2210.
2: आप सुन रहे CMR at 9, Monday to Friday, 9 AM to 11 AM. Stay tuned.

0: You're listening to CMR at 9. For advertising, call 647-220-4834. 647-220-4834. Stay tuned to CMR at 9. Cashpoint, one-stop shop for all your money transaction needs. Hum provide karte hain honest aur reliable services for all your financial needs. Jaise ki worldwide money transfer, check cashing, currency exchange and buyback gold loan at exceptionally low rates. Duniya ke kisi bhi kone se send or receive money transfers, reliable, convenient and affordable. That's what Cashpoint money transfer services give you. Cashpoint offer karta hai top dollars for your gold. Unwanted or used gold ke liye Cashpoint dega fair market value. Located at 3852 Finch Avenue, Easton, Scarborough, Unit GO3. Aaj hi call karein. 416-284-7000. 416-284-7000.
1: क्या आप एक रिलायबल ऑटो केयर ढूंढ रहे हैं इस सीजन? तो जाएं एक्टिव ग्रीन एंड रॉस पे एट वार्डन एंड लॉरेंस. वहाँ बदलवाएं अपनी सीजनल टायर्स और करवाएं सभी मेक्स एंड मॉडल्स की फुल सर्विस. साथ ही ले 30 पॉइंट इंस्पेक्शन फ्री. मेजर टायर ब्रांड्स पर ग्रेट डील्स और फुल बॉडी रिपेयर सर्विस प्लस इंश्योरेंस कवर्ड रिपेयर्स भी. पर सिर्फ वार्डन एंड लॉरेंस लोकेशन पर ही. आज ही अपॉइंटमेंट लें. कॉल रमेश एट 416-990-2462. एक्टिव ग्रीन एंड रॉस, वे योर कार गेट्स अ केयर. It deserves.
2: ये है राजधानी राजधानी राजधानी.
3: इस रक्षाबंधन राजधानी लेकर आए हैं भाई बहन एंड ब्लेसिंग्स गिव अवे. जीतो इलेक्ट्रिक स्कूटर, प्लेस्टेशन 5, डायसन एयर रैप, निंटेंडो स्विच, रेबान मेटा ग्लासेस और भी बहुत सारे एक्साइटिंग प्राइजेस.
4: राजधानी की किसी भी लोकेशन पर विजिट करें, परचेज करें 12 से 29 अगस्त तक. QR कोड स्कैन करके अपनी इन्फो और एंट्री सबमिट करें.
3: 26 लोकेशंस अक्रॉस कनाडा.
5: फॉर मोर इन्फॉर्मेशन विजिट rajdhanisweets.ca.
6: Looking for your next ride? Morningside Nissan par ye hai perfect time. Drive away in a brand new Nissan Rogue with an incredible 0% finance for 60 months on all Rogue models. Ji haan, aapne theek suna. 0% financing for 60 months, making it easier than ever to own your dream SUV. Aur fikr na karein, hum sab credit types ke saath kaam karte hain, jisse sabko approve hone ka mauka mil sake. Visit Morningside Nissan today and mile AAG se or call 416-804-2365. Drive home your new Nissan today at Morningside Nissan.

0: क्रेडिट एक्स के साथ काम करते हैं जिससे सबको अप्रूव होने का मौका मिल सके। विजिट मॉर्निंग साइड निशान टुडे एंड मिले AAG से और कॉल 416-804-2365। ड्राइव होम योर न्यू निशान टुडे एट मॉर्निंग साइड निशान। क्या आप भी वही डेली रूटीन में फंसे हैं? चलो एक ब्रेक ले लेते हैं। टोरंटो से जस्ट 2 hours नॉर्थ ऑन हाईवे 400 परफेक्ट गेटअवे ग्रैंड डिपार्चर रिसोर्ट नियर फेरी साउंड मुस्कोका। हर सीजन के लिए परफेक्ट डेस्टिनेशन, प्राइवेट बीच, इंडोर स्विमिंग पूल और स्टे इन कोजी सुंदर कॉटेजेस एंड होटल रूम्स। खाना हमारे स्पेशल रेस्टोरेंट में बहुत स्पेशल क्विजीन्स हैं बाय अ ब्रिलियंट इंडियन शेफ। सो कॉल टुडे एट 705-378-2210 705-378-2210। क्या आपकी कार अब समर रोड ट्रिप्स के लिए रेडी है? नहीं तो उसकी समर मेंटेनेंस ट्यून अप माय मैकेनिक ऑटो एंड रिपेयर के कार एक्सपर्ट्स को दे दें। वो बदल देंगे विंटर टायर्स टू समर टायर्स। नए टायर्स लिए एट अनबीटेबल प्राइसेस और $200 तक की टायर रिबेट भी, साथ में ब्रेक, सस्पेंशन, फ्लूइड्स एक्सेट्रा के कॉम्प्लीमेंट्री चेकअप भी। और हाँ, विद अ मंथली टायर स्वीप डील आप जीत सकते हैं $1000 के ब्रांड न्यू सेट ऑफ टायर्स बिल्कुल फ्री। सभी तरह की बॉडी और कोलिजन रिपेयर्स में स्पेशलाइज करते हैं और इंश्योरेंस से डायरेक्ट डील। कॉल 9 9461000 for Midland and Sears and 4167571000 for Midland and Ellesmere or visit mymechanicauto.ca।
1: अगर गोल्ड खरीदना है तो ये है परफेक्ट टाइम, क्योंकि एशिया गोल्ड पर अमेजिंग डील्स चल रही हैं। वहाँ हाई क्वालिटी एंड यूज्ड ब्रांड न्यू ज्वेलरी कलेक्शन पर स्पेशल डिस्काउंट्स भी हैं। विजिट करें एशिया गोल्ड एट 5010 स्टील्स एवेन्यू वेस्ट इटोबिको नियर किपलिंग एंड स्टील्स। 416-746-3795 एशिया गोल्ड, हर चमक में भरोसा, हर खरीद में बचत। आज ही विजिट करें AsiaGoldInc.com।
2: 22 साल का संगीत,
3: 22 साल का साथ
2: और 22 साल आपकी आवाज।
4: अगस्त 20 को CMR 101.3 FM पूरे कर रहा है अपने शानदार 22 साल।
5: आपकी अपनी कहानियों से लेकर घर जैसी मिठास तक हर दिन हमारे साथ जुड़ने के लिए शुक्रिया। तो जश्न मनाइए पूरे हफ्ते सिर्फ CMR 101.3 FM पर, टोरंटो की अपनी आवाज।

0: You're listening to CMR at 9. For advertising, call 647-220-4834. 647-220-4834. Stay tuned to CMR at 9.
1: राजधानी
2: इस रक्षाबंधन राजधानी लेकर आए हैं भाई बहन एंड ब्लेसिंग्स गिव अवे। जीतो इलेक्ट्रिक स्कूटर, प्लेस्टेशन 5, डायसन एयर रैप, निंटेंडो स्विच, रेबान मेटा ग्लासेस और भी बहुत सारे एक्साइटिंग प्राइजेस।
3: राजधानी की किसी भी लोकेशन पर विजिट करें, परचेज करें 12 से 29 अगस्त तक। QR कोड स्कैन करके अपनी इन्फो और एंट्री सबमिट करें।
2: 26 लोकेशंस अक्रॉस कनाडा।
4: फॉर मोर इन्फॉर्मेशन विजिट rajdhanisweets.ca।
5: Another Don Clean with the Don Ducks.
6: Oh, he's doing dishes with Dawn Platinum.
7: The only soap trusted to save wildlife affected by oil.
6: And Platinum removes up to 99% of grease and food residue, so he doesn't have to work so hard.
7: Well, flap my wings. What'll he do with all that unused elbow grease?
6: Organize the fridge, the spice rack, the junk drawer.
7: What are you quacking on about? He's gonna make enchiladas.
6: More dishes? That's giving this duck goosebumps.
5: Dawn Platinum, the better grease getter.

0: आप सुन रहे CMRF 9 मंडे टू फ्राइडे 9 AM टू 11 AM. स्टे ट्यून्ड. कैश पॉइंट वन स्टॉप शॉप फॉर ऑल योर मनी ट्रांजैक्शन नीड्स. हम प्रोवाइड करते हैं ऑनेस्ट और रिलायबल सर्विसेज फॉर ऑल योर फाइनेंशियल नीड्स, जैसे कि वर्ल्ड वाइड मनी ट्रांसफर, चेक कैशिंग, करेंसी एक्सचेंज एंड बायबैक गोल्ड लोन एट एक्सेप्शनली लो रेट्स. दुनिया के किसी भी कोने से सेंड और रिसीव मनी ट्रांसफर्स, रिलायबल, कन्वीनियंट एंड अफोर्डेबल. दैट्स व्हाट कैश पॉइंट मनी ट्रांसफर सर्विसेज गिव यू. कैश पॉइंट ऑफर करता है टॉप डॉलर्स फॉर योर गोल्ड. अनवांटेड और यूज्ड गोल्ड के लिए कैश पॉइंट देगा फेयर मार्केट वैल्यू. लोकेटेड 3852 Finch Avenue, Eastern Scarborough, Unit GO3. Aaj hi call karein 416-284-7000, 416-284-7000.
1: आपकी कार अब समर रोड ट्रिप्स के लिए रेडी है? नहीं तो उसकी समर मेंटेनेंस ट्यूनअप माय मैकेनिक ऑटो एंड रिपेयर के कार एक्सपर्ट्स को दे दें. वो बदल देंगे विंटर टायर्स टू समर टायर्स. नए टायर्स लिए एट अनबीटेबल प्राइसेस और $200 तक की टायर रिपेयर भी, साथ में ब्रेक, सस्पेंशन, फ्लूइड्स एक्सेट्रा के कॉम्प्लीमेंट्री चेकअप भी. और हाँ, विद अ मंथली टायर स्वीप डील आप जीत सकते हैं $1000 के ब्रांड न्यू सेट ऑफ टायर्स बिल्कुल फ्री. सभी तरह की बॉडी और कोलिजन रिपेयर्स में स्पेशलाइज करते हैं. और इंश्योरेंस से डायरेक्ट डील, कॉल 905-946-1000 for Midland and Sears and 416-757-1000 for Midland and Ellesmere, or visit mymechanicauto.ca.

0: You're listening to CMR at 9. For advertising, call 647-220-4834. 647-220-4834. Stay tuned to CMR at 9. अगर गोल्ड खरीदना है तो ये है परफेक्ट टाइम, क्योंकि एशिया गोल्ड पर अमेजिंग डील्स चल रही हैं। वहाँ हाई क्वालिटी एंड यूज्ड ब्रांड न्यू ज्वेलरी कलेक्शन पर स्पेशल डिस्काउंट्स भी हैं। विजिट करें एशिया गोल्ड एट 5010 स्टील्स एवेन्यू वेस्ट इटोबिको नियर किपलिंग एंड स्टील्स। 416-746-3795 एशिया गोल्ड, हर चमक में भरोसा, हर खरीद में बचत। आज ही विजिट करें asiagoldinc.com.
1: क्या आप भी वही डेली रूटीन में फंसे हैं? चलो एक ब्रेक ले लेते हैं। टोरंटो से जस्ट 2 hours नॉर्थ ऑन हाईवे 400, एक परफेक्ट गेटअवे ग्रैंड डिपार्चर रिसॉर्ट नियर फेरी साउंड मुस्कोका। हर सीजन के लिए परफेक्ट डेस्टिनेशन, प्राइवेट बीच, इंडोर स्विमिंग पूल और स्टे इन कोजी सुंदर कॉटेजेस एंड होटल रूम्स। खाना हमारे स्पेशल रेस्टोरेंट में बहुत स्पेशल क्विजीन्स हैं बाय अ ब्रिलियंट इंडियन शेफ। So call today at 705-378-2210, 705-378-2210. Looking for your next ride? Morningside Nissan par ye hai perfect time. Drive away in a brand new Nissan Rogue with an incredible 0% finance for 60 months on all Rogue models. Ji haan, aapne theek suna. 0% financing for 60 months, making it easier than ever to own your dream SUV. Ab fikr na karein, hum sab credit types ke saath kaam karte hain, jisse sabko approve hone ka mauka mil sake. Visit Morningside Nissan today and mile AAJ se aur call 416-804-2365. Drive home your new Nissan today at Morningside Nissan.
0: You're listening to CMR at 9. For advertising, call 647-220-4834. 647-220-4834. Stay tuned to CMR at 9.

0: You're listening to CMR at 9. For advertising, call 647-220-4834. 647-220-4834. Stay tuned to CMR at 9.
1: राजधानी
2: इस रक्षाबंधन राजधानी लेकर आए हैं भाई बहन एंड ब्लेसिंग्स गिव अवे। जीतो इलेक्ट्रिक स्कूटर, प्लेस्टेशन 5, डायसन एयर रैप, निंटेंडो स्विच, रेबान मेटा ग्लासेस और भी बहुत सारे एक्साइटिंग प्राइजेस।
3: राजधानी की किसी भी लोकेशन पर विजिट करें, परचेज करें 12 से 29 अगस्त तक। QR कोड स्कैन करके अपनी इन्फो और एंट्री सबमिट करें।
2: 26 लोकेशंस अक्रॉस कनाडा।
4: फॉर मोर इन्फॉर्मेशन विजिट rajdhanisweets.ca।
5: 22 साल का संगीत,
6: 22 साल का साथ
5: और 22 साल आपकी आवाज।
7: अगस्त 20 को CMR 101.3 FM पूरे कर रहा है अपने शानदार 22 साल।
8: आपकी अपनी कहानियों से लेकर घर जैसी मिठास तक हर दिन हमारे साथ जुड़ने के लिए शुक्रिया। तो जश्न मनाइए पूरे हफ्ते सिर्फ CMR 101.3 FM पर, टोरंटो की अपनी आवाज।
0: You're listening to CMR at 9. For advertising, call 647-220-4834. 647-220-4834. Stay tuned to CMR at 9.

0: क्या आप एक रिलायबल ऑटो केयर ढूंढ रहे हैं सीजन? तो जाए एक्टिव ग्रीन एंड रॉस पे एट वार्डन एंड लॉरेंस। वहाँ बदलवाएं अपने सीजनल टायर्स और करवाएं सभी मेक्स एंड मॉडल्स की फुल सर्विस। साथ ही ले 30 पॉइंट इंस्पेक्शन फ्री। मेजर टायर ब्रांड्स पर ग्रेट डील्स और फुल बॉडी रिपेयर सर्विस प्लस इंश्योरेंस कवर्ड रिपेयर्स भी, पर सिर्फ वार्डन एंड लॉरेंस लोकेशन पर ही। आज ही अपॉइंटमेंट लें। कॉल रमेश एट 416-990-2462। एक्टिव ग्रीन एंड रॉस, वेयर योर कार गेट्स द केयर इट डिजर्व्स।
1: Cashpoint, one-stop shop for all your money transaction needs. हम provide करते हैं honest और reliable services for all your financial needs, जैसे कि worldwide money transfer, check cashing, currency exchange and buyback gold loan at exceptionally low rates. दुनिया के किसी भी कोने से send और receive money transfers, reliable, convenient and affordable. That's what Cashpoint money transfer services give you. Cashpoint offer करता है top dollars for your gold. Unwanted or used gold के लिए Cashpoint देगा fair market value. Located at 3852 Finch Avenue, Eastern Scarborough, Unit GO3. Aaj hi call karein 416-284-7000. 416-284-7000.
2: इस रक्षाबंधन राजधानी लेकर आए हैं भाई बहन एंड ब्लेसिंग्स गिव अवे। जीतो इलेक्ट्रिक स्कूटर, प्लेस्टेशन 5, डायसन एयर रैप, निंटेंडो स्विच, रेबान मेटा ग्लासेस और भी बहुत सारे एक्साइटिंग प्राइजेस।
3: राजधानी की किसी भी लोकेशन पर विजिट करें, परचेज करें 12 से 29 अगस्त तक। QR कोड स्कैन करके अपनी इन्फो और एंट्री सबमिट करें।
2: 26 लोकेशंस अक्रॉस कनाडा।
4: फॉर मोर इन्फॉर्मेशन विजिट rajdhanisweets.ca।
0: क्या आपकी कार अब समर रोड ट्रिप्स के लिए रेडी है? नहीं तो उसकी समर मेंटेनेंस ट्यून-अप माय मैकेनिक ऑटो एंड रिपेयर के कार एक्सपर्ट्स को दे दें। वो बदल देंगे विंटर टायर्स टू समर टायर्स। नए टायर्स लें एट अनबीटेबल प्राइसेस और $200 तक की टायर रिपेयर भी, साथ ही ब्रेक, सस्पेंशन, फ्लूइड्स एक्सेट्रा के कॉम्प्लीमेंट्री चेकअप भी। और हाँ, विद अ मंथली टायर स्वीप डील आप जीत सकते हैं $1000 के ब्रांड न्यू सेट ऑफ टायर्स बिल्कुल फ्री। सभी तरह की बॉडी और कोलिजन रिपेयर्स में स्पेशलाइज करते हैं और इंश्योरेंस से डायरेक्ट डील। कॉल 9046-1000 for Midland and Sears and 416-757-1000 for Midland and Ellesmere or visit mymechanicauto.ca.
5: Rano, ready!
6: Advertise your business on CMR at 11. Reach the South Asian community.

0: next ride. Morningside Nissan par ye hai perfect time. Drive away in a brand new Nissan Rogue with an incredible 0% finance for 60 months on all Rogue models. Ji haan, aapne theek suna. 0% financing for 60 months, making it easier than ever to own your dream SUV. Aur fikr na karein, hum sab credit types ke saath kaam karte hain, jisse sabko approve hone ka mauka mil sake. Visit Morningside Nissan today and mile AAG se or call 416-804-2365. Drive home your new Nissan today at Morningside Nissan.
1: अगर गोल्ड खरीदना है तो ये है परफेक्ट टाइम, क्योंकि एशिया गोल्ड पर अमेजिंग डील्स चल रही हैं। वहाँ हाई क्वालिटी एंड यूज्ड ब्रांड न्यू ज्वेलरी कलेक्शन पर स्पेशल डिस्काउंट्स भी हैं। विजिट करें एशिया गोल्ड एट 5010 स्टील्स एवेन्यू वेस्ट इटोबिको नियर किपलिंग एंड स्टील्स। 416-746-3795 एशिया गोल्ड, हर चमक में भरोसा, हर खरीद में बचत। आज ही विजिट करें एशिया गोल्ड इंक .com.
2: Another Dawn clean with the Dawn Ducks.
3: Oh, he's doing dishes with Dawn Platinum.
4: The only soap trusted to save wildlife affected by oil.
3: And Platinum removes up to 99% of grease and food residue, so he doesn't have to work so hard.
4: Well, flap my wings. What'll he do with all that unused elbow grease?
3: Organize the fridge, the spice rack, the junk drawer.
4: What are you quacking on about? He's gonna make enchiladas.
3: More dishes? That's giving this duck goosebumps.
2: Dawn Platinum, the better grease getter.
0: क्या आप भी वही डेली रूटीन में फंसे हैं? चलो एक ब्रेक ले लेते हैं। टोरंटो से जस्ट 2 hours नॉर्थ ऑन हाईवे 400, एक परफेक्ट गेटअवे ग्रैंड टेपाटू रिसॉर्ट नियर फेरी साउंड मुस्कोका। हर सीजन के लिए परफेक्ट डेस्टिनेशन, प्राइवेट बीच, इंडोर स्विमिंग पूल और स्टे इन कोजी सुंदर कॉटेजेस एंड होटल रूम्स। खाना हमारे स्पेशल रेस्टोरेंट में बहुत स्पेशल क्विजीन्स हैं बाय अ ब्रिलियंट इंडियन शेफ। So call today at 705-378-2210, 705-378-2210.

0: रिलायबल ऑटो केयर ढूंढ रहे हैं इस सीजन, तो जाए एक्टिव ग्रीन एंड रॉस पे एट वार्डन एंड लॉरेंस। वहाँ बदलवाएं अपनी सीजनल टायर्स और करवाएं सभी मेक्स एंड मॉडल्स की फुल सर्विस। साथ ही ले 30-point इंस्पेक्शन फ्री, मेजर टायर ब्रांड्स पर ग्रेट डील्स और फुल बॉडी रिपेयर सर्विस प्लस इंश्योरेंस कवर्ड रिपेयर्स भी, पर सिर्फ वार्डन एंड लॉरेंस लोकेशन पर ही। आज ही अपॉइंटमेंट ले, कॉल रमेश एट 416-990-2462। एक्टिव ग्रीन एंड रॉस, वेयर योर कार गेट्स द केयर इट डिजर्व्स।
1: कैशपॉइंट, वन स्टॉप शॉप फॉर ऑल योर मनी ट्रांजैक्शन नीड्स। हम प्रोवाइड करते हैं ऑनेस्ट और रिलायबल सर्विसेज फॉर ऑल योर फाइनेंशियल नीड्स, जैसे कि वर्ल्ड वाइड मनी ट्रांसफर, चेक कैशिंग, करेंसी एक्सचेंज एंड बायबैक गोल्ड लोन एट एक्सेप्शनली लो रेट्स। दुनिया के किसी भी कोने से सेंड और रिसीव मनी ट्रांसफर्स, रिलायबल, कन्वीनियंट एंड अफोर्डेबल। दैट्स व्हाट कैशपॉइंट मनी ट्रांसफर सर्विसेज गिव यू। कैशपॉइंट ऑफर करता है टॉप डॉलर्स फॉर योर गोल्ड। अनवांटेड और यूज्ड गोल्ड के लिए कैशपॉइंट देगा फेयर मार्केट वैल्यू। लोकेटेड 3852 Finch Avenue, Eastern Scarborough, Unit GO3. आज ही कॉल करें 416-284-7000, 416-284-7000।
2: इस रक्षाबंधन राजधानी लेकर आए हैं भाई बहन एंड ब्लेसिंग्स गिव अवे। जीतो इलेक्ट्रिक स्कूटर, प्लेस्टेशन 5, डायसन एयर रैप, निंटेंडो स्विच, रेबान मेटा ग्लासेस और भी बहुत सारे एक्साइटिंग प्राइजेस।
3: राजधानी की किसी भी लोकेशन पर विजिट करें, परचेज करें 12 से 29 अगस्त तक। QR कोड स्कैन करके अपनी इन्फो और एंट्री सबमिट करें।
2: 26 लोकेशंस अक्रॉस कनाडा।
4: फॉर मोर इन्फॉर्मेशन विजिट rajdhanisweets.ca।
0: आपकी कार अब समर रोड ट्रिप्स के लिए रेडी है? नहीं तो उसकी समर मेंटेनेंस ट्यूनअप माय मैकेनिक ऑटो एंड रिपेयर के कार एक्सपर्ट्स को दे दें। वो बदल देंगे विंटर टायर्स टू समर टायर्स। नए टायर्स लें एट अनबीटेबल प्राइसेस और $200 तक की टायर रिपेयर भी, साथ में ब्रेक, सस्पेंशन फ्लूइड्स एक्सेट्रा के कॉम्प्लीमेंट्री चेकअप भी। और हाँ, विद अ मंथली टायर स्वीट डील आप जीत सकते हैं $1000 के ब्रांड न्यू सेट ऑफ टायर्स बिल्कुल फ्री। सभी तरह की बॉडी और कोलिजन रिपेयर्स में स्पेशलाइज करते हैं और इंश्योरेंस से डायरेक्ट डील। कॉल 905-946-1000 for Midland and Sears and 416-757-1000 for Midland and Ellesmere or visit mymechanicauto.ca.
5: Toronto, ready!
6: Advertise your business on CMR at 11. Reach the South Asian community.

0: Looking for your next ride? Morningside Nissan par ye hai perfect time. Drive away in a brand new Nissan Rogue with an incredible 0% finance for 60 months on all Rogue models. Ji haan, aapne theek suna. 0% financing for 60 months, making it easier than ever to own your dream SUV. Ab fikr na kare, hum sab credit types ke saath kaam karte hain, jisse sabko approve hone ka mauka mil sake. Visit Morningside Nissan today and mile AAG se or call 416-804-2365. Drive home your new Nissan today at Morningside Nissan.
1: अगर गोल्ड खरीदना है तो ये है परफेक्ट टाइम, क्योंकि एशिया गोल्ड पर अमेजिंग डील्स चल रही हैं। वहाँ हाई क्वालिटी एंड यूज्ड ब्रांड न्यू ज्वेलरी कलेक्शन पर स्पेशल डिस्काउंट्स भी हैं। विजिट करें एशिया गोल्ड एट 5010 स्टील्स एवेन्यू वेस्ट इटोबिको नियर किपलिंग एंड स्टील्स। 416-746-3795 एशिया गोल्ड, हर चमक में भरोसा, हर खरीद में बचत। आज ही विजिट करें एशिया गोल्ड इंक .com.
2: Another Dawn clean with the Dawn Ducks.
3: Oh, he's doing dishes with Dawn Platinum.
4: The only soap trusted to save wildlife affected by oil.
3: And Platinum removes up to 99% of grease and food residue, so he doesn't have to work so hard.
4: Well, flap my wings. What'll he do with all that unused elbow grease?
3: Organize the fridge, the spice rack, the junk drawer.
4: What are you quacking on about? He's gonna make enchiladas.
3: More dishes? That's giving this duck goosebumps.
2: Dawn Platinum, the better grease getter.
0: क्या आप भी वही डेली रूटीन में फंसे हैं?

0: You're listening to CMR FM 101.3.
1: Listen to us around the universe. www.cmr.fm.
2: South Asian Unlimited Radio, Monday to Friday, 12 to 2 p.m. साउथ एशियन अनलिमिटेड रेडियो जहां न्यूज व्यूज स्पोर्ट्स एंटरटेनमेंट की खबरें होंगी बिल्कुल अनलिमिटेड। एंटरटेनमेंट तो बहुत है लेकिन यहां पर मिलेगा आपको बिल्कुल अनलिमिटेड।

0: न्यूज और व्यूज तो हर जगह मिलेंगे, लेकिन यहाँ पर मिलेगा बिल्कुल अनलिमिटेड।
1: यहाँ भी होगा, वहाँ भी होगा, अब तो सारे जहाँ में होगा क्या मेरा ही जलवा।
0: जी हाँ, साउथ एशियन अनलिमिटेड रेडियो का जलवा मंडे टू फ्राइडे 12 से 2 बजे तक। पापा, ये कौन से शो की बात कर रहे हैं पापा?
2: स्वैग से करेंगे सबका स्वागत।
0: जी हाँ, स्वैग से करेंगे सबका स्वागत। ये उस शो की बात कर रहे हैं जिसका नाम है साउथ एशियन अनलिमिटेड रेडियो मंडे टू फ्राइडे 12 to 2 PM।
3: और म्यूजिक म्यूजिक स्टार्ट करो भाई, लेके
0: रोशनी कर खुदा को हो मंजूर, आंधियों में चिराग जलते हैं। साउथ एशियन अनलिमिटेड रेडियो मंडे टू फ्राइडे 12 to 2 PM। स्टे ट्यून्ड।

0: The advertisements, views, and opinions expressed in the radio show are that of the sponsors, guests, and callers, and are not necessarily those of the South Asian Unlimited show, host, and its producers. The show is for entertainment purposes only and does not advocate any sponsors' messages. It is solely the responsibility of the advertiser or sponsor.
1: नमस्कार, सत श्री अकाल, अस्सलाम वालेकुम। मैं सनी जोशी आपका हार्दिक स्वागत करता हूं साउथ एशियन अनलिमिटेड रेडियो पर, मंडे टू फ्राइडे 12 टू 2 पीएम साउथ एशियन अनलिमिटेड रेडियो, जहां न्यूज़, व्यू, स्पोर्ट्स, एंटरटेनमेंट की खबरें होती हैं बिल्कुल अनलिमिटेड। स्टूडियो का नंबर 416-593-0055, 416-593-0055 स्टूडियो का नंबर है जिस पर आप कर सकते हैं कॉल। बाहर का तापमान 23 डिग्री सेल्सियस, फील्स लाइक 27, मैक्सिमम टेम्परेचर्स विल हिट 25 टुडे। नाइस ब्यूटीफुल सनी क्लाउडी डे एंड स्टॉर्म्स पॉसिबल वेंसडे ओवरनाइट। तकरीबन 50% चांस है। यूवी इज हाई टुडे, इंक्रीज फ्रॉम यस्टरडे। यस्टरडे वाज अ नाइस कूल ब्यूटीफुल डे एंड सनसेट होगा 8:05 पर, 8:05 PM। टुमारोज टेम्परेचर्स 26 मैक्सिमम, थर्सडे 26 एंड वीकेंड इज 24 डिग्रीज तकरीबन फ्राइडे सैटरडे। सो एब्सोल्युटली ब्यूटीफुल वेदर है। अगस्त का आखिरी हफ्ता है एंड 7 months हो जाएंगे कंप्लीट। एंट्री होगी सितंबर में और फिर लेबर डे वीकेंड एंड यू नो व्हाट हैपेंस आफ्टर दैट। यूनिवर्सिटी, स्कूल्स ओपन और लाइफ गोज बैक टू नॉर्मल। एंड 12:08 हो चुके हैं। द सेगमेंट इज ब्रॉट टू यू बाय ब्रैम्पटन टीवी एंड अप्लायंसेस, राजधानी स्वीट्स एंड रेस्टोरेंट, नानक डक क्लीनिंग, एज वेल एज क्लियर ऑप्टिकल बाय वरुण खांडा। पहला गीत आपने सुना, सनी डियोल की फिल्म थी घायल, और ये फिल्म आया गया ऑन राज बब्बर, सनी डियोल, मौसमी चैटर्जी एंड मीनाक्षी शेषाद्री। बहुत ही ब्यूटीफुल सा सॉन्ग है कि भाई सोचना क्या, जो भी होगा देखा जाएगा। पर ऊपर वाले ने हमें इस तरह से बनाया है कि हम सोचना बंद नहीं करते, खासकर ये जो हालात चल रहे हैं। कार्नी हैज सेड कि भाई रिटेलिएशन टेरर्स अगेंस्ट यूएस विल टेक इफेक्ट ऑन September 8th। सो सोचना जो है अनसर्टनिटी को लेकर वो बंद होता ही नहीं है। टुडेज अनाउंसमेंट विल इंक्लूड मेजर्स टू सपोर्ट कैनेडियन वर्कर्स एंड बिजनेसेस। ट्रेड वॉर को लेकर जो अनाउंसमेंट हुई है, नथिंग ग्रेट। ट्रंप थ्रेटन्स टू हाइक टैरिफ्स ऑन कैनेडियन व्हीकल्स, ऑटो पार्ट्स, स्टील टू 50% January 1st। इसमें स्ट्रैटेजी अच्छी है कि November 3 को मिड टर्म हो जाएंगे यूएस में और ट्रंप को उम्मीद है कि भैया वो जीत जाए। सो ट्रंप इज ऑल्सो कंसिडरिंग चेंजिंग द नेम ऑफ लेक ओंटारियो टू लेक अमेरिका। कर लो बात, ये बंदा जो है ही इज़ ऑन अ रैम्पेज। और दूसरी तरफ एक और इंसान है हमारे प्रीमियर डग फोर्ड और पीएम कार्नी, जो कि गुड कॉप बैड कॉप वाली गेम खेल रहे हैं, इट ऑलमोस्ट सीम्स लाइक इट। और उसको लेकर आज काफ़ी बातचीत होगी, कुछ ऑडियोज भी आपके लिए प्ले किए जाएंगे 12:15 के हेडलाइंस के बाद। एंड हमारे पैनल में आज दो खास मेहमान होंगे और लाइंस बिल्कुल ओपन हो जाएंगी आफ्टर द हेडलाइंस एंड यू कैन कॉल 416-593-0055। और जो हमारे नॉलेजेबल पैनल के मेंबर्स होंगे, बात करेंगे उनके साथ हम इस यूएस कैनेडा ट्रेड वॉर को लेकर। मिक्स फीलिंग्स है, जो पोल भी हुआ है उसमें देयर इज अ मिक्स फीलिंग। सम पीपल आर सेइंग इट्स गुड, सम पीपल आर सेइंग इट्स बैड, सम पीपल आर सेइंग कि भाई रिटेलिएशन कैनेडा की तरफ से बहुत अच्छा है जो हुआ है, एंड सम पीपल थिंक कि भाई इसमें हमारा ही नुकसान होगा। क्योंकि डोनाल्ड ट्रंप के बारे में प्रीमियर डग फोर्ड जो कह रहे हैं एंड सम अंडर द बेल्ट कॉमेंट्स दैट ही इज मेकिंग, उसके ऊपर से वो ये भी कह रहे हैं कि भाई ट्रंप जो हैं He's a bully, which he is. ट्रंप ऐसे स्टूडेंट हैं स्कूल में, ऐसा बुली है जो आपका एक दिन टिफिन बॉक्स चुरा लेता है, दूसरे दिन आपके स्नीकर्स चुरा लेता है। और फिर ट्रंप के बारे में डग फोर्ड ने उनकी बैंक्रप्सीज के भी ऊपर उंगली उठाई है एंड अ लॉट ऑफ स्टफ, लॉट ऑफ नैस्टी स्टफ बैक एंड फोर्थ चल रहा है। इसको लेकर बातचीत होगी हमारी। एंड द सेगमेंट इज ऑल्सो ब्रॉट यू बाई विन लाइफ टाइम ट्रेडिंग, 905-206-1008। एंड हर सैटरडे आफ्टरनून 12:30 से 3:30 के बीच होता है फ्री सेमिनार, सैटरडे आफ्टरनून। प्लीज अपनी सीट रिजर्व करवा लें, डोंट वॉक इन। 905-206-1008। द सेगमेंट इज ऑल्सो ब्रॉट टू यू बाय एशिया गोल्ड, लोकेटेड एट 5010 स्टील्स एवेन्यू वेस्ट एटोबिको, किपलिंग स्टील्स के इलाके में। एशिया गोल्ड, जहां पर प्राइस इज राइट, अमेजिंग डील्स हैं, स्पेशल्स, डिस्काउंट चल रहे हैं। खासकर जब शादी ब्याह का सीजन होता है तो भाई उसमें हमें गहने खरीदने होते हैं, तो दिस इज द प्लेस टू गो। एशिया गोल्ड, साउथ एशियन अनलिमिटेड रेडियो, CMR 101.3 FM का रेफरेंस दे, गेट द बेस्ट डील्स। वील टेक अ वेरी शॉर्ट ब्रेक, 12:15 की हेडलाइंस लेकर फौरन आते हैं वापस।
2: हर एक ग्रेट जर्नी शुरू होती है एक सही पार्टनर के साथ। वेन्स ऑटो ग्रुप में हमारे डीलरशिप्स का वाइड नेटवर्क डिवर्स कम्युनिटीज को प्राउडली सर्व करता है। एक्सपर्ट कार बाइंग गाइडेंस, प्रीमियम सर्विस और ऐसा सपोर्ट जो आपकी लैंग्वेज समझे। हर डीलरशिप का प्रॉमिस एक ही है, ट्रस्टेड केयर, कंसिस्टेंट सर्विस और कंप्लीट ऑटोमोटिव सपोर्ट। फ्रॉम फर्स्ट ड्राइव टू लाइफ टाइम केयर, वेन्स ऑटो ग्रुप इज ऑलवेज देयर। Visit veinsautogroup.com.
3: Our loan and credit card bills keep piling up. We have no money to pay them with our limited income.
4: I'm afraid we are going to go bankrupt and lose our house, business and all assets. Is this why we immigrated to Canada? Yeah.

Welcome back, friends. And the headlines are brought to you by McVean Dental Care, Kavya Home You Care, Brampton TV and Appliances, Nanak Duck Cleaning, cholebature.ca. Shuru karte hai taza tareen headlines. US military aircraft Moscow mein land hua. Kremlin ne kaha, we had no idea aise hone wala tha. Beijing ne apne largest military build-up mein South China Sea mein new island add kar di hai. Prime Minister Benjamin Netanyahu ka explosive dawa, Iran ne koshish ki thi to murder one of my sons. Donald Trump ne Canada se kaha, fall in line ya phir consequences ke liye rahe tayar. US Supreme Court ne Donald Trump ke bid ko back kiya to curb mail ballots. And Iran ka kehna hai ki hamare paas two-year plan tayar hai to counter US sanctions. Iranian economy minister ne US ke liye ek aur haar ko predict kiya. South Sudan ambush mein two United Nations peacekeepers mare gaye, saath hue zakmi. Aur France ke parliament ne under 15 bachon ke social media access aur mobile ban ko kiya approve, magar schools filhal tayar nahi. Drug trafficking ko lekar US ne Eastern Pacific mein boat ko strike kiya, do log mare gaye. Aur US ne Iran ke khilaf new sanctions ka elan kiya, plus baki world leaders ko di warning ki Iran ke saath economic ties ko foreign tode. S. Jaishankar Moscow mein Vladimir Putin se mile, handed over personal message from PM Modi. Local samacharon mein Mayor Olivia Chow kehti hai ki Doug Ford must be focused on Donald Trump and not ripping up the bike lanes. Premier Doug Ford ne Donald Trump ko loser kaha and king of bankruptcies bhi bataya. Kai municipalities ka kehna hai ki Ontario ne hame abhi bhi green belt related expenses ke liye pay nahi kiya. An ongoing trade dispute ke beach, Trump ne threatened kiya changing Lake Ontario name to Lake America. Major media outlets call dumbest trade war in history the one that's going between US and Canada. Bharatiya samacharon mein convicted Tarun Tejpal ko Supreme Court ka kehna hai to surrender in 2 weeks. Cockroach Janata Party ke school inspections par Mohandas Pai ne kaha, schools mein mobs ki koi jagah nahi. Rajasthan ke school mein midday meal consume karne ke baad 27 student bimar pade, aur report ke anusar US mein India se undergraduate courses ke liye Indian students mein 15% decline dekhne ko mili. Gujarat ke ek hostel mein ragging case aaya samne, physical abuse, forced smoking and blackmail jaise aarop lage. Khelo India Samvad program ke liye PM Modi set to interact with students on August 27th. And BJP ka kehna hai ki Punjab ki sari seats assembly polls mein contest karenge. Aam Aadmi Party ne is faisle ka mazak udaya. Karnataka ke ek school mein class 9 ke student ko mrit paya gaya, found hanging in school. Family ne murder ka ilzam lagaya. Aur poll body chief ka kehna hai ki EVMs don't have internet, bluetooth aur wifi. CCTV footage aaya samne, MLA ki beti ne Karnataka temple mein police wale ko mara thappad. Palgar ashram school mein 6 saal ke bacche ki maut hui, pita ne kaha school ne hame inform bhi nahi kiya. 2027 census ke kareeb aane se NRC ko lekar Manipur mein protest intensify hue. दूसरी ओर पाकिस्तान की खबरों से, बलोचिस्तान के पिशन डिस्ट्रिक्ट में अनआइडेंटिफाइड सस्पेक्ट्स ने 5 लेबरर्स को गन डाउन किया, मजदूर रोड कंस्ट्रक्शन में इंगेज थे. चीफ मिनिस्टर बुक्ती ने हादसे को जमकर किया कंडेम. फील्ड मार्शल असीम मुनीर और मोहसिन नकवी ने ईरान की डे लॉन्ग विजिट को कंक्लूड किया. ISPR के मुताबिक मीटिंग का मकसद था कि US ईरान कॉन्फ्लिक्ट को खत्म किया जाए. CDM मुनीर ने टॉप ईरानियन लीडर से की मुलाकात. ईरान के लीडर्स ने डायलॉग और डी एस्केलेशन में पाकिस्तान के एफर्ट्स की जमकर तारीफ की. तारिक फजल चौधरी ने कहा इमरान खान के लिए सारे रेकमेंडेड टेस्ट्स पाकिस्तान इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंसेज में मौजूद हैं. राणा सनाउल्ला ने कहा पीटीए ने मैटर पर अदालत के एक्सप्लिसिट डायरेक्टिव्स को वायलेट किया. पीटीआई फाइल्स कंटेंप्ट पिटिशन ओवर वायलेशन ऑफ सुप्रीम कोर्ट हॉस्पिटल ऑर्डर फॉर इमरान खान. जमायमा गोल्डस्मिथ ने यूके गवर्नमेंट से गुहार लगाई टू ब्रेक साइलेंस ओवर इमरान खान ह्यूमन राइट्स. जमायमा ने पूछा आखिर कब तक ब्रिटेन चुप रहेगा, इमरान खान का यूके के साथ पुराना रिश्ता रहा है. सूत्रों के अनुसार डोमेस्टिक वर्कर ने कन्फेस किया टू स्ट्रैंगलिंग हिना जावेद. हिना की बॉडी घर के बाथरूम के शावर से टाइड मिली. इमरान खान के बाद अडियाला जेल के 3 और कैदियों ने प्राइवेट हॉस्पिटल ट्रीटमेंट की मांग की है. इमरान खान हॉस्पिटल ट्रांसफर में सुप्रीम कोर्ट रजिस्ट्रार ने कंटेम्प्ट प्ली एडमिट की आफ्टर पीटीआई एड्रेसेस द ऑब्जेक्शंस.
Sport Jagat se Bangladesh chief selector on chances of reaching WTC final bole, we're in a very good position. Injured Rishabh Pant ne massive 6 jada damages solar panel in Colombo. Naveenul Haq aur Gulbadin Naib ne ki vaapsi as Afghanistan announces squad for T20 series against India. Aur Michael Atherton un 21 former cricketers mein se ek hain jinhone Imran Khan ki support mein Pakistan government ko likha hai khat. Bollywood khabron se Brahmastra 2 mein Anit Padda to share screen space with superstar Ranbir Kapoor aur Akshay Kumar Saif Ali Khan ki film Haiwan ka trailer August 25th ko release hoga, yani aaj release ho chuka hai, fans ko trailer behad pasand aaya. False marriage reports ko lekar Govinda ne 100 crore rupaye ke legal action ki de di a warning aur Poonam Dhillo hospitalized due to dengue. Don't be shy, Alia Bhatt produced rom-com to premiere on Prime Video on September 25th. Deepika Padukone ke spokesperson ne confirm kar diya hai Deepika is not part of Brahmastra 2. And Gandhari ke trailer mein Tapsee Pannu turns fearless mother as she searches for a kidnapped daughter. Aur superstar Salman Khan ke body double Parvez Qazi ki hui heart surgery. Salman Khan steps in to help. Ye thi South Asian Unlimited Radio ki taza tareen headline. Studio ka number 416-593-0055. Bahut jald main sari ki sari lines open karne wala hoon. Aaj hamare panel mein do khas mehman honge, unse aapki mulaqat karayenge aur hamare discussion hoga hamara on the US Canada trade tariff dispute debate discussion to ab ho nahi rahi hai, it's absolute dispute situation. And uske upar se Carney saab kya keh rahe hain, Doug Ford kya keh rahe hain, Doug Ford ke kuch bayan jo बहुत ही अंडर द बेल्ट साबित हो रहे हैं, उस पर भी बातचीत होगी, आपकी कॉल्स भी लेंगे एक एक करके. लेकिन उससे पहले ये सॉन्ग रिक्वेस्ट है किशोर कुमार लता जी की आवाज में. लिसन टू द सॉन्ग, एंजॉय द सॉन्ग, क्योंकि उसके बाद जो है हीटेड डिस्कशन हो सकती है इन रिगार्ड्स टू व्हाट एग्जैक्टली इज हैपनिंग राइट नाउ. ट्रंप थ्रेटन्स टू हाइक टैरिफ्स ऑन कैनेडियन व्हीकल्स, ऑटो पार्ट्स एंड स्टील अप टू 50% January 1st से. सो वील टॉक अबाउट दैट, वील टेक योर कॉल्स, एंजॉय द सॉन्ग. पैनल के दो मेंबर्स हमारे साथ होंगे बहुत जल्द.

0: Our government understood before many that America would transform all of its commercial relationships, that it would put a series of tariffs on its closest allies and use economic integration as a weapon. We recognize that sometimes its signature was written in pencil. And while we believed earlier this week that we were moving towards a mutually beneficial agreement, in recent days, the United States proposed new terms that were uneconomic, unfair, and undermined the net benefits for Canada and called into question the reliability of any deal. More fundamentally, the cumulative effect of U.S. demands revealed the limits of their commitment to a true economic partnership.
1: Welcome back, friends. Ye the bayan PM Carney ke. PM Carney saab ne jo bayan diya after this entire deal, jo dispute chal raha tha, jo debate chal raha tha, usse walk away kiya hai Canada ne. Uske baad ये गुड कॉप बैड कॉप वाली चीज जो मैंने थोड़ी देर पहले मेंशन की, उसके बाद हमारे प्रीमियर ऑनरेबल प्रीमियर डग फोर्ड के दो बयान, अलग अलग बयान आए हैं और इस पर भी थोड़ा सा गौर फरमाएं. हमारे पैनल मेंबर्स हमारे साथ हैं, मैं उन्हें इंट्रोड्यूस करूंगा बहुत जल्द कौन है हमारे पैनल मेंबर्स. आज लाइंस बिल्कुल ओपन है, हमारे लिसनर्स की भी लगातार जो है आपके कमेंट्स भी मैं ऑनर लेना चाहूंगा. कमेंट्स को थोड़ा सा ब्रीफ रखिएगा बिकॉज आई वांट पैनल मेंबर्स टू गेट एक्स्ट्रा टाइम टू कन्वे व्हाट दे फील क्या हुआ है. प्रीमियर डग फोर्ड ने दो अलग अलग बयान दिए हैं. वन ऑफ दैट आई डोंट रियली लाइक, बट गौर फरमाए जरा.
2: I know you haven't had an opportunity to see this, but we were just looking at a very fresh post here from President Trump on Truth Social, taking aim at you personally, taking shots at you, suggesting you should fall in line and that you're a flunky of the Prime Minister. Do you want to respond to these shots? What would you say to the President?
3: No, I don't respond to a dictator like President Trump, a bully like President Trump. As I said before, he's the type of guy in school that would take your lunch money one day, take your toque off your head the next day, and then steal your running shoes. But I'm not going to take any advice off a guy that's the king of bankruptcies. And he's actually tariffing his own people, taxing his own people. And I'm going to make sure I communicate through the U.S. media. I'm going to be reaching out to every single governor, every single senator, and every single congressperson. And when it comes to the midterms, I have a message to the Americans. Don't vote in a person that's going to kill your jobs. He ran on creating.
1: ये एक बयान है जो प्रीमियर डग फोर्ड का आया है. एंड देन देयर इज अनदर एक और बयान सामने आए हैं जिसको लेकर मुझे ऐसा लगा, आई हैव पर्सनली फेल्ट एज अ मीडिया पर्सन कि भाई शायद ही इज क्रॉसिंग द लाइन, ही इज ट्राइंग टू मेक प्लेइंग टू द गैलरी वाली बात होती है. इस पर जरा थोड़ा गौर फरमाएं.
4: You sound a little more subdued than you did this morning on the radio when you said Donald Trump could kiss your ass. Did the Prime Minister tell you to ask you to tone it down a bit?
3: No, he didn't. I'm not going to comment, but he wasn't against that. And I have a lot of real estate on my ass, so he has a lot of room to kiss my ass. So.
1: वेलकम बैक फ्रेंड्स, मैं सनी जोशी फिर से आपका स्वागत करता हूं साउथ एशियन अनलिमिटेड रेडियो पर. और ये जो आपने अभी क्लिप सुने प्राइम मिनिस्टर कार्नी के क्लिप है, और दो क्लिप्स थे प्रीमियर डग फोर्ड के. ये सेकंड वाला प्रीमियर डग फोर्ड का जो है क्लिप, मुझे ऐसा लगा उनके बयान आपत्तिजनक हैं, गलत हैं. मैं यहां पर कुछ CRTC नहीं बल्कि मैं आपको कुछ बताना चाहता हूं. फेडरल कम्युनिकेशंस कमीशन US की जो है उनका इस शब्द पे क्या कहना है जो इस्तेमाल किया है डग फोर्ड ने. मैं उसको आप तक पढ़ के जरूर सुनाऊंगा, लेकिन दो बहुत ही इंपॉर्टेंट पैनल मेंबर्स हैं और उन पैनल मेंबर्स को चुनने के पीछे वजह थी. एक हैं हमारे मनन गुप्ता जी, जो कि हर मंडे आप उनके कमेंट्स और उनकी कमेंटरी सुनते हैं और बहुत इन डेप्थ नॉलेज रखते हैं, तो इसलिए मैंने स्पेशली उन्हें गुजारिश किया कि भाई इस मुद्दे पर आई नीड टू इम्पॉर्टेंट पीपल इन द पैनल, वन बींग मनन गुप्ता जी, जो कि जिस चीज के बारे में भी बात करते हैं अनबायस करते हैं, पर कई बार अगर आप बायस्ड भी होते हैं तो देयर इज नथिंग रॉन्ग विद इट. इफ यू फील स्ट्रांगली अबाउट समथिंग आप बायस्ड हो सकते हैं. दूसरे जो पैनल में हमारे मेहमान हैं वो मेरे बड़े भाई हैं राज जोशी, जो कि रॉयल लिपेज क्रेडिट वैली के लिए काम करते हैं. और मैं आज पहली बार शायद ये कहने जा रहा हूं ऑन एयर कि बचपने से बट मेरा और राज जोशी का फर्क है 18 मंथ्स का, डेढ़ साल का हम दोनों का फर्क है, मुझसे बड़े हैं डेढ़ साल, लेकिन बचपने से मैंने, मुझे लगता है 5 साल की उम्र से अगर किसी को देखा है जो बंदा न्यूज़पेपर को लिटरली खा जाता है, मतलब दैट गाय ईट्स इट अप, मतलब न्यूज़पेपर का कीड़ा हमारे घर का जो था वो मेरे ब्रदर राज जोशी थे। तो बहुत इन डेप्थ नॉलेज रखते हैं अबाउट बिजनेस, अबाउट ट्रेड, अबाउट पॉलिटिक्स, स्पोर्ट्स एंड लॉट ऑफ स्टफ। सो मैंने सोचा कि भाई ये दो लोग जो पैनल में आज हैं हमारे, राज जोशी एंड मनन गुप्ता, मनन जी एक इमिग्रेशन कंसल्टेंट है, स्काईलेक इमिग्रेशन रन करते हैं, राज जी एक रियल्टर हैं, दोनों का टेक लेना चाहिए व्हाट दे फील। जेंटलमैन, आप दोनों का स्वागत है, मनन जी आपका और राज जी आपका भी स्वागत है।
5: सनी जी नमस्कार।
6: बिल्कुल, बहुत बहुत शुक्रिया सनी जी, थैंक यू फॉर हैविंग मी एंड इट्स अ ग्रेट ऑनर टू जॉइन द एयरवेव्स विद राज जोशी जी, बहुत बहुत शुक्रिया, थैंक यू फॉर द अपॉर्चुनिटी।
1: थैंक यू सो मच राज जी, आपका भी स्वागत है।
5: प्लेजर प्लेजर एंड ऑनर इज माइन मनन जी, और आपके साथ ऑनर आकर कुछ यू नो पल इस मुद्दे पर बात करने के लिए बहुत बहुत आपका शुक्रिया, आपने ये मौका दिया।
1: मैं कुछ यहाँ पे कुछ लाइन्स हैं, मैं यहां पर इन्हें पढ़ना चाहूंगा ऑन एयर और आप दोनों के कमेंट्स इस पे लेना चाहूंगा जो प्रीमियर डग फोर्ड ने कहा। सेइंग किस माय एस ऑन द रेडियो इज जनरली कंसिडर्ड माइल्डली वल्गर, बट रेगुलेटरी बॉडीज लाइक द यूएस फेडरल कम्युनिकेशंस एफसीसी हैव हिस्टोरिकली नॉट क्लासिफाइड द फ्रेज इटसेल्फ एज लीगली पेटेंटली ऑफेंसिव और इनडिसेंट। वैसे FCC has previously noted in precedent and enforcement discussions that expressions like kiss my ass or pissed off do not cross the legal threshold into actionable indecency, unlike stronger profanities or explicit sexual descriptions. ये जो प्रीमियर डग फोर्ड ने कहा है, you guys feel कि भाई एक प्रीमियर को डोनाल्ड ट्रंप के लिए, प्रेसिडेंट के लिए इस तरह के भाषा का इस्तेमाल करना सही है? मनन जी पहले आपके कमेंट, फिर राज जी को लेता हूं मैं।
6: देखिए, ये जो शब्दावली है ये कोई नई बात नहीं है, यू नो वी हैव बीन यूज्ड टू सच जिंगर्स, यू नो जिंगर्स नॉर्मली पॉलिटिकल अगर टर्मिनोलॉजी में बात करें, इस तरह के फनी क्लेवर क्विक, यू नो कई बार हम रिमार्क्स देते हैं जो बिल्कुल कई बार आउट ऑफ टच भी होते हैं, कई बार वो यू नो आउट ऑफ डेस्पिरेशन भी होते हैं, यू नो कई बार आपने मौके पर चौका जिसे कहते हैं ना मारना होता है, आपको कोई क्वेश्चन ऐसा आ जाए तो आपने उसका फनी वे में जवाब देना है। सो इस तरह के जिंगर्स प्रीमियर डग फोर्ड ड्यूरिंग इलेक्शन कैंपेन एंड इवन प्रायर टू दैट जब वो काउंसलर थे टोरंटो सिटी हॉल में एंड एज अ रन अप टू इनफैक्ट जब इलेक्शंस के दौरान भी कई बार वो इस तरह के बयान दे देते हैं। बट देखिए, ओवरऑल वी नीड टू इवेल्युएट कि इस वक्त बहुत ज्यादा संजीदा मुद्दा हमारा चल रहा है। वी आर नॉट इन अ थिएटर, वी आर नॉट इन अ पोलिटिकल थिएटर, इट्स अ इकोनॉमिक वॉर, और इकोनॉमिक जब वॉर होती है, जब ट्रेड वॉर चल रही है, तो वी रियली नीड टू बी डिप्लोमेटिक इन आवर लैंग्वेज, क्योंकि एक बार जो शब्द आपके मुंह से निकल गए, चाहे ऑन एयर, चाहे इन राइटिंग, चाहे जैसे भी, उसको फिर वापस मोड़ना बहुत मुश्किल हो जाता है। वी रियली नीड टू सेटल डाउन थिंग्स एमिकेबली, डिप्लोमेटिकली, और उसके लिए राउंड टेबल डिस्कशन जो पिछले काफी हफ्तों से चल रही थी, आई थिंक दैट इज दी ओनली वे। इस तरह के बयानबाजी, इस तरह की रंगारंग शब्दावली, यू नो जो कि रील्स के लिए तो अच्छा है, व्यूज तो मिल जाएंगे, लिंक्स भी लोग शेयर करेंगे, लेकिन विल इट फाइंड अ अल्टीमेट सॉल्यूशन जिसकी हम सब जाने वेट कर रहे हैं, दैट इज अ बिग क्वेश्चन
1: जी। ये मनन जी का मानना है। राज जी, इज प्रीमियर डग फोर्ड प्लेइंग टू द गैलरी? आपको लगता है कि प्रीमियर डग फोर्ड ने ये जो बयान दिया है आपत्तिजनक है आपके हिसाब से, या यू थिंक कि भाई जैसे मनन जी ने कहा कि भाई करना नहीं चाहिए था पर हो जाता है?
5: सर जी, पहली बात, मनन जी एक परफेक्ट जेंटलमैन है, उन्होंने जो एक जेंटलमैन की थॉट होती है या सोच होती है उसी हिसाब से कहा है, मैं उनके साथ अग्री करता हूं, लेकिन थोड़ा सा एक स्लाइटली डिफरेंट टेक है मेरा। एक्सेप्शनल सर्कमस्टांसेस चल रहे हैं, अगर आप हिस्टोरिकली देखें, अमेरिका के साथ कैनेडा एक स्मॉल ब्रदर कह लें या एक स्मॉलर पार्टनर कह लें, ऐसे चलेंगे। तो इन एक्सेप्शनल सर्कमस्टांसेस में सबसे पहली बात है कि आप जिस प्रेसिडेंट से डील कर रहे हैं वो कोई स्टेट्समैन नहीं है, वो अपने आप को भले कुछ भी कह लें, उनकी सोच जो है इसी टाइप की है निगोशिएशन में कि मैंने हमेशा अपर हैंड रखना है। जैसे आपने प्रोग्राम की शुरुआत की कि बैड कॉप गुड कॉप, तो कैनेडा की तरफ से बैड कॉप हमारे प्रीमियर डग फोर्ड प्ले कर रहे हैं, बहुत मुझे लगा है कि जबरदस्त वे से डील कर रहे हैं प्राइम मिनिस्टर कार्नी और प्रीमियर डग फोर्ड, जो ट्रंप है उनको काउंटर करने के लिए शायद इसी टाइप की स्ट्रैटेजी की जरूरत है। इन द लॉन्ग रन ना ट्रंप इसका बुरा मनाएंगे और ना डग फोर्ड मिलाएंगे, और कभी किसी बिग मीट पर या किसी गोल्फ कोर्स पर आप देखेंगे इन दोनों की पिक्चर्स आएंगी। ये बिजनेस में भी डील करेंगे बिकॉज एट द कोर दोनों बिजनेसमैन हैं, और बिजनेस में फीलिंग्स की इतनी इंपॉर्टेंस नहीं होती जितनी एंड ऑफ द डे आपके प्रॉफिट या लॉस की इंपॉर्टेंस होती है। इसी पिक्चर में अगर आप देखें जो इस वक्त हो रहा है, जो इस वक्त घट रहा है, इज अनइम्पॉर्टेंट। एंड ऑफ द डे डील क्या बनती है वो दोनों साइड को इम्पॉर्टेंट होगा, और मेरा ये मानना है कि अगर जो एग्जैक्ट वर्डिंग आपने कहा है वो एक अमेरिकन फ्रेज है, और अमेरिका में लोग आम दोस्ती यारी में या आम लिंगो में भी ये फ्रेज कह देते हैं किस माय एस। इसको प्रैक्टिकली कोई फिजिकल कॉन्टेक्स्ट नहीं है कि आप किसी की एस को किस कर रहे हैं,
1: बट द पॉइंट इज
5: बार बार दोहरा रहा हूं, राजी अच्छा लग रहा होगा
1: राजी, द पॉइंट इज दैट प्रीमियर डग फोर्ड ने ये बयान एक प्रेसिडेंट के लिए दिया है जो प्रेसिडेंट राइट नाउ व्हाइट हाउस में है, उस बात को लेकर ऐसा लगता है कि शायद ये अवॉइडेबल था। कुछ लाइनें फ्लैश हो रही हैं, मनन जी और राज जी हमारे साथ हैं पैनल में, बात कर रहे हैं कि व्हाट वाज सेड, वेदर इट वाज सेड करेक्टली और नॉट। मैं कुछ कॉलर्स को क्विकली लेता हूं और अपने कॉमेंट्स को बहुत ही ज्यादा आप ब्रीफ रखें, प्लीज गो अहेड, आप ऑन एयर हैं।
7: पहली बात तो ये है कि आपने जो इंट्रो कराया तो एक साहब का कहा कि वो अखबार खा जाते हैं, तो इन्हें लाइट नोट वो पढ़ते कब थे, खाई जाते थे तो अच्छे चले आगे
1: पढ़ने के बाद खाते हैं।
7: अच्छा चलो ठीक है ओके। अब बात यह है कि हम कह रहे हैं कि वो अमेरिका जो है बिग ब्रादर है और हम छोटे स्मॉल ब्रादर है, तो हम सबको पता है कि अगर हमारा कोई बिग ब्रादर था और वो बदतमीज था और वो हमारे साथ कुछ भी कर सकता था, तो हम कोशिश करते थे कि उससे बच बचा के बात करें, उसको नाराज ना करें कि कर वो हमारी उसी वक्त पिटाई ना शुरू करते।
1: ठीक है,
7: तो ये जो बातें की जा रही है ना, ये जो डग फोर्ड ने जो बात की है, डग फोर्ड ने कोई सही बात नहीं की है, उसको एक्सक्यूज करना चाहिए।
1: थैंक यू, यही मैं जानना चाहता था आपसे, बहुत बहुत शुक्रिया कि आप क्या सोचते हैं। अशोक जी आप ऑनर हैं, डू यू फील द सेम जो राज जी ने कहा, मनन जी ने कहा या हमारे प्रीवियस लिसनर ने कहा?
8: हाँ सर, मैं राज्य और मनन जी से सहमत हूँ। अब शब्दों का प्रयोग नहीं करना चाहिए, एस शब्द जो है वो बुरा ही माना जाता है, इसलिए इस तरह से बोलना उचित नहीं होगा। और दूसरी बात ये कहूँगा कि प्रीमियर है तो बहुत सोच समझ के बोलना चाहिए। बहुत इम्पोर्टेंट थिंग है सर, कनाडा 73% एक्सपोर्ट करता है यूएस को,
1: exactly.
8: हम उसमें काफी मनी लूज करेंगे और 90% जॉब भी हमारे खराब हो जाएंगे। तो बात यहाँ हो रही है टिट फॉर टैट की लड़ने के लिए, अब अमेरिका बड़ा भाई है, कैसे आप करेंगे? डोनाल्ड ट्रंप साहब ने ये भी कहा है कि अगर भारत ने रूस से तेल खरीदा तो अब 100% ट्रैफिक लगा देंगे, पर भारत लगा रहा वो तेल खरीद के और आगे बेच भी दिया। तो दिस प्रेसिडेंट कैन नॉट बी ट्रस्टेड सर। बहुत इंपॉर्टेंट बात है आत्मनिर्भर बनना। प्रेसिडेंट कहते हैं कि मेक अमेरिका ग्रेट अगेन, तो मेरा कहना उसमें यह है कि आत्मनिर्भरता बनिए पर दुनिया से कटिए मत, वो तो दुनिया से कटने की बात करने लगे हैं।
1: बिल्कुल बिल्कुल, मैं इन ये जो आपने अभी मेंशन किया अशोक जी, इस पर मैं मनन जी और राज जी दोनों के टेक लेना चाहूंगा। बहुत बहुत शुक्रिया आपके कॉमेंट्स का। अजय जी का भी मैसेज आ रहा है कि आई अग्री विद वॉट राज जी जस्ट सेड। मनन जी, जो हमारे लिसनर्स कह रहे हैं या जो राइट नाउ सिचुएशन, अभी थोड़ी देर पहले एक प्रेस कॉन्फ्रेंस भी हुई है जिसमें ऐसा लगा, ऐसा महसूस हुआ कि लिबरल्स की अनाउंसमेंट इज अगेन रिमाइंडिंग अस ऑफ द पेंडेमिक डेज, जब किसी भी प्रॉब्लम को सॉल्व करने का मकसद था कि भाई हम आपके घरों में चेक भेज देंगे, हम स्मॉल बिजनेसेस को हेल्प करने के लिए और फंडिंग क्रिएट कर देंगे, बट मुद्दा जो कोर इशू है उसको हम जॉब क्रिएशन या उन चीजों के बारे में हम ध्यान नहीं दे रहे।
9: जी जी जी, देखिए ये बड़ा जरूरी है
6: कि अगर हमने कनाडा फर्स्ट की बात करनी है तो हमारे एक्शंस भी उसी तरीके से रिफ्लेक्ट होने चाहिए। इस वक्त जो दो मेजर हमारे पार्लियामेंट्स हैं, चाहे हाउस ऑफ कॉमन्स फेडरल लेवल पर, वो भी छुट्टियों पर है, क्वींस पार्क वो तो बड़े लंबे समय से साल में मैक्सिमम छुट्टियों पर रहता है, व्हाई नॉट रिकॉल देम। अगर कल पियर पॉलीएफ जो कंजर्वेटिव पार्टी के लीडर है, अगर उन्होंने कहा है कि जी हाउस ऑफ कॉमन्स को आप रिकन्वीन करो, इट्स अ मैटर ऑफ नेशनल यूनिटी, नेशनल यू नो हमारा सब कुछ एट स्टेक है, लेट्स डिस्कस दिस इन द पार्लियामेंट, व्हाई इज मार्क कार्नी नॉट कन्वीनिंग द पार्लियामेंट। एंड सिमिलरली द सेम क्वेश्चन आई थिंक शुड गो टू द ऑनरेबल प्रीमियर ऑफ ओंटारियो डग फोर्ड साहब कि भाई आपने जो क्वींस पार्क इस वक्त बंद है, आप क्वींस पार्क को वापस रिकॉल करें, अपने एमपीपीज को, ऑपोजिशन को, सबको वहां पर बैठाएं और फिर अपनी स्ट्रेटजी डिस्कस करें। यू नो अल्टीमेटली बयानबाजी से सोल्यूशन नहीं निकलेगा, वी हैव टू हैव कूलर हेड्स टू प्रिवेल। और मैंने शायद कल वाले प्रोग्राम में भी अपने न्यूज कास्ट में यही कहा था कि एट द एंड ऑफ द डे ये बातचीत से ही मुद्दा हासिल होना है। इस तरह के किसी को फ्लंकी कह देना, किसी को डिक्टेटर कह देना, किसी को यू नो कुछ और शब्दावली इस्तेमाल करके, वी आर नॉट गोइंग टू फाइंड सॉल्यूशंस, वी आर रादर गोइंग टू मेक इट मोर कॉम्प्लिकेटेड। एट द एंड ऑफ द डे हमने पड़ोसी भी रहना है, हमने हमारा ट्रेड भी इंटरट्वाइंड है, यू नो हम दोनों एक दूसरे देशों के टॉप कस्टमर्स हैं, तो वी कैनॉट डिनाई दोज फैक्ट्स। ये इस तरह की एजेंसी वार्तालाप है, और इनफैक्ट प्रीमियर डग फोर्ड ने अभी कुछ देर पहले ही CNN और फॉक्स न्यूज के ऊपर भी जाकर उन्होंने एडमिट किया कि कल थोड़ी सी बहुत ज्यादा हीट ऑफ द मूवमेंट हो गया था बयानबाजी, एंड वी नीड टू लुक बैक एट डिप्लोमेटिक एफर्ट्स।
1: जी राजिक, मैं मनन जी से भी इस चीज के बारे में जानना चाहूंगा, मैं आपके आपसे भी कमेंट लूंगा कि गॉर्डी हॉ ब्रिज को लेकर जो पीएम कार्नी ने पूरी डील की अचानक दो ढाई हफ्ते पहले, उसको लेकर क्रिटिक्स का मानना है कि भाई एग्जैक्टली डील किस तरह से ये डील हुई, उसकी डिटेलिंग क्या है, उसको लेकर एक सस्पेंस सा छाया हुआ है। एंड लॉट ऑफ द क्रिटिक्स फील दैट इवन नाउ कार्नी और उनकी सरकार जो है खुलकर नहीं कह रहे कि स्टिकिंग पॉइंट्स थे क्या, आपको भी ऐसा लगता है?
5: जी एंड ऑफ द डे देखिए, हम जिन इंडिविजुअल्स की बात कर रहे हैं वो लोग सारे पॉलिटिशियन हैं, ठीक है। अगर अमेरिका में ट्रंप अमेरिका फर्स्ट कह रहे हैं, हम भी यहाँ अपने लीडर्स के साथ बैठ के कनाडा फर्स्ट कह सकते हैं, और वही स्टांस हमारे लिए इस वक्त लेना जरूरी है। उनके ऑपोजिट जाके ये कहना कि हमें सिर्फ वो करना चाहिए जो अमेरिका कह रहा है, उससे हम अपनी साइड को और यू नो कमजोर करेंगे। तो गॉर्डी हाउ ब्रिज में क्या हुआ, या पार्लियामेंट को और इधर डग फोर्ड साहब क्यों नहीं रिकन्वीन कर रहे हैं अपने हाउस को, उसका रीजन ये है कि एंड ऑफ द डे ये लोग पॉलिटिशियंस हैं, राइट? वो सिर्फ अपना बेनिफिट देख रहे हैं, वेदर वो कोई बाय इलेक्शन है, वो वेदर वो आने वाला कोई जनरल इलेक्शन है, सबको सिर्फ अपना ख्याल है। अगर प्राइमरीज का ट्रंप को ख्याल है, आपको क्या लगता है कि हमसे ज्यादा, मतलब हमें उनसे ज्यादा उसकी इंपॉर्टेंस पता है? ट्रंप का ध्यान भी उस पर होगा, कार्नी साहब का भी आने वाले बाय इलेक्शन पे होगा, इसी तरह अपने अगले इलेक्शन की फोर्ड सोच रहे हैं। तो एंड ऑफ द डे ये पॉलिटिशियंस हैं, हमसे ये कई मील आगे होते हैं अपनी स्ट्रेटजी में।
1: मनन जी, यू अग्री विद व्हाट राज जी कह रहे हैं कि भाई हर पॉलिटिशियन की निगाहें अपने अपने इलेक्शन पर हैं?
6: एग्जैक्टली बिल्कुल, इन्होंने बिल्कुल पॉइंटेड रिफ्लेक्शन है इनकी, एंड वेरी एक्यूरेट इन माय ओपिनियन टू। क्योंकि देखिए, सबसे इस वक्त जो मेजर इलेक्शंस दो ही हैं, तीन इलेक्शंस, ये 31 अगस्त को बाय इलेक्शंस होनी है कनाडा में, जिसके ऊपर डिपेंड करता है कि मार्क कार्नी साहब दोबारा मेजोरिटी अपनी मेंटेन कर पाते हैं या नहीं। दूसरी तरफ जो प्राइमरीज, जो यू नो मिड टर्म इलेक्शंस होने हैं नवंबर में, उसमें ऑलरेडी डोनाल्ड ट्रंप को काफी ज्यादा नुकसान पहुंचने की उम्मीद है। और इनफैक्ट बीते कल प्रीमियर डग फोर्ड ने भी यही कहा कि अगर उन्हें इजाजत हो तो ही वुड रेदर गो इन टू यूनाइटेड स्टेट्स एंड डोर नॉक अगेंस्ट प्रेसिडेंट ट्रंप। सो ये अपने आप में ये कहना ही एक बड़ा इंपॉर्टेंट रिफ्लेक्शन है, इंडिकेटर है कि बोथ पार्टीज आर प्लेइंग टू देयर गैलरीज, बोथ पार्टीज आर लुकिंग एट पॉलिटिकल गेन्स आउट ऑफ दिस क्राइसिस, लेकिन भुगतान कौन कर रहा है? आप, मैं और आम इंसान, यू नो, जिनकी जॉब्स खतरे में, जिनकी जॉब्स खतरे में। इस वक्त कनाडा में और अमेरिका में सबसे सिक्योर जॉब किसकी है? ओनली इलेक्टेड ऑफिशियल्स, पार्लियामेंटेरियंस की। ना जिनको कोई जॉब कट लगने हैं, ना उनकी सैलरी कम होनी है, उनको तो भत्ते भी ज्यादा मिलने हैं, फिजूल खर्ची के भी मौके मिलने हैं। और उसका सीधा एग्जाम्पल हमारे ओंटारियो के MPPs ने कुछ हफ्ते पहले किया ही था, होटल का जो स्कैंडल सामने आया था।
1: मनन जी, ये सवाल आप दोनों के लिए आया, राज जी के लिए भी आया, आप भी आया। आप एक दोनों प्रोफेशनल्स हैं, दोनों की पकड़ इन डेप्थ नॉलेज है इन रिगार्ड्स टू ट्रेड पॉलिटिक्स, पर साथ ही साथ आप एक इमिग्रेशन कंसल्टेंट है, राज जी एक रियल एस्टेट में बड़े नॉलेजेबल रियल्टर हैं। हमारे लिसनर कमलेश ओझा पूछते हैं कि मनन, व्हाट डू यू फील विल बी द इमिग्रेशन सिचुएशन बिटवीन यूएस कैनेडा? पता नहीं किस तरफ उनकी नजर है या व्हाट एग्जैक्टली इज ही ट्राइंग टू से, इज इट दैट हमें वीजा लेना पड़ेगा उधर जाने के लिए? और कमलेश ओझा जी राज जी को पूछ रहे हैं कि रियल एस्टेट पर इस पूरी चीज का असर कैसे पड़ेगा। पहले मनन जी आप, फिर राज जी।
6: देखिए, दोनों देशों के बीच अगला पड़ाव, अगला मोड़ किस तरह का आता है, यू नेवर नो। आज सुबह अगर प्रेसिडेंट ट्रंप का बयान देखें, वो तो कह रहे हैं मैं लेक ओंटारियो को नाम बदलकर लेक अमेरिका कर दूंगा, यू नो। सो उनके तेवर किस तरफ क्या जाए, इनफैक्ट मैंने कल के प्रोग्राम में भी शायद आइडिया दिया था, हिंट दिया था, यू नेवर नो कि आने वाले समय में वो वीजा फ्री जो ट्रैवल है बिटवीन यूएस एंड कैनेडियन सिटीजन, वो भी हो सकता है खतरे में पड़ जाए, क्योंकि उनके मिजाज कब बिगड़े, किस एंगल को वो हाईलाइट करें, किस एंगल को वो लेवरेज के तौर पर इस्तेमाल करें, ये बहुत बड़ा एक क्वेश्चन मार्क है। सो आई थिंक इन दैट स्कीम ऑफ थिंग्स दोनों देशों के बीच जो सा फ्लो ऑफ गुड्स तो इस वक्त खतरे में आया ही हुआ है, ट्रेड हमारा वॉर चल रही है, फ्लो ऑफ पीपल कैन ऑल्सो बी बिग क्वेश्चन मार्क इन द कमिंग वीक्स।
1: जी राज जी, आपको क्या लगता है? मैं नेक्स्ट कॉलर पुनीत जी को लेने वाला हूं, लेकिन पुनीत जी से पहले राज जी के रियल एस्टेट, जैसे मनन जी ने एक इमिग्रेशन का टेक है, कमलेश ओझा हमारे लिसनर आपसे पूछ रहे कि रियल एस्टेट को आप कैसे देख रहे हैं, हाउ विल दिस गेट अफेक्टेड?
5: सर जी, डेफिनेटली अगर थिंग्स वर्सन होती हैं बिटवीन द टू कंट्रीज, ट्रेड वॉर और ज्यादा अगली होता है, तो उससे डेफिनेटली हाउसिंग मार्केट पर भी इफेक्ट होगा। कितना ड्रास्टिक होगा, ऑल डिपेंड्स ऑन हाउ थिंग्स गो। 18 मंथ्स पहले हम में से कोई भी प्रेडिक्ट नहीं कर सकता था कि आज अगस्त या समर ऑफ 2026 में हम इस सिचुएशन को डील कर रहे होंगे। सो इतना ही मैं कहूंगा कि वी होप फॉर द बेस्ट, और स्पेशली ऑन द कैनेडियन साइड ऐसा लग रहा है कि हम एट द मर्सी ऑफ द यूएस है, बट
1: आई विच इज अ फैक्ट टू एन एक्सटेंट टू।
5: एब्सोल्युटली सनी जी, अगर मतलब इस चीज को कोई डिनाय करके सोच रहा है कि हम एक बहुत बड़े ग्लोबल लेवल पर कोई बिजनेस यू नो कर पाएंगे, जितना बिजनेस हम अमेरिका के साथ करते हैं उसको रिप्लेस करना मुझे लगता है कि इम्पॉसिबल है।
1: ठीक है,
5: तो मैं आपके होप करेंगे कि थिंग्स बेटर हो जाएंगे।
1: ठीक है राजी, मैं आपके कमेंट्स लेता रहता हूँ। पुनीत जी आप ऑनर हैं, व्हाट हैव यू गॉट टू से, यू वांट टू आस्क मनन जी और राज जी एनीथिंग?
9: या बोथ ऑफ देम, आई वांट देयर व्यू ऑन व्हाट आई हैव टू से। ओके okay, now the thing is that, you know, Trump had complained about Canada that Canada is being more favorable to China compared to USA. And that's why he's very much upset. So what are your views in regarding to this?
1: Thank you, Puneet ji. Manan ji, pehle aap, kyunki kal aapne aur maine Manan ji ye discuss bhi kiya tha, shayad kisi listener ne bring up kiya tha ki is it favorable for Canada to get closer to China? Because at the end of the day, bhai, America, bada bhai, phir bhi better hai, chahe usse thodi si anban hai, par China ko hum trust nahi kar sakte. What do you feel?
6: Dekhiye, at the end of the day, Canada is a sovereign country. We are free to make and decide our own foreign policy. Agar hum kisi desh ke saath sambandh banana chahte hain, aage badhana chahte hain, apne purane issues resolve karke, we want to think out of the box, usme kya burai hai? We cannot just be dictated by our, you know, southern neighbor US. Chahe wo duniya ka thanedar hai, wo rahega bhi, lekin that doesn't mean ki it has to control every breath we take, you know, every decision our policy makers make. So I think agar उन मामलों पर प्राइम मिनिस्टर मार्क कार्नी ने ट्रेड टॉक सस्पेंड किए हैं, ही हैज अ वैलिड रीजन, ही हैज अ वैलिड बैकग्राउंड, लेकिन ये सारा जौन सा चिट्ठा है ना, ये हाउस ऑफ कॉमन्स में पब्लिक होना चाहिए ताकि लोगों को दूध का दूध पानी का पानी साफ पता चले। किंतु परंतु ब्लेम गेम ना हो, अमेरिका कुछ कह रहा है, कैनेडा कुछ कह रहा है, प्राइम मिनिस्टर मार्क कार्नी अपने ही पॉलिटिकल विन चाहते हैं, इसमें ट्रंप साहब अपनी जीत चाहते हैं। सो आई थिंक उससे नुकसान दोनों कंट्रीज की दूरदर्शिता पर हो रहा है।
1: जी राज जी, आप इस पे क्या ऐड करना चाहेंगे?
5: सनी जी, बहुत ही फ्रेजाइल सिचुएशन है, यू नो, क्या
1: जो पुनीत जी ने चाइना कनेक्शन अब बीच में जो पूछा है कि भाई वो किस तरह
5: से, वही मैं कहने वाला था, क्या हमारे लिए चाइना एक बेटर ट्रेडिंग पार्टनर होगा? आई माई सेल्फ हैव अ लॉट ऑफ क्वेश्चंस ऑन दैट। अमेरिका के साथ जो हमारा बिजनेस रिलेशन रहा है या जो ट्रेड रिलेशन है, is a much more beneficial, you know, via road hum itna zyada trade karte hain,
1: exactly,
5: which is not comparable anywhere else in the world. China ke saath doubts bahut hain, America ke saath hamesha safety ka ek net raha hai Canada ke liye, aur jisko kehte hain na natural allies rahe hain hum. Aaj bhale bad situation mein America ya American policy ke bare mein Canadian लीडर्स और आम पब्लिक कुछ भी कहते रहे, पर अगर आप 100 साल पीछे भी चले जाएं, हमेशा अमेरिका के साथ हम स्टेप टू स्टेप रहे हैं
1: जी.
5: सो दैट इज अवर नेचुरल अलाय, वही हमारा नेचुरल ट्रेडिंग पार्टनर भी है
1: जी. मैं आज पैनल में दोस्तों दो बड़े इंपॉर्टेंट इन डेप्थ नॉलेज रखने वाले दो इंडिविजुअल्स को मैंने रिक्वेस्ट किया था, मनन गुप्ता जी फ्रॉम स्काईलेक इमिग्रेशन, राज जोशी फ्रॉम रॉयल पेज क्रेडिट वैली, जो कि ट्रेड बिजनेस पॉलिटिक्स की पकड़ है, इनको इन डेप्थ नॉलेज है, और मैंने इनसे सिर्फ 10-10 मिनट मांगे थे, पर मैंने आई वेंट ओवर द टाइम लिमिट. मनन जी, फाइनल रिमार्क्स आपके लूंगा, फिर राज जी के लूंगा.
6: देखिए, फाइनल तो थॉट्स यही हैं कि वी नीड टू एंड दिस यू नो वॉर ऑफ वर्ड्स. वी रियली नीड टू पुट थिंग्स बिहाइंड द सीन्स, और हमें एक्शन पर काम करना पड़ेगा. हमें रिजल्ट्स लेकर आने पड़ेंगे, और रिजल्ट्स भी वो लेकर आने चाहिए जो स्टेबल हो, जो दूरगामी हो, और जिसके ऊपर इन्वेस्टमेंट करने वाले अदारों को, ऑर्गेनाइजेशंस को थोड़ा सा बूस्ट मिले, थोड़ा सा कॉन्फिडेंस बिल्डिंग मेजर्स हमें चाहिए. आज कल शाम को कुछ, सुबह कल कुछ, इसका नाम बदल दो, इसको मैं डिक्टेटर कह दूं, इसको मैं स्कूल बुली कह दूं, वो इनको फ्लंकी कह रहा है, इन सब चीजों से बाहर आने की जरूरत है. वी नीड टू शो द नॉर्थ अमेरिकन पोलिटिकल वाइज यू नो लीडरशिप टू द एंटायर वर्ल्ड. अगर हम आपस में झगड़ा करते रह जाएंगे तो फिर वो फायदा कोई और ब्लॉक या और कॉन्टिनेंट लेकर चला जाएगा.
1: बिल्कुल. राज जी, आपके फाइनल रिमार्क्स ऑन दिस डिस्कशन दैट वी हैड.
5: सर जी, 100% एग्री करता हूं मैं मनन जी के साथ. शांति ही यू नो फ्यूचर की राह है. अगर अमेरिका कनाडा एट पीस है एक दूसरे के साथ, और नॉर्मल फ्रेंडली ट्रेड रिलेशंस चल रहे हैं, दैट इज बेनिफिशियल फॉर ऑल. अमेरिका का भी जो वर्ल्ड स्टेटस है डज नॉट लुक गुड अगर उनके अपने जो नेबर्स हैं कनाडा मेक्सिको, इनके साथ कंटिन्यूसली इश्यूज चलते रहे. तो होपिंग फॉर द बेस्ट, और सारे कैनेडियंस के लिए यू नो इवन अमेरिकन्स के लिए मैं होप करूंगा, जो आम जनता है, कि ये जल्द से जल्द रेजोल्यूशन की ओर जाए.
1: जी दोस्तों, मैं बता दूं, अगर कोई भी इमिग्रेशन रिलेटेड मैटर है तो जिस कंपनी को मैं नंबर वन कंपनी ऑलवेज कहता हूं, कहता रहूंगा, स्काईलेक इमिग्रेशन टीम मनन गुप्ता. कोई भी इमिग्रेशन रिलेटेड मैटर है, याद रखें, छोटी सी गलती भाई, वो एक अल्फाबेटिकल गलती जो है आपकी फाइल को डिले कर सकती है, आपका टाइम बर्बाद हो सकता है, वक्त बर्बाद हो सकता है. सो व्हाई वुड यू डू दैट, कॉल स्काईलेक इमिग्रेशन टुडे, 416-451-0040, 416-451-0040. कल हमारा इमिग्रेशन अनलिमिटेड वाला सेगमेंट होता है, जिसमें आप अपने सवाल भेजते हैं, मैं मनन जी से पूछता हूं. immigrationsegment@gmail.com पर आप अपना इमिग्रेशन रिलेटेड सवाल भेज सकते हैं. द टॉप 3 क्वेश्चंस विल बी आस्क्ड. एंड दूसरी तरफ रियल एस्टेट में जो इन डेप्थ नॉलेज रखते हैं, द वन एंड ओनली राज जोशी फ्रॉम रॉयल लेपेज क्रेडिट वैली. कोई भी रियल एस्टेट रिलेटेड मैटर है, बाइंग, सेलिंग, इन्वेस्टमेंट्स, यू नो नेम इट, राज जोशी जी के पास हर मसले का हल है. एंड खासकर जहां पे आप फर्स्ट टाइम होम बायर्स हैं, क्योंकि मैं ऑलवेज कहता हूं द मोस्ट कंफ्यूज्ड लॉट इज द फर्स्ट टाइम होम बायर, क्योंकि पता नहीं होता है, एक्स्ट्रा इंफॉर्मेशन, गूगल बाबा अपनी इंफॉर्मेशन दे रहा है. राज जोशी जी से संपर्क करें, 416-487-866-1086. राज जी, बहुत बहुत शुक्रिया. मनन जी, आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया.
6: थैंक यू सो मच जी फॉर योर कंसर्न एंड ब्रिंगिंग अस टुगेदर. थैंक यू.
1: थैंक यू जी. राज जी, बहुत बहुत शुक्रिया.
5: बहुत बहुत शुक्रिया सर जी.
1: थैंक यू. एंड चलिए, ये डिस्कशन होनी जरूरी थी. एक्सपर्ट्स, हमारे पैनल के एक्सपर्ट्स राज जोशी एंड मनन गुप्ता जी से ये सब जानना भी जरूरी था कि भाई क्या उनका टेक है ऑन दिस इंटायर मैटर. और मैं खुद सुबह से इस चीज को अर्ली मॉर्निंग से वेरी अर्ली 5 बजे सुबह से इस चीज को बहुत क्लोजली फॉलो कर रहा हूं एंड जो जो बयान आ रहे हैं और मेन मुद्दा ही वो है कि भाई बयानबाजी में इतनी बयानबाजी ना हो जाए कि बाद में आप उन चीजों को टेक बैक ना कर सकें, क्योंकि अमेरिकन पॉपुलेशन या अमेरिकन सिटीजन्स जो सपोर्ट करते हैं डोनाल्ड ट्रंप को वो भी प्रीमियर डग फोर्ड के बयानों को सुन रहे हैं एंड वाइस वर्सा, यू नो. सो पॉइंट इज दैट इसे हम ट्रेड वॉर तक ही सीमित रखें, ऐसा ना हो कि वॉर ऑफ वर्ड्स बना दें और बाद में कुछ ऐसी कहा सुनी हो जाए जो चीज़ों को आप टेक बैक ना कर सकें, और खासकर जब आपका अपोनेंट जो होता है वो आपसे 5 गुना 10 गुना स्ट्रॉन्गर होता है तो उसमें आपका डिफेंस मोड जो है सही रहना चाहिए, अग्रेशन जो है थोड़ा सा तरीके से आपको उनके साथ इस्तेमाल करना पड़ेगा, नहीं तो कई बार थिंग्स कैन गो डाउनहिल ऑल द वे. सो लेट्स होप प्रे, क्योंकि दिस इज अबाउट कैनेडियन फ्यूचर.

0: जहाँ पे ब्रीदिंग की हम बात करते हैं, अगर आपका डक क्लीनिंग हुआ ही नहीं है इतने अरसे से और यू हैव नो आइडिया, बिकॉज उस रग और कारपेट को देख के कई बार समझ ही नहीं आता है कि भाई कितना गंध उसमें समाया हुआ है. सो उसके लिए नानक डक क्लीनिंग को कॉल करें. 2500 square feet के घर की डक क्लीनिंग जो है फॉर जस्ट अप टू 2500 square feet के घर की सिर्फ $150 में कर रहे हैं, $150. एंड दिस इंक्लूड्स ऑल वेंट्स, फर्नेस क्लीनिंग, ड्रायर वेंट क्लीनिंग, बिफोर एंड आफ्टर. आपको पिक्चर्स दिखाएंगे कि भैया आपका डक क्या हाल था और अब कैसा दिख रहा है. ब्रशिंग ऑफ द मेन लाइंस, हर्बल सैनिटाइजेशन ऑफ रिटर्न डक किया जाएगा. ये सारा काम $150 में किया जाएगा. और सर्विसेज नानक डक क्लीनिंग आपको प्रोवाइड कर रहे हैं ऑल अक्रॉस GTA, मेजर सिटीज ऑफ ओंटारियो, चाहे हैमिल्टन है, नायग्रा फॉल, लंदन, विंजर, बेरी, किचनर वॉटरलू एरिया. एक्चुअली वन मोर थिंग आई वांट टू ऐड, दिस इज ऑल्सो द बेस्ट टाइम टू गेट डक क्लीनिंग डन, यू नो, बिकॉज आगे सर्दियों से पहले पहले अगर आप ये करवा लें तो याद रखें सर्विस होगी नंबर वन. एंड इनके गूगल रिव्यूज आप चेक कर सकते हैं क्योंकि दैट इज द बेस्ट टेस्टिमोनियल यू कैन चेक. नानक डक क्लीनिंग, 6478385799, नानक डक क्लीनिंग. और कोई भी इनकी कंप्लेंट होगी आप डायरेक्टली मुझे कॉल करके कंप्लेंट करिएगा. और कंप्लेंट की कोई मतलब वजह नहीं होगी, मतलब द काइंड ऑफ वर्क दीज गाइज डू. नानक डक क्लीनिंग, 6478385799. शॉर्ट ब्रेक, उसके बाद एक जबरदस्त गीत उदित नारायण की आवाज में. प्यार किया तो डरना क्या वॉज द फिल्म, फिल्माया ऑन सलमान खान. लेकिन उससे पहले कुछ मैसेजेस.
1: जेनेसिस मार्कम में लग्जरी मिलती है एक ऐसे एक्सपीरियंस के साथ जो एक्सपेक्टेशन से भी आगे हो. ब्यूटिफुली डिजाइंड 2026 GV70 या 2026 GV80 को लीज करें सिर्फ 2.4% से फॉर अप टू 39 मंथ्स. बुक योर टेस्ट ड्राइव टुडे. विजिट genesismarkham.ca, लोकेटेड एट वुडबाइन एवेन्यू एंड जॉन स्ट्रीट, मार्कम. जेनेसिस मार्कम, डूइंग लग्जरी योर वे. A proud member of Vane's Auto Group.
0: अगर गोल्ड खरीदना है तो ये है परफेक्ट टाइम, क्योंकि एशिया गोल्ड पर अमेजिंग डील्स चल रही हैं. वहाँ हाई क्वालिटी एंड यूज ब्रांड न्यू ज्वेलरी कलेक्शन पर स्पेशल डिस्काउंट्स भी हैं. विजिट करें एशिया गोल्ड एट 5010 स्टील्स एवेन्यू वेस्ट, इटोबिको, नियर किपलिंग एंड स्टील्स. 416-746-3795. एशिया गोल्ड, हर चमक में भरोसा, हर खरीद में बचत. आज ही विजिट करें asiagoldinc.com. क्या आपकी होम और ऑटो इंश्योरेंस की रिन्यूअल ड्यू है? क्या आपको तलाश है गुड रेट्स की फॉर द राइट कवरेजेस? तो आज ही कॉल करें गुरविंदर बामरा को फ्रॉम ऑल स्टेट्स मिसागा साउथ एजेंसी एट 289-891-0296. इट्स 289-891-0296. आज ही कॉल करें एंड यू कैन सेव एन एवरेज ऑफ $2,163 व्हेन इंश्योरिंग टू कार्स एंड अ होम. Remember, you're in good hands with Allstate.
1: हाइब्रिड के बारे में सोच रहे हैं? लेकिन क्या एक गैस लेक्सस आपके लिए ज्यादा सेंस बनाता है? डॉन वैली नॉर्थ लेक्सस पर NX350 और RX350 प्रीमियम पैकेजेस इमीडिएट डिलीवरी के लिए अवेलेबल हैं. और वेलकम बैक लॉयल्टी ऑफर के साथ आप सेव कर सकते हैं थाउजेंड्स. लीज स्टार्टिंग फ्रॉम जस्ट $618 पर मंथ फॉर 48 मंथ्स. आज ही विजिट करें DonValleyNorthLexus.com. A proud member of Wayne's Auto Group.
2: You're listening to the Sunny Joshi Show on South Asian Unlimited Radio, CMR 101.3 FM.

0: हर एक ग्रेट जर्नी शुरू होती है एक सही पार्टनर के साथ। वेन्स ऑटो ग्रुप में हमारे डीलरशिप्स का वाइड नेटवर्क डिवर्स कम्युनिटीज को प्राउडली सर्व करता है। एक्सपर्ट कार बाइंग गाइडेंस, प्रीमियम सर्विस और ऐसा सपोर्ट जो आपकी लैंग्वेज समझे। हर डीलरशिप का प्रॉमिस एक ही है, ट्रस्टेड केयर, कंसिस्टेंट सर्विस और कंप्लीट ऑटोमोटिव सपोर्ट। फ्रॉम फर्स्ट ड्राइव टू लाइफ टाइम केयर, वेन्स ऑटो ग्रुप इज ऑलवेज देयर। Visit veinsautogroup.com.
1: ये है राजधानी राजधानी राजधानी।
2: इस रक्षाबंधन राजधानी लेकर आए हैं भाई बहन एंड ब्लेसिंग्स गिव अवे। जीतो इलेक्ट्रिक स्कूटर, प्लेस्टेशन 5, डायसन एयर रैप, निंटेंडो स्विच, रेबान मेटा ग्लासेस और भी बहुत सारे एक्साइटिंग प्राइजेस।
3: राजधानी की किसी भी लोकेशन पर विजिट करें, परचेज करें 12 से 29 अगस्त तक। QR कोड स्कैन करके अपनी इन्फो और एंट्री सबमिट करें।
2: 26 लोकेशंस अक्रॉस कनाडा।
4: फॉर मोर इन्फॉर्मेशन विजिट rajdhanisweets.ca।
5: आदाब, मैं आप सबको तहे दिल से दावत देना चाहती हूँ शामे रेख्ता में। शामे रेख्ता, रेख्ता फाउंडेशन का एक खास ऑडिटोरियम कॉन्सेप्ट है। ये सिर्फ एक शो या कॉन्सर्ट नहीं, बल्कि उर्दू के हुस्न, उसकी तहजीब और उसकी रूह के साथ गुजारी हुई एक यादगार शाम है। 19 सितंबर, लिविंग आर्ट सेंटर, मिसिसागा। बुक योर टिकट्स ऑन टिकट मास्टर।
6: समर ड्राइव का एक्साइटमेंट बढ़ाएं विद टंड्रा एट डॉन वैली नॉर्थ टोयोटा। आपके नेक्स्ट एडवेंचर के लिए बिल्ट और फाइनेंसिंग सिर्फ 3.49% से फॉर 36 मंथ्स। बिग सिलेक्शन, बिग समर मोमेंटम, बीजीबी इन स्टॉक आपकी इलेक्ट्रिफाइंग एक्सपीरियंस के लिए। वी पे टॉप डॉलर फॉर योर ट्रेड। इट्स टाइम टू टोयोटा एट डॉन वैली नॉर्थ टोयोटा.com। लोकेटेड है 3300 स्टील्स एवेन्यू, ईस्ट मार्कम पर। A proud member of Vane's Auto Group.
7: Another Don Clean with the Don Ducks.
8: Oh, he's doing dishes with Dawn Platinum.
9: The only soap trusted to save wildlife affected by oil.
8: And Platinum removes up to 99% of grease and food residue, so he doesn't have to work so hard.
9: Well, flap my wings. What'll he do with all that unused elbow grease?
8: Organize the fridge, the spice rack, the junk drawer.
9: What are you quacking on about? He's gonna make enchiladas.
8: More dishes? That's giving this duck goosebumps.
7: Dawn Platinum, the better grease getter.
10: क्रेडिट कार्ड, जीएसटी या कर्जों की समस्या, हम दिलवा सकते हैं 80% कर्जों से माफी और फीस लेंगे अप्रूवल के बाद। क्रेडिट बिल्डिंग में भी करेंगे मदद। सर्विंग यू फ्रॉम 4 लोकेशंस ऑल अक्रॉस जीटीए। ऑल डेट सॉल्यूशंस, मोहम्मद सिद्दीक, 416-671-0577, 416-671-0577, alldebtsolutions.ca।
11: आप सुन रहे हैं आपका फेवरेट साउथ एशियन अनलिमिटेड रेडियो। एडवर्टाइजिंग के लिए कॉल करें 647-863-1940, 647-863-1940।
12: वेलकम बैक फ्रेंड्स, एक बार फिर से आपका स्वागत है। बाहर का तापमान 22 डिग्री सेल्सियस, फील्स लाइक 26 एंड खबर सबसे बड़ी यही है कि कनाडा इंपोजिंग टैरिफ्स ऑफ अप टू 50% ऑन यूएस स्टील एंड एल्यूमिनियम, क्योंकि डॉलर टू डॉलर मैच करना है और कनाडा ने भी ऐलान कर दिया है। हाउ दिस विल बैकफायर ओनली टाइम विल टेल, लेकिन हमारा काम है आप तक लेटेस्ट खबरें पहुंचाना, वो हम कर रहे हैं। और अगर आपकी ऑटो एंड होम इंश्योरेंस की रिन्यूअल आ गई है या आने वाली है तो आई थिंक इट्स इवन अ बेटर थिंग टू कॉल गुरविंदर बामरा। शी वर्क्स विथ ऑल स्टेट इंश्योरेंस। सो अभी कॉल कर लेंगे तो आपका होमवर्क हो जाएगा कि आपकी बचत कितनी हो सकती है। अगर आपके पास दो गाड़ियां हैं एंड यू हैव अ होम, यू कैन सेव एन एवरेज ऑफ $2,100। लेकिन अगर आप नए इमिग्रेंट हैं जिसको अभी लाइसेंस मिला है एंड यू आर लुकिंग फॉर सम अमेजिंग रेट्स फॉर ऑटो इंश्योरेंस, स्टूडेंट हैं क्योंकि वैसे भी जो अंडर 25 होते हैं उनकी वैसे ही बहुत ज़्यादा हाई होती है ऑटो इंश्योरेंस, एक बार गुरविंदर जी से कॉल करके कोट ले लीजिए। 647-303-3207। गुरविंदर बामरा, ऑल स्टेट इंश्योरेंस, बेस्ट कवरेजेस, बेस्ट रेट्स ऑफर करती हैं। 647-303-3207, 647-303-3207। और गोल्ड खरीदना है तो भाई एक ही जगह है गोल्ड खरीदने के लिए, एशिया गोल्ड पे पहुंचिए, 5010 स्टील्स एवेन्यू, वेस्ट अटोबिको, किपलिंग स्टील्स वाला एरिया है। एंड ब्रांड न्यू ज्वेलरी के कलेक्शंस उनके पास आ गए हैं, स्पेशल डिस्काउंट्स चल रहे हैं, अमेजिंग डील्स चल रही हैं। एंड एशिया गोल्ड पर आपने हमारे शो का देना है रेफरेंस, गेट अमेजिंग डील्स। अगला गीत आपकी रिक्वेस्ट है, बड़ी जबरदस्त फिल्म थी बच्चन साहब की, अर्ली 80s में आई थी, नमक हलाल आशा भोसले की आवाज में फिल्माया, और नन अदर देन प्रवीण बाबी एंड शशि कपूर और बच्चन साहब भी नजर आ रहे हैं इस गीत में, पर गीत जो है एवरग्रीन है, रात बाकी बात बाकी। एक कॉलर है, क्विकली उन्हें ले लेते हैं फिर उसके बाद गीत की तरफ। पुनीत जी आप ऑनर हैं, प्लीज गो अहेड। हेलो, ओके कॉल बैक कर लीजिए प्लीज, 6417 416 593 0005। एंजॉय द सॉन्ग, आई विल बी बैक।

0: डॉन वैली नॉर्थ हंडे के हंडे अपग्रेड योर राइड सेल्स इवेंट का फायदा उठाइए। सिर्फ 0.99% से फाइनेंसिंग और साथ में 90 दिन तक कोई पेमेंट नहीं और पाए $1,000 तक का अपग्रेड बोनस भी। ऑफर सिर्फ August 31st तक है। At Don Valley North Hyundai, we speak your language. Visit DonValleyNorthHyundai.com या Woodbine Avenue and Denison Street, Markhamper.
1: Don Valley North Hyundai, doing
2: a proud member of Wayne's Auto Group.
3: काव्य होम्योकेयर, काफी इलाज जहां बेअसर हो जाते हैं वहां से शुरू होता है होम्योपैथी का असर। बच्चों से लेकर बुजुर्गों तक, नए से लेकर कई पुरानी बीमारियों तक, जैसे एलर्जीज, एस्मा, आर्थराइटिस, हेयर लॉस, स्किन डिसऑर्डर्स, हेडेक्स, माइग्रेन्स, मेल या फीमेल हेल्थ इश्यूज, डाइजेस्टिव डिसऑर्डर्स या पाइल्स, मेंटल हेल्थ इश्यूज, हार्ट प्रॉब्लम, डायबिटीज और फॉर एनी काइंड ऑफ अक्यूट और क्रॉनिक डिजीजेस, हमारे होम्योपैथ से मिले जिनको 20 साल का ज्यादा तजुर्बा है। काव्य होम्योकेयर, जहां से शुरू होता है हेल्दी लाइफ का सफर। 10 कोट्रेल बुलेवार्ड, Unit 104 in Brampton, 6477602779, 6477602779.
4: सुनो, आज मेरे भाई की फ्लाइट है इंडिया से।
5: अच्छी, याद है। अच्छा, उसको कहना कि आते हुए एक प्लेट छोले भटूरे पैक करा के ले आए इंडिया से।
4: अजी, इंडिया जैसे स्वाद वाले छोले भटूरे खाने के लिए इंडिया के सपने ना लो, सीधा choleBhature.ca पे चलो।
6: choleBhature.ca, बेस्ट पंजाबी रेस्टोरेंट इन ब्रैम्पटन। छोले भटूरे, पतीले वाले मटर कुल्चे, पाव भाजी, अमृतसरी कुल्चे और भी कई डिलीशियस ऑथेंटिक इंडियन स्टाइल फूड के लिए पहुँचे choleBhature.ca। कॉल 9054582448.
7: Serving from 4 dine-in locations, 2 in Brampton, 1 in Mississauga and 1 by Vaughan Mills.
0: Genesis Markham mein luxury milti hai ek aise experience ke saath jo expectations se bhi aage ho. Beautifully designed 2026 GV70 ya 2026 GV80 ko lease kare sirf 2.4% se for up to 39 months. Book your test drive today. Visit genesismarkham.ca, located at Woodbine Avenue and John Street, Markham. Genesis Markham, doing luxury your way. A proud member of Vane's Auto Group.
8: जिंदगी एक सफर है सुहाना, यहाँ कल क्या हो किसने जाना।
9: जी हाँ, बिल्कुल ठीक सुना। वाकई जिंदगी बहुत ही सुहाना सफर है और कल क्या हो जाए किसी को कुछ नहीं पता। एक सुझाव मैं आपको देता हूँ कि किसी भी तरह की इन्वेस्टमेंट या इंश्योरेंस के लिए, जैसे ऑटो, होम, लाइफ एंड कमर्शियल इंश्योरेंस, एक भरोसेमंद नाम पूजा गुप्ता जी को कॉल करें 6476280040। दैट इज 6476280040।
8: यहाँ

0: इमिग्रेशन
1: कम्युनिटी का जाना बचाना और भरोसेमंद नाम मनन गुप्ता आपके लिए लाए हैं कैनेडियन इमिग्रेशन की प्रोफेशनल सर्विसेज। कॉल मनन गुप्ता 416-451-0040 दैट इज 416-451-0040 और विजिट skylakeimmigration.com।
2: इस बार रक्षाबंधन के पावन अवसर को बनाएं और भी ज्यादा स्टाइलिश। खरीदिए GTA में कहीं और न मिलने वाली बेहद खूबसूरत राखियाँ इंडिया सजावट एंड पूजा हट से, और आपके घर की सजावट के लिए भी बहुत कुछ मिलेगा ओनली एट इंडिया सजावट एंड पूजा हट। 31 मेलनी ड्राइव, यूनिट 5, ब्रैम्पटन, 905-458-6808।
3: हाइब्रिड के बारे में सोच रहे हैं, लेकिन क्या एक गैस लेक्सस आपके लिए ज्यादा सेंस बनाता है? डॉन वैली नॉर्थ लेक्सस पर NX350 और RX350 प्रीमियम पैकेजेस इमीडिएट डिलीवरी के लिए अवेलेबल हैं। और वेलकम बैक लॉयल्टी ऑफर के साथ आप सेव कर सकते हैं थाउजेंड्स। लीज स्टार्टिंग फ्रॉम जस्ट $618 पर मंथ फॉर 48 मंथ्स। आज ही विजिट करें DonValleyNorthLexus.com, a proud member of Winch Auto Group.
4: You're listening to South Asian Unlimited Radio. For advertising, call 647-863-1940. 647-863-1940.
5: Welcome back, friends. एक बार फिर से आपका स्वागत है, और ये बहुत ही प्यारा सा गीत है, आपकी रिक्वेस्ट है। ये एक्चुअली कल परसों रिक्वेस्ट आई थी, मैं चला नहीं सका था। बाबुल सुप्रियो एंड साधना सरगम की आवाज़ में, ब्रॉट टू यू बाय क्लियर ऑप्टिकल बाय वरुण कांडा, जो कि ब्रैम्पटन जॉर्ज टाउन दो लोकेशन से आपको सर्व करते हैं। राजधानी स्वीट्स एंड रेस्टोरेंट, 100% प्योर वेजिटेरियन फूड, ज़बरदस्त मिठाइयों का दूसरा नाम राजधानी स्वीट्स एंड रेस्टोरेंट। एंड ऑटो एंड होम इंश्योरेंस के लिए मैं नंबर एक बार फिर से दे दूं, गुरविंदर बामरा जी जो कि ऑल स्टेट के लिए काम करती हैं, सम अमेजिंग अमेजिंग आपको रेट्स ऑफर कर रही हैं ऑटो इंश्योरेंस के, प्राइमरली जब मैं कहता हूं। एंड ऑब्वियसली अगर आप ऑटो एंड होम दोनों का एक साथ लेते तो फिर अच्छी खासी बचत, थाउजेंड्स ऑफ डॉलर्स की बचत हो सकती है इफ़ यू इंश्योरिंग टू कार्स एंड अ होम। इफ़ यू आर अ न्यू ड्राइवर, जस्ट गॉट योर लाइसेंस, टॉक टू गुरविंदर बामरा 647-303-3207। चलिए, बाहर का तापमान हो चुका है 23 degrees Celsius, फील्स लाइक 27। ये प्यारा सा गीत, फिर आगे चलकर ब्रैम्पटन टीवी एंड अप्लायंसेस से सुल्तान जी अमेजिंग अमेजिंग डील्स लेकर होंगे हमारे साथ।

0: अगर गोल्ड खरीदना है तो ये है परफेक्ट टाइम, क्योंकि एशिया गोल्ड पर अमेजिंग डील्स चल रही हैं। वहाँ हाई क्वालिटी एंड यूज्ड ब्रांड न्यू ज्वेलरी कलेक्शन पर स्पेशल डिस्काउंट्स भी हैं। विजिट करें एशिया गोल्ड एट 5010 स्टील्स एवेन्यू वेस्ट इटोबिको नियर किपलिंग एंड स्टील्स। 416-746-3795 एशिया गोल्ड, हर चमक में भरोसा, हर खरीद में बचत। आज ही विजिट करें asiagoldinc.com। This part of the program is brought to you by Win Lifetime Trading। पिछले 15 सालों से सक्सेसफुली ऑनलाइन ट्रेडिंग से बहुत से परिवारों को साइड इनकम प्रोवाइड करते आ रहे हैं, जिसमें आप हर महीने $2,000 से $6,000 US कमा सकते हैं। फ्लेक्सिबल स्केड्यूल है, श्योरिटी विद फुल कॉन्फिडेंस के साथ मिनिमम $2,000 to $6,000 आप कमा सकते हैं। फ्री सेमिनार्स अटेंड करें हर सैटरडे आफ्टरनून। मेक श्योर प्लीज मेक योर अपॉइंटमेंट, वॉक इन ना करें। 12:30 PM to 3:30 PM होता है सेमिनार, एंड कॉल करके अपनी सीट रिजर्व करवा लें 905-206-1008 905-206-1008। Mittal CPA Professional Corporation for all your tax related matters 289-748-4040 289-748-4040।
1: हर एक ग्रेट जर्नी शुरू होती है एक सही पार्टनर के साथ। वेन्स ऑटो ग्रुप में हमारे डीलरशिप्स का वाइड नेटवर्क डिवर्स कम्युनिटीज को प्राउडली सर्व करता है। एक्सपर्ट कार बाइंग गाइडेंस, प्रीमियम सर्विस और ऐसा सपोर्ट जो आपकी लैंग्वेज समझे। हर डीलरशिप का प्रॉमिस एक ही है, trusted care, consistent service, or complete automotive support. From first drive to lifetime care, Wayne's Auto Group is always there. Wayne's Auto Group, Wayne's Auto Group, Canada. Visit waynesautogroup.com.
2: हाय अंजू, कैसी हो? हाउ इज योर सन डूइंग?
3: निशा पूछ मत, सारा दिन कंप्यूटर टीवी फोन पर लगा रहता है, आंखें तो खराब होंगी ही, होमवर्क के टाइम बैटरी गुल।
2: मैं समझ गई, उसे चाहिए प्रिस्क्रिप्शन वाले स्मार्ट ग्लासेस फ्रॉम क्लियर ऑप्टिकल।
4: शी इज राइट, चाहे बच्चे हो या बड़े, वेयर स्मार्ट ग्लासेस एवरी डे। ये प्रिस्क्रिप्शन स्मार्ट ग्लासेस आपके खराब होते विजन को स्टेबलाइज करे बिना किसी भी स्ट्रेस एंड फटीग ऑन योर आईज। विजिट 8005 फाइनेंशियल ड्राइव ब्रैम्पटन 9054573232 Clear Optical by Varun Kanda।
5: Our loan and credit card bills keep piling up. We have no money to pay them with our limited income.
6: I'm afraid we are going to go bankrupt and lose our house, business and all assets. Is this why we immigrated to Canada?

0: Help is just one call away. No need to file bankruptcy. We can save your assets, stop collection calls and make one monthly interest-free installment for maximum debt relief. Call Aisha Munawwar, Debt Solutions Specialist and Insolvency Counselor with Rumanek & Company Limited, a company with licensed insolvency trustee. Call Aisha Munawwar at 416-428-2165. That's 416-428-2165.
1: Hum honge aapke saath hamesha.
2: आप सुन रहे हैं आपका फेवरेट साउथ एशियन अनलिमिटेड रेडियो. एडवर्टाइजिंग के लिए कॉल करें 6478631940 6478631940.
3: वेलकम बैक फ्रेंड्स, एक बार फिर से आपका स्वागत है. यूनिवर्सिटी ऑफ टोरंटो प्रिपेयर्स टू वेलकम द फर्स्ट कोहोर्ट ऑफ स्टूडेंट्स एट द न्यू गैरन हेल्थ साइंस कॉम्प्लेक्स कार्ब्रो में. एंड दूसरी तरफ अगर बात करें, वन पर्सन असेस्ड बाय पैरामेडिक्स आफ्टर स्मॉल फायर्ड डेको लेबल्स ऑन ग्रीन्सबोरो ड्राइव, ये इटोबिको से खबर आई है. टोरंटो पुलिस हेट क्राइम यूनिट इन्वेस्टिगेट कर रहे हैं इंसिडेंट दैट हैपेंड एट बैथर्स्ट एंड शेपर्ड ओवर द वीकेंड इन नॉर्थ यॉर्क. एंड बर्लिंगटन में ड्राइवर सेंट टू हॉस्पिटल, हाइड्रोपोल से सिंगल व्हीकल क्रैश हुआ था ऑन ब्रांट नियर डंडास. आउटसाइड टेम्परेचर 24 डिग्री सेल्सियस, फील्स लाइक 27. और छोले भटूरे डॉट सी है. दिल्ली वाले छोले भटूरे खाने का अगर कई बार होता है कि भाई मुंह में वो स्वाद होता है कि दिल्ली वाले छोले भटूरे खाने, तो दिल्ली जाने की जरूरत नहीं है. चार लोकेशंस आपके करीब है, 2 इन ब्रैम्पटन, 1 इन वॉन, 1 इन मिसागा. डाइन एंड टेक आउट ऑप्शंस हर पे अवेलेबल हैं. छोले भटूरे डॉट सी है, आपने याद रखना है. मैंने कुछ देर पहले नानक डक क्लीनिंग का नंबर ऑन एयर दिया था कि अगर आपने अपने घर की डक क्लीनिंग करानी है, दिस इज़ द बेस्ट टाइम. तो हमारे लिसनर ने कहा था कि नंबर को कपल ऑफ टाइम्स और रिपीट कर दें. आराम से आप नोट कर लीजिए, 2500 स्क्वायर फीट का जो घर है उसकी डक क्लीनिंग फॉर जस्ट $150 ओनली. और इसमें सारे वेंट्स, फर्नेस क्लीनिंग, ड्रायर वेंट क्लीनिंग, बिफोर एंड आफ्टर आपको पिक्चर्स दिखाई जाएंगी, ब्रशिंग ऑफ मेन लाइंस, हर्बल सैनिटाइजेशन ऑफ रिटर्न डक, सारा काम करते हैं. GTA में करते हैं, अराउंड GTA, अक्रॉस GTA, बियॉन्ड GTA, एंड सर्विस इनकी लाजवाब है. नानक डक क्लीनिंग नंबर प्लीज आराम से नोट कर लीजिए, 6478385799. इनका नंबर है, नानक डक क्लीनिंग का नंबर है, नोट कर लीजिए आराम से. एंड ब्रैम्पटन टीवी एंड अप्लायंसेस सुल्तान जी होंगे हमारे साथ आगे चलकर. एंड लेकिन उससे पहले बादशाह की आवाज़ में ये आपकी की रिक्वेस्ट है, मर्सी. बादशाह से पहले योयो हनी सिंह थे, उस टाइम पे योयो हनी सिंह के गीत बड़े हिट होते थे. तो किसी को शायद ज़्यादा पता नहीं होगा कि बादशाह यूज़ टू राइट द सॉन्ग्स, लिरिक्स ये लिखते थे गीतों के. फिर उसके बाद योयो का वो ड्रग फेज आया, ही डिसअपियर्ड, एंड देन बादशाह टॉप पर चले गए. अब कुछ साल पहले योयो हनी सिंह ने वापसी कर ली है और अब दोनों का एक सॉर्ट ऑफ अ कोल्ड वॉर, हॉट वॉर चलता रहता है. एंड कई बार स्टेज पर भी एक दूसरे के बारे में कहते रहते हैं चीज़ें. एंड बट द पॉइंट इज़, कुछ कुछ ऐसे आर्टिस्ट होते हैं जिनके फैंस भी स्प्लिट होते हैं. सो वन विल लाइक योयो हनी सिंह, द अदर वन विल लाइक बादशाह. एंड फैंस खुद चुन लेते हैं कि भैया ये मैं इसे सपोर्ट करूँगा, मैं उसे करूँगा. एंड बट दे बोथ हैव ह्यूज फैन फॉलोइंग. एंड पीपल आर ऑल्सो समटाइम्स, योयो हनी सिंह के ड्रग फेज के बाद भी देर वॉज अ टाइम ऐसा लग रहा था योयो का करियर इज ऑलमोस्ट डन, बट देन यू नो वट, ही जस्ट मेड अ प्रीटी गुड कम बैक. चलिए, गीत ये तो है बादशाह का. फ्लाइट अटेंडेंट्स रेटिफाई कॉन्ट्रैक्ट दैट इंक्लूड्स 18.25% इंक्रीज. और कैनेडा अनाउंस करने वाला है द डिटेल्स ऑफ रिस्पॉन्स टू US टैरिफ्स, जो कि आज कैनेडा ने ट्रेड वॉर को लेकर अनाउंसमेंट्स कुछ की हैं. लेकिन PM कार्नी जो हैं आस्ते आस्ते आराम से कदम उठा रहे हैं. और उन्होंने कहा है कि ये रिटेलिएशन वाले जो टैरिफ्स हैं सितंबर 8 से लागू हो जाएंगे, विच इज़ गोइंग टू बी आफ्टर लेबर डे, विच इज़ डिसेंट. थिंग्स माइट चेंज बाय देन, अगर ट्रंप का मूड और मोड चेंज हो जाता है तब तक. एंजॉय मर्सी, वील बी बैक.

0: क्या आपकी होम और ऑटो इंश्योरेंस की रिन्यूअल ड्यू है? क्या आपको तलाश है गुड रेट्स की फॉर द राइट कवरेजेस? तो आज ही कॉल करें गुरविंदर बामरा को फ्रॉम ऑल स्टेट्स मिस्सागा साउथ एजेंसी एट 289-891-0296. इट्स 289-891-0296. आज ही कॉल करें एंड यू कैन सेव एन एवरेज ऑफ $2,163 व्हेन इंश्योरिंग टू कार्स एंड अ होम. Remember, you're in good hands with Allstate. काव्या होम्योकेयर, काफी इलाज जहां बेअसर हो जाते हैं वहां से शुरू होता है होम्योपैथी का असर. बच्चों से लेकर बुजुर्गों तक, नए से लेकर कई पुरानी बीमारियों तक, जैसे एलर्जीज, एस्मा, आर्थराइटिस, हेयर लॉस, स्किन डिसऑर्डर्स, हेडेक्स, माइग्रेन्स, मेल या फीमेल हेल्थ इश्यूज, डाइजेस्टिव डिसऑर्डर्स या पाइल्स, मेंटल हेल्थ इश्यूज, हार्ट प्रॉब्लम, डायबिटीज और फॉर एनी काइंड ऑफ अक्यूट और क्रॉनिक डिजीजेस हमारे होम्योपैथ से मिले जिनको 20 साल का ज्यादा तजुर्बा है. काव्या होम्योकेयर, जहां से शुरू होता है हेल्दी लाइफ का सफर. 10 कोट्रेल बुलेवार्ड, Unit 104 in Brampton, 647-760-2779, 647-760-2779. McQueen Dental Care, Dr. Raj Gill, 9960 McQueen Drive, Unit 6 in Brampton. For all your dental needs, insurance ho ya na ho, McQueen Dental Care ke paas aapke liye special packages available hai. Talk to Sirat, 905-794-8883. Chahe braces lagwane hai, ya phir dentures, ya partial dentures, root canal cleaning, ya checkups. Call McQueen Dental Care, 905-794-8883.
1: Hi, I'm Realtor Sikhi. Je tusi ghar bechan ja khareedan bare soch rahe ho, ta ik var mainu phone zarur karo. Main tuhanu professional advice deke tuhada ghar list karangi sirf $1,000 vich. Ji haan, bilkul theek sunya. Only $4,000. No hidden fees, no surprises. Call me at 647-408-7066. That is 647-408-7066. Just remember, you say sell and I say sold.
2: ਕੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਿਸੇ ਵੀ ਫਾਈਨੈਂਸ਼ੀਅਲ ਸਿਚੁਏਸ਼ਨ ਲਈ ਮੋਰਟਗੇਜ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ? ਜਿਵੇਂ ਫਰਸਟ ਔਰ ਸੈਕੰਡ ਮੋਰਟਗੇਜ, ਪਰਚੇਸ ਔਰ ਰੀਫਾਈਨਾਂਸ ਜਾਂ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਫੰਡਸ, ਹਰ ਜਗ੍ਹਾ ਹੱਥ ਪੈਰ ਮਾਰ ਕੇ ਦੇਖ ਚੁੱਕੇ ਹੋ
3: ਤਾਂ ਫਿਕਰ ਕਿਉਂ ਕਰਦੇ ਹੋ? ਨੀਲਮ ਸਿਡੋਵ ਕੋਲ ਹੈ ਸੋਲੂਸ਼ਨ ਫਾਰ ਐਵਰੀ ਸਿਚੁਏਸ਼ਨ.
2: ਇਹ ਆਫਰ ਕਰਦੇ ਨੇ ਬੈਸਟ ਰੇਟਸ, ਇੰਪੇਅਰਡ ਕ੍ਰੈਡਿਟ ਜਾਂ ਬੈਂਕਰਪਸੀ ਹੈ, ਨੋ ਪ੍ਰੋਬਲਮ.
3: ਇਹਨਾਂ ਕੋਲ ਨਹੀਂ ਏ ਬੀ ਐਂਡ ਟ੍ਰਸਟਿਡ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਲੈਂਡਰਸ.
2: ਯੂ ਸ਼ੌਪ ਅਰਾਊਂਡ ਐਂਡ ਕਮ ਬੈਕ ਟੂ ਨੀਲਮ.
3: ਅੱਜ ਹੀ ਕਾਲ ਕਰੋ ਨੀਲਮ ਸਿਡੋਵ ਨੂੰ
2: 647-739-8710. License number M200-3450.
4: अगर उर्दू से मोहब्बत है तो ये शाम आपके लिए है. This September, Toronto will gather for an evening where Urdu takes center stage. Shairi, Sangeet, dance, voices from Hindustan and Canada come together for Shami Rekhta, an intimate mehfil celebrating a language that has moved hearts for generations. 19th September, Living Arts Center, Mississauga. Book your tickets on Ticketmaster.
0: This segment is brought to you by Clear Optical by Varun Karna, jo ki do location se aapko serve karte hai, Brampton and Georgetown. Exams ke liye doctors available 7 days a week, 905-457-3232. For name brand sunglasses, always remember Clear Optical by Varun Karna. The segment is also brought to you by Home Life Miracle ke superstar realtors Sarabjit Gill, CP Chatwal, for real estate buying, selling, investments. Ek bar inse zarur sampark karein. Some amazing properties that they have in the range of 700,000 and 800,000 in Brampton, in GTA. Sarabjit Gill, CP Chatwal, 647-887-2707 ya 416-627-4737. And the segment is also brought to you by Rajdhani Sweets and Restaurant, jo ki 30 plus locations se serve karte hain 100% pure vegetarian food, zabardast mithaiyon ka dusra naam Rajdhani Sweets and Restaurant. आप सुन रहे हैं आपका फेवरेट साउथ एशियन अनलिमिटेड रेडियो. एडवर्टाइजिंग के लिए कॉल करें 647-863-1940, 647-863-1940. वेलकम बैक फ्रेंड्स, एक बार फिर से आपका स्वागत है. हम पहुंच चुके हैं ब्रैम्पटन टीवी एंड अप्लायंस, 801 बोवेड ड्राइव वेस्ट एट द कॉर्नर ऑफ बोवेड एंड चिंकूसी इन ब्रैम्पटन. 905-450-2828 इज द नंबर. ब्रैम्पटन टीवी एंड अप्लायंस इज ओपन 7 डेज अ वीक, 11 AM टू 7 PM. एंड ब्रैम्पटन अप्लायंसेज डॉट कॉम पर जाकर भी आप अमेजिंग डील्स को चेकआउट कर सकते हैं. सुल्तान जी हमारे साथ हैं, एक एक करके एक एक सेक्शन की अमेजिंग डील्स आप तक पहुंचाते हैं. सुल्तान जी आपका स्वागत है.
5: थैंक यू वेरी मच जी, बहुत बहुत शुक्रिया।
6: सुल्तान जी, सबसे पहले टीवी सेक्शन की तरफ रुख करते हैं, क्योंकि टीवी सेक्शन में मैंने, मुझे पता चला है कि भाई आपने बहुत बहुत बहुत अमेजिंग डील्स साल की लगा दी है ऑलरेडी, तो मैं चाहूंगा कि पहले इसी पे रोशनी डालिए।
5: जी सनी भाई, बिल्कुल, टीवी सेक्शन में 85 इंच अगर कस्टमर सोनी सेलेक्ट करेंगे तो उन्हें सोनी ब्रेविया 3 मिलेगा अपडेटेड टेक्नोलॉजी के साथ। अगर कस्टमर सैमसंग लेना चाहेंगे तो उन्हें सैमसंग मिनी एलईडी 2026 का लेटेस्ट मॉडल मिलेगा 85 इंच। एनी ऑफ वन ब्रांड आप सेलेक्ट कर सकते हैं $2200 से ओनली $1599 में, $700 आप सेव करेंगे और $1599 सिक्स मंथ में पे करेंगे, कोई इंटरेस्ट भी नहीं है। इसी तरह बिग स्क्रीन की जब बात करते हैं तो 98 इंच सैमसंग, इसकी भी $3500 प्राइस है, लेकिन $1999 में आप बाय करेंगे, $1500 की सेविंग है और $1999 सिक्स मंथ में पे करेंगे, कोई इंटरेस्ट नहीं है
6: जी।
5: साथ ही साथ आपने बात की जी कि अमेजिंग अमेजिंग और भी डील दी जाए, तो फिर डेफिनेटली 50 इंच सिर्फ $299 में, 55 इंच सिर्फ $399 में, 65 इंच सिर्फ $599 में, इवन 75 इंच सिर्फ $699 में मिलेगा ब्रैम्पटन टीवी एंड अप्लायंसेस पे। और आपको पता ही है जी, अब बहुत जल्दी बैक टू स्कूल जाएंगे बच्चे, जिन्हें अपने बेडरूम के लिए 40 इंच टीवी चाहिए तो सिर्फ $199 में 40 इंच टीवी भी ब्रैम्पटन टीवी एंड अप्लायंसेस से लिया जा सकता है। कोई भी परचेज करें, सिक्स मंथ में पे कर सकते हैं, कोई इंटरेस्ट नहीं है, फ्री होम डिलीवरी होगी। विजिट करना है आपको 801 बोवेड ड्राइव वेस्ट, जस्ट ईस्ट ऑफ चिंकूजी ऑन बोवेड है, brampton appliances.com हमारी वेबसाइट है जी, ब्रैम्पटन टीवी ऐप, ब्रैम्पटन टीवी एपीपी, ब्रैम्पटन टीवी ऐप, ये हमारा टिकटॉक अकाउंट है, इसको फॉलो जरूर करें ताकि आपको अपडेट्स मिलती रहे। 905-450-2828, 905-450-2828 जी,
6: 905-450-2828। टीवी की आपने अमेजिंग डील्स एज प्रॉमिस्ड दे दी, लेकिन अब बचते हैं दो सेक्शंस, अप्लायंस एंड लॉन्ड्री, और हमें चाहिए कि भाई अमेजिंग डील्स इसमें भी हमें मिल जाए तो फिर सोने पे सुहागा हो जाएगा सारा।
5: जी डेफिनेटली जी, इसमें तो हमारे पास इस वक्त जो बाय मोर सेव मोर इवेंट है, इसका मतलब ये है सिंगल पीस लेंगे, किसी में $400 किसी में $500 सेव करेंगे, लेकिन अगर थ्री पीस किचन बंडल लेंगे तो पूरा $2000 सेव करेंगे। फॉर एग्जांपल आपको डिशवाशर चाहिए तो $1000 वाली डिशवाशर स्टेनलेस स्टील में $499 की मिलेगी, $500 आप सेव करेंगे। आपको सिंगल पीस स्मूथ टॉप इलेक्ट्रिक स्टोव चाहिए $1200 वाला, $799 में मिलेगा, $400 आप सेव करेंगे। लेकिन अगर आप फ्रिज स्टोव डिशवाशर थ्री पीस किचन बंडल लेते हैं $5000 वाला, $2999 में मिलेगा, $2000 थ्री पीस किचन बंडल पे सेविंग होगी और $2999 भी आप सिक्स मंथ में पे करेंगे, कोई इंटरेस्ट नहीं है, फ्री होम डिलीवरी है जी, सिक्स मंथ नो इंटरेस्ट पेमेंट प्लान है। इसी तरह लॉन्ड्री सेक्शन में भी, क्योंकि वॉशर एंड ड्रायर टू पीस हो जाते हैं, सिंगल वॉशर लेना है वो आपको $1000 वाला $599 में मिलेगा, $400 की सेविंग होगी। लेकिन अगर आप वॉशर एंड ड्रायर लेंगे तो पेयर में आपको $800 की सेविंग होगी, और ये भी फ्रंट लोड वॉशर एंड ड्रायर है, वॉशर भी स्टीम ड्रायर भी स्टीम फीचर के साथ है जी, और इसमें प्लैटिनम सीरीज प्लैटिनम कलर टॉप ऑफ द लाइन $2600 वाला फ्रंट लोड वॉशर एंड ड्रायर सिर्फ $1799 में मिलेगा, $800 आप फ्रंट लोड वॉशर एंड ड्रायर पे सेव भी करेंगे और $1799 आप सिक्स मंथ में पे करेंगे, कोई इंटरेस्ट नहीं है। $3000 तक की भी शॉपिंग करें तो $500 अ मंथ करके पे कर सकते हैं, फ्री होम डिलीवरी के साथ, बोवेड एंड चिंकूजी पे है जी, brampton appliances.com हमारी वेबसाइट है, और विजिट करना है आपको 801 बोवेड ड्राइव वेस्ट, जस्ट ईस्ट ऑफ चिंकूजी ऑन बोवेड है, ब्रैम्पटन टीवी एंड अप्लायंसेस 905-450-2828। हमारा नंबर जरूर पास ऑन करें अपने फ्रेंड्स फैमिली फ्रेंड्स रिलेटिव को। ह्यूज सेविंग्स आप कर सकते हैं इलेक्ट्रॉनिक्स 32 इंच से लेके 98 इंच टीवी तक और इलेक्ट्रॉनिक्स के साथ साथ होम अप्लायंसेस एंड लॉन्ड्री सेक्शन में। चाहे आपको फ्रंट लोड वॉशर एंड ड्रायर चाहिए, टॉप लोड वॉशर एंड ड्रायर चाहिए, स्टैकेबल वॉशर एंड ड्रायर चाहिए, कॉम्पैक्ट वॉशर एंड ड्रायर चाहिए, बिग सेविंग्स की जा सकती हैं। BramptonAppliances.com 905-450-2828 905-450-2828।
6: ब्रैम्पटन टीवी एंड अप्लायंसेस।
7: अपने मकान की नेक्स्ट मंथ क्लोजिंग है, कुछ सोचा है टीवी और अप्लायंसेस कहाँ से लेने हैं?
8: हाँ, ब्रैम्पटन टीवी एंड अप्लायंसेस जहाँ स्पेशल सेल चल रही है, टीवी फ्रिज वॉशर ड्रायर किचन रेंज और माइक्रोवेव सारा कुछ मिल जाएगा बहुत ही रीजनेबल प्राइस पे।
7: सेल तो अब चल रही है पर हमें चाहिए नेक्स्ट मंथ।
8: आज के रेट हम लॉक भी करवा सकते हैं।
7: दैट्स वंडरफुल।
8: वहाँ से सेल फोन और इंडिया भेजने के लिए 220 वोल्ट का सारा सामान भी मिल जाएगा।
7: ब्रैम्पटन में ये कहाँ पे है?
8: ऑन बोवे हेड जस्ट वेस्ट ऑफ मैक्लॉगलिन। टेलीफोन 905-450-2828 और विजिट ब्रैम्पटन अप्लायंसेस।
9: मामा, इस बार मैं भी कृष्णा बनूंगा
10: और मैं कृष्णा के लिए मक्खन लेकर आऊंगी।
11: अच्छा जी, तो ठीक है, इस बार भी हमेशा की तरह हम चलेंगे इंडिया सजावट एंड पूजा हट पर और अपने कृष्णा के लिए सुंदर सा क्राउन, पीकॉक फेदर और बांसुरी भी लेंगे और कृष्णा की दीदी के लिए भी बहुत सुंदर सी ड्रेस लेंगे।
12: इंडिया सजावट एंड पूजा हट पर आए और कृष्ण महोत्सव की ढेरों खुशियां मनाएं। खरीदिए कृष्ण जी के ब्यूटीफुल स्टैचूज, जगमगाती ढेरों ड्रेसेस और सजावट का सामान भी। इंडिया सजावट एंड पूजा हट, 31 मेलनी ड्राइव, यूनिट 5, ब्रैम्पटन, 905-458-6808।

रियल एस्टेट इज नॉट इजी बिजनेस, और जो इजी नहीं उसे इजी बनाते हैं रियल्टर राज जोशी फ्रॉम रॉयल लिपेज क्रेडिट वैली। घर खरीदना या फिर घर बेचना, फर्स्ट टाइम होम बायर्स या फिर इन्वेस्टर्स, सबकी पसंद का रखते हैं ख्याल। ये है राज जोशी, रियल्टर बेमिसाल। कॉल राज जोशी फ्रॉम रॉयल लिपेज क्रेडिट वैली रियल्टी 647-866-1086, 647-866-1086। राज जोशी, सिर्फ नाम ही काफी है।

जेनेसिस माकम में लग्जरी मिलती है एक ऐसे एक्सपीरियंस के साथ जो एक्सपेक्टेशन से भी आगे हो. ब्यूटिफुली डिजाइंड 2026 GV70 या 2026 GV80 को लीज करें सिर्फ 2.4% से फॉर अप टू 39 मंथ्स. बुक योर टेस्ट ड्राइव टुडे. Visit GenesisMarkham.ca, located at Woodbine Avenue and John Street, Markham. Genesis Markham, doing luxury your way. A proud member of Vane's Auto Group.

0: जोशी।
1: ये है राजधानी राजधानी राजधानी।
2: इस रक्षाबंधन राजधानी लेकर आए हैं भाई बहन एंड ब्लेसिंग्स गिव अवे। जीतो इलेक्ट्रिक स्कूटर, प्लेस्टेशन 5, डायसन एयर रैप, निंटेंडो स्विच, रेबान मेटा ग्लासेस और भी बहुत सारे एक्साइटिंग प्राइजेस।
3: राजधानी की किसी भी लोकेशन पर विजिट करें, परचेज करें 12 से 29 अगस्त तक। QR कोड स्कैन करके अपनी इन्फो और एंट्री सबमिट करें।
2: 26 लोकेशंस अक्रॉस कनाडा।
4: फॉर मोर इन्फॉर्मेशन विजिट राजधानी स्वीट्स.ca।

0: Wow, Mom. Dad is in a jolly good mood today. What is the reason?
1: This is the effects of famous masala chai by Navigator's Cafe.
0: I know this place. They're also famous for delicious snacks like aloo fettis, samosa, vada pav, spring rolls, mango lassi and my favorite, samosa chaat and bhel.
2: Navigator's Cafe, located at northwest corner of Queen Street East and Airport Road in Brampton. They are conveniently open 24/7.
3: हाइब्रिड के बारे में सोच रहे हैं, लेकिन क्या एक गैस लेक्सस आपके लिए ज्यादा सेंस बनाता है? डॉन वैली नॉर्थ लेक्सस पर NX350 और RX350 प्रीमियम पैकेजेस इमीडिएट डिलीवरी के लिए अवेलेबल हैं। और वेलकम बैक लॉयल्टी ऑफर के साथ आप सेव कर सकते हैं थाउजेंड्स। लीज स्टार्टिंग फ्रॉम जस्ट $618 पर मंथ फॉर 48 मंथ्स। आज ही विजिट करें DonValleyNorthLexus.com. A proud member of Wayne's Auto Group.
4: You're listening to South Asian Unlimited Radio. For advertising, call 647-863-1940. 647-863-1940.
5: भागम भाग, ये इतने लोग आखिर कहां जाते हैं सुबह सुबह? ढेर सी चमक चहक चेहरे पे लटकाए हुए, हंसी को बेचकर बेमोल वक्त के हाथों, शाम तक उन्हीं थकानों में लौटने के लिए। ये इतने लोग आखिर कहां जाते हैं सुबह सुबह?
6: Hi everybody, this is Neeraj Sridhar, also known as Bombay Vikings. Right now you're listening to South Asian Unlimited Radio.

मुस्कुराइए दिल से, छूनिए साथ साथ, गुनगुनाइए जरा प्यार से, डालिए हाथों में हाथ, बस वॉल्यूम बढ़ाइए और लवी डवी अंदाज में हमसे जुड़ जाइए। हर मूड का म्यूजिक, नए पुराने सुरीले गाने, लवी डवी फिल्मी बातें, हेल्थ एंड ब्यूटी टिप्स के अफसाने, रेडियो टोरंटो कनाडा आरटीसी, हर दिल की धड़कन, हमारी आपकी बातों का रंग, ये है आपका अपना शो आमिर और शिवानी की आवाजों के संग। आमिर और शिवानी की आवाजों के संग।

मंडे से फ्राइडे दोपहर 2 से 3 बजे तक। तुम माहौल बनाइए, मुस्कुराइए, गुनगुनाइए और लवी डवी हो जाइए। RTC रेडियो टोरंटो कनाडा 416-303-3639।

रेडियो टोरंटो कनाडा, वेरी गुड आफ्टरनून, नमस्कार, अस्सलाम वालेकुम, सत श्री अकाल, खुश आमदेद। मैं हूं शिवानी आपके साथ, और मेरे साथ हैं आमिर, और हम और आपके साथ है ये 24 डिग्री सेल्सियस का टेम्परेचर, क्लियर स्काई के साथ।

0: और आज शाम को यही मौसम आपको ग्रीट करेगा अंटिल लेट इन द इवनिंग 25 डिग्रीज के आसपास, बहुत सारी सनशाइन, बहुत सारी प्यारी सी धूप, और आपका और हमारे साथ बना रहेगा 3 बजे तक। और गोल्डन 50s, मेमोरेबल 60s, सेंसेशनल 70s, रॉकिंग 80s, म्यूजिकल 90s एंड ट्रेंडिंग मेलोडीज के साथ चलता है ये सफर, और रोज की तरह आज भी चलेगा आपके और हमारे साथ। 416-303-3639, स्वागत।
1: आप सुन रहे हैं अपना मनपसंद रेडियो टोरंटो कनाडा। हवा के दोष पर आप तक पहुंचती हुई ये आवाज आमिर तुफैल की है। कबूल कीजिए मेरा अकीदत भरा अस्सलामुअलैकुम, स्वीकार कीजिए मेरी प्यार भरी नमस्कार, और दिल की अथाह गहराइयों से निकलने वाली सत श्री अकाल। मैं रेडियो टोरंटो कनाडा के ब्रैम्पटन स्टूडियो से आपका स्वागत करता हूं। आपका खैर मकदम है, लेडीज एंड जेंटलमैन, गाइस एंड डॉल्स, दिस इज अ लवी डवी शो एंड टुगेदर वी विल किस द एयरवेव्स ऑफ टोरंटो दिस आफ्टरनून।

0: और साहब दिल बहलता है, या तो किसी की खूबसूरत मुस्कुराहट देखकर, किसी का चेहरा देख के, या फिर दिल बहलता है जेब में पैसा आ जाने के बाद। आजकल यही सबसे बड़ी समस्या है, सबसे बड़ा मसला है, सबसे बड़ी प्रॉब्लम है कि जेब में पैसा कैसे आए, और पैसा भी वो जिस पर कोई सूद ना देना पड़े। इसके लिए हमारे प्रोग्राम में शामिल होते हैं, इनकी बात बहुत ध्यान और तवज्जो से सुनिएगा। नागपाल जी, वेलकम करते हैं आपको।
1: वेरी मच जी, सभी को सलाम।
0: बहुत बहुत शुक्रिया। ये लोन आप कहते हैं 1.5 से पौने 2 लाख का हो सकता है, किसके लिए है ये लोन?
1: हाँ जी, ये उन्हीं के लिए है जो कनाडा में पीआर है, सिटीजन है, प्रोटेक्टेड पर्सन है, और मतलब अमेरिका के नागरिकों के लिए ये चीज नहीं है ना। और
0: हाँ
1: बाकी
0: बिल्कुल,
1: कहते हैं आपकी कोई एज लिमिट मैटर नहीं करती इसमें। कहीं भी ओंटारियो में रहते हैं, स्किल डेवलप करें, तालीम हासिल करें, हुकूमत आपको तालीम हासिल करने के लिए फंडिंग दे रही है कि आप तालीम हासिल करते करते अपने बच्चों का पालन पोषण कर पाए, लिविंग एक्सपेंसेस के लिए कहीं भी पैसे खर्च पाए, 50,000 से 1,70,000 डॉलर का लोन हासिल करें, कॉल करें, 0% इंटरेस्ट, बिना ब्याज के, बिना गारंटी के।
0: एक सिनेरियो फर्ज करते हैं कि किसी को अगर लोन अप्लाई करना है, मान लीजिए 1 लाख डॉलर तक का, सबसे पहले उसकी क्रेडिट रेटिंग देखी जाएगी, सोर्स ऑफ इनकम देखा जाएगा, डॉक्यूमेंटेशन मंगवाई जाएगी, फिर उसकी वाइफ की इनकम उसमें सोर्स ऑफ इनकम लगेगा, और बहुत से झंझटों के बाद भी बैंक रिफ्यूज कर देता है। तो ये जो लोन आप कह रहे हैं, इसमें क्या को बहुत लंबा चौड़ा पेपर वर्क या क्रेडिट रेटिंग चाहिए, या क्या क्राइटेरिया रहता है?
1: ये बात आपने बिल्कुल ठीक कही है, बैंक जो है वो तंगी करते हैं। यहाँ पे हुकूमत फंडिंग दे रही है, बैंक नहीं दे रहा। मैं बैंक में अभी आज ही गया था, मैंने बोला लोन चाहिए, जैसे लाइन ऑफ क्रेडिट, कहते
0: जी
1: 2 साल पुरानी कॉरपोरेशन नहीं है आपकी, मतलब कमियां निकालनी है। अब मैं मोर्गेज वाले पे जाऊंगा, पैसे दूंगा, कैश दूंगा, कमीशन दूंगा, अभी काम हो जाएगा, कोई बंदे काम कर देंगे, क्या चल रहा है ये। ठीक है,
0: जी
1: ओके। तो इसलिए आप साफ, कब आप साफ तरीके से कर रहे हैं, डॉक्यूमेंट क्या लगते हैं आपके, इसमें कोई भी नकली डॉक्यूमेंट नहीं लगता, कोई एम्प्लॉयमेंट का डॉक्यूमेंट नहीं लगता, हुकूमत फंडिंग दे रही है, बैंक नहीं दे रहा। आपके बच्चों के बर्थ सर्टिफिकेट, आपका मैरिज सर्टिफिकेट, यही नॉमिनल से डॉक्यूमेंट्स लगते हैं, ना कि एम्प्लॉयमेंट के डॉक्यूमेंट। गवर्नमेंट आपको घर खरीदने के लिए पैसे नहीं दे रही है यहाँ पे, आपको एडुकेशन के लिए दे रही है, लेकिन आप उस पैसे से घर भी खरीद सकते हैं, खर्चा भी चला सकते हैं।
0: बिल्कुल ठीक है। सवाल मैं आपसे ये पूछना चाहता हूं नागपाल, के 4 लोगों की अगर फैमिली हो, लेट से 4 लोगों की फैमिली है, इनकम
1: हाँ
0: 50-60 हजार डॉलर साल की उन्होंने शो कराई है, तो कितना लोन मिलने का चांस बन सकता है?
1: 1.5 लाख डॉलर था करके,
0: ओ वाओ
1: उनके फोन
0: वाओ
1: के अकाउंट में
0: वाओ,
1: टू टू टू टू करके आवाजें आएंगी। हर 2 साल में 4 बार चार किस्त में आता है। हस्बैंड वाइफ दोनों पढ़ रहे हैं, आसान से फुली ऑनलाइन कोर्स कर रहे हैं, और जी हमें बहुत टाइम हो गया है, बाल सफेद हो गए, 8 साल में हजारों को असिस्ट कर चुके हैं। जो हमें लोग सुन रहे हैं उसमें से 30-40% हमारे क्लाइंट्स ही हैं। वो कहते हैं सर रोज
0: बिल्कुल
1: आपको
0: ठीक।
1: सुनते हैं हम, है ना। तो कोई चलाकी नहीं है, कोई मीठी बातें नहीं है। आप रिफाइनेंसिंग इन चक्करों में ना पड़े, नकली कागज ना बनाएं, कमीशन देके औरों को अमीर ना बनाएं, अपना ख्याल रखें, कॉल करें, ऑफिस आए, असेसमेंट कराएं, प्रॉपर ऑफिस है, 1,000 स्क्वेयर फीट का और 8 घंटे का स्टाफ आपके लिए लगा हुआ है।
0: बिल्कुल सही, 8-10 लोग काम कर रहे हैं, काम चल रहा है, काम हो रहा है, लोगों को लोन मिल रहा है, और आपको बता दें कि इनकी अपनी फीस सिर्फ 200 डॉलर 200 से 400 डॉलर है, और वो भी काम हो जाने के बाद, जब आपके अकाउंट में पैसा आ जाएगा, तो उस 1.5 लाख पौने 2 लाख में से आपने 200-400 डॉलर ही इनको फीस देनी है, विच इज नॉट अ बिग डील एट ऑल। अभी फोन कीजिए, इंटरेस्ट फ्री लोन है, 2.5 साल तक कोई इंटरेस्ट पे नहीं करना है आपको, और अगर लौटाने के लिए 15 साल भी चाहिए तो 15 साल भी मिल जाएंगे आपको वापस करने के लिए। ये रहा नंबर, 4372643175, नंबर दोबारा दे रहे हैं आपको, 4372643175, 437-264-3175। नागपाल बहुत बहुत शुक्रिया।
1: थैंक यू जी।
2: जिंदगी एक सफर है सुहाना, यहाँ कल क्या हो किसने जाना।
3: कल किसने देखा है जी, लाइफ कभी भी बदल सकती है, इसलिए आज प्लानिंग कीजिए ताकि कल आप टेंशन फ्री रहें। जॉब लॉस, डिसेबिलिटी या फिर लाइफ की कोई भी अनएक्सपेक्टेड सिचुएशन, शबाना की फाइनेंशियल प्रोटेक्शन प्लान इज द सॉल्यूशन। लाइफ इंश्योरेंस, क्रिटिकल इलनेस इंश्योरेंस, सुपर वीजा इंश्योरेंस, RESP, RDSP, सब कुछ एक ही जगह। शबाना,
4: अवार्ड विनिंग इंश्योरेंस प्रोफेशनल शबाना के लंबे एक्सपीरियंस से अब होगी आपकी फैमिली की कंप्लीट केयर, क्योंकि शबाना इज ऑलवेज देयर। 6479977224 6479977224।
5: क्या आप कंटेंट क्रिएटर बनना चाहते हैं पर टूल्स समझ नहीं आते? इंडिपेंडेंट कंटेंट क्रिएटर बनना चाहते हैं तो एनरोल कीजिए रेडियो टोरंटो कनाडा के डिजिटल मीडिया प्रोडक्शन कोर्स में। सिर्फ 4 हफ्ते में बनिए डिजिटल मीडिया प्रोफेशनल। ऑडियो वीडियो एडिटिंग, ग्राफिक्स, सोशल मीडिया, कंटेंट क्रिएशन, पॉडकास्ट, रील्स, सब कुछ सिर्फ 4 वीक्स में।
6: बी अ क्रिएटर ऑफ योर ओन कॉन्टेंट। बिगिनर से प्रोफेशनल डिजिटल मीडिया एक्सपर्ट बनने के सफर में आपका हम सफर। रेडियो टोरंटो कनाडा, बनिए टोरंटो की डिजिटल आवाज RTC के डिजिटल मीडिया कोर्स के साथ। कॉल 416-303-3639,
7: 416-303-3639। सहज आयुर्वेदिक हर्बल कंसल्टेशन सेंटर खानदान की पीढ़ियों से चली आ रही परंपरा के अनुसार नब्ज देकर सेहत से जुड़ी समस्याओं को समझकर आयुर्वेदिक जड़ी बूटियों के द्वारा यहां पर इलाज किया जाता है। यहां इलाज कराने वाले लोगों को बहुत बहुत फायदा हुआ है। एस्मा, एलर्जी, स्किन प्रॉब्लम, कमर या घुटनों में दर्द, आर्थराइटिस, हेयर प्रॉब्लम, गैस प्रॉब्लम, अल्सर, लेडीज प्रॉब्लम, वेट लॉस, राइसेस और बहुत सारी हेल्थ प्रॉब्लम्स का जड़ से, जी हां, जड़ से इलाज किया जाता है। आज ही कॉल करें वैद्य रत्न PV राज जी को, सर्विंग फ्रॉम ब्रैम्पटन एंड स्कार्ब्रो। 6473278111, 6473278111।
8: Another Don Clean with the Don Ducks.
9: Oh, he's doing dishes with Dawn Platinum.
10: The only soap trusted to save wildlife affected by oil.
9: And Platinum removes up to 99% of grease and food residue, so he doesn't have to work so hard.
10: Well, flap my wings. What'll he do with all that unused elbow grease?
9: Organize the fridge, the spice rack, the junk drawer.
10: What are you quacking on about? He's gonna make enchiladas.
9: More dishes? That's giving this duck goosebumps.
8: Dawn Platinum, the better grease getter.
11: मम्मा, why don't you go to work now?
12: बेटा, तुझे क्या बताऊं कि मेरी जिंदगी ही रुक गई है। एक महीने से काम पर नहीं गई और अब इंश्योरेंस कंपनी क्लेम डिनाई कर रही है।
13: जिंदगी रुकती नहीं, बस रास्ता बदलना पड़ता है। कॉल सैयद एम रजा, आर कम्युनिटी इंजरी लॉयर, इंजरी लॉ के एक्सपर्ट लॉयर।
12: क्या वो मदद करेंगे?
13: मदद करेंगे, उन्होंने एक क्लाइंट को $2 मिलियन की एग्रीगेट सेटलमेंट दिलवाई। तुम्हारे लिए भी लड़ेंगे। इनके पास 12 साल से ज्यादा का एक्सपीरियंस है एंड नो फी अंटिल विक्ट्री।
14: कार एक्सीडेंट या स्लिप एंड फॉल, डोंट कॉल एनी थर्ड पार्टी एजेंट, डायरेक्टली कॉल सैयद एम रजा ऑफ सैयद लॉ। सैयद लॉ से सैयद एम रजा,
13: जहां सिर्फ वादे नहीं रिजल्ट मिले।
14: कॉल सैयद एम रजा 416-937-5046, दैट इज 416-937-5046।
15: क्या आप सुन रहे हैं?
16: क्या आप सुन रहे हैं?
15: इसी तरह GTA में लाखों ये आवाज सुन रहे हैं।
16: रेडियो टोरंटो कनाडा पर एडवरटाइज कराइए, अपने कारोबार का दायरा बढ़ाइए,
15: इस आवाज को अपने बिजनेस की आवाज बनाइए। रेडियो टोरंटो कनाडा पर अपने बिजनेस की प्रमोशन करवाइए।
17: बुक योर एडवर्टाइजमेंट स्लॉट्स विद रेडियो टोरंटो कनाडा। कॉल 416-303-3639, इट्स 416-303-3639।

0: प्रिय टोरंटो कनाडा, आप हैं आमिर और शिवानी के साथ। आमिर, ये जो यादें होती है ना, देखिए जब हम छोटे होते हैं, बच्चे होते हैं, बेबी होते हैं, और आखिरी सांसों तक यादें हमारे साथ रहती हैं। वो यादें कभी ऐसी होती हैं कि उस वक्त को याद करके जब हम रोए थे, हम आज हंसते हैं, है ना। और कभी जिन जिन यादों में हम हंसे थे, आज याद करके अपनी आंखें भी भिगो लेते
1: भिगो
0: हैं,
1: लेते हैं, सही
0: है ना।
1: कह
0: याद, और सबकी यादें अलग अलग होती हैं, प्रेशियस होती हैं यादें। चाहे कितनी भी आंखें भिगाने वाली
1: रहे
0: हो,
1: हैं। यस,
0: रुलाने वाली हो, लेकिन दिल के करीब रहती हैं।
1: बिल्कुल
0: भाई बहनों की यादें, बचपन की यादें, त्योहारों की यादें, किसी के साथ बिताए हुए लम्हों की यादें, कोई खोए हुए किसी शख्स की यादें। तो आपका एक्सपीरियंस कैसा है यादों के बारे में?
1: देखिए, कुछ लोग ऐसे हैं जिन्हें मजबूरन हिजरत करनी पड़ती है। वो एक मुल्क से दूसरे मुल्क, एक देश से दूसरे मुल्क चले जाते हैं, नई आस लेकर, नई तरंग लेकर, नई उम्मीद लेकर, नई ख्वाहिश लेकर, नई तमन्ना लेकर। लेकिन उसके पीछे बहुत से दर्द छुपे होते हैं। बचपन की महरूमियों के दुख, जवानी में ना मिलने वाली मोहब्बत के दुख, अधेड़ उम्र में सेटल ना होने का दुख, ये सब दुख इंसान को किसी और देश, किसी और मुल्क, किसी और दियार में ले जाते हैं। और वहां सहारा सिर्फ एक ही रहता है, यादों का सहारा। इंसान वो सारी अपने देश की यादें अपने जहन में, अपनी सोचों में समाये हुए परदेश काट देता है।
0: आपने बिल्कुल सही कहा आमिर। यहाँ एक और बात जोड़ना चाहूंगी, मुझे एक वाकया याद आ गया। जब मैं यहाँ नई नई आई थी, तो कुछ साल ही हुए थे आए हुए, तो किसी ने मुझसे कहा वही यादों की बात पे कि यहाँ जो कंपेनियन होता है
1: जी
0: वो तो आपकी तरह ही सुबह जाएगा, शाम को घर वापस आएगा,
1: बिल्कुल
0: है ना।
1: बिल्कुल,
0: उससे तो मिलना उतना ही होता है, तो कंपेनियन सबसे ज्यादा आपकी यादें होती हैं,
1: यादें होती
0: वो ही आपके साथ रहती हैं।
1: जी बिल्कुल
0: नहीं तो अपने काम की तलाश में यहाँ पे तो सुबह निकले, रात में आए,
1: जी
0: जो हार्ड मास्क का बना जो कंपेनियन है वो तो बहुत कम ही मिलता है ना।
1: वो बचपन में छोटे छोटे बच्चों से जब आप बर्फ के गोले छीन के खा जाया करती थी, शिवानी आपको याद तो होगा,
0: हाँ
1: वो जो स्कूल के बाहर ठेला लगता था, उसमें चने बेचने वाला एक शख्स पुकार पुकार के आपको कहता था कि आइए खा लीजिए, सस्ता है, ले लीजिए, आपको याद तो होगा।
0: हाँ
1: वो जो सखियों सहेलियों के साथ कॉलेज के पार्क में बैठ के कुछ गप्पियों में पीरियड मिस कर दिया करती थी, पहला दूसरा तीसरा, वो आपको सब याद तो होगा। और अचानक कोई अनजानी सी मुस्कुराहट भी आपके चेहरे पर वो सब याद करके फैल जाती है।
0: बिल्कुल सही। यादों के बारे में कहा है आमिर, मायूस चेहरे पर मुस्कान ले आती हैं, मायूस चेहरे पर मुस्कान ले आती हैं, यादें भी कमाल हैं, फिर जिंदा कर जाती हैं। बस इन्हें चाहिए फुर्सत के 2 पल, यादें भी कमाल हैं, दौड़ी चली आती हैं, कभी खुशियां तो कभी गम याद दिलाती हैं। यादें भी कमाल हैं, आंखें भिगा जाती हैं, बिखरे हुए मन को एक नई उम्मीद देकर आगे बढ़ने का रास्ता दिखा जाती हैं। ये यादें भी ना कभी कभी जीना सिखा जाती हैं।
1: वाह वाह
0: एक
1: वाह,
0: प्यार का नगमा है, मौजों की रवानी है,
1: कहानी
0: जिंदगी और कुछ भी नहीं, तेरी मेरी कहानी है।
1: है।

0: एक प्यार का नगमा है, मौजों की रवानी है, जिंदगी और कुछ भी नहीं, तेरी मेरी कहानी है। आमिर जब इस कंट्री में आते हैं तो एक घर भी लेना अपने आप में बहुत बड़ी कहानी होता है। कितने अरसे तक हम उस बात को किसी से बयां करते हैं कि हमारा पहला घर था, इस फिर घर में हमने ये काम कराया, इस घर में ये काम कराया, गार्डन हाउस बनाया, ट्रेलर हाउस बनाया, बेसमेंट बनाया, और बड़े शौक से घर का एक एक मेंबर इसमें जुड़ा हुआ होता है। और इसका जो एक्सपीरियंस जो है वो जिंदगी भर के लिए बहुत अच्छा रहे, उसके लिए हमें कुछ चीजों की जरूरत होती है, कुछ बातों का ध्यान रखना पड़ता है, जिसमें शामिल है कि हमारी घर की सेफ्टी बड़ी जरूरी है।
1: जी
0: थोड़ी सी भी चूक उस एक्सपीरियंस को, उस खुशियों में एकदम जो है वो ग्रहण लगा देती है और एक अंधेरा छा जाता है। लेकिन हमारे साथ अगर विवेक गुप्ता जी होते हैं, 2012 से ओंटेरियो में कानूनी तौर पर बेसमेंट अपार्टमेंट और मल्टी यूनिट कन्वर्जन्स में स्पेशलिस्ट हैं, और जरूरी प्रोजेक्ट तो तैयार करते ही हैं, और इसी के साथ ही कंस्ट्रक्शन और बिल्डिंग परमिट डिजाइनिंग का काम भी खुद ही करते हैं। और इनकी इंजीनियरिंग टीम है जो आपके घर को एक्सपेंड करने में आपकी मदद करती है, स्टेप बाय स्टेप आपको बताती है कि क्या चीजों की जरूरत है जिससे कि आप अपने घर की एक एक कोना एंजॉय कर सकें, जिसमें बेसमेंट का लीगल होना भी शामिल है। इन सब के बारे में बताने के लिए हमारे साथ विवेक जी ज्वाइन कर रही हैं।
1: जी हाँ,
0: विवेक जी, गुड आफ्टरनून, कैसे हैं आप?
2: गुड आफ्टरनून शिवानी जी, गुड आफ्टरनून आमिर जी, सलाम वालेकुम, नमस्कार
1: गुड आफ्टरनून।
2: ऑल लिसनर्स।
0: थैंक यू सो मच फॉर ज्वाइनिंग अस विवेक जी। जैसे अभी जिक्र हुआ कि आजकल जो है वो मल्टी यूनिट कन्वर्जन एक शानदार रियल स्टेट इन्वेस्टमेंट माना जाता है, तो सबसे पहले तो हमारे जो लिसनर्स जो इस फील्ड में नए हैं या अभी पहली बार इस टर्मिनोलॉजी को सुन रहे हैं, तो जरा उनको बताइए कि मल्टी यूनिट कन्वर्जन होता क्या है।
2: जी हाँ, देखिए ये बहुत अच्छा सिस्टम है कनाडा में कि आप एक घर के तीन घर कर सकते हैं घर बैठे बैठे। तो उसमें
0: अच्छा,
2: हाँ, आप हमारी हेल्प लीजिए, हमारी सर्विसेज लीजिए, हम आपको गाइड करेंगे कैसे आप एक यूनिट को तीन यूनिट में कन्वर्ट कर सकते हैं। उसको उसको बोलते हैं मल्टी यूनिट कन्वर्जन बोलते हैं। तो
0: अच्छा,
2: नॉर्मली लोग जो है वो बेसमेंट तो लीगल बनाते ही हैं अपने घर में, लेकिन आप तो वो डुप्लेक्स हो जाता है, लेकिन उसमें आप दो यूनिट कर रहे हैं एक घर की, तो आप जो है तीन यूनिट भी कर सकते हैं और चार यूनिट भी कर सकते हैं। तो उसको हम बोलते हैं
0: अच्छा,
2: मल्टी यूनिट सिस्टम। उसमें पूरे घर में हम आपको डिजाइन करके देते हैं कैसे फायर रेटिंग करनी है, कैसे फायर एग्जिट्स बनानी है। तो थोड़ा सा डिफरेंट है, बेसमेंट लीगल बनाने के मुकाबले ट्राइप्लेक्स और फोरप्लेक्स बनाना थोड़ा सा डिफरेंट होता है, पर
0: जी
2: नामुमकिन नहीं है। और प्रॉपर्टी की वैल्यू बढ़ाने के लिए और रेंटल इनकम बढ़ाने के लिए एक बहुत ही अच्छा रास्ता है।
0: जी बिल्कुल। तो आगे बढ़ने से पहले मैं आपको बता दूं कि विवेक जी का नंबर, जिससे कि आप पर नंबर मिस बिल्कुल ना कीजिए, क्योंकि इस ये नंबर 10 नंबर के फासले पर ये सारी सहूलत आपके लिए मौजूद है। और उनका नंबर है 6479731733, 6479731733। अब विवेक जी, हम बेसमेंट की लीगल की बात करने में आते हैं, क्योंकि आजकल जो है लोगों का बहुत ज्यादा इसमें ट्रेंड है कि बेसमेंट पे लोग रेंट पे देते हैं, और दूसरों को देख के खुद भी यूं ही रेंट पे दे देते हैं और काम चल ही रहा है, क्योंकि कुछ एक्शन नहीं हो रहा, कुछ कहीं से इंक्वायरी नहीं आ रही, तो सोचते हैं कि क्यों इस हैसल में पड़ा जाए लीगल बेसमेंट की। खर्चा भी ज्यादा आएगा, बाकी चीजें और भी इनको जहन में आती हैं। तो सबसे पहले तो ये जो फियर है ना लोगों का, कि शायद मेरे ख्याल से मिस कॉन्सेप्ट जो लोगों में आ गया है, जो गलत फहमी लोगों में है सुन सुन के इधर उधर से, तो आपके आने से जरा जरूर दूर करना चाहेंगी कि क्या चीज लोगों को डराती है, क्या चीज लोगों को होल्ड करती है, होल्ड बैक करती है ये स्टेप लेने में कि बेसमेंट लीगल कराया जाए।
2: जी हाँ, देखिए बहुत अच्छा सवाल है। डरने की बात तो कानून से होनी चाहिए। देखिए डरना कानून से चाहिए, अगर आप कानून तोड़ रहे हैं तो उसके कॉन्सिक्वेंसेस बहुत खतरनाक होते हैं और नुकसानदायक होते हैं। अगर आपने बेसमेंट लीगल नहीं बना रखा है, तो पहले हम कानून तोड़ने की बात कर लेते हैं। अगर आपने बेसमेंट लीगल नहीं बना रखा है और आपको कोई ऑर्डर मिल जाता है और फिर आपको परमिट करना पड़ता है, तो उसकी कॉस्ट आपकी ऑलमोस्ट डबल हो जाती है, जो कि बहुत ही एक्सपेंसिव है। आपको बहुत ही हैरेसमेंट के दौर से गुजरना पड़ता है। तो खुदा ना खासा अगर ऑर्डर में भी हो और कोई इवेंट हो जाता है, कोई हादसा हो जाता है, इमरजेंसी यूनिट आती है या फायर ट्रक्स आते हैं, उस केस में आपको काफी बड़ी पेनल्टीज है, जो कि $25,000 तक पेनल्टीज होती हैं और बड़े इवेंट्स में शायद जेल तक भी हो सकती है। तो सबसे पहले तो हमें कानून तोड़ने के ऊपर ही ध्यान देना चाहिए कि हमें नहीं तोड़ना चाहिए। दूसरी बात, आपकी कॉस्ट क्या आ जाती है। तो अगर बहुत ही ध्यान से और इसको सावधानी से बनाया जाए, आप हमारी सर्विसेज ले, तो आपकी कॉस्ट में बिल्कुल कोई फर्क नहीं आता। आप पहले परमिट लें और फिर आप लीगल तरीके से बेसमेंट बनाएं, आपको हम गारंटी दे रहे हैं कि आपकी कॉस्ट ऑलमोस्ट सेम ही रहती है। तो उसमें बहुत सारी बातों का ऐसे ध्यान रखते हैं कि जो ऑलमोस्ट कॉस्ट को कंपनसेट कर देती है।
0: जी
1: बिल्कुल सही, आपने बेसमेंट लीगलाइज करानी है तो आपके घर की वैल्यू बढ़ जाएगी, किराया बढ़ जाएगा, आपको सुकून मिल जाएगा, किसी तरह के फाइन का खदशा, अंदेशा या खतरा नहीं रहेगा। बेसमेंट लीगलाइज कराइए, अगर आप एक्स्ट्रा यूनिट बनवाना चाहते हैं तो एक्स्ट्रा रेंटल इनकम शुरू हो जाएगी और घर की कीमत बढ़ जाएगी। ये नंबर मिलाएंगे विवेक जी का, 6479731733 नंबर अभी मिलाइएगा, इनकी टीम यहां मौजूद आपसे बात करने के लिए। 647-973-1733, यह है विवेक गुप्ता जी। बहुत बहुत शुक्रिया विवेक जी आपके टाइम।
0: थैंक यू विवेक जी,
2: थैंक यू शुभम जी,
0: थैंक यू सर।

0: रेडियो टोरंटो कनाडा, और आप हैं आमिर और शिवानी के साथ। और एक नंबर, अगर ये खूबसूरत सा गाना सुनते हुए आप ड्राइव कर रहे हैं इस वक्त अपनी फैमिली के साथ, अपने लव्ड वंस के साथ, और कौन नहीं चाहता कि ऐसी ही खूबसूरत जिंदगी जो है सबको मिलती रहे। बड़े महफूज तरीके से हम अपने काम पर जाएं, कहीं भी ड्राइव करके जाएं, घर वापस आएं और ये खुशियां बरकरार रहें। लेकिन जो जिंदगी है ना, कभी कभी हमें आजमाइश में डाल देती है, और वो आजमाइश किसी भी सूरत में हो सकता है, जिसमें एक एक्सीडेंट का जो हादसा है वो भी शामिल है। जब एक एक्सीडेंट होता है ना, तो हमारी जो जिंदगी है वो 360 डिग्री पे घूम जाती है। हमें समझ ही नहीं आता हम क्या करें, और कभी कभार बड़ा एक ह्यूमन नेचर है कि हम हड़बड़ाहट में एक कोई गलत फैसला ले लेते हैं, कोई गलत डिसीजन ले लेते हैं, या किसी दूसरे से, किसी दोस्तों को या किसी ऐसे को कॉल करते हैं जो अपनी आप बीती हमें बताता है, और वी गो रॉन्ग। तो ऐसे में क्यों ना एक ऐसा नंबर डायल किया जाए जो आपकी खुशियों को वापस लाए, वो भी बहुत जल्दी, बहुत सारे मुआवजे के साथ, बहुत सारे कॉम्पनसेशन के साथ, जिससे आप जिंदगी फिर से शुरू कर सकें। 416-937-5046। सैयद रजा साहब हमारे साथ ज्वाइन कर रही हैं, बहुत बड़ा जाना पहचाना नाम कम्युनिटी का, हर हफ्ते हमारे साथ जुड़ते हैं और हमें जानकारी देते हैं। सैयद साहब, गुड आफ्टरनून, कैसे हैं आप?
1: जी शिवानी जी, आपका और आपके रेडियो प्रोग्राम का बहुत बहुत शुक्रिया मुझे ये अपॉर्चुनिटी देने का कि मैं आपके लिसनर से
0: प्लेजर
1: अपने एक्सपीरियंसेस शेयर करूं और हम
0: प्लेजर
1: उन्हें कुछ ऐसी टिप्स दें जो उनके काम है। तो
0: जी
1: शिवानी जी, हमारी सैयद लॉ ऑफिस एक पर्सनल इंजरी एक्सक्लूसिव लॉ फर्म है, जिसका एरिया ऑफ प्रैक्टिस है कार एक्सीडेंट, स्लिप एंड फॉल, ट्रिप एंड फॉल, डॉग बाइट है, कॉस्मेटिक इंजरी है, एरोप्लेन इंजरी है, यानी जहाँ भी कोई डेंटल इंजरी है, कि कोई मेडिकल मैल प्रैक्टिस है, यानी जहाँ भी इंजरी है और किसी थर्ड पार्टी की नेग्लिजेंस इन्वॉल्व है, आप सैयद लॉ ऑफिस को रिटेन करें एंड सैयद लॉ ऑफिस विल मेक श्योर कि आपको आपकी इंजरीज का मैक्सिमम कंपनसेशन दिलवाया जाए। लास्ट मोर देन 13 ईयर्स से सैयद लॉ ऑफिस अपनी कम्युनिटी, फ्रेंड कम्युनिटीज को सर्व कर रहा है, एंड वी वॉन्ट टू मेक श्योर दैट वंस यू नो वॉट एनी क्लाइंट साइन रिटेन सैयद लॉ ऑफिस, वी प्रोसेस देयर बेनिफिट्स, जिसमें के वीकली बेनिफिट्स होते हैं, जो इनकम रिप्लेसमेंट बेनिफिट होता है, उसके मेडिकल ट्रीटमेंट एंड रिहेबिलिटेशन बेनिफिट्स क्विकली प्रोसेस करें, और उनकी तमाम एक्सीडेंट से रिलेटेड जो ट्रीटमेंट नीड्स हैं और अदर फाइनेंशियल नीड्स हैं, वो उनकी नीड्स पूरी हों। वी हैव क्वालिफाइड स्टाफ टू वर्क विद अस, वी हैव लाइसेंस पैरालीगल, वी हैव अदर क्वालिफाइड स्टाफ टू वर्क ऑन योर फाइल, एंड वी वॉन्ट टू मेक श्योर दैट वी प्रोसेस योर क्लेम एक्सपेडिशियसली। पर्टिकुलरली जो हमारे राइड शेयरिंग सर्विसेज के ड्राइवर हैं, ये काफ़ी ज़्यादा एक्सीडेंट में इन्वॉल्व होते हैं, और इनके पास क्योंकि कोई डिसेबिलिटी इंश्योरेंस नहीं होती है, तो द ओनली सोर्स ऑफ इनकम आफ्टर द एक्सीडेंट दे हैव इज द इनकम रिप्लेसमेंट बेनिफिट, विच इज एज पर पॉलिसी $400 पर वीक। तो सेल्फ एम्प्लॉयड के लिए बेसिकली हमें जो है वो एक फाइनेंशियल अकाउंटेंट रिटेन करना पड़ता है, जो कि आपकी सेल्फ रिपोर्टेड इनकम पर जो है आपका इनकम लॉस कैलकुलेट करे, एंड दैट रिपोर्ट गोज टू इंश्योरेंस कंपनी। सो वी हैव मेड अरेंजमेंट्स एंड अवार्ड, वंस यू रिटेन अस विद इन 3 to 4 weeks वी गेट योर रिपोर्ट डन, एंड वी वॉन्ट टू मेक श्योर दैट यू आर पेड आफ्टर द एक्सीडेंट इन अबाउट 1 month's टाइम, सो एज प्लीज यू नो वॉट टू यू सम हाउ कम्पनसेटेड यू नो फॉर योर इनकम लॉस। That's the most important thing. Second
0: जी.
1: thing is that जो मैं आज अपने प्रोग्राम आपके प्रोग्राम में बात करना चाहूंगा, जो कमर्शियल ड्राइवर्स जो हैं, जैसे जो लॉन्ग हॉल के ट्रक ड्राइवर्स होते हैं, ये एक्सीडेंट में इन्वॉल्व होते हैं, तो कभी इनका एक्सीडेंट जो होते हैं आउट ऑफ प्रोविंस होते हैं और आउट ऑफ कंट्री भी होते हैं, यानी US वगैरह में होते हैं इनके एक्सीडेंट। तो इन एनी केस वेदर द एक्सीडेंट इन US और इन एनी अदर प्रोविंस, दे आर एलिजिबल फॉर अ क्लेम। अब अच्छा, इसमें इशू जो आता है वो ये एक आता है, क्योंकि ये ड्यूरिंग द कोर्स ऑफ एम्प्लॉयमेंट होते हैं, यानी कि उस वक्त अपना लोड लेकर जा रहे होते हैं या लोड लेकर आ रहे होते हैं, तो एक टेक्निकल सिचुएशन ये आती है कि आया ये एक्सीडेंट जो है ड्यूरिंग द कोर्स ऑफ एम्प्लॉयमेंट हुआ है या नहीं हुआ हैगा, और इसको जो है एक्चुअली जो ट्रक कंपनीज होती है, दे ट्राई टू मिनिमाइज द एक्सीडेंट एंड दे थ्रेटन दीज ड्राइवर दैट डोंट गो ऑन क्लेम, अदरवाइज यू विल लूज योर जॉब एटसेट्रा एटसेट्रा। तो आपके लिसनर को मैं बताना चाहता हूँ कि नेवर बी थ्रेटन्ड बाय दैट, आपका एक्सीडेंट हुआ आएगा, यू आर एलिजिबल फॉर अ क्लेम अंडर योर ट्रक्स मोटर व्हीकल इंश्योरेंस पॉलिसी। नो मैटर वेदर
0: जी
1: यू आर इन द कोर्स ऑफ एम्प्लॉयमेंट और नॉट, इट डजंट मेक एनी डिफरेंस. बहुत से लोग कहते हैं कि आपका क्लेम से WSIB पर जा सकता है. नो, दिस इज नॉट ट्रू. WSIB पे भी आपका क्लेम जा सकता है, यानी वर्कर्स हैव टू बी रजिस्टर्ड थ्रू WSIB. लेकिन बहुत सारी ट्रकिंग कंपनीज जो है वो WSIB से रजिस्टर नहीं करवाती हैंगी, इसलिए आपका क्लेम जो है, इवन अगर आपका WSIB पे भी जाएगा तो भी उसको ट्रांसफर किया जा सकता है थ्रू योर ट्रांसपोर्टर व्हीकल इंश्योरेंस पॉलिसी. और अगर आपके पास WSIB की कवरेज नहीं है तो डेफिनेटली वो जो है आपका क्लेम जाएगा टू योर मोटर व्हीकल एक्सीडेंट क्लेम पॉलिसी. तो आपने जो है इस सिलसिले में जो भी आपके लिसनर्स हो, आपने मुझे कॉल करके डिस्कस जरूर करना हैगा. रिमेम्बर
0: जी,
1: वी डोंट चार्ज यू एनी फी. देर इज नो कंसल्टेशन फी, देर इज नो फी टू रिटेनर्स. द ओनली फी यू आर गोइंग टू पे इज वंस आई गेट यू द फाइनल फुल एंड फाइनल सेटलमेंट. इवन ऑन द इंटरिम बेनिफिट्स विच यू गेट फॉर ऑल योर मेडिकल एंड ट्रीटमेंट एंड रिहेबिलिटेशन नीड्स, we don't charge you anything. So you are in a win-win situation. On the one side, a lawyer, a law firm, a specific law firm, which is well known by the insurance industry, is representing you. And on the other hand, you are getting your treatment and financial need met to some extent. At least, you know what, to try to help you recover and go back to your work to try to minimize your financial losses. तो कोई भी छोटा बड़ा कार एक्सीडेंट, स्लिप एंड फॉल, ट्रिप एंड फॉल, डॉग बाइट, आपने सैयद लॉ को कॉल करना हैगा. Community, the famous law firm, last more than 13 years से business में है. की number शिवानी जी आप बताएंगी ताकि आपके listeners जो है वो हमारा number note कर लें और हमें call करें. Thank you.
0: जी जी जरूर. और अगर आपको बेस्ट क्लेम्स चाहिए, जल्दी से जल्दी कॉम्पेंसेशन चाहिए, जल्दी से जल्दी अपनी जिंदगी वापस ट्रैक पे चाहिए, तो आपको बेस्ट नंबर पे ही कॉल करना है. 10 नंबर के फासले पर आपकी खुशियां वापस आती हैं. 416-937-5046. सैयद साहब का यही नंबर है, ये हॉटलाइन नंबर है, इस पे उनके से बात हो सकती है. 416-937-5046. सैयद साहब, बहुत बहुत शुक्रिया हमें ज्वाइन करने के लिए. प्लेजर हैविंग यू विद अस. थैंक यू जी. और दोस्तों, आपको बताना चाहेंगे बहुत ज़रूरी एक इन्फॉर्मेशन जो आपके काम आ सकती है. और अगर आप परेशान हैं ज़िंदगी में, परेशानियों ने आपको घेर लिया है, अगर आप या आपके लव्ड वंस किसी परेशानी में हैं और बहुत दुखी हैं, परेशान हैं, तो बिल्कुल चिंता ना कीजिए. संपर्क कीजिए श्री दुर्गा माता ज्योतिष पंडित रामकृष्ण, जो आपका हाथ देखकर आपकी कुंडली बताते हैं. वेरी एक्यूरेट हैंड रीडिंग के साथ नेगेटिव एनर्जी, लव, मैरिज, हेल्थ, फाइनेंशियल इश्यूज, वर्क रिलेटेड इश्यूज या कोई भी प्रॉब्लम है. और इसी के साथ अगर आप बच्चों को लेके परेशान हैं, इफ़ यू आर नॉट एबल टू हैव लिटिल वंस प्ले अराउंड इन योर होम, देन डोंट फील सैड एनी मोर. पंडित रामकृष्ण आपकी हेल्प कर सकते हैं. चाइल्डलेस कपल्स की बहुत सारे सालों का एक्सपीरियंस है उन्हें इस फील्ड में, और ये सेंसिटिव इश्यूज को सक्सेसफुली हैंडल करते हैं. कोई भी दिक्कत है और आपके घर में, परेशानी में, हेल्थ में, तो नंबर कॉल कीजिए एक ही नंबर पर, 437-488-4129, 437-488-4129.
2: ख्वाब पूरा हो सकता है, आपका बच्चा भी अब डॉक्टर बन सकता है.
3: अपने बेटे या बेटी को मोस्ट अफोर्डेबल Recognized All Saints University, Dominica में enroll करवाएं.
2: उसे डॉक्टर बनाएं. 20 years of proven track record. No MCAT required.
3: 90% pass rate.
2: Call now 416-743-9222.
3: 416-743-9222.
2: और विजिट allsaintsuniversity.org. All Saints University से डॉक्टर बनने के बाद आपका बच्चा अमेरिका, कनाडा, यूरोप और किसी भी मुल्क में एज अ डॉक्टर काम कर सकेगा.
4: Another Don Clean with the Don Ducks.
5: Oh, he's doing dishes with Dawn Platinum.
6: The only soap trusted to save wildlife affected by oil.
5: And Platinum removes up to 99% of grease and food residue, so he doesn't have to work so hard.
6: Well, flap my wings. What'll he do with all that unused elbow grease?
5: Organize the fridge, the spice rack, the junk drawer.
6: What are you quacking on about? He's gonna make enchiladas.
5: More dishes? That's giving this duck goosebumps.
4: Dawn Platinum, the better grease getter.

0: For amazing designer frames and designer sunglasses, visit KandaOptical.com or call 416-922-5263. Kanda Optical, the name you can trust.
1: क्या आप YouTube पॉडकास्टिंग करना चाहते हैं?
2: Insta पे स्टोरी लगाना चाहते हैं?
1: TikTok पे रील वायरल करना चाहते हैं?
2: या Facebook पे अपलोड करना चाहते हैं इफेक्टिव पोस्ट? तो रेडियो टोरंटो कनाडा के डिजिटल मीडिया कंटेंट प्रोडक्शन एंड मार्केटिंग कोर्स में एनरोल कीजिए।
1: इंडिपेंडेंट कंटेंट क्रिएटर बनिए और प्रमोट योर ओन बिजनेस। डिजिटल मीडिया एक्सपर्ट बनने के सफर में आपका हम सफर, रेडियो टोरंटो कनाडा।
2: बनिए टोरंटो की डिजिटल आवाज RTC के डिजिटल मीडिया कोर्स के साथ। कॉल 416-303-3639 416-303-3639।
3: क्या आप सुन रहे हैं?
4: क्या आप सुन रहे हैं?
3: इसी तरह GTA में लाखों ये आवाज सुन रहे हैं।
4: रेडियो टोरंटो कनाडा पर एडवरटाइज कराइए, अपने कारोबार का दायरा बढ़ाइए,
3: इस आवाज को अपने बिजनेस की आवाज बनाइए। रेडियो टोरंटो कनाडा पर अपने बिजनेस की प्रमोशन करवाइए।
5: बुक योर एडवर्टाइजमेंट स्लॉट्स विद रेडियो टोरंटो कनाडा। कॉल 416-303-3639। इट्स 416-303-3639।
6: और साहब बात हो जाए जरा हेल्थ के हवाले से, तो आपको बता दें आजकल जो मुद्दा है सबसे बड़ा कि यहाँ फर्टिलिटी रेट कनाडा का बहुत तेजी से गिर रहा है। पीपल वांट टू हैव किड्स बट दे डू नॉट एंड दे कैन नॉट हैव किड्स। मेडिकली बहुत सी चीजें कॉम्प्लिकेटेड होती हैं। आज हमने एक ऐसी शख्सियत से बात करनी है जो इस मसले के बारे में हमें बताएंगे, समझाएंगे, एजुकेट करेंगे। नौवीं पीढ़ी है आयुर्वेदा में और कमाल के प्रैक्टिशनर हैं, और डिफरेंट कम्युनिटीज के लोग, पाकिस्तानी, बांग्लादेशी, नेपाली, इंडियंस और बहुत सी कम्युनिटीज के लोग इनके पास आते हैं, और बहुत से जोड़े ऐसे हैं जो हमें फोन करते हैं कि जी बहुत शुक्रिया आपने इनसे बात की और हमें फायदा हासिल हुआ। ज्वाइन किए हैं आयुर्वेदा एंड हर्ब्स गुरु जी, वेलकम करते हैं सर आपको।
7: नमस्ते। नमस्ते भैया। नमस्ते बहन जी। नमस्ते जी।
6: नमस्कार, बहुत बहुत शुक्रिया हमें ज्वाइन करने के लिए।
8: नमस्ते गुरु जी।
7: थैंक यू बहन जी। नमस्ते। बहुत
6: इंपॉर्टेंट मुद्दा है, लोगों को मैंने रोते हुए सुना है, परेशान होते हुए सुना है, तीन तीन बार IVF करवाते हैं लेकिन बच्चे की ख्वाहिश पूरी नहीं होती, तो आयुर्वेदा इस सिलसिले में क्या कहता है गुरु जी?
7: यस यस भैया, बहुत अच्छा क्वेश्चन है ये। बहुत लोगों को मसला हो जाता है, अभी कनाडा में फर्टिलिटी का रेट बहुत कम हो गया था। या फर्टिलिटी को भी बहुत बहुत कम हो गया था। उसको कारण क्या है भैया? हमारा जीवन विधान में स्ट्रेस ज्यादा होता है। स्ट्रेस ज्यादा होता है, काम में स्ट्रेस है, घर में स्ट्रेस है, फैमिली में स्ट्रेस है। ये स्ट्रेस कारण से फर्टिलिटी करने को इम्यूनिटी पावर कम हो जाता है, औरतों को अंदर PCOD हो जाता है, इरेगुलर पीरियड हो जाता है, एग्स अच्छे से नहीं होता है, और मंथली करेक्ट टाइम में नहीं होता है, और मेंसेस में दर्द हो जाता है पेट को एंड बैक को। वो नॉर्मल कहता है बट ये नॉर्मल नहीं है। वैसा वैतने के कारण से यूट्रस में लेयर बन के उसको अच्छे से एग नहीं होता है, इसी वजह से लेडीज में प्रॉब्लम होता है।
6: बिल्कुल ठीक।
7: वैसा भैया एक मिनट, वैसा क्या है? अभी सारा लोग बताता है लेडीज का ऊपर बोलता है, नहीं जेंट्स के में भी, जेंट्स में भी प्रॉब्लम होता है। पहले वो भी औरत को ऊपर, औरत को बच्चा नहीं तो औरत को प्रॉब्लम बताता है, वो नहीं है। जेंट्स में भी प्रॉब्लम, वो मैन में भी प्रॉब्लम होता है। उसको सेमन में काउंटिंग कम हो जाता है, सेमन बाहर आने का पास्ट कम हो जाता है, मोटिवेशन कम होता है, उसको ताकत भी कम होता है, इस वजह से भी बच्चा नहीं होता है।
6: बिल्कुल ठीक। अच्छा, दूसरी बात मैं ये जानना चाहता हूँ, बहुत इंपॉर्टेंट है कि लोग अपनी सेहत को इतना भूल जाते हैं, सुबह उठते हैं थके हुए होते हैं, टायर्ड हैं, हालांकि 8 घंटे की नींद ली है इसके बावजूद भी थके हुए होते हैं, लैक ऑफ एनर्जी है, लैक ऑफ पैशन है, लैक ऑफ एक्साइटमेंट है, तो उसका क्या हल है आयुर्वेदा में?
7: यस यस भैया, वो एनर्जी लॉस ऑफ एनर्जी होता है बॉडी को, बॉडी को नर्व्स को अंदर एंड मसल्स को अंदर ताकत कम हो जाता है, उसको कारण के हमारा खाना पीना में वो विटामिन अच्छे से नहीं खाता है, खाना में वो जंक फूड खाता है, ऑयल फूड खाता है, फ्राइड राइस खाता है, फ्राइड फूड खाता है, इस वजह से क्या होता है बॉडी को हजम कम करके हमारा मसल्स को हमारा नर्व सिस्टम को ताकत कितना होता है उतना ताकत नहीं देता है, इसलिए बॉडी वीकनेस हो जाता है, ये काम करके दूसरा काम नहीं कर पाता है। उस लोगों को क्या होता है भाई, बोन्स को अंदर होता है, बोन मेरो भी कम हो कि उसको बोन में भी दर्द होता है, आर्थराइटिस हो जाता है, जॉइंट पेन हो जाता है और नर्व्स में पेन हो जाता है वैसा लोगों को, क्योंकि वो मेन ताकत चाहिए, कोई भी काम करो ताकत चाहिए, उठने के ये काम करो ताकत चाहिए, वो उधर जाने के ताकत चाहिए, वो ताकत बहुत लोगों को कम लोगों होता है। वो वैसा बहुत लोग मेरे पास हमारा शो सुन के आया, बहुत लोग भी ठीक हो गया था।
6: आखिरी सवाल ये पूछना चाहता हूँ गुरुजी, हाई ब्लड प्रेशर, हाइपरटेंशन, बात बात पे ब्लड प्रेशर बढ़ जाता है और ये इतना साइलेंट किलर है, कभी जिगर पे असर करता है, कभी गुर्दों पे असर करता है, कभी दिल पे भी असर कर सकता है, आयुर्वेदा क्या कहता है इस बारे में?
7: यस भैया, वो आप बताए तो सही है, उसमें दो होता है, लोअर बैक पेन और लो प्रेशर, हाई प्रेशर, दोनों में साइलेंट किलर है ये प्रेशर। प्रेशर के लिए बहुत बहुत बुरा साइड प्रॉब्लम होता है, डिमिनिशिया होता है, डिमिनिशिया आता है एंड जॉइंट में डिमिनिशिया आता है, भूल जाता है, स्ट्रेस आता है, हार्ट में प्रॉब्लम हो जाता है, नर्व्स में प्रॉब्लम होता है, ये प्रेशर बहुत बहुत बहुत बुरा हालत है, इसके लिए जरूर कंट्रोल होना है, कंट्रोल नहीं तो कब क्या होता है नहीं मालूम पड़ता है, उसके लिए मेरे पास बहुत बहुत 48 हर्बल्स बना के मैं रख देता एक दवा, उसमें बहुत लोगों को असर हो गया।
6: बिल्कुल सही, यहां नंबर है गुरुजी का, अभी मिलाइए, किसी भी तरह का हेल्थ इशू है, लो और हाई ब्लड प्रेशर, डायबिटीज, लोअर बैक पेन, नर्व पेन, रात को नींद नहीं आती, परेशान रहते हैं, या बच्चों के हवाले से दिक्कत है कि बच्चे चाहते हैं लेकिन नहीं पैदा हो रहे हैं इनफर्टिलिटी की वजह से, तो ये नंबर मिलाएंगे आप 4374383399, नंबर दोबारा बता रहे हैं आपको 4374383399। गुरु जी बहुत बहुत शुक्रिया आपके टाइम के लिए, थैंक यू,
3: थैंक यू जी।
8: लवी डवी सॉन्ग ऑफ द डे इज ब्रॉट टू यू बाय रूहानी कॉलेज। आंखों में बसा है डॉक्टर बनने का सपना या सोच रहे हैं मसाज थेरेपिस्ट का शानदार करियर हो अपना, तो बस आपको है रूहानी कॉलेज ही चुनना। बेहतरीन पढ़ाई से शानदार कमाई वाले करियर के सफर में आपका हम सफर, रूहानी कॉलेज। रूहानी कॉलेज, यहाँ सपने सच में सच होते हैं। 905-731-2555, 905-731-2555, रूहानी कॉलेज।

0: रेडियो टोरंटो कनाडा और खूबसूरत से गानों के साथ चल रहा है ये सफर आमिर और मेरे यानी शिवानी के साथ। और जब हमारे साथ हमारे मेहमान जुड़ते हैं और जब हम म्यूजिक सुनते हैं, ड्राइव पे जाते हैं या कुछ भी काम कर रहे होते हैं और हमें अंदर से खुशी होती है कि जो हम करना चाहते हैं वो हम अब कर पा रहे हैं, जिसमें शामिल है कोई ऐसा एक करियर चूज करना, कोई ऐसा प्रोफेशन चूज करना जो हम हमेशा से सोचते थे कि ये प्रोफेशन काश हमें मिल जाए, हम इस प्रोफेशन में दाखिल हो जाएं कैसे भी करके, जिससे हमारे सपने तो पूरे हो ही साथ में एक रिवॉर्डिंग करियर भी हमारा इंतजार करे। क्योंकि आजकल जो बच्चे हैं वो बिल्कुल अच्छे से होमवर्क करके सब देखभाल के कोई करियर चूज करते हैं और उसके बाद उनको जब निराशा हाथ लगती है तो परेशान हो जाते हैं और उससे भी ज्यादा परेशान उनके पेरेंट्स होते हैं। और जब हम रूहानी कॉलेज की बात करते हैं तो रूहानी कॉलेज के ओनर ओम जी सबसे ज्यादा परेशान होते हैं, क्योंकि हर बच्चा वो अपने ही फैमिली का समझ के उन्हें पढ़ाते हैं, उनकी खुशियों में शामिल होते हैं। तो सबसे पहले तो वेलकम करेंगे, हमारे साथ जुड़ रही हैं रूहानी कॉलेज से ओम जी, और नंबर मैं आपको पहले से बता दूं, जब ओम जी बात करते हैं तो ये नंबर आप जरूर डायल करना चाहते हैं 9057312555, 9057312555। ओम जी गुड आफ्टरनून, कैसे हैं आप?
1: गुड आफ्टरनून शिवानी जी, वेरी गुड
0: जी। और इट्स प्लेजर हैविंग यू विद अस ओम जी। और आपसे सबसे पहले तो जानना चाहेंगे कि जो मेडिकल प्रोफेशन है, जो लोग डॉक्टर बनना चाहते हैं और ये परेशान है कि उनका एडमिशन नहीं हो रहा, बहुत कोशिश करते हैं, हेल्थ इश्यूज भी हो जाते हैं डिप्रेशन की वजह से, तो कैसे आप उनके सपने को पूरा करते हैं और वो भी जल्दी से जल्दी?
1: देखिए शिवानी जी, इसमें हमारा प्रोग्राम चालू करने का मकसद यही था, जो ऐसे बच्चे परेशान हो रहे हैं और काफी सारे हैं, लाइक लॉट ऑफ स्टूडेंट्स, क्योंकि यहाँ पे एक लिमिटेड सीट है, जैसे आई थिंक 1200 to 1500 तक सीट है, और बच्चे जो मेडिकल में जाना चाहते हैं पर ईयर की बात करते
0: जी, जी।
1: तो अब इस कंडीशन में जब सीट ही लिमिटेड है ही नहीं तो फिर कहाँ से एडमिशन होगा? बच्चों की कोई गलती नहीं है, बट वहाँ पे है कि इतनी ज्यादा कंपटीशन है कि फिर वो उस मुकाम तक नहीं पहुंच पाते। वो भी कब पता चलता है, जब उनके बैचलर डिग्री कंप्लीट होने में 4 साल लग जाते हैं, उसके अलावा फिर आप देखो तो उसके बाद में 1-2 साल एमकेट में लगा देते हैं, तो 6 साल के बाद पता चलता है कि एडमिशन नहीं हुआ
0: जी।
1: तो एक बहुत ही, जैसा आपने बोला कि हेल्थ इश्यूज और डिसअपॉइंटिंग है, रियली इट इज। अब इसमें हम क्या करते हैं कि हम बोलते हैं कि भाई हमारे पास अगर आप आते हैं तो यू हैव सर्टेन, एक आपको पहले पता है कि यू विल बी बिकमिंग डॉक्टर, वो भी 4 साल पहले। वो कैसे है कि आपको बीएससी करने की जरूरत नहीं है, आप प्लस टू के बाद में सीधा हमारे पास आ सकते हैं और उसमें एमकेट के एग्जाम भी नहीं है, एंड यू विल गोइंग टू मेडिकल कॉलेज इन द सेम बैच, लाइक जो 4 साल बाद जाएंगे। तो 4 साल आपकी बचत हो जाती है, ग्रांटेड एडमिशन हो जाती है, तो वरी फ्री पेरेंट्स भी हो जाते हैं और बच्चे भी हो जाते हैं। तो एक आई थिंक बहुत ही अच्छा प्रोग्राम है जिसमें हर पेरेंट्स को और स्टूडेंट्स को कंसिडर करना चाहिए, और इसकी ज़्यादा जानकारी ऑफकोर्स हमारे पास आएंगे पूरी हम बताएंगे, क्योंकि जैसा आपने बताया कि एक एक बच्चे को हम अपना कितना ध्यान रखते हैं, तो हमने एक एक चीज को बहुत डिटेल्स में, बहुत अपना खुद एक्सपीरियंस करके फिर हम लोग बताते हैं। जी जी
0: बिल्कुल सही, बिल्कुल सही। 9057312555 चलते चलते आपसे रजिस्टर्ड मसाज थेरेपिस्ट, इसकी जो स्टार्टिंग सैलरी है वो भी हैरान कर देने वाली है और आप खुद भी ये सैलरी देते हैं, इसलिए आपको पता है कि कितना इन डिमांड है हमारे लिसनर्स, आप इस करियर में जाना चाहते हैं सिर्फ 1 साल में, तो जरा उसकी क्विक अपडेट दे दीजिए, कैसे आपको कॉन्टैक्ट करें और कैसे इसमें एडमिशन ले सकते हैं?
1: देखिए आपके निकला पहले कॉन्ट्रैक्ट, तो कहीं में जैसे ही कोर्स होता है मतलब कॉन्ट्रैक्ट करते हैं, भाई हमारे पास 1-2 साल काम करो, इतनी ज्यादा डिमांड है और सैलरी तो है ही, मतलब कि 10,000+ कम से कम लोग बनाते हैं, डिपेंड करता है कितने टाइम करते हैं, और हम ग्रांटेड बोलते हैं, और जो हमारे जो क्लिनिक ऑनर्स जो जिनकी हमारे पास लाइनअप पड़ी हुई है कि बच्चे यहाँ पास नहीं हुए और पहले से जॉब रेडी है, ठीक है, ऐसा करियर है जहाँ पे कि आपका जॉब पहले रेडी है और आपको पता है कि जैसे ही आप पास होते हैं सो आपको एक बहुत अच्छी सैलरी पे आप जाने वाले हैं, और जस्ट 1 ईयर जी जी, और प्रोफेशन में हो, पहले लाइक आईटी में हो, बैंक में हो, आर्ट्स में हो, साइंस में, कहीं भी हो, तो एक पूरी पूरी लाइफ चेंजिंग प्रोग्राम
0: जी,
1: है, उसके लिए जरूर कॉन्टेक्ट करें हमें और पूरी जानकारी ले। हाँ जी
0: क्या बात है, तो बस एक ही नंबर 9057312555। ओम जी बहुत बहुत शुक्रिया हमें ज्वाइन करने के लिए, प्लेजर हैविंग यू विद अस।
1: थैंक यू।
2: और साहब आजकल की मुश्किल है पैसे का होना, पैसा हाथ में होगा 1000 आइडियाज भी आ जाएंगे दिमाग में कि क्या करना है, घर की मोर्टगेज देनी है, इंश्योरेंस देनी है, ग्रोसरी का खर्चा करना है, बैक होम ख्याल रखना है, 1000 खर्चे हैं, पैसे की जरूरत है साहब। और ऐसे में इंटरेस्ट फ्री 1.5 लाख से 2.25 लाख का इंतजाम करके देते हैं। नागपाल जी वेलकम करते हैं आपको, नागपाल जी आपको वेलकम करते हैं।
3: थैंक यू वेरी मच, सभी को सलाम।
2: जी जी बहुत बहुत शुक्रिया। मैं आपसे सवाल ये पूछना चाहता हूं नागपाल, के घरों में लेडीज बैठी हैं कुछ करने के लिए नहीं है, क्या वो अप्लाई कर सकती हैं? क्या रिटायर्ड लोग 60+ के हैं वो अप्लाई कर सकते हैं? कौन अप्लाई कर सकता है इसके लिए?
3: एज इज नॉट अ बैरियर, आप चाहे कितने भी जवान हैं या बुजुर्ग हैं, हाउस वाइफ हैं, आप अलाउड है। गवर्नमेंट का प्रोग्राम है, बैंक का नहीं है या मेरा नहीं है, राइट? गवर्नमेंट की कोई पॉलिसी एज पे डिस्क्रिमिनेट नहीं करती, तो स्किल डेवलप करें, तालीम हासिल करें और हुकूमत से 50,000 से 1,70,000 डॉलर हासिल अपने खाते में डायरेक्ट करें।
2: बिल्कुल ठीक। दूसरी बात मैं आपसे जानना चाहता हूं कि बैंक तो बड़ा पेपर वर्क मांगता है, कभी रिफ्यूज भी कर देता है, क्रेडिट स्कोर मांगता है, सोर्स ऑफ इनकम मांगता है, तो इस लोन में किस तरह के पेपर वर्क की जरूरत होती है?
3: 3 से 4 डॉक्यूमेंट लगते हैं जी, आपका NOA 2025 का, हस्बैंड वाइफ का, और कहते हैं आपके बच्चों के बर्थ सर्टिफिकेट, आपका मैरिज सर्टिफिकेट। बच्चे ज्यादा, फंडिंग ज्यादा मेरे खाते में नहीं, आपके खाते में पैसे सीधा आते हैं वाले गवर्नमेंट से। आप स्किल डेवलप करते हैं, आसान से फुली ऑनलाइन कोर्सेज करते हैं जिनमें 2 से 3 घंटे मंडे टू फ्राइडे क्लास होती है, 2 साल के बाद आपको सर्टिफिकेट मिल जाता है।

0: 2.5 साल बाद पहली किस्त जाएगी, 15 साल में आप पे करते हैं, ब्याज क्या है 2.5 साल बाद 2.5% साल का ब्याज साल का है, मतलब महीने का $200 ब्याज है $1,00,000 पे। बताइए कहाँ मिलेगा बिना गारंटी के, बिना क्रेडिट चेक के, अगर स्कोर आपका 1 भी है या 0 भी है क्रेडिट वाला तो भी अवेलेबल
1: है। बिल्कुल ठीक, बिल्कुल सही, बिल्कुल ठीक है। यहां नंबर है, अगर आपको 1.5 से 2 लाख डॉलर चाहिए, कोई क्रेडिट स्कोर नहीं है, कोई सोर्स ऑफ इनकम नहीं है, तो यह मिल सकता है और इस पर कोई ब्याज, कोई इंटरेस्ट, कोई सूद नहीं देना, जितने लिए उतने ही वापस करने हैं। और अगर टाइम नहीं है तो फिर आप 15 साल में भी वापस कर सकते हैं। ये रहा नंबर, और जो आपको दिलाएगा उसकी सिर्फ $200 से $400 नॉमिनल सी फीस है, और वो भी पैसे आने के बाद देनी है। यहां है नंबर 4372643175, नंबर अगेन 4372643175, यानी 437-264-3175। बहुत शुक्रिया नागबा।
0: थैंक यू।
1: और यहां हमारे आज के प्रोग्राम का वक्त खत्म हुआ चाहता है। अपना ध्यान रखिए और मोहब्बत को जहां तक मुमकिन हो सके बांटते रहिए।

0: शान एक्सप्रेस मस्ती की रेलगाड़ी,
1: एक ड्राइव इन मस्ती शो जिसमें है आज के जमाने के टॉप सॉन्ग्स, ताज़ा तरीन खबरें और चटपटी गॉसिप्स जो आपकी ड्राइव को बनाएंगे पावर ड्राइव। शान एक्सप्रेस मस्ती की रेलगाड़ी, ड्राइव टाइम शो विद शालिनी।
0: शालिनी ब्रॉट टू यू बाय शान मीडिया।
2: नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल दोस्तों, आप सभी का शालिनी स्वागत करती है शान एक्सप्रेस मस्ती की रेलगाड़ी पर ऑन CMR FM 101.3। दोस्तों, आज का दिन एक नई दस्तक है, ख्वाबों के दरवाजों पर, उम्मीद के आसमान पर और दिल के शांत कोने पर। कभी कभी सिर्फ एक अच्छी वाइब ही काफी होती है पूरे दिन को रोशन कर देने के लिए। तो आइए दोस्तों, दिल के पन्नों पर लिखें एक लफ्ज सुकून का, एक लफ्ज प्यार का और एक लफ्ज मुस्कराहट का। शान एक्सप्रेस के इस म्यूजिकल सफर में आपका स्वागत है। गुड आफ्टरनून, आप एंजॉय कर रहे हैं अपनी पावर ड्राइव विद शान एक्सप्रेस मस्ती की रेलगाड़ी। अपने बिजनेस को दीजिए एक्सप्रेस स्पीड। फॉर एडवर्टाइजिंग कॉल 416-569-7812, 416-569-7812। शान एक्सप्रेस न्यूज बुलेटिन ब्रॉट टू यू बाय शान मीडिया।

और नजर डालते हैं दोस्तों जीटीए ओंटारियो और कनाडा की आज की सबसे बड़ी खबरों की तरफ। सबसे बड़ी खबर, सबसे पहले अब लेक ओंटारियो का नाम बदलने की बात हो रही है। यूएस प्रेसिडेंट डोनाल्ड ट्रंप ने कहा कि कनाडा के साथ चल रहे ट्रेड डिस्प्यूट के बीच वो लेक ओंटारियो का नाम बदलने पर विचार कर रहे हैं। इससे पहले ट्रंप गल्फ ऑफ मैक्सिको को गल्फ ऑफ अमेरिका का नाम दे चुके हैं और ये नाम यूएस यूजर्स के लिए गूगल मैप्स पर भी दिखाई देता है। उधर ट्रंप ने स्टेटमेंट दिया कि न्यू ईयर डे से कैनेडियन कार्स, ट्रक्स, ऑटोमोटिव पार्ट्स और स्टील पर टैरिफ बढ़ाकर 50% करने का उनका प्लान साफ है। उधर प्राइम मिनिस्टर मार्क कार्नी ने क्लैरिफाई किया कि कनाडा भी पीछे नहीं हटेगा। लेबर डे के बाद कनाडा डॉलर फॉर डॉलर रिटेलिएटरी मेजर्स इंट्रोड्यूस करने की तैयारी में है। ट्रेड वॉर अब सिर्फ टैरिफ्स तक ही सीमित नहीं है, दोनों तरफ से शब्दों की लड़ाई भी तेज हो गई है। ट्रंप ने प्राइम मिनिस्टर मार्क कार्नी को गवर्नर कार्नी कहा और प्रीमियर डग फोर्ड पर भी पर्सनल कमेंट्स किए। जवाब में फोर्ड ने भी ट्रंप पर तीखा हमला करते हुए उन्हें लूजर, बुली और किंग ऑफ बैंक्रप्सीज कहा है। यानी कनाडा यूएस रिलेशनशिप में फिलहाल इकोनॉमिक टेंशन के साथ साथ पॉलिटिकल टेंशन भी नजर आ रहा है। कनाडा यूएस ट्रेड वॉर अब इंटरनेशनल हेडलाइंस में भी छाया हुआ है। वॉल स्ट्रीट जर्नल और वॉशिंगटन पोस्ट के एडिटोरियल बोर्ड ने ट्रंप की लेटेस्ट टैरिफ एस्केलेशन की आलोचना की है और वार्निंग दी है कि इसका नुकसान सिर्फ कनाडा को नहीं बल्कि अमेरिकन मैन्युफैक्चरर्स और कंज्यूमर्स को भी हो सकता है। बीबीसी और सीएनएन की कवरेज में भी खास फोकस ऑटो इंडस्ट्री पर है क्योंकि कनाडा और यूएस की ऑटो सप्लाई चेन्स एक दूसरे से बड़ी क्लोजली कनेक्टेड हैं। सबसे बड़ी चिंता की बात है कि इस ट्रेड वॉर का नेक्स्ट स्टेप क्या होगा और आखिर दोनों देश अग्रीमेंट तक कैसे पहुंचेंगे। और अब नजर डालते हैं ओंटारियो के कॉलेज एंड यूनिवर्सिटी स्टूडेंट्स के एक बड़ी इंपॉर्टेंट खबर पर। ओसैप में बड़े चेंजेस लागू हो गए हैं। पहले स्टूडेंट्स को मिलने वाली फाइनेंशियल असिस्टेंस में नॉन रिपेएबल ग्रांट्स का हिस्सा 85% हो सकता था लेकिन अब इसे घटाकर मैक्सिमम 25% कर दिया गया है। बाकी असिस्टेंस लोन्स के रूप में मिलेंगी। साथ ही ओंटारियो ने 7 ईयर ट्यूशन फीस भी खत्म कर दिया है। अब कॉलेज और यूनिवर्सिटीज अगले 3 साल तक ट्यूशन फी में हर साल 2% तक इंक्रीज कर सकते हैं। न्यू स्कूल ईयर से पहले कई स्टूडेंट्स कंसर्न जता रहे हैं कि कम ग्रांट्स और बढ़ती ट्यूशन की वजह से उन्हें ग्रेजुएशन के बाद काफी ज्यादा स्टूडेंट डेट का सामना करना पड़ सकता है। अंत में नजर आज के वेदर के हाल पर। टोरंटो में आज रहेंगी सनी स्काइज, हाई ऑफ 24 डिग्रीज, फील रहेगा करीबन 27 डिग्रीज और रात का ओवरनाइट लो जा सकता है 17 डिग्री सेंटीग्रेड। सुनते रहिए मस्ती की रेलगाड़ी 4 बजे तक शालिनी के साथ ऑन CMR FM 101.3। गुड आफ्टरनून, आप एंजॉय कर रहे हैं अपनी पावर ड्राइव विद शॉन एक्सप्रेस, मस्ती की रेलगाड़ी। अपने बिजनेस को दीजिए एक्सप्रेस स्पीड। फॉर एडवर्टाइजिंग कॉल 416-569-7812, 416-569-7812।

0: lifetime. Learn to earn at Win Lifetime. Call 905-206-1008.
1: जी दोस्तों, 905-206-1008 ये नंबर है विन लाइफ टाइम का, और ये नंबर सही मायने में आपकी जिंदगी बदल सकता है. कैसे जाने के लिए यहां से एक्सपीरियंस ट्रेडर एंड ट्रेनर राफे जी हमारे साथ जुड़ेंगे. राफे जी, आपका स्वागत है मस्ती की रेलगाड़ी पर. कैसे हैं आप?
2: Thank you, thank you very much. Good afternoon to you and your listeners.
1: Good afternoon to you as well. Thank you for joining us today, Rafi ji. और बहुत सारे लोग जो आपके सेमिनार्स में जाते हैं उस हवाले से भी बात करेंगे, बड़े हैप्पी होकर आते हैं और बड़े अच्छे उनके बड़ी पॉजिटिव बातें करते हैं विन लाइफ टाइम के लिए. लेकिन कुछ लोग ऐसे हैं जिन्होंने ऑलरेडी ट्रेडिंग करी हुई है और उन्हें अच्छा एक्सपीरियंस नहीं रहा ट्रेडिंग करने से, तो मैं चाहूंगी कि आज हम उन लोगों को बताएं कि क्या गलती करी, क्या उन्होंने नहीं किया जिस वजह से ट्रेडिंग उनके लिए अच्छी नहीं साबित हुई और डेफिनेटली उन्होंने विन लाइफ टाइम का रुख नहीं किया है अभी. तो मैं चाहूंगी कि बताएं कि क्या गलती हम कर देते हैं कभी कभी ट्रेडिंग में.
2: प्राइमरली दो मेन चीजें हमने देखी हैं जो कुछ स्टूडेंट्स आते हैं किसी और तरफ से, जिनका थोड़ा बहुत नुकसान हुआ था. एक तो होता है कि सीख उनसे रहे होते हैं जो प्रोफेशनली ये काम नहीं करते. तो हमारे एक कहावत होती है कि नीम हकीम खतरा जान, के आपको कुछ आधा पता होता है आधा नहीं पता. आपको ट्रेडिंग में किसी ने डाल दिया, आपको पता ही नहीं था कि हुआ क्या और आपका नुकसान हो गया. नंबर टू, आपने ट्रेडिंग अकेले की, किसी सुपरविजन के बैठ के नहीं की. हमारा एक ऐसा इंस्टीट्यूट है, दो ऑफिस हैं, 12,000 से ज्यादा स्टूडेंट हैं. आज भी सुबह 9:35 पे सेशन शुरू हुआ और 9:45 पे हमारे सीईओ ने कहा कि आप लोग सारे घर जा सकते हैं और टारगेट पूरा हो गया है.
1: अच्छा.
2: तो हम लोग इसलिए एक बकायदा प्रोफेशनल तरीके से करते हैं. ऐसे नहीं है कि कहीं आपको किसी रेस्टोरेंट में बैठ के ट्रेडिंग सिखाएंगे. बकायदा क्लासेस होती हैं, बकायदा सॉफ्टवेयर है. तो इट्स नॉट ए वन मैन शो. तो ये दो गलतियां मोस्टली करते हैं कि सुने सुनाए किसी ने कहा ट्रेडिंग में पैसे डाल दें, ऐसे नहीं होता. नंबर टू, ट्रेडिंग में हम लोग कहते हैं अपने पैसे नहीं इन्वेस्ट करते.
1: वाओ, क्या बात है. तो अपने पैसे नहीं इन्वेस्ट करने, आर देयर सम कंपनीज हु आर हेल्पिंग अस ग्रो आवर बिजनेस?
2: जी, एब्सोल्युटली. बहुत सारी कंपनीज हैं जिनके पास बहुत मिलियंस ऑफ डॉलर्स, जो हाफ अ मिलियन डॉलर नॉर्मली अवेलेबल पड़ा होता है. वो कोई रिस्क नहीं है सारे का, सिर्फ उनको ट्रेडर्स चाहिए जो सॉफ्टवेयर जानते हो. तो वो सारे का सारा रिस्क वो लेंगे और आप रिवॉर्ड आपको देंगे.
1: दैट्स अमेजिंग. तो राफी जी, जो आपका सेमिनार हो रहा है बिल्कुल फ्री सेमिनार दिस सैटरडे, उस हवाले से बताएं हमारे लिसनर्स को कौन कौन इसमें आ सकता है और अभी कितनी सीट्स अवेलेबल है हमारे लिसनर्स के लिए.
2: लेकिन लास्ट टाइम सेमिनार किया था दूसरी लोकेशन में, तो हमने कहा था अपने पिकनिक चेयर रखे हैं साथ गाड़ी में, क्योंकि हमारे पास जगह नहीं थी उस वक्त भी. तो सेम हो जाता है, ओवरफ्लो ओवर क्राउड हो जाता है. लेकिन हम हर सैटरडे को सेमिनार करते हैं, तो कोई भी आ सकता है किसी भी बैकग्राउंड से. यू आर नेवर टू यंग टू स्टार्ट, नेवर टू अर्ली टू स्टार्ट. कभी भी आए, आपको ऐसी अपॉर्चुनिटी हर हफ्ते सेमिनार के साथ मिलती रहेगी.
1: वंडरफुल. तो दोस्तों, 10 नंबर के फासले पर है ये अपॉर्चुनिटी. 905-206-1008, that's 905-206-1008, winlifetime.com. राइट अवे कॉल करिए और सैटरडे के सेमिनार के लिए अपनी सीट बुक करें. थैंक यू राफी जी, फिर आपसे जुड़ेंगे. ऑल द बेस्ट एंड टेक केयर.
2: थैंक यू जी, टेक केयर.
0: Jamming as much variety into your workday as possible. Radio Resync complete. Hit music. Hit after hot hit.
1: ये सेगमेंट आप तक पहुंचा रहे हैं यश विंडोज एंड डोर्स. दोस्तों, अगर आप ढूंढ रहे हैं वर्ल्ड क्लास क्वालिटी के विंडोज एंड डोर्स रीजनेबल प्राइस में, तो यश विंडोज एंड डोर्स सर्विसेज देते हैं ऑल ओवर ऑन्टारियो. खुद ही विंडोज एंड डोर्स मैन्युफैक्चर करते हैं और उनकी एक्सपर्ट इंस्टॉलर टीम ही प्रोफेशनली इंस्टॉल करती है. नो मिडलमैन, नो कॉम्प्रोमाइज, सीधे फैक्ट्री से आपकी प्रॉपर्टी तक. स्टाइल, लुक्स, क्वालिटी, सिक्योरिटी, ड्यूरेबिलिटी, एनर्जी एफिशिएंसी, सब कुछ माइंड ब्लोइंग. स्टाइल, सेफ्टी, सेविंग एक साथ. और अब सुनिए बड़ी खबर, फ्रेंचाइज ऑप्शन भी अवेलेबल है. अगर आप बिजनेस अपॉर्चुनिटी ढूंढ रहे हैं, ज्वाइन द ग्रोइंग टीम ऑफ यश विंडोज एंड डोर्स. 416-732-3600, दैट्स 416-732-3600.

0: और वेल, आप तो लकी होने जा रहे हैं क्योंकि आपके लिए प्लान किया है एक बड़ा इंपॉर्टेंट सा इवेंट। यश विंडोज एंड डोर्स की नई लोकेशन की ग्रैंड ओपनिंग पर आप सभी लोगों को खुद न्योता दिया जा रहा है। मस्ती की रेलगाड़ी के साथ आप रहेंगे लाइव ऑन लोकेशन इस सैटरडे दोपहर 12:30 से 2 बजे तक हम रहेंगे लाइव ऑन लोकेशन। और जयपुर गोर प्लाजा में नई जो है लोकेशन खुलने जा रही है यश विंडोज एंड डोर्स की, 8917 द गोर रोड ब्रैम्पटन। आप सभी लोग आइए और मस्ती की रेलगाड़ी पर सवार हो जाइए लाइव ऑन लोकेशन दिस सैटरडे 12:30 to 2 PM यश विंडोज एंड डोर्स की ग्रैंड ओपनिंग पर। यश विंडोज एंड डोर्स, क्वालिटी जो दिखे भी टिके भी। नंबर है 416-732-3600, 416-732-3600। और इसके साथ साथ दोस्तों आपको बता दें देओल ट्रैवल की लेटेस्ट डील्स आ चुकी है, और अगर आप दुनिया भर में कहीं भी ट्रैवल करना चाहते हैं उनसे जरूर बात कीजिएगा। टोरंटो से दिल्ली लिमिटेड सीट्स हैं 25 अक्टूबर से 26 दिसंबर तक 1890 में, 2 बैग्स के साथ। ये दिवाली स्पेशल लगा हुआ है। फिर मॉन्ट्रियल टू दिल्ली स्पेशल प्राइस है 2 बैग्स के साथ 1670 में, सितंबर टू अक्टूबर एंड नवंबर राउंड ट्रिप है। नाउ दिल्ली से टोरंटो स्पेशल प्राइस है नवंबर टू जनवरी राउंड ट्रिप 1450 में। और इसके अलावा टोरंटो से बॉम्बे लिमिटेड सीट्स हैं, अक्टूबर में वन वे जा सकते हैं आप 850 में 2 बैग्स के साथ। दिवाली स्पेशल है ये भी। देओल ट्रैवल इटोबिको एंड ब्रैम्पटन टू लोकेशंस टू सर्व यू 9055885100 एंड 9055884200 5885100 and 5884200। मस्ती की रेलगाड़ी पर आप जुड़े रहिए शालिनी के साथ ऑन CMR FM 101.3 पर। और डायरेक्ट नंबर टू रीच अस 416-569-7812, 416-569-7812। गुड आफ्टरनून,
1: आप सुन रहे हैं शॉन एक्सप्रेस ऑन CMR FM 101.3। शॉन एक्सप्रेस, म्यूजिक जो करे आपको इम्प्रेस।
0: हैशटैग होम्स एंड राहुल कश्यप आपके लिए लेकर आए हैं ब्रैम्पटन एंड कैलेडन बॉर्डर पर एट मेफील्ड एंड गोर फ्री होल्ड टाउन्स फ्रॉम मिड 700s, सेमीज फ्रॉम मिड 800s एंड डिटैच्ड होम्स फ्रॉम मिड 900s। मास्टर प्लान कम्युनिटी ऑफ 2500 होम्स विद क्रिकेट पिच, टेनिस, बास्केटबॉल एंड पिकल बॉल कोर्ट्स, डॉग पार्क एंड किड्स स्प्लैश पैड्स एज नेबरहुड अमेनिटीज। ओनली 10% डिपॉजिट ओवर 365 days एंड क्लोजिंग लेटर 2027 to early 2028। To book your lots, call Rahul Kashyap 647-993-4844, 647-993-4844.
2: Another Don clean with the Don Ducks.
3: Oh, he's doing dishes with Dawn Platinum.
4: The only soap trusted to save wildlife affected by oil.
3: And Platinum removes up to 99% of grease and food residue, so he doesn't have to work so hard.
4: Well, flap my wings. What'll he do with all that unused elbow grease?
3: Organize the fridge, the spice rack, the junk drawer.
4: What are you quacking on about? He's gonna make enchiladas.
3: More dishes? That's giving this duck goosebumps.
2: Dawn Platinum, the better grease getter.
5: अगर आप लंबे वक्त से किसी हेल्थ प्रॉब्लम से परेशान हैं और एक नेचुरल आयुर्वेदिक सॉल्यूशन की तलाश में हैं, तो आइए सहज आयुर्वेदिक हर्बल कंसल्टेशन सेंटर पर। यहाँ खानदानी परंपरा के अनुसार नब्ज देखकर कई तरह की बीमारियों का इलाज आयुर्वेदिक जड़ी बूटियों से किया जाता है। इलाज से बहुत सारे लोगों को राहत और फायदा मिला है, चाहे एस्मा, एलर्जी, स्किन प्रॉब्लम्स, कमर या घुटनों का दर्द, आर्थराइटिस, हेयर प्रॉब्लम्स, गैस, अल्सर, लेडीज प्रॉब्लम्स, वेट लॉस, सोराइसिस या फिर किसी अन्य हेल्थ इश्यू की बात हो, बीमारियों का जड़ से इलाज करने में मदद मिलती है। आज ही कॉल करें वैद्य रत्न पीवी राज को, लोकेटेड इन ब्रैम्पटन, 6473278111, 6473278111।
6: संजीव पुरी ऑफ स्टार लाइफ इंश्योरेंस एंड इन्वेस्टमेंट इंक एक ब्रोकर है और डील करते हैं सारे मेजर कंपनीज के साथ। ही कैन शॉप अराउंड फॉर यू फॉर द बेस्ट प्लान्स ऑफ इंश्योरेंस दैट विल सूट योर बजट एंड नीड्स। संजीव पुरी इंश्योरेंस प्लान्स में तो माहिर है ही, लेकिन हाई रिस्क इंश्योरेंस प्लान्स के बेस्ट रेट्स दिलाने में बहुत ही माहिर है। तो अगर किसी को ब्लड प्रेशर, डायबिटीज, हार्ट अटैक, बाईपास सर्जरी, लिवर या किडनी के इश्यूज हो, या इंश्योरेंस कंपनी ने आपकी इंश्योरेंस डिक्लाइन की है, तो संजीव पुरी को आप कॉल करेंगे फ्री कोट के लिए। और अगर आपको लगता है कि आप इंश्योरेंस पॉलिसी के बहुत हाई प्रीमियम पे कर रहे हैं, तो पॉलिसी रिव्यू करवाने के लिए भी संजीव पुरी 416-890-3232, 416-890-3232।
5: घर या बिजनेस के लिए चाहिए पैटियो कवर, परगोला, बेसमेंट कैनोपी या रिट्रैक्टेबल ऑनिंग्स,
7: तो कॉल करें कैलिफोर्निया ऑनिंग एंड कैनोपी, ब्रैम्पटन का ट्रस्टेड नाम फॉर रेजिडेंशियल और कमर्शियल प्रोजेक्ट्स।
5: बेस्ट क्वालिटी, स्टाइलिश डिजाइंस और ग्रेट प्राइसिंग, चाहे सनरूम हो या हो कस्टम कैनोपी, सब कुछ मिलेगा यहाँ।
7: फ्री कोटेशन के लिए अभी कॉल करें 416-831-4790, दैट्स 416-831-4790, या पहुँचो 24 रीगन रोड ब्रैम्पटन।
5: कैलिफोर्निया ऑनिंग एंड कैनोपी, बनाए आपकी स्पेस सुंदर और फंक्शनल।
8: Our loan and credit card bills keep piling up. We have no money to pay them with our limited income.
9: I'm afraid we are going to go bankrupt and lose our house, business and all assets. Is this why we immigrated to Canada?

0: जी दोस्तों, आज के डेट सॉल्यूशन स्पेशल सेगमेंट में आप लोगों का स्वागत है। और अब बात होने जा रही है मैक्सिमम डेट रिलीफ की आपके लिए, और हमारे साथ जुड़ने जाएंगी आयशा मुनव्वर, जो एक रिनाउंड इंसॉल्वेंसी एंड क्रेडिट काउंसलर हैं, और आपको सही प्लानिंग और लीगल ऑप्शंस के थ्रू मिल सकता है मैक्सिमम डेट रिलीफ और पीस ऑफ माइंड। अगर आप भी लोन, क्रेडिट कार्ड्स या फाइनेंशियल स्ट्रेस से जूझ रहे हैं तो टेंशन छोड़िए और सॉल्यूशन पाइए। नंबर है 416-428-2165। आयशा जी, आपका स्वागत है।
1: थैंक यू वेरी मच जी फॉर हैविंग मी ऑन एयर। सबसे पहले तो मैं अपनी सर्विसेज के बारे में बता दूं कि हमारी जो सर्विसेज हैं वो कंज्यूमर प्रपोजल्स, लमसम प्रपोजल्स, इंसॉल्वेंसी काउंसलिंग, क्रेडिट काउंसलिंग सर्विसेज, इसके अलावा जो है बैंक्रप्सी में भी हम हेल्प आउट करते हैं। तो ज़रूरी नहीं है कि बैंक्रप्सी जो है वो आपकी फर्स्ट ऑप्शन हो, दैट कैन बी ऑलवेज अ लास्ट ऑप्शन। देर आर ऑप्शन जिसमें आपको बैंक्रप्सी नहीं करनी पड़ती और क्रेडिट भी जल्दी इस्टेब्लिश हो जाता है। तो फर्स्ट ऑफ ऑल तो हम रिव्यू करते हैं, असेस करते हैं, देखते हैं आपकी एलिजिबिलिटी किस चीज़ में है, कौन सी चीज़ का आपको फ़ायदा हो रहा है, क्योंकि हर पर्सन की ऑप्शन जो है वो सारी नहीं हो सकती। सो डिपेंडिंग ऑन योर फाइनेंसेस, डिपेंडिंग ऑन योर एसेट्स एंड एवरीथिंग, वी हैव टू फर्स्ट रिव्यू एंड सी एंड वी हैव टू एडवाइज यू। और उसके बाद फिर हमें वो सर्विसेज आपको प्रोवाइड करनी होती हैं। हम वन एंड वन आपके बिहाफ पर जो है वो बैंक्स के साथ नेगोशिएट करते हैं, सेटल करते हैं आपके लिए मैक्सिमम डेट रिलीफ। और उसमें यह है कि आपके जो एसेट्स हैं उनको भी लीगली प्रोटेक्ट करते हैं, जैसे आपका घर हो गया, गाड़ियों हो गई, बल्कि कारोबार हो गया, इसके अलावा RRSP, RESPs हो गए, तो वो सारी चीज़ें जो हैं वो सेव रहती हैं। और एक ऐसी ऑफर बैंक्स को ऑफर की जाती है जो कि इजीली वो एक्सेप्ट भी कर लें और आपके एसेट्स को टच ना करें। और उसमें कलेक्शन कॉल्स रुक जाती हैं, इंटरेस्ट रुक जाता है, छोटी पेमेंट्स बन जाती हैं मैक्सिमम टाइम पीरियड की, तो आप इजीली उसको जो है वो मैनेज कर लेते हैं। और इसके अलावा जो है अपॉइंटमेंट्स आर ऑल फ्री एंड कॉन्फिडेंशियल, व्हाट यू कैन डू, आप कॉल करके अपॉइंटमेंट मेरे साथ रख सकते हैं। वेरियस लोकेशंस हैं, ईजी टाइमिंग्स हैं हमारी, लाइक फ्लेक्सिबल टाइमिंग्स हैं, लेट इवनिंग अपॉइंटमेंट्स भी अवेलेबल हैं, वीकेंड की भी अवेलेबल हैं, बट बाय अपॉइंटमेंट ओनली। और उसमें यह कि दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट कि आप राइट पर्सन और राइट पीपल जो है उससे एडवाइस ले रहे हैं, क्योंकि अगर आप गलत हाथों में अपने फाइनेंसेस दे देते हैं तो कई दफ़ा इजी सिचुएशन जो होती है उसको भी कॉम्प्लिकेटेड कर लेते हैं, और वो फिर कई दफ़ा जो है बैंक्स जो है उनके अप्रूवल्स जो हैं वो मुश्किल हो जाते हैं। तो इसलिए डोंट फॉरगेट, यू नो द बैंक्स हैज़ टू गिव एन अप्रूवल एंड इट हैज़ टू बी अ फेयर और जो कहते हैं लिजिमेट जो आपकी होनी चाहिए ऑफर, के जिसको वो एक्सेप्ट कर लें और प्रॉब्लम ना बनाएं। बट एनीवेज, फॉर मैक्सिमम डेट रिलीफ यू कैन गिव अस अ कॉल। माय फोन नंबर इज जी 416-428-2165, दैट इज 416-428-2165। थैंक यू वेरी मच।
0: Thank you so much, Asha ji, for joining us today and sharing the wonderful, wonderful details with us. और आपका नंबर मैं फिर से बता दूं दोस्तों, इस नंबर को अपने पास सेव कर लीजिए। किसी भी तरह के डेट रिलीफ के लिए आप कॉल कर सकते हैं 416-428-2165. सुनते रहिए मस्ती की रेलगाड़ी ऑन CMRFM 101.3। गुड आफ्टरनून,
2: आप सुन रहे हैं शॉन एक्सप्रेस ऑन CMRFM 101.3। शॉन एक्सप्रेस, म्यूजिक जो करे आपको इम्प्रेस।
3: You work hard, manage to make both ends meet. Right combinations do miracles. If tax and accounting is your need, think Rajiv Madan. Depth of experience, passion for accounting. Tajurba wahi jo kaam aaye, aapko fayda pahunchaye. Certified General Accountant, Rajiv Madan. Tax accounting ke sabhi pehluon par paini nazar. Fark aazmane pe pata chalega. Call CGA Rajiv Madan, 905-362-2200.
4: 2970 Drew Road, Suite 214B, Mississauga.
3: CGA Rajiv Madan. Thoughts become things.
5: ਬਈ ਮੈਨੂੰ ਕਹਿਣਾ ਵੀ ਪੈਣਾ ਤੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸੁਣਨਾ ਵੀ ਪੈਣਾ। ਡਿਜ਼ਾਈਨਰ ਫਰੇਮ ਤੇ ਬ੍ਰਾਂਡਡ ਸਨਗਲਾਸਿਸ ਦੇ ਬਥੇਰੇ ਸਟੋਰ ਦੇਖੇ, ਪਰ ਜਿੰਨੀ ਵੈਰਾਈਟੀ ਕਾਂਡਾ ਆਪਟੀਕਲ ਦੇ ਕੋਲ ਹੈ ਉਹਦਾ ਤਾਂ ਜਵਾਬ ਹੀ ਨਹੀਂ।
6: ਸੋਹਣੇ ਫੇਸ ਵਾਲੀਏ, ਉੱਚੀ ਹੀਲ ਵਾਲੀਏ, ਗੁੱਚੀ ਵਾਲਾ ਸੱਚ ਪਾਵੇ ਦਿਲ ਤੇ ਥਵਾਰੀਏ।
7: ਫॉर ਅਮੇਜ਼ਿੰਗ ਡਿਜ਼ਾਈਨਰ ਫਰੇਮਸ ਐਂਡ ਡਿਜ਼ਾਈਨਰ ਸਨਗਲਾਸਿਸ, ਵਿਜ਼ਿਟ kandaoptical.com ਔਰ ਕਾਲ 416-922-5263। ਕਾਂਡਾ ਆਪਟੀਕਲ, ਦ ਨੇਮ ਯੂ ਕੈਨ ਟਰਸਟ।
8: Another Don Clean with the Don Ducks. Oh, he's doing dishes with Dawn Platinum.
9: The only soap trusted to save wildlife affected by oil.
8: And Platinum removes up to 99% of grease and food residue, so he doesn't have to work so hard.
9: Well, flap my wings. What'll he do with all that unused elbow grease?
8: Organize the fridge, the spice rack, the junk drawer.
9: What are you quacking on about? He's gonna make enchiladas.
8: More dishes? That's giving this duck goosebumps.
10: Dawn Platinum, the better grease getter.
2: आप सुन रहे हैं शॉन एक्सप्रेस ऑन सीएमआर एफएम 101.3 शॉन एक्सप्रेस म्यूजिक जो करे आपको इम्प्रेस।
0: जी दोस्तों एक बार फिर से शालिनी आप लोगों का वेलकम करती है मस्ती की रेलगाड़ी पर ऑन सीएमआर एफएम 101.3 इट्स 3:26 राइट नाउ और दोस्तों हमारे साथ एक आवाज जुड़ने जा रही है और उनसे करते हैं हम बातचीत और वीरेंद्र सैली जी बहुत ही रिनाउंड नेम है हमारी कम्युनिटी का बहुत सारे इवेंट्स के साथ कनेक्टेड रहते हैं बहुत सारे रिलीजियस इवेंट्स आप तक पहुंचाते हैं बहुत सारे बेस्ट ऑफ द बेस्ट टेम्पल्स में इनका बहुत बड़ा योगदान रहता है तो वीरेंद्र जी आपका वेलकम है कैसे हैं आप
11: ठीक है जी सैली जी आप कैसे हो थैंक यू वेरी मच फॉर द इंट्रोडक्शन इतना कुछ तो मैं नहीं करता लेकिन आपने बोल ही दिया है तो थैंक यू वेरी मच बहुत बहुत धन्यवाद तो मैं आज अनाउंसमेंट करने जा रहा हूँ जी जो डाउन टाउन का सबसे पुराना प्राचीन मंदिर है जी हिंदू प्रार्थना समाज वो चार पांच साल के बाद खुल गया है ऑलमोस्ट रेडी हो गया है भारत से इंडिया से सारी मूर्तियां भी आ चुकी हैं मूर्ति स्थापना होने जा रही है इस सैटरडे को 4-7 उस मंदिर में माता जी की चौकी होने जा रही है तो आप सभी को निमंत्रण दे रहे हैं आप सभी लोग आए और धर्म लाभ उठाएं 4-7 एड्रेस है जी 62 फर्न एवेन्यू डाउनटाउन टोरंटो तो अच्छा। वो हिंदू प्रार्थना समाज फिर से खुल गया है आप सभी लोग वहां आए और हमारी रौनक बढ़ाए हमारा साथ दें
0: क्या बात है 62 फर्न एवेन्यू टोरंटो
11: हाँ जी
0: जी और एक बार फिर से डेट और टाइम बता दे वीरेंद्र जी ताकि हमारे लिसनर्स वहां पर पहुंचे भारी तादाद में
11: हाँ जी कमिंग सैटरडे 29th 4-7 बाद में प्रीति भोलकर भी सारा कुछ है तो जरूर
0: क्या बात है
11: तो जाते जाते मैं भगवान का एक शेर बोलना चाहता हूँ जी
0: क्या जरूर जरूर
11: ओ रंगत बदल गई तो तराना बदल गया बदली नहीं किस्मत मेरी लेकिन जे जमाना बदल गया मुझे इसका गम नहीं है के बदल गया है जे जमाना मेरे जिंदगी की मालिक कहीं तुम बदल ना जाना थैंक यू शर्मा जी आपका बहुत बहुत
0: वेरी नाइस बहुत बहुत शुक्रिया वीरेंद्र जी व्हाट अ वंडरफुल प्रेजेंटेशन तो भाई जरूर पहुंचिए सैटरडे 4-7 PM हिंदू प्रार्थना सभा 62 फर्न एवेन्यू टोरंटो वीरेंद्र जी फिर आपसे जुड़ेंगे ऑल द बेस्ट टेक केयर और दोस्तों बॉलीवुड का पन्ना खोलते हैं और ये सेगमेंट आप तक पहुंचाया जा रहा है यश विंडोज एंड डोर्स के सौजन्य से और ब्रांड न्यू लोकेशन की ग्रैंड ओपनिंग होने जा रही है जयपुर गोर प्लाजा में इन द हार्ट ऑफ ब्रैम्पटन और हम रहेंगे लाइव ऑन लोकेशन इस सैटरडे 12:30 से ऑनवर्ड्स और आप लोग पहुंचिए यश विंडोज एंड डोर्स को कहा जाता है क्वालिटी ऐसी जो दिखे भी और टिके भी और फिर से बता दें मस्ती की रेलगाड़ी रहेगी लाइव ऑन लोकेशन दिस सैटरडे 12:30 to 2 PM जयपुर गोर प्लाजा में यश विंडोज एंड डोर्स की ब्रांड न्यू लोकेशन पर आप हमें ज्वाइन कीजिएगा ज्यादा जानकारी के लिए नंबर है 416-732-3600 दैट्स 416-732-3600 अब खोलते हैं बॉलीवुड का पन्ना और 90s के बॉलीवुड की कुछ लव स्टोरीज ऐसी होती हैं जिनकी इनोसेंस और म्यूजिक आज भी दिलों को उसी तरह छू जाती है और ऐसी ही एक खूबसूरत एक्ट्रेस और सिंगर है विजेता पंडित एंड शी इज सेलिब्रेटिंग हर बर्थडे टुडे और ये बेहद म्यूजिकल फैमिली से आती हैं उनके भाई जतिन ललित की जोड़ी ने बॉलीवुड को कई सुपरहिट गाने दिए और उनकी बहन सुलक्षणा पंडित भी जानी मानी एक्ट्रेस और प्लेबैक सिंगर रही हैं विजेता पंडित ने 1981 में लव स्टोरी से कुमार गौरव के ऑपोजिट डेब्यू किया है और पहली फिल्म ने उन्हें ओवरनाइट स्टार बना दिया और इसी फिल्म से लिया गया बहुत प्यारा सा गीत आपकी नजर करने जा रहे हैं कुछ प्यार की कहानियां वक्त के साथ पुरानी नहीं होती कुछ धुनें कभी दिल से बेगानी नहीं होती एक बार जो यादों में बस जाए कोई चेहरा फिर उसकी यादें कभी अनजानी नहीं होती ये खूबसूरत सा गाना आपकी नजर फ्रॉम द मूवी लव स्टोरी

0: अपनी पावर ड्राइव विशॉन एक्सप्रेस मस्ती की रेलगाड़ी। अपने बिजनेस को दीजिए एक्सप्रेस स्पीड। फॉर एडवर्टाइजिंग कॉल 416-569-7812 416-569-7812।
1: इस बार रक्षाबंधन के पावन अवसर को बनाएं और भी ज्यादा स्टाइलिश। खरीदिए GTA में कहीं और न मिलने वाली बेहद खूबसूरत राखियां इंडिया सजावट एंड पूजा हट से, और आपके घर की सजावट के लिए भी बहुत कुछ मिलेगा ओनली एट इंडिया सजावट एंड पूजा हट। 31 मेलनी ड्राइव, यूनिट 5, ब्रैम्पटन, 9054586808।
2: मेडिकल इंश्योरेंस फॉर न्यू इमिग्रेंट्स, द विजिटर्स इंश्योरेंस एंड सुपर विजा इंश्योरेंस के बेस्ट रेट एंड बेस्ट प्लान के लिए एक ही नाम, संजीव पुरी।
3: संजीव शॉप अराउंड करके आपको बेहतरीन रेट और प्लान की गारंटी देते हैं, जिसमें खांसी, जुखाम, बुखार, स्लिप एंड फॉल, वॉकिंग क्लिनिक डॉक्टर के फीस, मेडिसिन एंड टेस्ट के खर्चे से लेकर एम्बुलेंस, हॉस्पिटलाइजेशन एंड फ्यूनरल तक सब कवर्ड होता है।
2: यू विल गेट फुल रिफंड इफ सुपर विजा इज डिक्लाइंड।
3: इसके अलावा बच्चों की RESP, लाइफ इंश्योरेंस, मॉर्गेज इंश्योरेंस, फ्यूनरल इंश्योरेंस, क्रिटिकल इलनेस इंश्योरेंस, डिसेबिलिटी इंश्योरेंस के लिए भी कॉल करें संजीव पुरी 416-890-3232 890-3232।
0: आप सुन रहे हैं शॉन एक्सप्रेस ऑन CMRFM 101.3। शॉन एक्सप्रेस, म्यूजिक जो करे आपको इम्प्रेस।
4: वेल दोस्तों, मस्ती की रेलगाड़ी पर शालिनी एक बार फिर से आप लोगों का वेलकम करती है। और दोस्तों, अभी हम लव स्टोरी का गाना सुन रहे थे ना, कि देखो मैंने देखा है ये एक सपना, फूलों के शहर में हो घर अपना। तो अगर आप चाहते हैं इतना प्यारा सा सपना हो, किसी के साथ मिलकर आपको अपना खूबसूरत सा घर बसाना है, तो मैच फाइंडर्स आपके साथ हमेशा खड़े रहते हैं। कहते हैं कि हर किसी की कहानी में एक किरदार खास होता है, जो अजनबी होकर भी दिल के सबसे करीब होता है। दुआ है कि हर तलाश को उसकी मंजिल मिल जाए और हर सफर को अपना हम सफर मिल जाए। और कहते हैं कि घर ईंटों से नहीं, रिश्तों से बनता है, और रिश्ते सिर्फ मिलते नहीं, उन्हें समझदारी, भरोसे और सही मार्गदर्शन से निभाया जाता है। तो अगर आप चाहते हैं आपकी एक ऐसा जीवन साथी हो जो बैक होम की परंपराओं को भी समझे और कनाडा की मॉडर्न लाइफस्टाइल में भी आपके साथ कदम से कदम मिलाकर चले, तो matchfinders.ca जरूर विजिट कीजिएगा। डॉक्टर फरवा बड़ा ही इंपॉर्टेंट काम कर रही हैं, डिफरेंट कम्युनिटीज के लोगों को पूरी प्राइवेसी, केयर और कंपैशन के साथ उनके जीवन साथी तक पहुंचाने का। तो डॉक्टर फरवा हमारे साथ जुड़ेंगी। डॉक्टर फरवा, गुड आफ्टरनून, कैसी हैं आप?
5: मैं बिल्कुल ठीक हूँ शालिनी, आप कैसी हैं?
4: बिल्कुल ठीक ठाक, थैंक यू।
5: आपने इतना अच्छा, इतना प्यारा बोला है कि मजा आया।
4: एंड यू डिजर्व इट डॉक्टर फरवा। और यहाँ पर आपका जो हॉटलाइन नंबर है जरूर दे दूं, जो हमेशा आई एम श्योर लोग आपको बिजी रखते होंगे बहुत बहुत, 647-701-7973, 647-709-7973। तो डॉक्टर फरवा, बताए हमारे न्यू लिसनर्स को अपनी सर्विसेज के बारे में इन डिटेल।
5: जी शालिनी, आपको पता है हम लोग ये काम कर रहे हैं और बहुत ही कंपैशनेटली, जैसे आपने कहा, हम कर रहे हैं। हम रीच आउट करते हैं आपके लिए, लोगों को पूछते हैं आपके लिए, आपकी प्रेफरेंसेस के हिसाब से, आपकी जो भी विशेज हैं उनके हिसाब से आपके लिए ढूंढ कर लाते हैं लोग। इट्स लाइक एन आर्मी वर्किंग फॉर यू, जो आपके लिए बहुत ही आपकी विशेज पूरी करने के लिए सारा टाइम काम कर रहे हैं और टाइम लगा रहे हैं, डिफरेंट इवेंट्स पे जा रहे हैं ताकि आपके लिए कोई अच्छा सा स्पाउस ढूंढ सके। और जो लोग भी स्पाउस ढूंढना चाहते हैं, सोचिए मत, देयर इज नथिंग टू लूज, कॉन्टैक्ट मी, गेट इन टच विद मी, ताकि आपको हम बता सकें कि कौन कौन है जो आपके साथ मैच किए जा सकते हैं।
4: क्या बात है। तो अगर मैं मैचेस की बात अगर आपसे पूछूं डॉक्टर फरवा, तो कौन कौन से इस वक्त एक्साइटिंग मैचेस हैं जो आप हम तक पहुंचाना चाहेंगे?
5: जी शालिनी, मैं मैचेस बताना चाहती हूँ कुछ। मेरे पास एक गुजराती बॉय है, बहुत ही हैंडसम, और 5'7" इनकी हाइट है, अराउंड 37 इनकी एज है, और बहुत ही अच्छा लड़का है, लाइक अ नाइस जेंटलमैन। और इन्होंने फाइनेंस में बैचलर किया हुआ है, एंड इज वर्किंग ऑन हिज ओन, इज सेल्फ एम्प्लॉयड, एंड इज लुकिंग फॉर अ वाइफ एंड अ ट्रैवलिंग पार्टनर, एंड ही वॉन्ट्स टू एंजॉय विद हर। और मुझे तो बहुत ही पर्सनली, ही इज अ नाइस जेंटलमैन, मुझे पर्सनली आई लाइक हिम,
4: वाओ,
5: उनके अच्छा। लिए मैं ढूंढ रही हूँ। और फिर एक हमारे पास एक पाकिस्तान से एक पठान लड़की है छोटी सी,
4: अच्छा,
5: जिनकी एज 25 है, और बहुत ही प्यारी सी, मतलब बहुत प्यारी स्माइल है उस बच्ची की, और अच्छा। वो पाकिस्तान में सेटल्ड हैं लेकिन उनकी फैमिली यहाँ पर है, तो वो भी यहाँ पे कोई उन्होंने मुझसे कांटेक्ट किया है वहाँ से कि हमें यहाँ अच्छा। पर कोई रिश्ता करना है, तो वेरी अच्छा, नाइस अच्छा। फैमिली, उनकी सिस्टर से मेरी बात हुई है, बहुत ही प्यारी सी ब्यूटीफुल बच्ची है भाई। और एक और है जिनका मैं जिक्र करना चाहती हूँ जरूर, ये बहुत ही हाई अचीवर है मेरे पास, एक ये इंडियन है लेकिन ये मुस्लिम है और सुन्नी है और ये 30 एज की है और अच्छा। इन्होंने आर्किटेक्चर में बैचलर्स किया हुआ है, शी इज 5'5" और बहुत ही हाई अचीवर है, इन्होंने बहुत बड़ी बड़ी कंपनीज में काम किया हुआ है और इस टाइम भी एक बहुत बड़ी चेन के साथ कनेक्टेड है और वेरी वेल सेटल्ड गर्ल और फैमिली भी अच्छी है, तो ये तीनों मेरे जो आज के ना हाईलाइट्स रहेंगे क्योंकि मुझे ये तीनों पर्सनली लोग बहुत पसंद है।
4: क्या बात है डॉक्टर फरवा। तो अब जो लिसनर्स आपसे बात करना चाहते हैं, क्या आपका सिस्टम रहता है, क्या रहेगा पहला स्टेप अगर वो पहुंचना चाहते हैं अपने जीवन साथी तक?
5: जी वो हमारी वेबसाइट पर जाकर अपने लिए टाइम स्लॉट बुक कर सकते हैं फ्री कंसल्टेशन के लिए, या वो डायरेक्टली मेरे फोन पे मुझे कॉल कर सकते हैं, मुझे टेक्स्ट करें, कॉल करें, लेट्स टॉक और अपनी सारी चीजें मुझे बताएं और उसके बाद मैं उनको अपना प्रोसीजर बताऊंगी, जो मेरी फॉर्म फिल करने का तरीका है सारा वो बताऊंगी और फिर वंस आई हैव योर फॉर्म जिसमें पूरी डिटेल्स मेरे पास आ जाती हैं आपकी लाइकिंग्स और डिसलाइकिंग्स की, फिर मैं आपको मैच करती हूँ किसी के साथ।
4: क्या बात है। तो दोस्तों matchfinders.ca विजिट करें और अपना जीवन साथी चुनें, सही टीम की मदद से एंड टू एंड आपकी मदद करेंगे। 647-701-7973
5: डॉक्टर बहुत शुक्रिया। करना चाहती हूँ कि मैं बहुत ही प्राइवेसी के साथ लोगों के लिए काम कर रही हूँ, मैं किसी का प्रोफाइल बहुत ज्यादा शेयर नहीं करती, डिटेल्स नहीं बताती, आई डोंट वांट टू एम्बैरेस एनीबॉडी एंड मेक अ गॉसिप अबाउट इट। तो दूसरा, मैं बहुत अच्छा टाइम लेके आपको क्वालिटी रिश्ते दिखा रही हूँ, मैं सिर्फ आपको नंबर्स पूरे करने के लिए, चार पांच ऐसे लोग जो आपसे कनेक्टेड भी नहीं है, आपसे मैच ही नहीं करते, मैं आपको वो नहीं दिखा रही हूँ।
4: वेरी नाइस, ब्यूटिफुल, वेरी नाइस। ये चीज बड़ी जरूरी होती है दोस्तों, आपकी प्राइवेसी का पूरा ध्यान रखा जाएगा। 647-701-7973 डॉक्टर फरवा, थैंक यू सो मच फॉर ज्वाइनिंग अस, आपसे बहुत जल्दी फिर मुलाकात होती है, ऑल द बेस्ट।
5: थैंक यू शालिनी, थैंक यू,
4: टेक केयर। और वेल दोस्तों अब चलते हैं देओल ट्रैवल की तरफ, वहां से नवजोत हमारे साथ जुड़ी हुई है, लेटेस्ट बड़े सारे दिवाली स्पेशल्स हैं जो मैंने अभी अनाउंस किए थे, आइए सुनते हैं क्या है इनकी किटी में आज हमारे लिए। नवजोत वेलकम टू द शो।
6: थैंक यू सो मच शालिनी। सो आज बताइए क्या अमेजिंग दिन, जिससे शुरुआत हम करते हैं टोरंटो से दिल्ली के लिए, जो की स्टार्ट 25th अक्टूबर से लेके 26th दिसंबर में। इसमें आपको ये एक डील मिल जाएगी $1,890 में, वो भी दो बैग्स के साथ। अगर आप ये आप जाना चाहते हो मॉन्ट्रियल से दिल्ली, तो आपको ये वाला प्राइस मिल जाएगा $1,670 में, वो भी दो बैग्स के साथ।
4: क्या बात।
6: अगर आप दिल्ली से टोरंटो आना चाहते हो, अपने पेरेंट्स को बुलाना चाहते हो, तो नवम्बर टू जनवरी ये डील आपको मिल जाएगी सिर्फ और सिर्फ 1450 में। इसी के साथ वन वे की डील्स में बताना चाहती हूँ आपको टोरंटो से दिल्ली के लिए, जो कि अक्टूबर मंथ की है, वो है $1,060 की, दो के साथ वो भी। एंड हमारी दो लोकेशंस हैं, इटोबिको लोकेशन 6640 फिंच एवेन्यू एंड फोन नंबर इज 905-588-5100 एंड द ब्रैम्पटन लोकेशन 490 क्रेसलेंट ड्राइव 905-588-4200।
4: क्या बात है। और वेल दोस्तों आप देओल ट्रैवल में राइट अवे कांटेक्ट करें और एक सही डील अपने लिए लीजिए जहां भी जाना चाहते हैं दुनिया भर में, 905-588-5100 एंड 588-4200। नवजोत थैंक यू सो मच फॉर जॉइनिंग अस, ऑल द बेस्ट।
6: थैंक यू
4: जी। और चलते हैं दोस्तों आज के एब्सोल्यूट लेटेस्ट गाने की तरफ, और ये गाना फिर से बता दें कि आपको देओल ट्रैवल तो स्पॉन्सर कर ही रहे हैं, साथ साथ जो है ये गाना आप तक पहुंचा रहे हैं यश विंडोज एंड डोर्स, जिनकी ग्रैंड ओपनिंग होने वाली है जयपुर गोर प्लाजा में, 8917 द गोर रोड ब्रैम्पटन। और मस्ती की रेलगाड़ी के साथ आप रहेंगे लाइव ऑन लोकेशन दिस सैटरडे 12:30 से 2 बजे तक आपकी मुझसे मुलाकात होने जा रही है, और सब्जी मंडी के राइट ऑपोजिट ब्रांड न्यू लोकेशन खुलेगी यश विंडोज एंड डोर्स की। नंबर नोट करें 416-732-3600, 416-732-3600।

0: और वेल दोस्तों, जिंदगी में कहते हैं हेल्थ इज वेल्थ। अगर हमारी हेल्थ अच्छी है तो सब कुछ है, हेल्थ अच्छी नहीं है तो कुछ भी नहीं है। कितना भी रुपया पैसा आपके पास आ जाए लेकिन आप उसको एंजॉय नहीं कर सकते। तो इसीलिए मिरेकल गुरु जी हमारे साथ जुड़ेंगे, आयुर्वेद एंड हर्ब्स गुरु जी। नमस्कार गुरु जी, कैसे हैं आप?
1: नमस्ते नमस्ते नमस्ते जी, थैंक यू फॉर दिस।
0: थैंक यू, बहुत बहुत शुक्रिया गुरु जी। 9 जनरेशन का अनुभव है आपके पास और जब आपसे लोग मिलते हैं इंस्टेंटली वो जो है अपने आप मिलके ही आता है तो बीमारी वैसे भाग जाती है। फिर आपकी जो दवाएं हैं वो लेकर लोग बड़े खुश रहते हैं। तो तमाम हजारों लोगों तक हमारी आवाज पहुंच रही है। पहले आपका नंबर बता दूं, 4374383399, 4374383399। तो गुरु जी बताएं कि कौन कौन सी ऐसी बीमारियां हैं जिसमें आप मदद कर सकते हैं?
1: हाँ जी हाँ जी, अभी आजकल हमारा कनाडा में जॉइंट पेन ज्यादा होता है जी
0: जी जी,
1: और घुटनों में भी आर्थराइटिस आ जाता है, कार्टिलेज कम हो जाता है, लिगमेंट भी ड्राई हो जाता है, इसलिए दर्द हो जाता है, और कमरे में भी लोअर बैक पेन हो जाता है, डिस्क प्रॉब्लम हो जाता है, नमनेस हो रहा है, नमनेस सुन जाता है, सूजन होता है, और वैसा सर्वाइकल को भी प्रॉब्लम हो जाता है, नेक में भी, शोल्डर में, फ्रोजन शोल्डर भी हो जाता है। वैसा के लिए बहुत लोगों को किया था, अभी हमारा शो सुन के बहुत लोग आ गया था।
0: क्या बात है,
1: तो सारा को ठीक हो गया ऊपर वाला का आशीर्वाद से, और स्किन प्रॉब्लम भी ठीक हो गया, और गैस्ट्रिक एसिडिटी, पेट पूरा पूरा फुला फुला होता है, डाइजेशन कम होता है, थोड़ा पड़े तो पेट फुल फुल हो जाता है उसके लिए, और हेमराइड्स के लिए, गैस के लिए, और कॉन्स्टिपेशन के लिए, और कोलन में वॉश मच्छर से नहीं आता है
0: जी जी,
1: वो बाहर जाने के टाइम में जलन होता है और दर्द होता है, फाइल्स होता है उसके लिए, उसका अंत स्किन में भी एलर्जी होता है
0: जी जी,
1: इचिंग होती है इचिंग के लिए, और साइनस एलर्जी नास में ब्लॉक हो जाता है उसके लिए, खांसी के लिए, आस्थमा के लिए, लंग्स में क्लार्क होता है उसके लिए, शुगर के लिए, और हार्ट में कैल्शियम होता है उसके लिए, ब्लैकिंग
0: अच्छा,
1: के लिए
0: वेरी yes, nice.
1: और हमारा लेडीज भाई बहन जी को यूट्रस के लिए, पीसीओडी के लिए, इरेगुलर मेंसेस के लिए, हार्मोनल इंबैलेंस के लिए, बच्चा होने के लिए, वैसा बहुत लोग अलग अलग पेशेंट हमारा पास आता है। सारा को सारा लोग 99% नहीं 100% ठीक हो रहा है।
0: अरे वाह, वेरी गुड गुरु जी,
1: ये सारा ऊपर वाला का आशीर्वाद। आपको भी बहुत लोग फीडबैक बताया,
0: बिल्कुल एब्सोल्युटली गुरु जी, और बड़े लोगों के फीडबैक आए कि कोई इतना वक्त नहीं लगता। जनरली क्या होता है कि जब वो आयुर्वेदिक मेडिसिन लेते हैं या होम्योपैथिक मेडिसिन लेते हैं, इस तरह का जो जनरली हम क्या सोचते हैं कि अगर हमें फास्ट रिलीफ चाहिए तो हमें एलोपैथिक लेनी है, हम कभी नहीं सोचते कि फास्ट रिलीफ भी आपको मिल सकता है आयुर्वेदिक मेडिसिन से। एंड दैट्स यू गुरु जी, नंबर फिर से बता दूं, 4374383399। और मैं ये चाहूंगी कि अपनी लोकेशन और टाइमिंग बता दें गुरु जी, कब आपसे कहाँ मुलाकात हो सकती है?
1: हाँ जी, मैं वीकली 3 डेज वो स्कर्बे में रहता है जी, मंडे ट्यूसडे वेडनेसडे स्कर्बे में रहता है, थर्सडे फ्राइडे सैटरडे संडे, 4 दिन में रहता है ब्राम्पटन में।
0: अच्छा ठीक है, तो थर्सडे फ्राइडे सैटरडे संडे ब्रैम्पटन में दोस्तों, और थर्सडे से पहले मंडे ट्यूसडे वेंसडे स्कार्ब्रो में, सो 2 लोकेशंस टू सर्व यू। जाइए और देखिए कैसे अचंभा होगा आपको, खुशी के मारे कि आपकी हेल्थ बिल्कुल चुटकियों में ठीक हो जाएगी। सो नंबर फिर से 4374383399। गुरु जी बहुत बहुत शुक्रिया हमसे जुड़ने के लिए, आपसे फिर जुड़ेंगे बहुत जल्दी, ऑल द बेस्ट।
1: ओके,
2: आप सुन रहे हैं शॉन एक्सप्रेस ऑन CMRFM 101.3। शॉन एक्सप्रेस, म्यूजिक जो करे आपको इम्प्रेस।
0: मस्ती की रेलगाड़ी पर फिर से शालिनी आप लोगों का वेलकम करती है, और यश विंडोज एंड डोर्स की ग्रैंड ओपनिंग है सैटरडे, आपसे हमारी मुलाकात होगी 12:30 बजे जयपुर गोर प्लाजा में, राइट ऑपोजिट टू सब्जी मंडी, बहुत बड़ी लोकेशन, ब्रांड न्यू लोकेशन इन द हार्ट ऑफ ब्रैम्पटन, आप सभी लोग मिलिएगा जरूर। और आप तक बता दें अब ये और खास बात कि आज के दिन में ऐसा क्या हो रहा है जो आज के दिन को स्पेशल बनाता है। सबसे पहले आज जरूर खाइएगा नेशनल बनाना स्प्लिट आइसक्रीम, ये मुझे भी बहुत पसंद है, इसमें बनाना होता है, आइसक्रीम के अलग अलग फ्लेवर्स होते हैं, टॉपिंग्स होती हैं, तो थोड़ा और स्वीटनेस दीजिए आज के दिन को। किस एंड मेकअप डे, छोटी मोटी नाराजगी को कब तक पकड़ कर रखेंगे? आज ईगो को साइड में रखिए, सॉरी बोलिए, हक कीजिए और रिश्तों को फिर से मुस्कराने दीजिए। नेशनल हीरोज डे भी है आज। हीरो सिर्फ मूवीज में नहीं होते, हमारे पेरेंट्स, टीचर्स, फर्स्ट रिस्पॉन्डर्स या मुश्किल वक्त में कोई हमारे साथ खड़ा हुआ दोस्त भी हमारा रियल लाइफ हीरो हो सकता है। और इसके अलावा आज है नेशनल विस्की सावर डे। एडल्ट्स जो इसे सेलिब्रेट करें उनके लिए वही रिमाइंडर, एंजॉय रिस्पॉन्सिबली एंड नेवर ड्रिंक एंड ड्राइव। तो आज का मैसेज है, थोड़ा मीठा खाइए, नाराजगी छोड़िए, हीरोज को अप्रिशिएट कीजिए और रिश्तों को चीजों से ज्यादा संभाल कर रखिए। और ऐसा ही रिश्ता बना है यश विंडोज एंड डोर्स के साथ, सालों का लोगों का और 30 सालों की वारंटी के साथ आपको देते हैं एक्साइटिंग प्रोडक्ट्स एंड सर्विसेज, विंडोज हो या डोर्स हो। और ब्रांड न्यू लोकेशन खुलने जा रही है सैटरडे, जैसा हम कॉन्स्टेंट अनाउंस करते जा रहे हैं। हमारे साथ जुड़े जा रहे हैं, बहुत बहुत बिजी हैं धर्म जी, बट ही टुक आउट टाइम फॉर अस। धर्म जी, कॉन्ग्रेचुलेशंस इन एडवांस फॉर द ग्रैंड ओपनिंग एंड वेलकम।
3: थैंक यू। आपको और सारा श्रोताओं को नमस्कार करता हूँ और सबको न्योता देता हूँ कि सारे लोग, जितने ब्राह्मण में जितने लोग हैं, सारे लोग हमारे ब्राह्मण के नए शोरूम, पहले तो ओंटारियो में एक अकेला शोरूम ऐसा बन रहा है जो विंडो डोर का एक्सक्लूसिव शोरूम होगा, जैसे ओंटारियो में ये अवेलेबल ही नहीं है।
0: अरे वाह, क्या बात है, क्या बात है। तो इतना अच्छा शोरूम जैसा देखा नहीं होगा लोगों ने, उस तरह से बन रहा है। वी आर सुपर एक्साइटेड धर्म जी टू बी पार्ट ऑफ द सेलिब्रेशन।
3: थैंक यू। ये शोरूम इसलिए बन रहा है कि सारे ब्राम्टनियन जितने लोग हैं हमारे वहाँ सब्जी मंडी के प्लाजा में, सब्जी मंडी में कुछ भी करने आते हैं तो वहाँ जाइए। विंडो डोर एक ऐसी जरूरत है जहाँ आपको कभी भी जरूरत हो सकती है। आपका ग्लास टूटा हुआ है, आपको विंडो रिप्लेसमेंट करवानी है, आपका डोर रिप्लेसमेंट करवाना है, एवरीथिंग इज अवेलेबल देयर। वहाँ स्टाफ होगा, शोरूम खुला होगा, तो आप सारी चीज आपको देखने को मिलेगी। ये परमानेंट लॉन्ग टर्म सॉल्यूशन है कि कई चीज लोग बेचते हैं लेकिन वो बेचने के बाद क्या बेचते हैं वो लोगों, कंज्यूमर को पता नहीं होता। और ज्यादातर 25-30 साल के इन्वेस्टमेंट में जो लोग अपनी इन्वेस्टमेंट करके जो विंडो डोर बदलवाते हैं उनको पता ही नहीं होता कि वो क्या बदलवा रहे हैं।
0: सही बात है, बिल्कुल 100%। तो अगर मैं बात करूं सिक्योरिटी की, अगर मैं बात करूं स्टाइल की, अगर मैं बात करूं सेफ्टी की, अगर मैं बात करूं एनर्जी सेविंग की, तो किस तरह से आपके प्रोडक्ट्स मदद कर सकते हैं सब तरफ से?
3: पहले तो विंडो की वारंटी, फ्रेम की वारंटी 30 साल की है, तो पहले विंडो फ्रेम की बात हो गई।
0: दूसरी बात हो गई
3: कि ग्लास अकेली ओंटारियो में कंपनी ऐसी है जो लोई 366 बाय डिफॉल्ट प्रोवाइड कर रही है। इसका मतलब ये हुआ -27 डिग्री विंटर में, +35 डिग्री समर में, एक ग्लास दोनों चीज में यूज होता है, वो भी 30 साल की वारंटी के साथ।
0: क्या बात है वाव, एब्सोल्युटली फैंटास्टिक। दोस्तों यहाँ पर आपका नंबर मैं अनाउंस कर दूं, धर्म जी से बात कर सकते हैं और ग्रैंड ओपनिंग पे जरूर पहुंचिएगा। दोस्तों यश विंडोज एंड डोर्स, क्वालिटी जो दिखे भी जो टिके भी, 416-732-3600 धर्म जी, और क्या ऐड करना चाहेंगे, क्या मैसेज देना चाहेंगे कम्युनिटी को, कितनी तैयारियां हो चुकी हैं?
3: सब तैयारी हो चुकी है। सबसे ज्यादा इम्पोर्टेंट एक्साइटिंग है कि आप हमारा पूरा लाइव लोकेशन पे वहाँ आप अवेलेबल होगी, आपका सारे लोग अवेलेबल होंगे। दूसरी वेरी इम्पोर्टेंट चीज ये कि हमारे मेयर साहब, ब्राह्मण के मेयर इसमें स्पेशल इंटरेस्ट लेके रिबन काटने आ रहे हैं, इनोग्रेशन करने आ रहे हैं, क्योंकि ब्राह्मण में एक नया रोजगार खुल रहा है, नया बिजनेस खुल रहा है, तो उसके लिए इनोग्रेशन करने आए, क्योंकि वो भी बड़े एक्साइटेड है कि ऐसा विंडो डोर का शोरूम आज तक अवेलेबल नहीं था, वो ब्राम्पटन में अवेलेबल हो चुका है। किसी कंपनी का शोरूम ब्राम्पटन में अवेलेबल नहीं है।
0: अरे वाह, क्या बात है धर्म जी। तो बस बहुत सारा एक्साइटमेंट है, फिर आपसे बातचीत होगी और बहुत जल्दी आपसे हम दोबारा बात करेंगे, कुछ और डिटेल्स लेंगे। यहाँ पर दोस्तों यश विंडोज एंड डोर्स का नंबर लिख लें, फिर से अनाउंस कर दूं, सैटरडे को आप हमसे जरूर मिलिएगा लाइव ऑन लोकेशन, जयपुर गोर प्लाजा, राइट ऑपोजिट टू सब्जी मंडी, 8917 द गोर रोड, ब्राम्पटन। यहाँ पर ब्रांड न्यू लोकेशन आ रही है यश विंडोज एंड डोर्स की, 416-732-3600 416-732-3600. थैंक यू सो मच धर्म जी फॉर योर प्रेशियस टाइम. बहुत जल्दी मुलाकात होती है. ऑल द बेस्ट.
3: प्लीज सर, हैव अ नाइस डे. थैंक
0: यू. जी और वेल दोस्तों, एक बहुत ही प्यारा सा गीत आप तक हम पहुंचाते हैं. एक छोटा सा टाइनी सा ब्रेक लेते हैं, कुछ मैसेजेस लेते हैं, उसके बाद एक बहुत प्यारा सा गीत है, पुराने दौर में लिए चलेंगे मस्ती की रेलगाड़ी को.
2: आप सुन रहे हैं शॉन एक्सप्रेस ऑन CMR FM 101.3. शॉन एक्सप्रेस, म्यूजिक जो करे आपको इम्प्रेस.
0: कैलिफोर्निया ऑनिंग एंड कैनोपी लार्जेस्ट ऑनिंग सप्लायर हैं कैनेडा वाइड. घर या बिजनेस के लिए पैटियो कवर, परगोला, बेसमेंट कैनोपी, रिट्रैक्टेबल ऑनिंग्स अगर आपको चाहिए तो आज ही कांटेक्ट कीजिए. ब्रैम्पटन का बड़ा ट्रस्टेड नाम है रेजिडेंशियल और कमर्शियल प्रोजेक्ट्स के लिए कैलिफोर्निया ऑनिंग एंड कैनोपी. फ्री बारबेक्यू मिल रहा है विद एनी कैनोपी और ऑनिंग इंस्टॉल्ड. टॉप क्वालिटी मटीरियल, स्टाइलिश मॉडर्न डिजाइंस, कंपेटिटिव प्राइसिंग. चाहे सनरूम हो या हो कस्टम कैनोपी, हर सॉल्यूशन मिलता है बड़े प्रोफेशनल इंस्टॉलेशन के साथ. 24 रीगन रोड, ब्रैम्पटन. कॉल कीजिए 416-831-4790.
4: Our loan and credit card bills keep piling up. We have no money to pay them with our limited income.
5: I'm afraid we are going to go bankrupt and lose our house, business and all assets. Is this why we immigrated to Canada?

सभी प्रमोशंस के लिए आप कॉल कर सकते हैं, अपने बिजनेस को आगे बढ़ाने के लिए हमसे बात कर सकते हैं 416-569-7812, 416-569-7812. नमस्कार.

0: You're listening to CMR FM 101.3.
1: Listen to us around the universe. www.cmr.fm.
2: The views, opinions, and information shared during this program by our hosts, guests, and callers are intended for general information and entertainment purposes only. While we strive to ensure your content is accurate and up-to-date, listeners should seek independent professional advice before making any financial, legal, medical, or other important decisions. This is Jam 101.3. Thank you for listening.
3: ये है जैम ऑन द सीएमआर 101.3 जतिन और अमिताभ के साथ हो जाइए टेंशन फ्री फ्री फ्री फ्री फ्री। हाँ जी मेरे भाइयों, ये है जैम 101.3 विद अमिताभ एंड जतिन। कनाडा में आने के बाद शुरू में लगता है कि यहाँ पर लाइट बिल भरना ऐ दिल है मुश्किल, यहाँ पर गाड़ी लेना ए दिल है मुश्किल, सही और सच्ची जॉब ढूंढना ए दिल है मुश्किल, सही मॉर्गेज ढूंढना ए दिल है मुश्किल। लेकिन मनोर भाइयों, अब टैरिफ आ चुकी है तो लगता है ए दिल है मुश्किल, क्योंकि अमेरिका और कनाडा के बीच जो टैरिफ वॉर शुरू हुई है पता नहीं कहां तक जाकर रुकेगी। हम तो यही दुआ करते हैं कि सरकार इस तरह से कदम उठाए कि जल्द से जल्द समाधान भी हो जाए और जल्द से जल्द लोगों को एक फाइनेंशियल सपोर्ट भी मिल जाए। वैसे कदम तो उठाए गए हैं, इसके बारे में आगे चलकर करेंगे बात। लेकिन अगर लगे कि ऐ दिल है मुश्किल, तो ऊपर वाले को जरूर याद कीजिएगा। हर मुश्किल का हल याद करो ऊपर वाले को पल पल। ये है जेएम 101.3, हम है आपके दोस्त जतीन।

0: For any information, call Sarab Sabarwal 647-864-8844. That's 647-864-8844.
1: Or visit teamsabarwal.com.
2: Your search ends here.
3: क्या आपका दिल भी ऑथेंटिक बैक होम जैसा फ्रेश साउथ इंडियन खाने को याद करता है? तो जरूर आइए अरुसुवई किचन, अब ब्रैम्पटन में 9025 टॉरब्रम रोड पर, फॉर तमिलनाडु का असली स्वाद विद अनमैच्ड फ्रेशनेस, क्रिस्पी डोसास, सॉफ्ट इडलीज, गर्मा गर्म वड़ाज, चेटीनाट स्पेशलिटीज, फ्लेवरफुल बिरयानीज और यमी नॉन वेज एंड वेज. एक बार खाएंगे तो चेन्नई और मदुरई की यादें ताजा हो जाएंगी. कॉल 905-500-3441 या विजिट arusuvai-kitchen.ca. हमारा इंस्टा arusuvai-kitchen.gta. तमिलनाडु का असली स्वाद बिल्कुल घर जैसा. माइंड इट.
4: सहजा केरला आयुर्वेदिक हर्बल कंसल्टेशन सेंटर. हम हमारे खानदान से नब्ज देकर सारी बीमारियों का इलाज जड़ी बूटियों द्वारा करते हैं. हमारे क्लाइंट्स को हमारे इलाज से बहुत फायदा हुआ है. अगर आप इन समस्याओं का जड़ से इलाज चाहते हैं तो तुरंत हमारा कांटेक्ट करें 647-327-8111. अस्थमा और एलर्जी, त्वचा की बीमारियां, कमर या घुटनों में दर्द या फिर अर्थराइटिस, बालों की समस्याएं, गैस अल्सर और पेट से जुड़ी समस्याएं, लेडीज प्रॉब्लम्स, वेट लॉस और सोराइसिस. आज ही संपर्क करें केरला वैद्य रत्न पीवी राज, ब्रैम्पटन और स्कारब्रो, 647-327-8111, 647-327-8111.

0: Wow, Mom. Dad is in a jolly good mood today. What is the reason?
1: This is the effects of famous masala chai by Navigator's Cafe.
0: I know this place. They're also famous for delicious snacks like aloo fettis, samosa, vada pav, spring rolls, mango lassi, and my favorite, samosa chaat and bhel.
2: Navigator's Cafe, located at northwest corner of Queen Street East and Airport Road in Brampton. They are conveniently open 24/7.
3: हाँ जी विदर भाइयों, GTA की साउथ एशियन कम्युनिटी के लिए हर घर का सपना अलग होता है और हर सपने को चाहिए सही मार्गदर्शन. इसीलिए जैम 101.3 लेकर आया है हर हफ्ते दो जबरदस्त ब्लॉकबस्टर टॉक शो सेगमेंट दो अनुभवी एक्सपर्ट्स के साथ. हर बुधवार शाम 4:25 से लेकर 4:50 तक रियल एस्टेट पर चर्चा पीके सबरवाल के साथ. जानिए रियल एस्टेट मार्केट के लेटेस्ट ट्रेंड्स, घर खरीदने और बेचने की स्मार्ट रणनीतियां, प्री कंस्ट्रक्शन प्रोजेक्ट्स की जानकारी और पाइए आपके हर सवाल का आसान और भरोसेमंद जवाब. हर थर्सडे शाम 4:30 से 4:50 तक मॉर्गेज मास्टर क्लास अय्याज भांजी के साथ. मॉर्गेज रिन्यूअल रीफाइनेंसिंग, पहली बार घर खरीदने वालों के लिए खास सलाह, ब्याज दरों की जानकारी और आसान मॉर्गेज प्लानिंग, सब कुछ सरल भाषा में. तो अपने सवाल के लिए तैयार रहिए और अपने सवाल तैयार रखिए. हर हफ्ते जुड़िए और अपने घर और निवेश से जुड़े फैसले लीजिए एक्सपर्ट एडवाइस के साथ. दो एक्सपर्ट्स, दो ब्लॉकबस्टर सेगमेंट्स और आपकी काम की जानकारी हर बुधवार और गुरुवार सिर्फ जैम 101.3 पर. जैम 101.3, जरा सुनिए तो.
4: आओ बच्चों, आज तुम्हें एक कहानी सुनाता हूं मैं.
5: जी बिल्कुल, बच्चे और बड़े बुजुर्ग सभी को अपनी मनपसंद कहानियां सुनने आना है हर रोज शाम 4 से 5 ऑन CMR 101.3 टू एक्सपीरियंस अ न्यू ड्राइव टाइम शो जैम 101.3 विद जतिन एंड अमिताभ. जरा सुनिए तो.
6: स्वागत एक बार फिर आप सभी का. मैं हूं अमिताभ एंड यू आर जैमिंग विद जैम 101.3 ऑन CMR. जरा सुनिए तो. ट्यूसडे आफ्टरनून क्रिकेट का सीन काफी गर्म है. कोलंबो में टीम इंडिया विक्ट्री की तरफ अग्रसर और एक यंग इंडियन विकेटकीपर ने सिलेक्शन डिबेट और इंटरेस्टिंग बना दी है. और वहीं इंग्लैंड कैंप में क्रिकेट से ज्यादा हेडलाइंस एक नाइट क्लब इंसिडेंट बना रहा है. तो चलिए सुनते हैं हमारी क्रिकेट की दुनिया में ऑन द पिच एंड ऑफ द पिच क्या धमाल चल रहा है आज. कोलंबो टेस्ट, इंडिया इन कमांड, श्रीलंका 265/8. कोलंबो में इंडिया की ग्रिप हुई और मजबूत. 503/9 डिक्लेयर्ड के जवाब में श्रीलंका वॉज 265/8, यानी अभी भी 238 रन बिहाइंड एट द एंड ऑफ डे 3. ध्रुव जुरेल की 115 नॉट आउट ने इंडिया को 500 के पार पहुंचाया और विकेटकीपर बैटर ने एक बार फिर प्रूफ कर दिया है कि इंडिया की टेस्ट बेंच स्ट्रेंथ कितनी गहरी है. वहीं प्रसिद्ध कृष्णा, मानव सुथार, जडेजा और मोहम्मद सिराज ने रेगुलर ब्रेक थ्रूज दिए. श्रीलंका की रेजिस्टेंस के बावजूद इंडिया रिमेन्स फर्मली अहेड इन द कॉन्टेस्ट. दूसरी ओर श्रीलंका स्पिनर प्रभात जयसूर्या हैज नाउ बीन सैंक्शंड अंडर द ICC कोड ऑफ कंडक्ट. दिस इज आफ्टर यशस्वी जायसवाल एंड असिता फर्नांडो वर ऑल्सो पीनलाइज फॉलोइंग देयर ऑन फील्ड कॉन्फ्रंटेशन ऑन डे 1. इंग्लैंड ड्रॉप ब्राइडन कार्स, बिग ऑफ फील्ड डेवलपमेंट. Bryden Carse has been dropped from England's squad for the second Pakistan test, while an incident in which he was reportedly seen in handcuffs outside a nightclub is investigated. Sonny Baker replaces him in the team. Bangladesh women's team captain Nigar Sultana Jyoti says simply reaching the Asia Cup knockouts is no longer enough. Bangladesh wants to make it to the final, with a possible India semi-final, making topping their group especially important for Bangladesh. A test match got over in just 750 balls. Ji haan, Australia's crushing victory over Bangladesh at Mackay lasted only 750 deliveries, making it the second shortest test played in Australia by balls bowled. Cricket ka 5-day format khalas in 2. To Colombo test mein India driver seat par, Dhruv Jurel making selectors think, aur international cricket mein field ke andar aur bahar dono jagah action hi action. From this was the cricket action from the world of cricket today on Jam 101.3. Zara suniye to. Aaiye chalte hain ek dhansu gaane ki aur. Take it away.

0: हाँ जी बेंद्र भाइयों, ये है जेम 101.3 और हम हैं आपके दोस्त जतीन। आइए सीधे चलते हैं सहजा आयुर्वेदिक कंसल्टेशन सेंटर, केरल वैद्य रत्न पीवी राज जी से करेंगे मुलाकात। ब्रैम्पटन और स्कारब्रो, उन्हें जरूर कॉल कीजिएगा 6473278111। नब्ज देखकर बीमारियों का इलाज करते हैं जड़ी बूटियों द्वारा, उनके क्लाइंट्स को बहुत फायदा हुआ है। आइए सीधे चलते हैं उन्हीं के पास, यानी कि केरल वैद्य रत्न पीवी राज जी से पास, और पूछते हैं पहला सवाल। वैद्य जी, जीटीए के वेदर में रोजाना चेंजेस देखने को मिलते हैं, कभी बहुत गर्म हो जाता है, कभी ठंडा हो जाता है। हमारे लिसनर्स को क्या सलाह देना चाहेंगे हेल्थ के लिए, प्लीज बताएं।
1: नमस्ते जी, आपने लिजनर्स के लिए बहुत अच्छा सवाल पूछा है। अभी कुछ दिनों से इधर ओंटारियो में भी वेदर भी उतना ठीक नहीं है। एक एक दिन थोड़ा सा ठंड लगता है, एक एक दिन थोड़ा गर्मी लगता है, एक एक दिन थोड़ा सा बारिश गिर रहा है, तो लास्ट वीकों से थोड़ा सा एयर भी पोल्यूटेड हो गए। ये मौसम में लोगों को बहुत सारी प्रॉब्लम्स हो जाता है, स्पेशली लोगों को, कुछ लोगों को ये रेस्पिरेटरी इश्यूज के ऊपर, ब्रीथिंग इश्यूज के ऊपर इफेक्ट हो जाता है। आस्थमा पेशेंट्स के लिए भी ये वेदर बहुत खराब है, और ये वेदर में लोगों को ऑटोमेटिकली बोन्स भी थोड़ा वीकनेस हो जाता है, जॉइंट पेन, बैक पेन, नी पेन, ऐसा आर्थराइटिस भी थोड़ा सा बढ़ने का चांस होता है। इसीलिए सभी लोग ये वेदर में थोड़ा संभाल के रहना पड़ेगा, और पानी भी थोड़ा सा ज्यादा पानी पीना है, एटलीस्ट 2-3 लीटर पानी एवरीडे पीना है, वो भी थोड़ा सा लूक वार्म वाटर जैसे पीना।
0: बहुत बहुत शुक्रिया वैद्य जी। बेंद्र भाइयों, हम बात कर रहे हैं केरल वैद्य रत्न पीवी राज जी से, कॉल जरूर कीजिएगा उन्हें 6473278111। वैद्य जी, मन में एक सवाल आता है, अब ऐसे में हमारे अर्थराइटिस के पेशेंट्स भी काफी मुश्किलों का सामना करते हैं, उनके लिए कोई सजेशन प्लीज।
1: दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। आजकल 60% पीपल दे आर सफरिंग विथ आर्थराइटिस। कुछ लोगों को घुटनों में पेन होता है, कुछ लोगों को कमर में होता है, कुछ लोगों को शोल्डर में, कुछ लोगों को नेक में, तो कुछ लोगों को सायाटिका का प्रॉब्लम, कुछ लोगों को मसल्स का प्रॉब्लम, तो कुछ लोगों को आर्थराइटिस, रूमेटॉइड आर्थराइटिस या ओस्टियो आर्थराइटिस। तो इसका कारण अलग अलग हो जाता है, लोगों का वीक इम्यूनिटी का कारण से भी होता है, ब्लड सर्कुलेशन बराबर नहीं होता है उसका कारण से भी होता है, नर्वस सिस्टम थोड़ा वीकनेस होता है उसका कारण से भी होता है, कुछ लोगों को वेरिकोस वीन्स भी होता है, तो वो भी एक प्रॉब्लम है। ओवरवेट, ओबेसिटी, दैट इज आल्सो मेन प्रॉब्लम इन दिस वर्ल्ड नाउ। सो ओबेसिटी का कारण से भी होता है, कुछ लोगों ने नीचे गिर जाता है तो उसका कारण से भी हो जाता है, मसल्स भी पकड़ता है कुछ लोगों को उसका कारण से भी होता है, और घुटनों में कुछ लिगमेंट होता है ना, कार्टिलेज, वो शॉर्टेज होता है कुछ लोगों को उसका कारण से भी होता है। तो इसका कारण से लोग चलने में, उठने में, बैठने में बहुत तकलीफ होता है, रेगुलर काम भी होता है ना वो भी कर नहीं सकते, तो इसका कारण से बहुत लोगों को रात को नींद भी नहीं मिलता है, बहुत तकलीफ होता है, सर्जरीज, नी रिप्लेसमेंट्स ऐसा भी होता है। तो इसके लिए हमारे पास तो बहुत अच्छा दवाई केरला में, तो हम हमारा हेल्प से बहुत अच्छा जड़ी बूटियों का दवाई बनाता है, तो दवाई बना के देता है, वो दवाई खाने के बाद कुछ ऑयल्स भी होता है वो भी देता है, तो उसके बाद दुनिया में सभी लोगों को भी बहुत अच्छा फायदा हो जाता है हमारा दवाई के साथ। हमारे पास स्किन प्रॉब्लम्स के लिए, वीकनेस के लिए, और कपल्स को शादी होता है बहुत साल को पहले लेकिन बच्चा नहीं मिलता है, तो उसके लिए, इनफर्टिलिटी के लिए, लेडीज के लिए और जेंट्स के लिए, कुछ भी प्रॉब्लम रहेगा तो लोगों का शरीर में, उसके लिए भी बहुत अच्छा दवाई है। और वेट लॉस के लिए, लिवर इश्यूज होता है ना, फैटी लिवर, उसके लिए, हेयर का प्रॉब्लम्स होता है ना उसके लिए, गैस्ट्रिक प्रॉब्लम्स होता है ना उसके लिए, डायबिटीज के लिए, यूरिनरी ट्रैक इन्फेक्शन के लिए माइग्रेन के लिए, सारी प्रॉब्लम्स के लिए हमारे पास बहुत अच्छा दवाई मिल जाता है।
0: वैद्य जी, आपका बहुत बहुत शुक्रिया। बंदर भाइयों, ये थे केरला वैद्य रत्न पीवी राज जी, सहजा आयुर्वेदिक कंसल्टेशन सेंटर, जरूर कॉल करके उनकी एडवाइस लीजिएगा 6473278111 6473278111। नब्ज देखकर बीमारियों का इलाज करते हैं जड़ी बूटियों द्वारा। ये है जेम 101.3, हम हैं आपके दोस्त जतीन।

0: ऑफ स्टार लाइफ इंश्योरेंस एंड इन्वेस्टमेंट इंक एक ब्रोकर है और डील करते हैं सारे मेजर कंपनीज के साथ. ही कैन शॉप अराउंड फॉर यू फॉर द बेस्ट प्लान्स ऑफ इंश्योरेंस दैट विल सूट योर बजट एंड नीड्स. संजीव पुरी इंश्योरेंस प्लान्स में तो माहिर है ही, लेकिन हाई रिस्क इंश्योरेंस प्लान्स के बेस्ट रेट्स दिलाने में बहुत ही माहिर है. तो अगर किसी को ब्लड प्रेशर, डायबिटीज, हार्ट अटैक, बाईपास सर्जरी, लिवर या किडनी के इश्यूज हो या इंश्योरेंस कंपनी ने आपकी इंश्योरेंस डिक्लाइन की है, तो संजीव पुरी को आप कॉल करेंगे फ्री कोट के लिए. और अगर आपको लगता है कि आप इंश्योरेंस पॉलिसी के बहुत हाई प्रीमियम पे कर रहे हैं, तो पॉलिसी रिव्यू करवाने के लिए भी संजीव पुरी 416-890-3232.
1: Another Don Clean with the Don Ducks.
2: Oh, he's doing dishes with Dawn Platinum.
3: The only soap trusted to save wildlife affected by oil.
2: And Platinum removes up to 99% of grease and food residue, so he doesn't have to work so hard.
3: Well, flap my wings. What'll he do with all that unused elbow grease?
2: Organize the fridge, the spice rack, the junk drawer.
3: What are you quacking on about? He's gonna make enchiladas.
2: More dishes? That's giving this duck goosebumps.
1: Dawn Platinum, the better grease getter.
4: इस बार रक्षाबंधन के पावन अवसर को बनाएं और भी ज्यादा स्टाइलिश. खरीदिए GTA में कहीं और न मिलने वाली बेहद खूबसूरत राखियां इंडिया सजावट एंड पूजा हट से. और आपके घर की सजावट के लिए भी बहुत कुछ मिलेगा ओनली एट इंडिया सजावट एंड पूजा हट. 31 मेलनी ड्राइव यूनिट 5 ब्रैम्पटन 905-458-6808.
5: Craving something truly authentic? Mumbai Grill in Ajax has been delighting taste buds for 18 years. Just specialized in mouth-watering momos plus tandoori and butter chicken momos. Jahan milenge best of South Asian cuisine. Miss out mat karna unka famous lunch and dinner buffet. Signature dishes like butter chicken and shahi paneer. Agar food aapko karta hai excite, to zarur pahunche Mumbai Grill at 619 Kingston Road, Ajax. Call kare at 905-239-4077 ya visit kare MumbaiGrill.com. Available for small and very large group catering services. Mumbai Grill, yummy food that thrills.
6: याद रखना दुर्जन, मेरे बेटे आएंगे, मेरे करण अर्जुन आएंगे.
7: जी हाँ, करण अर्जुन, राम श्याम, सीता गीता और आप सभी को बस ट्यून करना है हर शाम 4 से 5 बजे ऑन CMR 101.3 फॉर अ ब्रांड न्यू ड्राइव टाइम शो जैम 101.3 विद जतिन एंड अमिताभ. जरा सुनिए तो.
8: हाँ जी मित्र भाइयों, ये है जैम 101.3 विद जतिन एंड अमिताभ. अमेरिका और कनाडा के बीच चल रहा व्यापारिक तनाव अब एक नए और बेहद गंभीर मोड़ पर पहुंच गया है. अमेरिकी प्रशासन द्वारा कनाडाई सामानों पर 50% तक के भारी भरकम टैरिफ लागू करने के बाद अब ओटावा ने भी कड़ा रुख अपनाते हुए अमेरिकी उत्पादों पर सख्त जवाबी कार्रवाई यानी कि काउंटर टैरिफ का ऐलान कर दिया है. बंदर भाइयों, आज ये ऐलान करते हुए कनाडा के फाइनेंस एंड नेशनल रेवेन्यू मिनिस्टर ने क्या कहा, आइए सुनाता हूँ.
9: With targeted countermeasures and a substantive support package for workers and businesses totaling $7.5 billion. Because when Canadians stand together, nothing can stop us. Over the past several months, as you have seen, our government has worked intensely and in good faith to reach a mutually beneficial trade agreement with the United States of America.
8: हाँ जी मित्र भाइयों, कोशिशें बहुत की गई लेकिन जो रिजल्ट चाहिए था वो न मिल सका. अब तो डोनाल्ड ट्रंप साहब ने ये भी कह दिया है कि लेक ओंटारियो को लेक अमेरिका नाम दे देंगे. वैसे आपको बताएं, कनाडा सरकार ने स्पष्ट कर दिया है कि वह अमेरिका के हर एक टैरिफ का जवाब डॉलर फॉर डॉलर और रेट फॉर रेट यानी कि ईंट का जवाब पत्थर से देते. कनाडा ने लगभग 27.6 अरब डॉलर के अमेरिकी आयात पर काउंटर टैरिफ लगाने का फैसला किया है. कनाडा के ये नए जवाबी टैरिफ 8 सितंबर से प्रभावी हो जाएंगे. इसके तहत अमेरिकी उत्पादों पर 15, 25 और 50% तक का अतिरिक्त टैरिफ लगाया जाएगा. किन सेक्टरों पर होगा असर? कनाडा ने इन जवाबी उपायों का मुख्य फोकस स्टील एल्यूमिनियम डेयरी उत्पाद जैसे कि अप्लायंसेस कृषि उपकरण पल्प एंड पेपर फर्नीचर और इलेक्ट्रॉनिक सेक्टर होंगे जो अमरीकी पाबंदियों से सबसे ज्यादा प्रभावित हुए हैं। इस ट्रेड वॉर से घरेलू उद्योगों और श्रमिकों को बचाने के लिए कैनेडाई सरकार ने अरबों डॉलर के फाइनेंशियल पैकेजेस का ऐलान किया है। इसमें छोटे और मध्यम उद्योगों के लिए 1.5 अरब डॉलर का क्षेत्रीय टैरिफ रिस्पांस इनिशिएटिव और लेबरर्स के लिए 3.5 अरब डॉलर की रैपिड रिस्पांस योजना शामिल है। बंदर भाइयों, कनाडाई प्रधानमंत्री ने अमेरिका के साथ हालिया बातचीत के विफल होने के बाद कहा है कि देश की संप्रभुता और अर्थव्यवस्था से कोई समझौता नहीं किया जाएगा। हाँ जी बंदर भाइयों, एक के बाद एक तारीख पे तारीख नहीं लेकिन टैरिफ पे टैरिफ की खबरें आ रही है। ये है जेएम 101.3 विथ जतिन एंड अमिताभ।

0: Wow, Mom. Dad is in a jolly good mood today. What is the reason?
1: This is the effects of famous masala chai by Navigator's Cafe.
0: I know this place. They're also famous for delicious snacks like aloo patties, samosa, vada pav, spring rolls, mango lassi, and my favorite, samosa chaat and bhel.
2: Navigator's Cafe, located at northwest corner of Queen Street East and Airport Road in Brampton. They are conveniently open 24/7.
3: मम्मा इस बार मैं भी कृष्णा बनूंगा
4: और मैं कृष्णा के लिए मग लेकर आऊंगी।
5: अच्छा जी, तो ठीक है, इस बार भी हमेशा की तरह हम चलेंगे इंडिया सजावट एंड पूजा हट पर और अपने कृष्णा के लिए सुंदर सा क्राउन, पीकॉक फेदर और बांसुरी भी लेंगे और कृष्णा की दीदी के लिए भी बहुत सुंदर सी ड्रेस लेंगे।
6: इंडिया सजावट एंड पूजा हट पर आएं और कृष्ण महोत्सव की ढेरों खुशियां मनाएं। खरीदिए कृष्ण जी के ब्यूटीफुल स्टैचूज, जगमगाती ढेरों ड्रेसेस और सजावट का सामान भी। इंडिया सजावट एंड पूजा Hut, 31 Melanie Drive, Unit 5, Brampton, 905-458-6808.
7: आओ बच्चों, आज तुम्हें एक कहानी सुनाता हूँ मैं।
8: जी बिल्कुल, बच्चे और बड़े बुजुर्ग सभी को अपनी मनपसंद कहानियाँ सुनने आना है हर रोज शाम 4 से 5 बजे ऑन CMR 101.3 टू एक्सपीरियंस अ न्यू ड्राइव टाइम शो जैम 101.3 विद जतिन एंड अमिताभ। जरा सुनिए तो।
9: एक किस्सा सुनो।
8: वेलकम बैक मित्रों, मैं हूं अमिताभ एंड यू आर जैमिंग विद जैम 101.3 ऑन CMR। जरा सुनिए तो। बॉलीवुड में आज ट्रेलर्स का तड़का है, कॉन्ट्रोवर्सीज का मसाला भी। अक्षय और सैफ आमने सामने हैं, वहीं इमरान हाशमी का कम्प्लीटली नया अवतार आया सामने। कृति सनोन ने क्रिटिक्स को दिया सीधा जवाब और साउथ सिनेमा में यश की टॉक्सिक रिलीज से पहले ही बॉक्स ऑफिस का टेम्परेचर बढ़ा चुकी है। चलिए अब रुक करते हैं बॉलीवुड की कुछ झकास हेडलाइंस का। अक्षय और सैफ अली खान आई फेस टू फेस और गेम इस बार साइकोलॉजिकल है। प्रियदर्शन की थ्रिलर हैवान का ट्रेलर आज रिलीज हुआ विद सैफ प्लेइंग अ विजुअली इम्पेयर्ड मैन अपेरेंटली कॉट इन अक्षय माइंड गेम्स। सेंट्रल मिस्ट्री मेकर्स ने अभी भी वेरी क्लेवरली हिडन रखी है एंड वी आर नॉट कंप्लेनिंग। इमरान हाशमी टर्न्स एक्शन हीरो विद गन मास्टर G9। अवारापन की रोमांटिक इंटेंसिटी को फिलहाल साइड में रखते हैं क्योंकि इमरान हाशमी अब फुल एक्शन मोड में आ चुके हैं। गन मास्टर G9 का टीजर आज सामने आया गिविंग ऑडियंसेस अ फर्स्ट लुक एट इमरान्स नेक्स्ट बिग स्क्रीन अवतार। रोमांटिक इमरान को तो ऑडियंस जानती है, क्या एक्शन रूपी इमरान चल पाएगा? दैट्स अ क्वेश्चन इवन वी आर आस्किंग। यश की टॉक्सिक रिलीज से पहले बॉक्स ऑफिस का फीवर। KGF स्टार यश की अपकमिंग फिल्म टॉक्सिक कल थिएटर्स में आ रही है और आंध्र प्रदेश और तेलंगाना हैव नाउ परमिटेड इंक्रीज टिकट प्राइजेस फॉर इट्स ओपनिंग रन। भाई वाह, आंध्र प्रदेश में स्पेशल बेनिफिट शो के टिकट 600 रुपए तक जा सकते हैं वाइल तेलंगाना हैज ऑल्सो अप्रूव्ड इंक्रीज इन टिकट प्राइजेस। यानी फिल्म रिलीज कल लेकिन बॉक्स ऑफिस हंगामा अभी से आज से। रक्षाबंधन एडवर्टाइजमेंट में अभिनेत्री कृति सनोन के कपड़ों को लेकर जो क्रिटिसिज्म हुआ था, कृति सनोन हैज नाउ रिस्पॉन्डेड। हर मैसेज इज असेंशियली कल्चर को वुमेन्स क्लोथिंग से मेजर करना बंद कीजिए, कल्चर इज इन द हार्ट। फैशन डिबेट से स्टोरी अब एक लार्जर क्वेश्चन पर आ गई है, 2026 में भी एक्ट्रेसेस को क्या पहनना चाहिए ये कौन डिसाइड करेगा? वही तापसी पन्नू गांधारी लैंड सेना कॉपीराइट राव। तापसी पन्नू की अपकमिंग फिल्म गांधारी रिलीज से पहले कंट्रोवर्सी में। राइटर कल्याण बांडी एलिजेस द फिल्म इज बेस्ड ऑन अ स्टोरी ही रजिस्टर्ड अर्लियर एंड हैज क्वेश्चन्ड राइटर प्रोड्यूसर कनिका ढिल्लों'स क्रेडिट। द प्रोडक्शन साइट हैज डिनाइड द एलिगेशन एंड द मैटर इज ऑन गोइंग। और अब बॉलीवुड से एक जेन्युइनली अच्छी स्टोरी। सलमान खान के लॉन्ग टाइम बॉडी डबल परवेज काजी अंडरवेंट हार्ट सर्जरी रिसेंटली और उनकी फैमिली ने कहा कि सलमान भाई स्टेप्ड इन टू हेल्प विद द ट्रीटमेंट एंड पर्सनली केप्ट ट्रैक ऑफ ऑल द अरेंजमेंट्स। भाई भाई आखिर भाई होता है भाई। OTT सीरीज ऑपरेशन सफेद सागर का एक इमोशनल सीन को लेकर इन एन इंटरेस्टिंग रियलिटी चेक। द सीरीज डिपिक्ट्स एन इमोशनल फाइनल एक्सचेंज इन्वॉल्विंग अलका आहूजा एंड फॉर्मर एयर चीफ मार्शल BS धनोआ उर्फ टोनी। बट रिपोर्ट्स हैव क्लैरिफाइड दैट द पर्टिकुलर सीन डिडंट एक्चुअली हैपन दैट वे इन रियल लाइफ। अ यूजफुल रिमाइंडर फॉर अस ऑल्सो दैट बेस्ड ऑन रियल इवेंट्स और डॉक्यूमेंट्री दोनों एक चीजें नहीं होते। तो दोस्तों, अक्षय सैफ का हैवान, इमरान का एक्शन मेकओवर, यश की टॉक्सिक मेनिया और कृति का एक सवाल जिस पर चाय के साथ डिबेट जरूर हो सकती है। एंटरटेनमेंट का हेल्दी डोज जारी रहेगा यहीं पर। मैं हूं अमिताभ, यू आर ट्यून टू जैम 101.3। जरा सुनिए तो, चलिए चलते हैं एक खूबसूरत गाने की ओर। टेक इट अवे।

0: ट्रेडिंग और क्रिप्टोकरेंसी में है आपका इंटरेस्ट, लेकिन आपको पता नहीं शुरुआत कैसे करें या इसमें सक्सेसफुल कैसे हूँ, तो कॉल कीजिए कुमार 9059294881। कुमार आपको अपनी कई सालों की ट्रेडिंग एक्सपीरियंस से आपको गाइड करेंगे एक्सपर्टली यूजिंग द लेटेस्ट टेक्नोलॉजी। यानी आप इजीली 100 से $300 बना पाएंगे हर दिन। बस चाहिए एक फास्ट कंप्यूटर, इंटरनेट कनेक्शन, टाइम, डेडिकेशन और कुमार के एक्सपर्ट गाइडेंस। टू बिकम एन एक्सपर्ट ट्रेडर कॉल 9059294881 और विजिट kumartradessolutions.com।
1: जब मन ललचाए ऑथेंटिक साउथ इंडियन फूड खाने को, तो जरूर आइए अरुसुवाई किचन, अब ब्रैम्पटन में 9025 टॉड ब्रैम रोड पर, फॉर तमिलनाडु का असली स्वाद विद अनमैच्ड फ्रेशनेस। क्रिस्पी डोसा, सॉफ्ट इडली, गर्मा गर्म वड़ा, चेट्टीनाड स्पेशलिटीज, बिरयानीज और भी वेज एंड नॉन वेज डिशेज। एक बार खाएंगे तो चेन्नई और मदुरई की यादें ताजा हो जाएंगी। कॉल 9055003441 या विजिट arusuvai-kitchen.ca। हमारा इंस्टा arusuvaikitchen.gta। तमिलनाडु का असली स्वाद बिल्कुल घर जैसा। वणक्कम।
2: हाँ जी मित्र भाइयों, ये है जेम 101.3 विद जतिन एंड अमिताभ। हम हैं आपके दोस्त जतिन। आज कैनेडियन सरकार ने सपोर्ट पैकेज घोषित कर दिए, ईआई चेंजेस भी घोषित कर दिए, नई लोन अपॉर्चुनिटी के बारे में भी बताया। आइए इस पर एक नजर करते हैं। आज मिनिस्टर ने बताया कि नया 7.5 बिलियन सपोर्ट पैकेज फॉर कैनेडियन वर्कर्स हिट हार्डेस्ट बाय द लेटेस्ट राउंड ऑफ टैरिफ्स घोषित कर दिया गया है। इसमें क्या इंक्लूड होगा, आइए एक झलक देता हूँ। टेम्पररी एम्प्लॉयमेंट इंश्योरेंस ईआई एलिजिबिलिटी चेंजेस, सो अफेक्टेड वर्कर्स कैन एक्सेस 3.5 बिलियन इन एडिशनल अवेलेबल फंडिंग। एन एडिशनल 1.5 बिलियन इन्वेस्टमेंट थ्रू द रीजनल टैरिफ रिस्पॉन्स इनिशिएटिव। अ न्यू $500 मिलियन लिक्विडिटी स्ट्रीम अंडर द बिजनेस डेवलपमेंट बैंक ऑफ कैनेडाज पिवोट टू ग्रो प्रोग्राम। एक्सपांडेड एलिजिबिलिटी रिक्वायरमेंट्स टू एक्सेस बिजनेस डेवलपमेंट बैंक ऑफ कैनेडाज टैरिफ रिलेटेड प्रोग्राम्स। $2 बिलियन फॉर द कैनेडा स्ट्रॉन्ग डाइवर्सिफिकेशन फंड। और चेंजेस लाए गए हैं टू द लार्ज एंटरप्राइज टैरिफ लोन फैसिलिटी। बंदर भाई, अब इंडिविजुअल को इससे क्या फायदा होगा या क्या सपोर्ट मिलेगा, इसके बारे में डिटेल जानकारी का इंतजार है। लेकिन कहा गया है कि कई फंड ऐसे हैं जो नॉन रिपेएबल कंट्रीब्यूशंस के सरहद में आएंगे, उसमें आएंगे। यानी कि कई फंड आपको सपोर्ट करने के लिए दिए जाएंगे लेकिन शायद उसे वापस नहीं करने होंगे। लेकिन बिटवीन द लाइन्स क्या है, इसका इंतजार किया जा रहा है। ये है जेएम 101.3। हम हैं आपके दोस्त जतीन। हम यही प्रार्थना करेंगे किसी की भी जॉब को अफेक्ट ना हो और हर किसी का घर, हर किसी की जिंदगी आराम से चलती रहे। जरा सुनिए तो डोनाल्ड ट्रंप साहब। ये है जेएम 101.3। हम हैं आपके दोस्त जतीन।

नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल दोस्तों, मैं हूं अमिताभ एंड यू आर जैमिंग विद जैम 101.3 ऑन CMR। जरा सुनिए तो, आज भारत की हेडलाइंस में पॉलिटिक्स भी है, पॉलिसी भी, चाइना के साथ बॉर्डर डिप्लोमेसी, कास्ट सेंसस पर नया पॉलिटिकल कॉन्फ्रंटेशन, साइबर सिक्योरिटी का सीरियस एंगल और एक स्टोरी जो डायरेक्टली स्टूडेंट्स और फैमिलीज दोनों को इंटरेस्ट करेगी। तो ये है भारत की कुछ खास न्यूज हेडलाइंस ओनली ऑन जैम 101.3। आइए शुरू करते हैं। भारत के नेशनल सिक्योरिटी एडवाइजर अजीत डोवाल और चाइनीज फॉरेन मिनिस्टर वांग यी ने इंडिया चाइना बाउंड्री इशू पर 25th राउंड ऑफ स्पेशल रिप्रेजेंटेटिव्स टॉक्स करी। अरुणाचल फ्रंटियर कंसर्न्स के बीच ये एक इंपॉर्टेंट डिप्लोमेटिक मीटिंग रही। वहीं मल्लिकार्जुन खारगे और राहुल गांधी ने पीएम नरेंद्र मोदी को ज्वाइंट लेटर लिखकर एग्जिस्टिंग कास्ट सेंसस क्वेश्चनेयर स्क्रैप करने और पॉलिटिकल पार्टीज, एक्सपर्ट्स और पब्लिक से वाइडर कंसल्टेशन की डिमांड की। फॉर्मर फाइनेंस मिनिस्टर पी चिदम्बरम ने पार्लियामेंट्री पैनल के सामने साइमल्टेनियस इलेक्शंस प्रपोजल्स को फ्लॉड बताया, आर्ग्यूइंग दैट इट्स प्रेजेंट स्ट्रक्चर रेजेस सीरियस कॉन्स्टिट्यूशनल क्वेश्चंस। वहीं NIA यानी नेशनल इन्वेस्टिगेशन एजेंसी हैज कंडक्टेड सर्चेस अक्रॉस 5 लोकेशंस इन महाराष्ट्र, गुजरात, तेलंगाना, बिहार एंड दिल्ली व्हाइल प्रोबिंग साइबर अटैक्स टारगेटिंग गवर्नमेंट वेबसाइट्स ड्यूरिंग ऑपरेशन सिंदूर। India's ethanol program is under renewed scrutiny over the diversion of subsidized FCI rice towards ethanol production, raising a basic policy question: energy security versus food security, balance kahan ho? Wahin, a new report says applications from Indian students to US undergraduate programs fell by 15% amidst tougher visa and immigration conditions in US. This is very relevant for South Asian families planning overseas education. वहीं India says nearly 22 million hectares of degraded and deforested lands were restored during 2011 to 2020 against a 26 million hectare target for 2030, with the program also generating major rural employment. Kudos. तो diplomacy से democracy तक, education से environment तक, भारत की स्टोरी सिर्फ हेडलाइंस नहीं है, इनका इंपैक्ट दुनिया भर में रहने वाले इंडियंस तक पहुंचता है। भारत से जुड़ी और भी पॉजिटिव और यूजफुल अपडेट्स के लिए कीप लिसनिंग टू जैम 101.3। जरा सुनिए तो, चलिए सुनते हैं ये खूबसूरत सा गाना।

0: मेडिकल इंश्योरेंस फॉर न्यू इमिग्रेंट्स, विजिटर्स इंश्योरेंस एंड सुपर वीजा इंश्योरेंस के बेस्ट रेट एंड बेस्ट प्लान के लिए एक ही नाम
1: संजीव। शॉप अराउंड करके आपको बेहतरीन रेट और प्लान की गारंटी देते हैं, जिसमें खांसी, जुकाम, बुखार, स्लिप एंड फॉल, वॉकिंग क्लिनिक डॉक्टर की फीस, मेडिसिन एंड टेस्ट के खर्चे से लेकर एम्बुलेंस, हॉस्पिटलाइजेशन एंड फ्यूनरल तक सब कवर्ड होता है। इसके अलावा बच्चों की RESP, लाइफ इंश्योरेंस, मॉर्गेज इंश्योरेंस, फ्यूनरल इंश्योरेंस, क्रिटिकल इलनेस इंश्योरेंस, डिसेबिलिटी इंश्योरेंस के लिए भी कॉल करें संजीव पुरी 416-890-3232.
2: Another Don Clean with the Don Ducks.
3: Oh, he's doing dishes with Dawn Platinum.
4: The only soap trusted to save wildlife affected by oil.
3: And Platinum removes up to 99% of grease and food residue, so he doesn't have to work so hard.
4: Well, flap my wings. What'll he do with all that unused elbow grease?
3: Organize the fridge, the spice rack, the junk drawer.
4: What are you quacking on about? He's gonna make enchiladas.
3: More dishes? That's giving this duck goosebumps.
2: Dawn Platinum, the better grease getter.
5: सहजा केरला आयुर्वेदिक हर्बल कंसल्टेशन सेंटर। हम हमारे खानदान से नब्ज देखकर सारी बीमारियों का इलाज जड़ी बूटियों द्वारा करते हैं। हमारे क्लाइंट्स को हमारे इलाज से बहुत फायदा हुआ है। अगर आप इन समस्याओं का जड़ से इलाज चाहते हैं तो तुरंत हमारा कांटेक्ट करें 6473278111। अस्थमा और एलर्जी, त्वचा की बीमारियां, कमर या घुटनों में दर्द या फिर आर्थराइटिस, बालों की समस्याएं, गैस अल्सर और पेट से जुड़ी समस्याएं, लेडीज प्रॉब्लम्स, वेट लॉस और सोराइसिस, आज ही संपर्क करें केरला वैद्य रत्न पीवी राज, ब्रेम्पटन और स्कारब्रो, 6473278111, 6473278111।

और इसी पॉजिटिव नोट के साथ आज के लिए दीजिए इजाजत। उम्मीद है आपका ट्यूसडे प्रोडक्टिव भी रहा होगा और थोड़ा म्यूजिकल भी। कल फिर मिलेंगे इसी वक्त नए गाने, नई बातें और ढेर सारी गुड वाइब्स के साथ। मैं हूं अमिताभ, आप सुन रहे हैं जैम 101.3। जरा सुनिए तो। पीस आउट।

मीट अगेन ऑन द डे जहां लेक ओंटारियो में आज पानी से ज्यादा राजनीति उछल उबल रही है। ट्रम्प कह रहे हैं कि क्यों ना उसका नाम बदल दिया जाए, लेक ओंटारियो से लेक अमेरिका कर दिया जाए, एज इफ इससे उनकी टैरिफ की प्यास कुछ बुझ जाएगी। ऐसा लगता है आपको? मुझे तो नहीं लगता। वो क्या होता है ना, जब बात ट्रेड वॉर में अपने हिसाब से ना चल रही हो ना, तो सीधा ज्योग्राफी भी नेगोशिएशन टेबल पे आ ही जाती है। बस वही हो रहा है। और इन सब बातों के बीच बेचारी लेक ओंटारियो जो है वो सोच रही है कि भाई ये नाम तो मेरा अमेरिका और कनाडा से भी पुराना है, ये कौन होते हैं इसे बदलने वाले। हाँ, कनाडा ने भी जवाब दे दिया है। सितंबर 8 से जो रफली 27.6 बिलियन अमेरिकन गुड्स हैं उन पर 15% 25% 50% तक का काउंटर टैरिफ्स लगेंगे। इस पूरा एक खुलासा इस पे हुआ है, लाइक यू नो डेयरी, सी फूड, एल्यूमिनियम, क्लोथिंग, अप्लायंसेस एटसेट्रा। बट व्हाट इट मींस फॉर ऑल ऑफ अस कि अब मेड इन अमेरिका के साथ साथ शॉपिंग करते वक्त आपको टैरिफ्स इंक्लूडेड भी चेक करना पड़ सकता है। सो ऑन दिस, नाम बदले या ना बदले, बट ट्रम्प की सोच भाई कोई बदले वाली विशफुल नोट। दिस इज स्वाति एट पायस्विनी ऑन फिल्मी नुक्कर सीएमआर 101.3 एफएम पर सेइंग कि लेक का नाम बदलने से क्या इतिहास बदल जाएगा या दोनों देशों के बीच बढ़ता फासला घट जाएगा? नाम ओंटारियो हो या अमेरिका, पानी तो वही रहेगा और दोनों देशों के बीच बेहतर रहेगा। कोई समझाए इन्हें फालतू बातों से क्या ही हासिल होगा। हाँ, इनका खुद मन जो है वो जरूर शायद थोड़ा सा बहलता रहेगा। क्या कहते हैं?

ऑटो एंड होम इंश्योरेंस के बिना तो काम चलता नहीं इफ यू हैव अ कार एंड अ हाउस, है ना। अब ऐसे में सोचिए, अगर आपके पास एक कार और एक घर है और इंश्योरेंस पर सालाना आपके 400 से 500 डॉलर्स की बचत हो जाती है, या आपके पास दो कार और एक घर है और ऑटो एंड होम इंश्योरेंस पर आपकी बचत हो सकती है अप टू 2029 डॉलर्स, तो कितना अच्छा हो, है ना। यानी कि रेट्स भी सही मिल जाए, कवरेज कॉम्प्रोमाइज ना हो एंड सेविंग्स ही सेविंग्स। तो भाई ये पॉसिबल है। कॉल सिमरन बेंस फ्रॉम ऑल स्टेट की मिसिसागा साउथ एजेंसी एट 6474535353। उनको कॉल करेंगे तो आपको और ऑप्शंस भी पता चल सकते हैं। 6474535353।

0: करना चाहते हैं अपने बिजनेस को नई ऊंचाइयां और नए आयाम, तो एडवरटाइज करें हमारे साथ ऑन फिल्मी नुक्कड़। इंटरेस्टिंग पैकेजेस अवेलेबल। 6478305042, 6478305042, विजिट filminukkad.com।
1: नजर बदलो, नजारे बदल जाएंगे। आप भी अपनी जिंदगी की खूबसूरती को देखें स्पेक्स एक्सप्रेस के साथ, जहां है वर्ल्ड क्लास क्वालिटी डिजाइनर सनग्लासेस, आई ग्लास फ्रेम्स एंड लार्ज सिलेक्शन ऑफ कॉन्टैक्ट लेंसेज।
2: गेट सिलेक्टेड फ्रेम रेगुलर सिंगल विजन लेंसेज फॉर जस्ट $129। 35 रेजोल्यूशन ड्राइव, ब्रैम्पटन इन वॉलमार्ट प्लाजा। कॉल 9054608888, दैट्स 9054608888।
1: सर्विंग फ्रॉम टू लोकेशंस, बेस्ट सर्विस बेस्ट प्राइस, स्पेक्स एक्सप्रेस के साथ।
3: क्या आप भी एस्मा, एलर्जी, स्किन प्रॉब्लम, कमर या घुटनों में दर्द से जूझ रहे हैं, या आर्थराइटिस, हेयर प्रॉब्लम, गैस प्रॉब्लम, अल्सर, लेडीज प्रॉब्लम, वेट लॉस, सिरोसिस जैसी किसी बीमारी से स्ट्रगल कर रहे हैं? सभी बीमारियों का जड़ से इलाज करते हैं केरला वैद्य रत्न पीवी राज फ्रॉम सहज केरला आयुर्वेदा इन ब्रैम्पटन एंड स्कारबरो। ये सिर्फ नर्व्स देखकर ही सारी बीमारियों का इलाज जड़ी बूटियों के द्वारा करते हैं। खान दानी गुण है इनके इलाज से बहुत सारे लोगों का बहुत फायदा हुआ बताया जाता है। कॉल इन टुडे एट 6473278111, 6473278111।
4: Our loan and credit card bills keep piling up. We have no money to pay them with our limited income.
5: Help is just one call away. No need to file bankruptcy. We can save your assets, stop collection calls and make one monthly interest-free installment for maximum debt relief. Call Aisha Munawwar, Debt Solutions Specialist and Insolvency Counselor with Rumanek & Company Limited, a company with licensed insolvency trustee. Call Aisha Munawwar at 416-428-2165.
6: हाइब्रिड के बारे में सोच रहे हैं, लेकिन क्या एक गैस लेक्सस आपके लिए ज्यादा सेंस बनाता है? डॉन वैली नॉर्थ लेक्सस पर NX350 और RX350 प्रीमियम पैकेजेस इमीडिएट डिलीवरी के लिए अवेलेबल हैं। और वेलकम बैक लॉयल्टी ऑफर के साथ आप सेव कर सकते हैं थाउजेंड्स। लीज स्टार्टिंग फ्रॉम जस्ट $618 पर मंथ फॉर 48 मंथ्स। आज ही विजिट करें DonValleyNorthLexus.com। A proud member of Wins Auto Group.
0: Get on your feet with Peppy Nukkar Beats.

हर एक ग्रेट जर्नी शुरू होती है एक सही पार्टनर के साथ। वेन्स ऑटो ग्रुप में हमारे डीलरशिप्स का वाइड नेटवर्क डिवर्स कम्युनिटीज को प्राउडली सर्व करता है। एक्सपर्ट कार बाइंग गाइडेंस, प्रीमियम सर्विस और ऐसा सपोर्ट जो आपकी लैंग्वेज समझे। हर डीलरशिप का प्रॉमिस एक ही है, ट्रस्टेड केयर, कंसिस्टेंट सर्विस और कंप्लीट ऑटोमोटिव सपोर्ट। फ्रॉम फर्स्ट ड्राइव टू लाइफ टाइम केयर, वेन्स ऑटो ग्रुप इज ऑलवेज देयर। Visit VainsAutoGroup.com.

0: डॉन वैली नॉर्थ हंडे के हंडे अपग्रेड योर राइड सेल्स इवेंट का फायदा उठाइए। सिर्फ 0.99% से फाइनेंसिंग और साथ में 90 दिन तक कोई पेमेंट नहीं और पाए $1,000 तक का अपग्रेड बोनस भी। ऑफर सिर्फ August 31st तक है। At Don Valley North Hyundai, we speak your language. Visit DonValleyNorthHyundai.com या Woodbine Avenue and Denison Street, Markhamberg.
1: Don Valley North Hyundai, doing
2: a proud member of Wayne's Auto Group.
3: Hit, Youngest, reviews and ratings of latest releases.
4: Right, today I'm going to review the trailer Hit Ya Miss Me, जो हैवान फिल्म आने वाली है ना, उसका। प्रियदर्शन की फिल्म है, अक्षय कुमार का होना तो एक्सपेक्ट किया ही जा सकता है, बट इस बार रोल कॉमिक ना होके विलेन का है, क्योंकि प्लॉट ही ऐसा है। इस बार कॉमेडी फिल्म नहीं बनाई उन्होंने। फिल्म में सैफ अली खान भी हैं और इस बार वो विजुअली चैलेंज पर्सन का रोल प्ले कर रहे हैं, तो आप कह सकते हैं इट्स अगेन खिलाड़ी वर्सेस अनाड़ी आफ्टर लॉन्ग गैप ऑफ 18 इयर्स। अक्षय जो है एक कोल्ड ब्लडेड सीरियल किलर बने हैं इसमें, जो 7 परिवारों का इंक्लूडिंग पुलिस ऑफिसर्स को ऑलरेडी मर्डर कर चुके हैं। सैफ अपने हाई सेंसेस को यूज करते हैं फिल्म में, क्योंकि ब्लाइंड का रोल प्ले कर रहे हैं, जस्ट टू प्रोटेक्ट हिमसेल्फ और एक प्यारी सी बच्ची जो उनके साथ है फ्रॉम डेंजर। एक रिकरिंग पैटर्न वो नोट करते हैं अपने कानों से, स्मेल से, यू नो ऑब्जर्वेशन से, एक जीप की सेम साउंड बार बार ऑब्जर्व करते हैं और कैसे वो खुद को भी बचाते हैं और केस भी सॉल्व होता ही है फाइनली एट द एंड ऑफ द गेम। माइंड गेम्स हैं एंड इट्स गोइंग टू बी फन टू प्ले विद द कैरेक्टर्स, आई गेस ऐसा ट्रेलर प्रॉमिस करता है। एक्टर्स तो अच्छे हैं, खैर यू नो स्ट्रॉन्ग सपोर्टिंग कास्ट है। बोमेन ईरानी है, सयामी खेर हैं, श्रिया पिलगांवकर है, मुझे अच्छी लगती हैं, शारे भाषमी हैं, अच्छे एक्टर हैं और टेक्निकल पॉलिश भी जो है वो काफ़ी एप्ट है एज पर द प्लॉट ऑफ द फिल्म, जैसे कि हॉन्टिंग बैकग्राउंड स्कोर, अच्छी सी सिनेमाटोग्राफी और जो कलर पैलेट होता है ना वो काफ़ी एक्ट लिया है। पर क्योंकि ये 2016 की क्लासिक मलयालम फिल्म ओप्पम का ऑफिशियल हिंदी रीमेक है, क्रेडिट तो चलो दे दिया इन्होंने, जिसमें मोहनलाल थे, तो जिन्होंने भी वो वाली फिल्म देखी है ना, उन्होंने ट्रेलर देखा है, तो मैं पढ़ रही थी रिव्यूज में कि वो ये कह रहे हैं भाई सीन टू सीन कॉपी मार रखा है, यू नो कंट्रोल सी कंट्रोल वी। नो सरप्राइजेस, ऐसा होता है अक्सर, पर मैंने क्योंकि वो वाली नहीं देखी और जिन्होंने नहीं देखी मुझे लगता है हमें शिकायत नहीं रहेगी। प्लस अक्षय का जो रिसेंट बॉक्स ऑफिस रिकॉर्ड है वो मुझे लगता है बहुत ब्राइट नहीं है, उसे देखते हुए उनका काम कर जाए लक, ये फिल्म काम कर जाए। पर उनकी जो लाफ है ना एट द एंड ऑफ द ट्रेलर, वो विकेट सनी का जो कैरेक्टर था ना वो आपको जरूर याद दिला देगी, क्योंकि काफी विकेट लाफ है, मीम वर्दी है, उस पर मीम्स काफी आ सकते हैं सोशल मीडिया पर अवेलेबल। बाकी एज आई मेंशन द ये सक्सेसफुल जोड़ी जो है सैफ की और अक्षय की, इट्स बैक आफ्टर 18 इयर्स। देखिए हु इज गोइंग टू बी खिलाड़ी, हु इज गोइंग टू बी अनाड़ी दिस टाइम, एंड यस ओवरऑल इज दिस फिल्म गोइंग टू बी अ हिट और जस्ट दिल लगी, वो तो देख के ही पता चलेगा।

0: For any information, call Sarab Sabarwal 647-864-8844. That's 647-864-8844.
1: Or visit teamsabarwal.com.
2: Your search ends here.
3: Get smart with Sarab Sabarwal on Filmi Nukkad.
4: वेल सौरभ जी से आपको मिलवाने का उनसे बात कराने का टाइम आ गया. इट्स ट्यूसडे गाइज और इस समय हम इस सेगमेंट में सौरभ जी से बात करते हैं फ्रॉम टीम सबरवाल. इस सेगमेंट के बाद उनसे बात करने का नंबर रहता है 6478648844. आप teamsabarwal.com पर भी जा सकते हैं, नंबर वहां से भी मिल जाएगा. पर टिल यू गो एंड टॉक टू हिम यहाँ पे भी आप बात कर सकते हैं स्टूडियो पे नंबर पे डायल करके. बट ये सेगमेंट ध्यान से सुने, यहाँ पर सिर्फ रियल स्टेट की बातें नहीं होती, यहाँ पर वो बातें भी होती हैं जो कहीं ना कहीं आपके फ्यूचर इन्वेस्टमेंट्स को, आपके नॉर्मल डिसीजंस को इम्पैक्ट कहीं ना कहीं करती हैं. क्योंकि यहाँ पे वो बातें भी होती हैं जैसे पॉलिसीज, वो ठीक से समझाई जाती है, एक सिंपल तरीके से आपको बताई जाती है क्या चल रहा है, जिनका इम्पैक्ट हम पे पड़ता है अराउंड डायरेक्टली इनडायरेक्टली उसके बारे में भी बात करी जाती है. तो सौरभ जी से बात करने के लिए ध्यान से सुने, अब बाद में उनका नंबर अगेन 6478648844. सौरभ जी वेलकम.
5: जी स्वाति जी, थैंक यू वेरी मच. और अभी कुछ दिन ठंड के थे, बट आई थिंक वी आर बैक टू नॉर्मल नाउ एंड इट्स ऑलवेज नाइस टू बी ऑन एयर विद यू एंड चैट. थोड़ी सी जो भी हमारी चर्चा होती है अच्छा लगता है, अबाउट रियल एस्टेट एंड you know, a lot of things that are going around the world which impact us, not only when it comes to real estate, but general everyday functions jo hamare hote hain.
4: पॉलिसीज की चीजों की बात करते हैं दैट इम्पैक्ट अस. टैरिफ्स आजकल जब से ट्रम्प आए हैं शोर में रहते हैं, हर थोड़े दिन में कुछ ना कुछ उनका ऐसा जुमला या कोई चीज बाहर आ जाती है. जैसे कि अभी उन्होंने लेटली, मैंने अपने इंट्रो में भी कहा लिंक में आज, अब वो कह रहे हैं लेक ओंटारियो का नाम है लेक अमेरिका कर देना चाहिए. अब वो टैरिफ्स की ही बढ़ास यहाँ वहां निकालते हैं यू नो ग्रेजुअली, क्योंकि इस बार कैनेडा ने भी एक बहुत फर्म ग्राउंड ले रखा है अपना. हमने रिटेलिएटरी टैरिफ्स का एक पूरा आज बाहर आया है कि क्या क्या सोचा जा रहा है करने के लिए. और इसको आप कैसे देखते हैं और इसका इम्पैक्ट कैसे देखते हैं, क्योंकि कहीं ना कहीं ये भी हम चाह रहे थे कि डील हो जाए, बट हम अपने स्वाभिमान भी ऊपर रखना चाह रहे थे. तो हाउ यू सी इट एंड वेयर डू यू सी योर रूम इज इफ देयर इज एनी.
5: देखिए क्या होता है ना कि And it is very mind-boggling ki the way these guys are acting up, kyunki it's not just Trump jo sabke naak mein dam kiya hua jisne, it's his whole office as well, kyunki you know they obviously have like-minded people working under his leadership in the US. So kya hota hai, and it's not even like, but it is actual. They what they're doing is they're just bullying their way around. Kya hota hai na ki chalo hum kar rahe hain kyunki hum kar sakte hain ek kisam se, kyunki itne for so many years you know many decades we've had this agreement in place, everybody was happy, everybody a compromise hai between you know Mexico, US and Canada ki कुछ बातें आपकी हम मानेंगे, कुछ बातें आप हमारी मानो. बट हियर व्हाट्स हैपनिंग इज नाउ देयर जस्ट काइंड ऑफ लाइक सेइंग कि नो दिस इज व्हाट इट इज एंड मैन्युफैक्चरिंग वो सारी यूएस में ले जाना चाहते हैं एंड देन गुड लक विद दैट, क्योंकि ऑब्वियसली इट्स गोइंग टू बी वेरी एक्सपेंसिव डूइंग दैट. बट बेसिकली वेयर द टॉक्स स्टॉल्ड वर थ्री मेन फैक्टर्स जो मैं बताना चाहूंगा कि एक तो था कि सॉवरेंटी के ऊपर काफी यू नो प्रॉब्लम चल रही थी, क्योंकि व्हाट दे एंड दिस इज सच अ अब क्या कहूँ, इट्स सच अ माइंड बॉगलिंग सिनेरियो. वो बेसिकली बोल रहे थे कि यू नो फ्रेंच लैंग्वेज के ऊपर, आवर रिलेशंस के ऊपर, कैनेडियन कल्चर के ऊपर दे वर ट्राइंग टू पुट सम लैंग्वेज रूल्स एज वेल. एंड it is obviously chahe wo liberal government ho ya NDP ho ya you know even if it is like a conservative government, Rightfully so, any prime minister at this point, from any party in Canada would have been saying no, क्योंकि हमारी sovereignty को affect हो रहा है जैसे आपने बोला. So that was one of the main things. And secondly, there were restrictions on Canadian trade deals as well, जो हमें affect करती हैं. They were like कि नहीं आप there will be a restriction on who you trade with and what terms and conditions, blah blah blah. अब उनको शायद चाइना की बात अच्छी नहीं लग रही हमारे साथ क्योंकि वी आर यू नो गेटिंग देयर कार्स इनटू द कंट्री मे बी दैट्स व्हाट्स अफेक्टिंग देम बट देन अगेन दे आर नोबडी टू टेल अस व्हाट वी शुड डू हाउ वी शुड डू इफ इट इज बेनिफिशियल टू आवर अस एज अ नेशन सो दैट वाज द सेकंड डील ब्रेकर एक किस्म से वो भी लास्ट मिनट एंड थर्डली ऑटो टैरिफ्स हैं जो यू नो दीज गाइस वांटेड टू इम्प्लीमेंट on an industry jahan par Ontario mein kafi had tak you know it's one of the major industries here so they wanted to put additional tariffs on the auto sector and you know and it is already a very touchy subject aapko pata hai Brampton ke plant ko kya hua Oshawa mein plant ko kya hua now they were saying things about the Oakville plant so regardless of whoever the prime minister would have been from any party, I don't think anybody would have agreed to these things anyways. Or that's what the deal breaker was from basically the last minute joke talks collapse hui hai. So, you know,
4: fair so, kyunki ye jo points aapne bataye hain jo samne aaye hain, I mean, aapne sabse badi baat ye ki when it comes to the nation, the sovereignty, to iski jab baat aati hai, to baaki cheeze to fir peeche ho hi jaati hain. Aur isliye main hum dekh rahe hain is beech jo survey bhi aa rahe hain, public ke bhi jo survey aa rahe the ki kya hona chahiye, to sab yahi kehte ki as much as we want ki deal go through ho jaye. Everybody was also saying ki bhi agar jo you know at what cost was also a consideration and then everyone was like okay nahi baad mein jaye
5: 100%
4: you know 100% ye pehle
5: fir wo to hum fir putle ban jate na ki we're just a puppet state for US aap hamara humse trade bhi control karwa rahe ho aap humse hamari hamare culture aur language ko bhi control karwa rahe ho to fir then you know then like there is no
4: azadi ka kya fayda wo koi mock tarike se koi rule hi kar raha hai fir hum par
5: exactly to basically kya hai ki you know 20 billion of Canadian exports jo hain they've been hit with new 50% US tariffs basically and Canada obviously you know it retaliate humne kafi kiya hai now how effective it's going to be and who can play this longer I think everybody knows because US is a much bigger market, but we will do what we have to do like any other nation will do. Or, you know, Ontario is one of the biggest provinces. Well, Ontario is one of the provinces which will be hardest hit because, you know, there is so much exposed economic fallout because of this. Because auto tariffs bhi hain. A lot of the industries are here in Ontario jo इफेक्ट होंगी इन टेरिफ से तो एक यू नो नाना कहते भी कुछ हद तक काफी हद तक बल्कि हाउसिंग मार्केट पे इफेक्ट पड़ता है एंड देयर इज नो डिनाइंग दैट तो यू नो बट जो मेन कंसर्न है मेन कंसर्न फॉर हाउसिंग इजंट नेसेसरली टेरिफ देमसेल्व्स बट ऑब्वियसली इनडायरेक्टली जैसे मैंने बोला क्या इफेक्ट पड़ता है जॉब से पे इफेक्ट पड़ता है confidence pe effect padta hai you know household spending is obviously the forerunner as well kyunki these things eventually in some way shape or form affect everyday market and then you know it affects the housing market spending mein lagta hai ki yaar in fact Swati ji I'll tell you something today I went to Loblaws I got something I got four things And it costed me $67. And to be honest, like I remember back in the day, something similar would have been half the price. So you know, it's and we're facing that almost every day. So, yeah. ये tariffs जो है, like why does this matter to the housing? So what happens is housing markets obviously depend करती हैं बहुत हद तक consumer confidence के ऊपर. जो हमने काफी चर्चा भी करी है पीछे इन लास्ट फ्यू सेगमेंट्स. तो जो लोग हैं यू नो एनी बायर और सेलर देयर डिसीजंस आर वेरी प्रेडोमिनेंटली बेस्ड ऑन देयर जॉब और बिजनेस, उनकी इनकम, करंट इंटरेस्ट रेट्स और ओवरऑल इकोनॉमी. तो हाउस होल्ड जब थोड़ा सा घबराते हैं कि यार ले ऑफ्स हो जाएंगे, चांसेस हैं, क्योंकि यू नो ऑब्वियसली इन ऑलमोस्ट ऑल द इंडस्ट्रीज आर टाइड टू द टेरिस, दे ट्रेड इन दिस एंड दैट. तो इन इकोनॉमिक स्लो डाउन की वजह से यू नो इम्पॉसिबल ले ऑफ्स होंगे, ये वो होंगे. तो अ लॉट ऑफ दीज बायर्स स्पेशली बड़े सिंपल कंक्लूजन पे आते हैं, यार मे बी आई वेट 5-6 months, एक साल एंड सी वॉट हैपन्स. So plans get delayed. And that's exactly the type of behavior that can reduce sales activity, even if the mortgage rates are going to be relatively attractive.
4: Okay.
5: So, ये बड़ा फर्क पड़ता है. But not everybody is on the same boat. People who are independent of US as a market, their business does not deal with the US entirely. And I have some clients who, you know, are very... Asian-based, Asia-based, या Europe-based, तो to them it doesn't really matter. हाँ, उनको महंगाई और वो सब कुछ definitely they're gonna feel it, but you know they still have a healthy business or job.
4: Okay.
5: So now GTA का angle अगर आप देखो, you know particularly it's relevant to Ontario because हमारा exposure जो है manufacturing का है, automotive का है towards US trade. And those are very big markets. So, obviously, हमने देखा Oshawa के plant में, you know, what happened. A lot of layoffs happened. अगर ये uncertainty, you know, affect करती है employment को, business investment को, and rightfully so, क्योंकि अगर plant ही पूरा, for example, अगर बंद होता है, layoffs होते हैं, तो it's a ripple effect. पहले plant बंद होगा, आसपास के restaurants फिर जाएंगे, बंद होंगे. And you know a lot of sub markets will collapse as well.
4: Yeah.
5: So that is basically it. Just that's what these scenarios are. So big. इसमें से like you know takeaway क्या है हमारे लिए?
4: जी.
5: So biggest threat to the housing market at this time basically is not tariffs itself. It's the uncertainty. It's the consumer confidence. In fact, aaj subah meri kisi, you know, I was speaking to one of the owners of a development firm. And that's exactly what he mentioned as well. It's not so much that people don't have the money. People have money sitting in the bank. But it's more so ki risk factor. It is more so the confidence ki, yaar, is this the right time? Chahe bhale paise ko na ho, everybody thinks twice or thrice ki, yaar, is it good time to spend on a housing market when things are getting more expensive? We don't know what's going to happen down the road. So that's the big takeaway. Ki confidence level jo hai, that is the big question mark right now on everybody's mind.
4: Okay. Interesting. So, हमने टेक अवे भी देख लिया, हमने छोटे से एनालिसिस भी देखा इसमें. सौरभ जी, छोटे से म्यूजिकल ब्रेक की तरफ चलते हैं. आई हैव टू टॉक टू यू मोर अबाउट दिस एंड मोर. स्टे ट्यून्ड विद अस प्लीज.

0: हाइब्रिड के बारे में सोच रहे हैं? लेकिन क्या एक गैस लेक्सस आपके लिए ज्यादा सेंस बनाता है? डॉन वैली नॉर्थ लेक्सस पर NX350 और RX350 प्रीमियम पैकेजेस इमीडिएट डिलीवरी के लिए अवेलेबल हैं। और वेलकम बैक लॉयल्टी ऑफर के साथ आप सेव कर सकते हैं थाउजेंड्स। लीज स्टार्टिंग फ्रॉम जस्ट $618 पर मंथ फॉर 48 मंथ्स। आज ही विजिट करें DonValleyNorthLexus.com। A proud member of Wayne's Auto Group.
1: Get smart with Saurabh Sabharwal on Filmy Nukkad. राइट सौरभ जी से हम कर रहे हैं बात फ्रॉम टीम सबरवाल एंड जैसे कि मैंने कहा इफ यू हैव एनी क्वेश्चन यू कैन आस्क तो आई हैव अ कॉलर लेट्स सी व्हाट क्वेश्चन दे हैव हेलो
2: हेलो स्वाति जी गुड आफ्टरनून
1: गुड आफ्टरनून आप सौरभ जी के साथ भी हैं आप उनसे जो सवाल पूछना चाहे पूछ सकते हैं अपना नाम बताएंगे सर पहले
2: आई होप सौरभ जी आल्सो डू मी रिगार्ड थ्रू हिज फादर मिस्टर केपी जी जो है जी। मेरा मुलाकात हुई थी एक दफा इनके साथ हम टूर में बस पे भी गए थे
1: तो अच्छा तो और जो बस टूर हुआ था मुझे याद उसको हमने एडवर्टाइज भी किया था ओके आपका नाम क्या है सर
2: सलीम
1: ओके सलीम जी हाँ बताएं
2: साहब जी मेरा ये कहना था ये जो भी हो रहा है ना ये अगर इसको अगर थोड़ा सा पीछे जाके देखें तो आपको पता चला होगा क्योंकि मिस्टर ट्रम्प ने पहले बैठते ही कहा था कि कनाडा इज ए पार्ट ऑफ यूनाइटेड स्टेट वो उसका बहुत स्ट्रांगली ऑब्जेक्शन हुआ वो फेल हो गया अब उसको पॉजिटिव करने के लिए ये जो टिट फॉर टैट हो रहा है ना कि भाई इतना टैरिफ लगा दो फिर दोबारा फिर नए टैरिफ लगा दो तो ये उसी वजह से हो रहा है और अभी ये यहाँ नहीं रुकेगा अभी बहुत सारी थ्योरियाँ चल रही हैं तो उसमें थ्योरी ये भी है कि कनाडा को ऐसे नहीं तो ऐसे छोड़ो कि चलो भाई वहां पर ईस्ट में मतलब क्यूबेक में मूवमेंट चलाओ या वेस्ट में अल्बर्टा में मूवमेंट चलाओ ये उसी का सारा वो है और एक टाइम में आके हम सरा दर्द हो तो यहाँ पे मां करनी का जो एडमिनिस्ट्रेशन है वो जैसे ही उन्होंने ओथ ली थी एज ए केयर टेकर प्राइम मिनिस्टर फिर बाद में उन्होंने इलेक्शन किया उन्हें तभी समझ जाना चाहिए था कि लॉन्ग टर्म का गोल खेलो ताकि ये हमें यहाँ पे डिपेंडेंसी ना हो यूनाइटेड स्टेट के ऊपर या क्रॉस बॉर्डर के ऊपर और वो क्या होना चाहिए कि कनाडा में जो है शुरू से अभी तक जो है कनाडा एक सर्विस कंट्री है यहाँ इंडस्ट्री नहीं है या एक प्रोडक्शन कंट्री नहीं है अगर हम चाइना की तरफ देखें आज से 30 साल पहले क्या हुआ चाइना में जो भी प्रोडक्ट है वो चाइना के अंदर ही चलती थी और आज चाइना की प्रोडक्ट वर्ल्ड वाइड चलती है और तो हमें यहाँ पर क्या करना चाहिए कि हमें अपना ऑटोमोबाइल जो सेक्टर है इसको खुद अपना डेवलप करना चाहिए जैसे यूरोप में आप चले जाएं ओंटारियो से भी छोटे प्रोविंस में यूरोप में इतने सारे
1: सॉरी टू कट यू
2: मैं कहना चाह रही हूँ क्वेश्चन
1: बहुत लंबा हो गया मुझे मैं खो गई हूँ इस क्वेश्चन में आप एक सिंपल से एक सवाल पूछना चाहते हैं तो पूछें प्लीज
2: मेरा ये कहना है सौरभ जी कि सिर्फ हमें रियल एस्टेट इंडस्ट्री के अलावा भी गवर्नमेंट को इंडस्ट्री में कमर्शियलाइजेशन करना चाहिए और ये प्रोडक्शन कंट्री में कन्वर्ट कर दीजिए आपका क्या ख्याल है
3: नहीं बिल्कुल देखिए ये हमने काफी डिटेल में भी डिस्कस किया हुआ यूर 110% करेक्ट क्योंकि मैंने अपना खुद का एग्जाम्पल दिया था कि देखिए वी हैड अ फैंटास्टिक जेट प्रोडक्ट इन द 70s और 60s वॉट एवर इट वॉज एवरो जेट जिसको बोलते हैं वी हैव ऑल द टेक्नोलॉजी वी हैव द रिसोर्सेज बट यहाँ पर इतनी बड़ी रेड टेप है एंड हमने आई थिंक दो सेगमेंट तीन सेगमेंट पहले भी डिस्कस किया था स्वाति जी की आपस में प्रोविंसेस ही वर्क टूगेदर नहीं कर सकते दे हैव एन इशू विद यू नो दे हैव देयर ओन पॉलिसीज दे हैव देयर ओन way of doing things so if we start when we start working together only then we can have decisions made yahan par like pipeline hi nahi nikalti ek province se dusre province tak and to extract all the resources that we have and we are a very resource rich country there is no denying that we have some of the largest deposits of a lot of natural resources from the world compare karo to but The issue is ki when do we start? Kyunki obviously and then production jab tak reliability agar production economy nahi banti then reliability is obviously, you know, we have to rely on somebody. कि आप हमारा प्रोडक्ट लो, आप हमारा प्रोडक्ट लो. अब आप देखो, एक्चुअली व्हेन आई वाज अ किड इन इंडिया ग्रोइंग अप, आई थिंक 8-10 साल व्हाटएवर, वी हैड यू नो हिंदुस्तान मोटर्स होती थी, एम्बेसडर चलती थी, कंटेसा चलती थी, तो वी हैड ऑल दीज कार्स. एंड माइंड यू द चैसी एंड एवरीथिंग फ्रॉम व्हाट आई रिमेम्बर, एंड करेक्ट मी समबडी इफ आई एम रॉन्ग, ये सारे चैसीज और यू नो इन गाड़ियों के आते थे आउट ऑफ कंट्री, लाइक दे यूज कम फ्रॉम आउटसाइड. एंड वी स्टार्टेड समवेयर एंड यू नो एज ऑफ रिसेंटली आई हैव कम अक्रॉस की महिंद्रा मेड आवर ओन डिफेंस आर्मर्ड व्हीकल्स नाउ. सो यू नो इंडिया ऑल्सो स्टार्टेड समवेयर, इट हैज बिकम वन ऑफ द टॉप नॉच पावर्स इन द वर्ल्ड. And we can do this as well, but we just need to work together first. अपने घर में थोड़ा सा understanding करना बड़ा जरूरी है, and we should. That's exactly what you know we've discussed in the past as well. Till we get our duck in order in our own house, only then we can succeed as a nation. हम provinces एक दूसरे के साथ अगर you know they can't work together, then we can't really get anywhere. But yes, 100%. We have the technology, we have the resources, and we have the willingness to work to produce stuff, cars and this and that. So it is high time we you know become self-sufficient. Any country can become self-sufficient. We're in a much better place than a lot of countries. Japan ko agar aap dekho, Japan has almost no oil. They are heavily dependent on oil from other countries. We have oil, we're sitting on oil. So that is just something we have to work on, and then the government needs to take a very heavy stance on how things need to be done. वो हमारे हाथ में है कि हम service से production पे जाते हैं और कितना rely होते हैं बाकी countries के ऊपर.
1: राइट, तो सेल्फ डिपेंडेंसी तो बहुत पहले से इस पे बात चली रही है, हमने काफी डिस्कशन किया ही है, और नो डाउट के तो जितना भी हम एज एन इंडिविजुअल भी और एज अ नेशन भी हो पाएंगे बहुत अच्छा रहेगा सभी के लिए. सौरभ जी, जाते जाते आप कोई प्रोजेक्ट मेंशन करना चाहेंगे?
3: जी बिल्कुल, देखिए नाउ एज आई मेंशन कि यू नो not everybody is affected with the tariffs as well. A lot of industries are not affected by this at all, especially jinki dealing US se nahi hai. But at the same time, you know, there are numerous projects out there which even the government has given the HST rebate and stuff. It's kind of like putting the money on the table and then, you know, next बारी किसकी आती है, नेक्स्ट स्टेप नीड्स टू बी टेकन बाय कंज्यूमर्स. इफ यू आर कंफर्टेबल, यू आर लुकिंग एक्टिवली फॉर रियल एस्टेट एंड यू आर लुकिंग टू बाय परचेज इन्वेस्ट इन स्टफ, इट इज एब्सोल्यूट फैंटास्टिक टाइम. ऑब्वियसली दिस इज नॉट द फर्स्ट टाइम यू हर्ड दिस, देर आर न्यूमरस प्रोजेक्ट्स आउट देयर ऑफरिंग एक्सलेंट वैल्यू. Obviously, it is a buyer's market. It is a very heavy buyer's market. चाहे आप investment के लिए देख रहे हैं या आप primary home या primary residence के लिए देख रहे हैं, तो the best thing is come to our new office at the exchange in Mississauga. We have officially moved. We are 100% you know functional now. We have you know opened our gates of our new office, Swatiji Mississauga में. Or, you know, come see us. Let's discuss. A lot of good options are available. A lot of good deals are to be had. Whatever the builder is, and this goes from numerous builders as well, whatever is advertised on the paper, there are many, many negotiations that can be had on top of the price that the builder is asking.
1: Okay.
3: Because obviously there's a lot of inventory left in the market. ज्यादा जानकारी के लिए आप मुझे कॉल कर सकते हैं 647-864-8844. सौरभ सबरवाल फ्रॉम टीम सबरवाल, वेबसाइट है teamsabarwal.com. आई वुड लव टू स्पीक टू यू रिगार्डिंग व्हाट यू आर इन द मार्केट फॉर एंड देन वी कैन टेक इट फ्रॉम देयर.
1: परफेक्ट, तो नंबर मैं भी बता देती हूँ 647-864-8844. teamsabarwal.com वेबसाइट है, वहां से आपको नंबर भी मिल जाएगा, मुझसे भी ले सकते हैं इफ यू हैव एनी क्वेश्चंस. any doubts, any clarifications on your plans or anything, क्या चल रहा है उसका क्या impact हो सकता है, आप direct भी call कर सकते हैं. Thank you, Saurabh ji. अगले हफ्ते फिर आपसे जुड़ते हैं.
3: जी बिल्कुल. Thank you.
1: Thank you.

0: Advertise with Filmi Nukkad on CMR at 5 p.m. Your prime drive time show. Call Swati at 647-830-5042. That's 647-830-5042. It's the free time.
1: Genesis Markham mein luxury milti hai ek aise experience ke saath jo expectations se bhi aage ho. Beautifully designed 2026 GV70 ya 2026 GV80 ko lease kare sirf 2.4% se for up to 39 months. Book your test drive today. Visit genesismarkham.ca, located at Woodbine Avenue and John Street, Markham. Genesis Markham, doing luxury your way. A proud member of Vane's Auto Group.
2: फायदा उठाएं ऑगस्ट के हार्ट अट्रेड्स का विद अमित खुराना. 3 years fixed 3.94%, 5 years fixed 4.04%, 5 years variable 3.50%, और साथ में हॉट हॉट कैश बैक भी लें अप टू 5600 एंड आइसिंग ऑन द टॉप गिफ्ट कार्ड अप टू 1500. कॉल अमित खुराना एट 6473412785. दैट्स 6473412785.
3: ये है राजधानी राजधानी राजधानी.
4: इस रक्षाबंधन राजधानी लेकर आए हैं भाई बहन एंड ब्लेसिंग्स गिव अवे. जीतो इलेक्ट्रिक स्कूटर, प्लेस्टेशन 5, डायसन एयर रैप, निंटेंडो स्विच, रेबान मेटा ग्लासेस और भी बहुत सारे एक्साइटिंग प्राइजेस.
5: राजधानी की किसी भी लोकेशन पर विजिट करें, परचेज करें 12 से 29 अगस्त तक. QR कोड स्कैन करके अपनी इन्फो और एंट्री सबमिट करें.
4: 26 लोकेशंस अक्रॉस कनाडा.
6: फॉर मोर इन्फॉर्मेशन विजिट rajdhanisweets.ca.
7: Another Don Clean with the Don Dux.
8: Oh, he's doing dishes with Dawn Platinum.
9: The only soap trusted to save wildlife affected by oil.
8: And Platinum removes up to 99% of grease and food residue, so he doesn't have to work so hard.
9: Well, flap my wings. What'll he do with all that unused elbow grease?
8: Organize the fridge, the spice rack, the junk drawer.
9: What are you quacking on about? He's gonna make enchiladas.
8: More dishes? That's giving this duck goosebumps.
7: Dawn Platinum, the better grease getter.
10: Let's turn it up.
11: Let's kick it up.
12: Let's shake it up.

कभी कभी एक ब्रेकअप सॉन्ग गाने से अच्छा है मुझे लगता है कि कैचअप सॉन्ग गा लो और बिगड़ती बात को वापस बना लो, है ना। आज का दिन जो है ना एक्चुअली ये याद दिलाता है कि जो लो जो टूटा है रिश्ता भी और दिल भी, फिर चाहे नाराजगी हो या शिकायतें या गलत फहमियां, इट्स नेशनल किस एंड मेकअप डे। आपको लिटरली किस करने की जरूरत नहीं है, इट कैन बी रिप्लेस बाय एन इमोजी, आजकल बहुत आसान है, और अ हाई फाई और अ सिंपल जादू की झप्पी भी चलेगा। आजकल के टाइम में तो ब्लॉक्ड को अनब्लॉक करके भी आप ये काम कर सकते हैं किस एंड मेकअप वाला, या यू नो सिंपल सा कॉल और टेक्स्ट, इस पर भी चलो मिलते हैं या गुस्सा छोड़ दो या सिंपल सॉरी ये कहकर भी किया जा सकता है, है ना। आइडिया इज कि ईगो रखो ऑन साइड, पर माफी लेने देने में है पीस एंड टैरिफ की कोई बात ही नहीं, बस इसको याद रखो। जिंदगी छोटी सी है जनाब, गिलों शिकवों में क्यों ही काटो, क्या कहते हो।

0: अगर देना चाहते हैं अपने बिजनेस को नई ऊंचाइयां और नए आयाम, तो एडवरटाइज करें हमारे साथ ऑन फिल्मी नुक्कड़। इंटरेस्टिंग पैकेजेस अवेलेबल। 6478305042, 6478305042। विजिट filminukkad.com।
1: इस बार रक्षाबंधन के पावन अवसर को बनाएं और भी ज्यादा स्टाइलिश। खरीदिए GTA में कहीं और न मिलने वाली बेहद खूबसूरत राखियाँ इंडिया सजावट एंड पूजा हट से, और आपके घर की सजावट के लिए भी बहुत कुछ मिलेगा। ओनली एट इंडिया सजावट एंड पूजा हट, 31 मेलनी ड्राइव, यूनिट 5, ब्रैम्पटन, 9054586808।
2: समर ड्राइव का एक्साइटमेंट बढ़ाएं विद टंड्रा एट डॉन वैली नॉर्थ टोयोटा। आपके नेक्स्ट एडवेंचर के लिए बिल्ट और फाइनेंसिंग सिर्फ 3.49% से फॉर 36 मंथ्स। बिग सिलेक्शन, बिग समर मोमेंटम। बीजीबी इन स्टॉक आपकी इलेक्ट्रिफाइंग एक्सपीरियंस के लिए। वी पे टॉप डॉलर फॉर योर ट्रेड। इट्स टाइम टू टोयोटा एट डॉन वैली नॉर्थ टोयोटा.com। लोकेटेड है 3300 स्टील्स एवेन्यू, ईस्ट मार्कम पर। A proud member of Vane's Auto Group.
3: इसके पीने से तबीयत तुम्हें रवानी आए, इसको बूढ़ा भी जो पी ले तो जवानी आए।
4: Wow, Mom, Dad is in a jolly good mood today. What is the reason?
5: This is the effects of famous masala chai by Navigator's Cafe.
4: I know this place. They're also famous for delicious snacks like aloo patties, samosa, vada pav, spring rolls, mango lassi, and my favorite, samosa chaat and bhel.
6: Navigator's Cafe, located at northwest corner of Queen Street East and Airport Road in Brampton. They are conveniently open 24/7.
7: Another Dawn Clean with the Dawn Ducks.
8: Oh, he's doing dishes with Dawn Platinum.
9: The only soap trusted to save wildlife affected by oil.
8: And Platinum removes up to 99% of grease and food residue, so he doesn't have to work so hard.
9: Well, flap my wings. What'll he do with all that unused elbow grease?
8: Organize the fridge, the spice rack, the junk drawer.
9: What are you quacking on about? He's gonna make enchiladas.
8: More dishes? That's giving this duck goosebumps.
7: Dawn Platinum, the better grease getter.
10: नटवर, मैं तुमसे शादी नहीं कर सकती।
11: मगर क्यों, पिताजी नहीं माने क्या?
10: वो बात नहीं है, हम जब भी घूमने जाते हैं तुम पता नहीं कौन सा रेडियो चलाते हो। ना वो गाने बजाते हैं, ना तुम अच्छा गाते हो।
11: तो आप क्या गाना भी सीखना होगा?
4: सिर्फ CMR एट 5 PM पर ट्यून इन रहना होगा। रेडियो CMR एट 5 PM, योर इवनिंग म्यूजिकल ड्राइव।

राखी एट पर सोशल मीडिया पर काफी ड्रामा चल रहा है। पूछो क्या हुआ? पहले हुआ ये है कि रक्षाबंधन आ रहा है ना, तो कृति सनन ने एक ऐड किया है जिसमें वो रक्षाबंधन मना रही है। अब आप कहोगे तो इसमें प्रॉब्लम क्या है भाई? राखी वो अपने डॉग को बांध रही है और त्योहार मनाते हुए शी इज वियरिंग क्वाइट अ यू नो एक आउटफिट जो ट्रेडिशनल तो बिल्कुल नहीं लग रहा, जिस पर सोशल मीडिया इज डिवाइडेड इनटू टू। पार्टी ए जो प्रो कंगना है और एंटी कृति है इस बात पर, जहां पे सवाल ये उठाया जा रहा है कि ट्रेडिशंस की भी कोई सेंसिटी होती है भाई, ऐसे थोड़ी। पार्टी बी जो प्रो कृति है कि भाई व्हाइट इज अबाउट क्लोथ्स, आप कब तक बताते रहोगे किसी को कि क्या पहनना है? डॉग इज ऑल्सो अ फैमिली फॉर दोज हु हैव वन एंड यस फेस्टिवल इज ऑल अबाउट बॉन्ड्स एंड इमोशंस। तो बहस एक तरफ, कौन कितना सही कितना गलत ये एक तरफ, सवाल इन सब में ये जरूर है कि ट्रेडिशंस प्रिजर्व भी करने हैं हमें और उनसे इवॉल्व भी करना है, बैलेंस भी चाहिए, पर क्या ये पॉसिबल है? एंड एक बात और कि हर रिश्ते की, हर त्योहार की एक गरिमा होती है, डिग्निटी होती है। सोच तो खुली चाहिए पर क्या वो कपड़ों से डिसाइड होती है? आप क्या क्या कहना है? स्टूडियो का नंबर 4165930055।

0: हर एक ग्रेट जर्नी शुरू होती है एक सही पार्टनर के साथ। वेन्स ऑटो ग्रुप में हमारे डीलरशिप्स का वाइड नेटवर्क डिवर्स कम्युनिटीज को प्राउडली सर्व करता है। एक्सपर्ट कार बाइंग गाइडेंस, प्रीमियम सर्विस और ऐसा सपोर्ट जो आपकी लैंग्वेज समझे। हर डीलरशिप का प्रॉमिस एक ही है, ट्रस्टेड केयर, कंसिस्टेंट सर्विस और कंप्लीट ऑटोमोटिव सपोर्ट। फ्रॉम फर्स्ट ड्राइव टू लाइफ टाइम केयर, वेन्स ऑटो ग्रुप इज ऑलवेज देयर। Visit veinsautogroup.com.
1: And a very musical, full-on commercial, Masala. Super hit film of 70s. Hum kisi se kam nahi has completed its release today. One of the biggest hits of 1977 and with my two favorites in it. 70s ke Rishi Kapoor the and all-time favorite. पंचम दा का म्यूजिक था इसमें। इस फिल्म की म्यूजिक के लिए अलग ही टाइप की मेहनत की थी उन्होंने। वो कंपटीशन वाला तो खैर गाना सबको पता ही है, एकदम अलग पीस है वो। पर उसके लिए कहते हैं कि लंदन के एक क्लब में नासिर साहब ने ऐसा कुछ देखा तो उन्होंने आके कहा कि मुझे तो बस अब यही चाहिए, और वो बन गया। मतलब पंचम दा के लिए अब क्या ही मुश्किल था ना, है ना। बाकी द गाना दैट आई एम गोइंग टू प्ले इज वो जिसमें फिजिकल ट्रेनर वाली सीटी की आवाज सिर्फ इसलिए डाली गई है क्योंकि वन इज शोन इन द सॉन्ग बजाते हुए, एक्चुअली व्हिसलिंग। एंड स्पैनिश बुल फाइट का म्यूजिक खास डाला गया है इस गाने में क्योंकि एक बुल को साइकिल के पीछे लटके लाल रंग के पीछे दौड़ते हुए दिखाया था। क्लासिक पीस फ्रॉम नासिर हुसैन की सेट to be last successful film on Filmi Nukkad. Stay tuned.

0: advertise with Filmi Nukkad on CMR at 5 p.m. Your prime drive time show. Call Swati at 647-830-5042. That's 647-830-5042. It's the free time.
1: Don Valley North Hyundai ke Hyundai Upgrade Your Ride sales event ka fayda uthaiye. Sirf 0.99% se financing aur saath mein 90 din tak koi payment nahi aur paye $1000 tak ka upgrade bonus bhi. Offer sirf August 31st tak hai. At Don Valley North Hyundai, we speak your language. Visit donvalleynorthhyundai.com ya Woodbine Avenue and Denison Street, Markhamper.
2: Don Valley North Hyundai,
3: a proud member of Wayne's Auto Group.
4: क्या आपके होम एंड ऑटो इंश्योरेंस के रिन्यूअल का टाइम आ गया है? क्या आप गुड रेट्स में एक सही कवरेज ढूंढ रहे हैं? तो कॉल सिमरन बेंस फ्रॉम ऑलस्टेट की बीसी सागर साउथ एजेंसी एट 647-453-5353. दो कारों और एक घर की इंश्योरेंस पर $2,029 तक की सेविंग्स कर सकते हैं. सिमरन बेंस एंड ऑलस्टेट के साथ आप हैं इन गुड हैंड्स. कॉल सिमरन बेंस एट 647-453-5353. 647-453-5353.
5: And yes, even for one car and a home, $400 to $500 ki annual savings possible. Call Simran Benz 647-453-5353.
6: Another Don clean with the Don Ducks.
7: Oh, he's doing dishes with Dawn Platinum.
8: The only soap trusted to save wildlife affected by oil.
7: And Platinum removes up to 99% of grease and food residue, so he doesn't have to work so hard.
8: Well, flap my wings. What'll he do with all that unused elbow grease?
7: Organize the fridge, the spice rack, the junk drawer.
8: What are you quacking on about? He's gonna make enchiladas.
7: More dishes? That's giving this duck goosebumps.
6: Dawn Platinum, the better grease getter.
9: नजर बदलो, नजारे बदल जाएंगे. आप भी अपनी जिंदगी की खूबसूरती को देखें स्पेक्स एक्सप्रेस के साथ, जहां है वर्ल्ड क्लास क्वालिटी डिजाइनर सनग्लासेस, आई ग्लास फ्रेम्स एंड लार्ज सिलेक्शन ऑफ कॉन्टैक्ट लेंसेज.
10: गेट सिलेक्टेड फ्रेम रेगुलर सिंगल विजन लेंसेज फॉर जस्ट $129. 35 रेजोल्यूशन ड्राइव, ब्रैम्पटन इन वॉलमार्ट प्लाजा. कॉल 905-460-8888. दैट्स 905-460-8888.
9: सर्विंग फ्रॉम टू लोकेशंस, बेस्ट सर्विस बेस्ट प्राइस, स्पेक्स एक्सप्रेस.
0: You are tuned into CMR at 5 p.m. with RJ Swati on Filmi Nukkad. It's the free time.

जिगर की बीट्स पर बूट्स थिरक रहे थे टाइगर श्रॉफ और जैकलीन फर्नांडिस के इन द फिल्म फ्लाइंग जट। फिल्म कब आई, कब फ्लाई हो गई पता ही नहीं चला। वो बात और है कि फिल्म देखने के बाद ना, मतलब जिस जिसने भी ये फिल्म देखने की गलती कर दी उसकी बात कर रही हूँ, वो ये सोचकर खुद को तसल्ली देते रहे कि इस बहाने चलो हमने धैर्य रखना जरूर सीख लिया। आई मीन व्हाई एट द फर्स्ट प्लेस दिस फिल्म एग्जिस्ट्स। रेमो डिसूज़ा की जो फालतू फिल्म आई थी ना, वो भी मेरे ख्याल से इतनी फालतू नहीं थी जितनी की ये थी। एनीवे नेक्स्ट ईयर ऑन द सेम डेट, मतलब मुझे लगता है इस डेट में ही लोचा है जैकलीन के लिए, रिलीज वॉज अ जेंटलमैन। उसमें भी जैकलीन थी अलॉन्ग विद सिद्धार्थ मल्होत्रा एंड द फिल्म गॉट फ्लॉप। मतलब जेंटलमैन वेटलमैन का जमाना अब नहीं रहा, बट यू नो फिर भी सिद्धार्थ मल्होत्रा मेड हिज सिंगिंग डेब्यू विद दिस तोप गाना इन द फिल्म बंदूक मेरी लला। लाइंड अप नेक्स्ट।

0: जेनेसिस माखम में लग्जरी मिलती है एक ऐसे एक्सपीरियंस के साथ जो एक्सपेक्टेशन से भी आगे हो। ब्यूटिफुली डिजाइंड 2026 GV70 या 2026 GV80 को लीज करें सिर्फ 2.4% से फॉर अप टू 39 मंथ्स। बुक योर टेस्ट ड्राइव टुडे। विजिट genesismarkham.ca, लोकेटेड एट Woodbine Avenue एंड John Street, Markham. Genesis Markham, doing luxury your way. A proud member of Vane's Auto Group.
1: और हिंदी फिल्म्स में 90s में हिट फिल्म्स देने वाले डायरेक्टर, राइटर, एडिटर कुकू कोहली नहीं रहे। ये वो नाम है जिन्होंने अजय देवगन को नाम बनाया, क्योंकि फूल और कांटे जो अजय की डेब्यू फिल्म थी, इट वॉज डायरेक्टेड बाय हिम इन 1991 एंड देयर वॉज अ सीरीज ऑफ हिट्स आफ्टर दैट, हकीकत, सुहाग, अनाड़ी नंबर वन इन 90s। हालांकि उनका करियर शुरू हुआ था बहुत शुरू में राज कपूर साहब के अंडर में। वाइल वर्किंग इन द फिल्म्स ही लर्न्ड अ लॉट, जैसे कि बॉबी, सत्यम शिवम सुंदरम, प्रेम रोग। पर्सनल लाइफ में उनकी लव स्टोरी के बारे में पढ़ रही थी विद हिज वाइफ अरुणा ईरानी कि वो कभी भी एक फर्स्ट साइट लव वाली कहानी नहीं थी। इनफैक्ट कहते हैं कि दोनों में शुरू में 36 का आंकड़ा था, क्योंकि एक बार फिल्म कोहराम के सेट पर उन्होंने पूरी क्रू को बहुत लंबा इंतजार कराया, क्योंकि वो धर्मेंद्र जी का वेट कर रहे थे, जिससे अरुणा ईरानी बहुत अपसेट हो गई थी। इतनी कि उन्होंने उसके बाद उनके साथ प्रोजेक्ट्स पर काफी सारे काम भी नहीं किया। पर धीरे धीरे वो कहते हैं ना, प्यार तो होना ही था स्टाइल में, तो हुआ भी और उसके बाद शादी भी। बट वेल, ही विल बी रिमेम्बर्ड फॉर हिज टैलेंट स्पॉटिंग एंड हिट फिल्म्स जो उन्होंने हमें दी।

0: अगर देना चाहते हैं अपने बिजनेस को नई ऊंचाइयां और नए आयाम तो एडवरटाइज करें हमारे साथ ऑन फिल्मी नुक्कड़। इंटरेस्टिंग पैकेजेस अवेलेबल। 6478305042 6478305042 विजिट filminukkad.com।
1: It's time to Toyota at Markville Toyota. Corolla L lease kijiye from $84 weekly for 60 months. Ya Corolla Cross L front wheel drive lease kijiye from $98 weekly for 60 months. Or up Tundra 4x4 Crew Max TRD lease kijiye from $173 weekly for 36 months. Don't miss out. Inventory limited hai. Offer sirf jab tak supplies last kare. Hurry. More details ke liye markville.com visit kare. Located at 5362 Highway 7 in Markham. Markville Toyota, a proud member of Vane's Auto Group.
2: फायदा उठाएं ऑगस्ट के हॉट ट्रेड्स का विद अमित खुराना। 3 इयर्स फिक्स्ड 3.94%, 5 इयर्स फिक्स्ड 4.04%, 5 इयर्स वेरिएबल 3.50%, और साथ में हॉट हॉट कैश बैक भी लें अप टू 5600 एंड आइसिंग ऑन द टॉप गिफ्ट कार्ड अप टू 1500। कॉल अमित खुराना एट 6473412785, दैट्स 6473412785। क्या आप भी एस्मा, एलर्जी, स्किन प्रॉब्लम, कमर या घुटनों में दर्द से जूझ रहे हैं, या आर्थराइटिस, हेयर प्रॉब्लम, गैस प्रॉब्लम, अल्सर, लेडीज प्रॉब्लम, वेट लॉस, सिरोसिस जैसी किसी बीमारी से स्ट्रगल कर रहे हैं? सभी बीमारियों का जड़ से इलाज करते हैं केरला वैद्य रत्न पीवी राज फ्रॉम सहज केरला आयुर्वेदा एंड ब्रैम्पटन एंड स्कारब्रो। ये सिर्फ नर्व्स देखकर ही सारी बीमारियों का इलाज जड़ी बूटियों के द्वारा करते हैं। खानदानी गुण है, इनके इलाज से बहुत सारे लोगों का बहुत फायदा हुआ बताया जाता है। कॉल इन टुडे एट 6473278111 6473278111।
3: ये है राजधानी राजधानी राजधानी।
4: इस रक्षाबंधन राजधानी लेकर आए हैं भाई बहन एंड ब्लेसिंग्स गिव अवे। जीतो इलेक्ट्रिक स्कूटर, प्लेस्टेशन 5, डायसन एयर रैप, निंटेंडो स्विच, रेबान मेटा ग्लासेस और भी बहुत सारे एक्साइटिंग प्राइजेस।
5: राजधानी की किसी भी लोकेशन पर विजिट करें, परचेज करें 12 से 29 अगस्त तक। QR कोड स्कैन करके अपनी इन्फो और एंट्री सबमिट करें।
4: 26 लोकेशंस अक्रॉस कनाडा।
6: फॉर मोर इन्फॉर्मेशन विजिट rajdhanisweets.ca।
0: Follow us on Facebook. Filmi Nukkad, it's the free time.

0: For any information, call Sarab Sabarwal 647-864-8844. That's 647-864-8844.
1: Or visit teamsabarwal.com.
2: Your search ends here.
3: क्या आपके होम एंड ऑटो इंश्योरेंस के रिन्यूअल का टाइम आ गया है? क्या आप गुड रेट्स में एक सही कवरेज ढूंढ रहे हैं? तो कॉल सिमरन बेंस फ्रॉम ऑल स्टेट की बीसी सागर साउथ एजेंसी एट 647-453-5353. दो कारों और एक घर की इंश्योरेंस पर $2,029 तक की सेविंग्स कर सकते हैं. सिमरन बेंस एंड ऑल स्टेट के साथ आप हैं इन गुड हैंड्स. कॉल सिमरन बेंस एट 647-453-5353. 647-453-5353. And yes, even for one car and a home, $400 to $500 की annual savings possible. Call Simran Benz 647-453-5353.
4: समर ड्राइव का एक्साइटमेंट बढ़ाएं विद टंड्रा एट डॉन वैली नॉर्थ टोयोटा. आपके नेक्स्ट एडवेंचर के लिए बिल्ट और फाइनेंसिंग सिर्फ 3.49% से फॉर 36 मंथ्स. बिग सिलेक्शन, बिग समर मोमेंटम. बीजी भी इन स्टॉक आपकी इलेक्ट्रिफाइंग एक्सपीरियंस के लिए. We pay top dollar for your trade. It's time to Toyota at Don Valley North Toyota.com. Located here, 3300 Steeles Avenue, East Markham. At
5: Don Valley North Toyota.
4: A proud member of Vane's Auto Group.
6: Exclusively picked. Look.

इसके बारे में सोच रहे हैं? लेकिन क्या एक गैस लेक्सस आपके लिए ज्यादा सेंस बनाता है? डॉन वैली नॉर्थ लेक्सस पर NX350 और RX350 प्रीमियम पैकेजेस इमीडिएट डिलीवरी के लिए अवेलेबल हैं। और वेलकम बैक लॉयल्टी ऑफर के साथ आप सेव कर सकते हैं थाउजेंड्स। लीज स्टार्टिंग फ्रॉम जस्ट $618 पर मंथ फॉर 48 months। आज ही विजिट करें DonValleyNorthLexus.com, a proud member of Wintergreen Group.

0: 93FM
1: न्यूज के लिए हमें दावत दिया है टीम भट्टी रियल स्टेट फॉर ऑल योर रियल स्टेट नीड्स कॉल तलहा भट्टी 6472957861 6472957861।
2: अस्सलाम वालेकुम, आप सुन रहे हैं रेडियो पाकिस्तान और टोरंटो। पेश खिदमत हैं सबसे पहले हेडलाइंस। इमरान खान की हस्पताल मुंतकली से मुतल्लिक तौहीनी अदालत की दरख्वास्त पर एतराज दूर, समाअत के लिए मुकर्रर। फैसलाबाद रावलपिंडी में जलसा आम होगा, धरने एहतजाजी कैंप जारी रहेंगे, हाफिज नईमुर रहमान का ऐलान। कराची में ईद मिलादुन्नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के तीन मरकजी जुलूस के लिए ट्रैफिक प्लान जारी। इसराइली फौज की आशीर्वाद में फलस्तीनी शहदा की यादगार मुनहदिम, कुरानी आयात की भी बेहरमती। हुकूमत का 10 रुपए के करेंसी नोट खत्म करने का फैसला। इमरान खान से उनकी बहन नौरीन नियाजी की मुलाकात, अदालतों को ही बानी पीटीआई को रिलीफ देना होगा, अलीमा खान का बयान। 9 मई जीएच

0: हमला केस में अहम पेशरफ, 47 इश्तिहारी मुलजमान को 10-10 साल कैद, जायदादें जब्त करने का भी हुक्म। ये थी अब तक की खास खास खबरें, खबरों की तफसील होगी कुछ देर के बाद, जुड़े रहिए रेडियो पाकिस्तान टोरंटो के साथ।
1: खास खबरें बिलाल जमान साहब के लिए पेश कर रहे थे। स्टूडियोज में रबते के नंबर 4165930003। गैलेक्सी इंटरनेशनल एक्सचेंज का आज का रेट है 199.35 रुपये। डेबिट और ईमेल ट्रांसफर के थ्रू आप ट्रांजेक्शन कर सकते हैं। पाकिस्तान के किसी भी बैंक में डायरेक्ट डिपॉजिट करवा सकते हैं, वहां अकाउंट नहीं है, कैश या बैंक ड्राफ्ट भी हासिल कर सकते हैं। घर बैठे 24 घंटे ऑनलाइन मनी ट्रांसफर कीजिए, gondalbrothers.com पे आप लॉग इन हो जाइए। आज का रेट है 199.35 रुपये। कॉल कर लीजिए 905-306-0000, 905-306-0000। ट्यूजडे हमारे साथ ग्लोबल ट्रैवल टूर से कामरान रशीद साहब हुआ करते हैं और यूनियन ग्लोबल एडवाइजरिंग से नागपाल साहब से आपकी मुलाकात कराएंगे और SILC से तारिक गौरी साहब से कोशिश करेंगे आपकी मुलाकात कराएंगे। तफसीली खबरें 7:30 और 8 बजे और लाइव कॉल आपकी लेंगे तकरीबन 8:30 के करीब। और भी कुछ मौजूदात होंगी हमारी भी आपकी बातें, लेकिन इस सबको सुनने के लिए हमारे साथ रहना है 9 बजे तक। मैं आपका होस्ट और दोस्त अरशद भट्टी हूँ। प्रोग्राम का आगाज करेंगे सीरत नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के हवाले से मौलाना यूनस अशरफ साहब के इस बयान से।
2: अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। सबसे पहले रेडियो पाकिस्तान ऑफ टोरंटो को मैं अपने दिल की गहराइयों के साथ मुबारकबादी पेश करता हूँ ईद मिलादुन नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की। रेडियो पाकिस्तान ऑफ टोरंटो सुनने वालों को सभी को भी मेरी तरफ से सलाम पहुँचे। पढ़ो दरूद पढ़ो, आशिको दरूद पढ़ो, दरूद से कभी गाफिल न हो दरूद पढ़ो। अल्लामा इकबाल ने क्या खूब फरमाया है, कुव्वत इश्क से हर पस्त को बाला कर दे, दहर में इसमें मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से उजाला कर दे। अल्लाह रब्बी करीम अपने कलाम मजीद व फुरकान हमीद में इशार फरमाता है, इन्नल्लाहु व मलाइकतहु युसल्लूना अलन नबी या अय्युहल्लज़ीना आमनू सल्लू अलैहि व सल्लमू तस्लीमा, अल्लाहुम्म सल्ली अला सय्यदना शफीअना व नबीना व मौलाना मुहम्मद व बारिक व सल्लम अलैहि। तहकीक अल्लाह तबारक व तआला और फरिश्ते उसके ऊपर यानी अपने प्यारे नबी मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर दरूद भेजते हैं, तो ए ईमान वालो तुम भी दरूद व सलाम भेजो। अल्हम्दुलिल्लाह सुम्मा अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह रब्बी करीम ने हमें ये बाबरकत दिन नसीब फरमाया है ईद मिलादुन नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का। सबसे पहले जो हम ईद मिलादुन नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का खुशी का जो इजहार करते हैं हम दरूद पाक से करते हैं, और ये सबसे आसान तरीका है। अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह रब्बी करीम की जो हम इबादत करते हैं उसमें भी यानी नमाज पढ़ते हैं उसमें भी हम आका कायनात मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर दरूद भेजते हैं। दरूद खुद खुदा का फैल है और हमारे लिए हुक्म नातिक है, और एक तो तकलीद खुदा और दूसरे तामील हुक्म। अल्लाह ताला फरमाए जो शख्स एक बार अपने हबीब पर दरूद भेजता है तो अल्लाह ताला उस पर 10 रहमतें नाजिल फरमाता है, उसके साथ साथ 10 गुनाह अल्लाह तबारक व ताला गुनाह माफ फरमा देता है। 10 निकिया आमाल नामे में अल्लाह तबारक व ताला लिखता है और 10 मरातिब बुलंद होते हैं कि अल्लाह पाक जल्ल शानहू अपने प्यारे हबीब मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शान अजमत और रफअत कद्र और मंजिलत से मोमिनों को आगाह फरमा रहा है कि दरूद भेजते रहो, दरूद पढ़ते रहो, जो मैंने फरमाया पढ़ो दरूद पढ़ो, आशिको दरूद पढ़ो, दरूद से कभी गाफिल न हो दरूद पढ़ो। जीजान मिल्लत इस्लामिया हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया है कि जो कोई मुझ पर दरूद भेजे सुबह शाम तो मेरी शफात खुद कयामत में उसे ढूंढ लेगी। हदीस पाक में आया है हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया है कि जिस शख्स ने जुमा के दिन मुझ पर 100 मरतबा दरूद पढ़ा उसके 80 बरस के गुनाह बख्श दिए जाते हैं। हदीस शरीफ में आया है हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाया है कि मुझसे जिब्रील अलैहिस्सलाम ने फरमाया कि जो आप पर दरूद पढ़ता है उस पर 70,000 फरिश्ते सलाम भेजते हैं, सलात भेजते हैं, और जिस पर फरिश्ते सलात भेजे वो जन्नती हो जाता है। इसके बाद हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया मन दुकिरतु इंदहु वलम युसल्ल अला फकद जफानी, यानी जिसके सामने मेरा जिक्र किया जाए और वो मुझ पर दरूद न पढ़े गुया उसने मुझ पर जुल्म किया। इसके बाद आका कायनात मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया है कि वशकी अब्द दुकिरतु इंदहु फम युसल्ल अलै, यानी बदबख्त वो शख्स है और वो बंदा जिसके सामने मेरा जिक्र किया गया हो और न दरूद पढ़े। गर्ज के अकवाल सादिका और हादिस मुबारका से साबित है कि दरूद सलाम दुनिया में वसीले खैर बरकत है, उकबा में जरिए नजात है और शिफा भी देता है, बीमारों को छुड़ा भी देता है बीमारियों से और गम के गिरफ्तारों को, उसकी कसरत से माल में बरकत, औलाद में तरक्की भी होती है, और सबसे अच्छी बात तो ये है کہ اس کے پڑھنے والے کو محبت کامل یعنی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت کامل ہو جاتی ہے, اور آپ کی محبت اللہ پاک کی محبت ہے, بس یہی اسلام اور مدار اسلام ہے. اللہ رب کریم نے ہمیں یہ جو بابرکت دن نصیب فرمایا ہے عید میلاد النبی صلی اللہ علیہ وسلم کا, اللہ رب کریم اس کی برکتوں سے ہم سب کو مالا مال فرمائے, اور اللہ رب کریم اپنے پیارے حبیب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے وسیلہ جلیلہ سے ہم سب گنہگاروں کے اللہ تبارک و تعالی گناہ معاف فرمائے. آمین آمین. وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین.

0: Since 1993, MWC Food Banks have provided individuals and families with non-perishable food, halal meat, and essential household items. Over 10,000 families across Canada rely on MWC Food Banks to supplement their food requirements. We serve in Scarborough, Mississauga, and in First Nations communities. Charity starts at home. Please donate generously to Muslim Welfare Canada. Call 1-866-754-3111 or visit mwcanada.org.
1: अपने खुशी के लम्हात को यादगार बनाएं. आइकॉन इवेंट स्पेस में शादी, मेहंदी, रिसेप्शन, बर्थडे पार्टीज, कारपेट इवेंट्स, गजल और कवाली नाइट्स या किसी भी तकरीब के लिए तीन खूबसूरत और शानदार हॉल्स हैं, जहां 1200 तक गेस्ट्स की भरपूर मेहमान नवाजी कर सकते हैं. तमाम हलाल डिशेस पाकिस्तानी शेफ की निगरानी में रिवायती जायकों के साथ तैयार की जाती हैं. इन हाउस स्टेजिंग, ऑडियो विजुअल सिस्टम, 10 प्रोजेक्टर स्क्रीन्स, मुकम्मल टेक्निकल सपोर्ट के साथ 6887 डिक्सी रोड मिसिसागा. फॉर मोर इन्फॉर्मेशन एंड बुकिंग कॉल मिस्टर आलम 437-425-2500 और ब्रॉम्पटन में क्वींस मैनर इवेंट सेंटर 2 ऑक्शन लेन ब्रॉम्पटन. फॉर मोर इन्फॉर्मेशन कॉल 416-814-3600.
2: हज इस्लाम का बुनियादी रुकन है और हर मुसलमान की ख्वाहिश है कि वो फरीज़ हज अदा करे. अल खैर ग्रुप दुनिया का नंबर एक हज ग्रुप है, जिन्हें सऊदी अरब की तरफ से इस साल का बेहतरीन ग्रुप करार दिया गया है. पिछले 30 सालों से बेहतरीन हज और उमरा सर्विसेज प्रोवाइड कर रहे हैं. अगर आपके पास पाकिस्तानी पासपोर्ट है और अगले साल हज की सआदत हासिल करना चाहते हैं, तो अल खैर के नॉर्थ अमेरिका के लिए एक्सक्लूसिव ऑथराइज रिप्रेजेंटेटिव सफरुल मोमिन से رابطہ करें. बेहतरीन पैकेजेस, मुकम्मल रहनुमाई और बेहतरीन इंतजाम. मजीद मालूमात के लिए कॉल कीजिए साद शेख और आरिफ शेख 416-678-2743. इट्स 416-678-2743.
3: इफ यू आर इन्वॉल्वड इन अ कार एक्सीडेंट और स्लिप एंड फॉल, यू कैन स्पीक टू अ लॉयर डायरेक्टली. कॉल मोहम्मद आलम, बैरिस्टर एट लॉ एंड पर्सनल इंजरी लॉयर एट आलम लॉ ऑफिस. नो फी अनलेस ही विंस योर केस. फॉर फ्री एडवाइस कॉल 416-625-2636. दैट्स 416-625-2636.
4: सिर्फ मॉर्गेजेस. दैट्स राजीव तलवार, द मॉर्गेज सुपरस्टार. मॉर्गेज रेजिडेंशियल लो या कमर्शियल, फॉर कस्टमाइज्ड मॉर्गेज सॉल्यूशंस चूज राजीव तलवार. मुश्किल से मुश्किल मॉर्गेज हो, लास्ट मिनट डील हो या फिर क्रेडिट इश्यूज हो, राजीव तलवार का वसी इल्म और तजुर्बा आपका काम आसान कर देगा. तो याद रखिए, मॉर्गेज उनसे मत लीजिए जो मॉर्गेज भी करते हैं, बल्कि मॉर्गेज सिर्फ उनसे लीजिए जो मॉर्गेज ही करते हैं. कॉल राजीव तलवार ऑफ लीडिंग एज मॉर्गेज एक्सपर्ट्स 9058191001. 9058191001. लाइसेंस नंबर 12374.
5: सहजा केरला आयुर्वेदिक हर्बल कंसल्टेशन सेंटर, जहां केरला वैद्या रत्ना पीवी राज, जो कि खानदानी वैद्य हैं, नबज देखकर जड़ी बूटियों से इलाज करते हैं. बेशुमार मरीज उनके हर्बल दवाओं से शफायाब हो चुके हैं. अस्थमा, एलर्जी, स्किन प्रॉब्लम्स, कमर या घुटनों का दर्द, आर्थराइटिस, हेयर प्रॉब्लम, गैस प्रॉब्लम, अल्सर, लेडीज प्रॉब्लम, वेट लॉस, सोरसेस और सारी बीमारियों का इलाज करके उनका जड़ से खात्मा करते हैं. ब्रैम्पटन और स्कारब्रो दो लोकेशन से आपको सर्व कर रहे हैं. कॉल कीजिए 6473278111. It's 6473278111.
6: Our loan and credit card bills keep piling up. We have no money to pay them with our limited income.
7: I'm afraid we are going to go bankrupt and lose our house, business and all assets. Is this why we immigrated to Canada?
8: Jab koi baat bigad jaye.
9: Help is just one call away. No need to file bankruptcy. We can save your assets, stop collection calls and make one monthly interest-free installment for maximum debt relief. Call Aisha Munawwar, Debt Solutions Specialist and Insolvency Counselor with Rumanek & Company Limited, a company with licensed insolvency trustee. Call Aisha Munawwar at 416-428-2165. That's 416-428-2165.
10: यूनी ग्लोबल एडवाइजरी इंक आपके लिए लाए हैं गवर्नमेंट सपोर्टेड प्रोग्राम की एक और गोल्डन अपॉर्चुनिटी. आप घर बैठे तालीम हासिल कर रहे हैं और हुकूमत से 50,000 से 1,70,000 डॉलर तक का लोन हासिल करें, जिस पर कोई इंटरेस्ट नहीं है. ऑनलाइन कोर्सेज जिसमें कोई एग्जाम भी नहीं है, कोई क्रेडिट चेक नहीं, कोई एज लिमिट नहीं, कोई पर्सनल गारंटी नहीं और ना ही कोई इनकम रिक्वायरमेंट. इनकी फीस सिर्फ $199 है. अभी कॉल कर लें 4372643175. इट्स 4372643175.
11: आवाज वो जादू सा जगाती हुई आवाज, आवाज जो रूह के तारों को छेड़ती. जी हाँ, ये आवाज है उस्ताद राहत फतेह अली खान और शाह जमान खान की, जो आ रहे हैं आपके शहर टोरंटो में.
12: तेरी आँखों के At prestigious Scotia Arena on 27 September, Sunday, 7 p.m. For tickets, log on to ticketmaster.ca. For more information, call Wajid Malik, 416-827-3333. Official media partner, Radio Pakistan Toronto and Toronto 360 TV. Presented by True Sound Live.
13: Global Travel and Tours. Mississauga में community को दुनिया भर के लिए सस्ते तरीन टिकट ऑफर कर रहे हैं. IATA approved agent तमाम major airlines से डील करते हैं. PIA के consolidator हैं और PIA tickets के special low fare available हैं. Book in advance and get special discount. Umrah और ziyarat की special package deal के लिए call करें 905-275-3555 905-275-3555
12: 918 Dundas Street East Unit 1C Mississauga
14: 905-275-3555 ग्लोबल ट्रेवल टूर के रابطے का नंबर है. कामरान रशीद साहब रूहे रवा हैं, सीईओ हैं, आपके लिए बेस्ट डील्स लेकर आते हैं. उम्रे के पैकेजेस हैं, सीट सेल मुख्तलिफ एयरलाइंस की और उसके साथ साथ हज के स्पेशल पैकेजेस भी हैं. 905-275-3555 अंडर वन रूफ आपके लिए इमिग्रेशन सर्विसेज, कॉन्सुलेट सर्विसेज और मनी ट्रांसफर की सर्विस भी प्रोवाइड करते हैं. खुश आमदीद कहेंगे. कामरान भाई अस्सलाम वालेकुम.
15: जी वालेकुम सलाम अशोक साहब, बहुत बहुत शुक्रिया और आपकी वसातत से तमाम सुनने वालों को भी मेरा बहुत सलाम.
14: बहुत शुक्रिया आपका. और सीट सेल अभी भी महफिल में जारी है और बड़ी अच्छी अच्छी खबरें आ रही हैं आपकी तरफ से भी, और हम चाहेंगे कि थोड़ा सा अपडेट भी कर दीजिए. कोई डेट डेडलाइन करीब तो नहीं आ रही कोई?
15: जी अशोक साहब, डेडलाइन बहुत करीब है. जैसे अच्छा. कि हमने लास्ट टाइम भी जिक्र किया था और अगस्त 30th इज द डेडलाइन, लेकिन टाइम पीरियड बड़ा लॉन्ग, नवंबर एंड तक, दिसंबर भी फर्स्ट वीक इसमें शामिल हैं. और वो लोग जो नवंबर में बिलखसूस ट्रैवल करते हैं, विंटर पाकिस्तान में गुजारते हैं, ये बेस्ट टाइम है कि आप टिकट बाय कर लें. पीआईए की स्पेशल प्रमोशन 20% डिस्काउंट के साथ अभी तक जारी है. okay. और ये बेस्ट अपॉर्चुनिटी है कि इसको अवेल किया जाए. और हम हमेशा ये कोशिश करते हैं अपने सुनने वालों को न सिर्फ सीट सेल बल्कि ये इन्फॉर्मेशन शेयर करते हैं कि जितना एडवांस टिकट बाय करें उतनी ही ज्यादा सेविंग होगी, उतनी ही ज्यादा बचत होगी. इसके साथ साथ पीआईए में अगर आप जाते हैं तो आप अपना एड ऑन फेयर भी ऐड करके उम्रे को भी इसके अंदर ऐड कर सकते हैं. आप अरमान की हाजिर हैं और उसके लिए ग्लोबल ट्रैवल एंड टूर जो है वो आपको कस्टमाइज पैकेज भी बनाकर देगा. तो इसलिए अभी फौरन मैं चाहूंगा कि जो लोग सुन रहे हैं, अपना प्लान बना रहे हैं, वो फौरी तौर पर रब्ता करें. नंबर इज 905-275-3555
14: पर रब्ता कर लीजिए. कस्टमाइज से मुराद ये है कि चाहे दो लोग जा रहे हों, तीन हों, चार हों, ग्रुप हो, ये तमाम लोगों के लिए होटलिंग, ट्रांसपोर्ट, तमाम का अरेंज जो है करते हैं कामरान साहब. मैं खुद जो है इनके थ्रू कई दफ़ा उम्रे के लिए जा चुका हूँ. अच्छा, एक चीज़ मेरे जहन में अचानक आई कि अगर सीट से अगर सऊदी एयरलाइन की भी है और वो पाकिस्तान के लिए कह रहे हैं कि 15% है, तो जो लोग सऊदी अरब में उतर जाएंगे कोई फ़ायदा होगा उनको, मतलब कम फेयर मिलेगा?
15: जी अश्विन साहब, जो सऊदी एयरलाइन का डिस्काउंटेड फेयर आया है, बहुत सी डेट्स ऐसी हैं जिसमें वो अवेलेबल होता है, तो आप रुक सकते हैं. स्टॉप ओवर लेना है किसी भी डायरेक्शन में, स्टॉप ओवर ले लें, जाते हुए उमरा कर लें, बिल्कुल हो सकता है.
14: नहीं, अगर सिर्फ सऊदी अरब ही जाएं और आ जाएं फिर कम होगा टैरिफ, किराया कम होगा?
15: वो ये एक बड़ी टेक्निकल बात है.
14: टेक्निकल मेरे ज़हन में भी आई है.
15: कुछ डेस्टिनेशंस पे इनके जब लोड कम होता है वो हमेशा उसको प्रमोट करते हैं. हमारे सामाइन सुन रहे हैं, मैं चाहता हूँ एक एजुकेशनल हो जाती है चीज कि अगर लाहौर सेक्टर में उनको लोड चाहिए तो वो टोरंटो लाहौर का फेयर दे देते हैं.
14: बिल्कुल सही.
15: और जद्दा के लिए ऑब्वियसली उनके पास ऑलरेडी अगर लोड ज्यादा है, उनकी कैपेसिटी से बढ़कर है, तो उनको वो जरूरत नहीं होती है, उसको रेगुलर फेयर में भेजते हैं.
14: बिल्कुल ठीक.
15: तो ये वजह है, कुछ सामाइन पूछते हैं, कई क्लाइंट हमें कॉल करते हैं, जी जद्दा महंगा को आपके तो सीट से चल रही है. पीछे की लॉजिक ये है कि वो आपको डेस्टिनेशन देखते हैं,
14: ठीक
15: कि लाहौर है, कराची है या इस्लामाबाद है.
14: 905-275-3555. अच्छा, आपका जो ये तो उम्रे में, तो लोग जो पाकिस्तान जाएं तो उम्रा का एड ऑन कर लें, अगर कोई लोग एक्स्ट्रा कोई नवंबर में या कोई डिफरेंट आपके पैकेजेस भी आते हैं, तो कोई ऐसा ग्रुप है आपका जो जा रहा हो अगले महीनों में?
15: जी बिल्कुल अशोक साहब, हमारा नवंबर में स्पेशल ग्रुप तैयार है और काफी लोगों ने उस पर बुकिंग करा ली है। लिमिटेड सीट्स हैं। इजिप्ट एयर के साथ टोरंटो से डायरेक्ट मदीना मनवरा।
14: अच्छा।
15: और एक जुमा मदीना मनवरा में 10 डेज का पैकेज है। आप जल्द आए, जल्द पाए वाली बात रह गई है। 2795 के अंदर क्वाड बेस, इंक्लूडिंग वीजा, इंक्लूडिंग टिकट, इंक्लूडिंग योर ऑल जियारा, ट्रांसपोर्टेशन, ब्रेकफास्ट, तो ग्रीन पैकेज है। नवंबर मौसम अच्छा हो जाता है, गर्मी की शिद्दत नहीं रहती है, इसलिए अपने एल्डरी और अपने सिस्टर्स के लिए ये पैकेज बनाया है। दिसंबर ऑब्वियसली बहुत महंगा हो जाता है, सीजन महंगा होता है। बहुत से लोग पूछते हैं कि यार कोई हमें ऐसा पैकेज बना के दें जो हमें मौसम की शिद्दत भी फील ना हो और खर्चे की शिद्दत भी फील ना हो, लिहाजा ये नवंबर के लिए बेहतरीन
14: अपॉर्चुनिटी। बिल्कुल ठीक। अच्छा, हज पे आ जाते हैं क्योंकि हज के हवाले से ज़ाहिर है अभी क्योंकि पहले प्रिपरेशन हो रही होती है, रजिस्ट्रेशन भी हो रही होती, थोड़ा उस हवाले से बता दीजिएगा क्या तरीकेकार है, क्या लोगों को करना चाहिए और रजिस्टर कैसे होते हैं और आपके पैकेजेस के हवाले से बिल्कुल इन्फॉर्मेशन हो तो।
15: जी बहुत शुक्रिया अशर भट्टी साहब। एक तो नई डेवलपमेंट ये है कि गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान ने जो पोर्टल के ऊपर हज की रजिस्ट्रेशन कर रहे थे ओनली नाइकॉप कार्ड के ऊपर, वो कुछ दिन पहले हुई है, अब पाकिस्तानी पासपोर्ट भी लाजिम करार पा लिया गया है। अब लिहाजा आपका पासपोर्ट